आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 3 अक्टूबर 2026। सवेरे के ठीक 5:56 और 38 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं वंदनवार चिंतन।

आज का चिंतन। महात्मा गांधी ने कहा है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। आइए सुने भक्ति रचनाएं।

ये विविध भारती है, झरोखा में आइए आपको बता दें आज दिन भर प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 330। सुबह और संध्या 6:45 पर संगीत सहिता कार्यक्रम में श्रृंखला आप सुनेंगे शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं गायक और संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहयोग झरना और प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 7:00 सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे हम हेरा ही प्यार के। 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम त्रिवेणी। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार जेपी दत्ता पर। आप इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुन सकेंगे रात्रि 9:30 से। दिन में 10:00 पिटारा में सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी यादों की तपिश का पहला भाग आपको सुनाएंगे लेखिका ममता सिंह, स्वर ममता सिंह का। दिन में 11:00 मैटिनी शो आप सुनेंगे जानी मानी गायिका इला अरुण से मंदाकिनी जोशी की लाइव बातचीत।

12:05 पर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। आप सुनेंगे ये कार्यक्रम जाने माने संगीतकार अनु मलिक से यूनुस खान की लाइव बातचीत आप सुन सकेंगे। 2 बजे होगा कार्यक्रम त्रिवेणी। 2:30 पर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे जाने माने फिल्मकार और अभिनेता तिग्मांशु धूलिया से ममता सिंह की लाइव बातचीत। 4:00 पिटारा लाएगा बॉम्बे टॉकीज गायिका पूर्णिमा यानी सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का 3रा भाग आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 5:00 आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम संध्या रंजन।

शाम 7 बजे संगीतकार SD बर्मन द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे और 7:45 पर आप सुनेंगे ज्ञान विज्ञान का कार्यक्रम जिज्ञासा इंद्रधनुष के अंतर्गत। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा सुनो कहानी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी कंचन का पहला भाग आपको सुनवाएंगे, वाचन ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। नौ बजे सुनिएगा कार्यक्रम आपके लिए और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार JP दत्ता पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत और 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

कुंभकर्ण वध के बाद युद्ध भूमि में अब रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद आ उतरा है। अनेक प्रकार के वाण कृपाण तथा अन्य आयुध चारों दिशाओं में छा गए हैं। इधर वानर और रीछ योद्धा पर्वत खंडों और वृक्षों से उस पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु इनका उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। मेघनाद ने हनुमान, अंगद, नल, नील, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि महारथियों के शरीर अपने अस्त्रों से छलनी कर दिए। मेघनाद के कुछ वाण सर्पों का रूप धारण कर वानर सेना के महारथियों को बांधते जा रहे हैं। तब श्री राम ने अपनी एक और लीला दिखाने के लिए अपने को भी नाग पाश में बंधवा लिया। ये देख देवतागण चिंतातुर हो गए। मेघनाद ने तब त्रिशूल से वयोवृद्ध जांबवान पर आक्रमण किया, लेकिन जांबवान ने

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार हैं गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं ये श्रृंखला इन दिनों प्रसारित हो रही है संगीत सरिता कार्यक्रम में और आज हम तीसरी कड़ी के साथ उपस्थित हैं। शेखर दादा, दूसरी कड़ी में हमने वंदे मातरम के बारे में श्रोताओं तक जानकारी पहुंचाई और मेरे जहन में एक बात आ रही है कि बहुत सारी फिल्मी भक्ति रचनाएं हैं और बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिन्होंने बहुत कम गाया और कम उम्र में सीखना शुरू किया और कम उम्र में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो ऐसे गायकों की आज चर्चा करेंगे, उन रचनाओं की चर्चा करेंगे।
2: जी हाँ, मैं दरअसल सबसे पहले तो आपको सुनाना चाहता हूँ जो पहली भारतीय फिल्म थी,
1: बोलती फिल्म,
2: बोलती

0: टी फिल्म, क्योंकि उसके पहले तक हमारे यहाँ मूक फिल्में होती थी, संवाद नहीं होते थे, म्यूजिक नहीं होता था
1: जी, आलम आरा।
0: तो सबसे पहली हमारी फिल्म थी आलम आरा, जो बनना शुरू हुई थी 1931 में, 1931 में, और 32 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में एक गाना था छोटा सा, एक जो फकीर है वो गा रहा है, और बस उतना सा ही एक हिस्सा था, लेकिन वो उसके शब्द बहुत सुंदर हैं कि दे दे खुदा के नाम पे प्यारे
1: जी,
0: ताकत हो गर देने की, कुछ चाहे अगर तो मांग ले उससे, हिम्मत हो गर लेने की।
1: क्या बात है।
0: तो आप ये सोचिए कि केवल दो लाइनें हैं इस पूरे प्रसंग में। दुर्भाग्य से वो फिल्म जो है वो जल गई थी, तो वो फिल्म का प्रिंट अब हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पर उसका संगीत जो है वो किसी बहाने वो बच गया, और उसको कुछ लोगों ने फिर रिकॉर्ड भी किया, तो वो आज हमको सुनने के लिए मिल सकता है। और उस समय के एक बहुत विद्वान गायक थे शास्त्रीय संगीत के, उस्ताद वजीर मोहम्मद खान साहब।
1: जी जी।
0: तो वजीर मोहम्मद खान साहब ने ये छोटा सा हिस्सा गाया था। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जब फिल्में शुरू हुई तो शास्त्रीय संगीत के बहुत सारे कलाकार, अभिनेता, नर्तक, ये सब लोग आके जुड़ते गए, और उन्होंने हमारी भारतीय फिल्म की जो परंपरा है उसको एकदम शुरुआत से ही बहुत समृद्ध किया।
1: जी जी।
0: तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ उस्ताद वजीर मोहम्मद खान साहब का स्वरबद्ध किया हुआ, ये केवल दो पंक्तियों का गीत उपलब्ध है
1: जी।
0: कहीं पर आपको भी खजाने से ढूंढ कर निकालना होगा
1: जी,
0: पर
1: जी।
0: मैं चाहता हूँ कि आप जरूर अपने श्रोताओं को वजीर मोहम्मद खान साहब का ये भजन या उसको गीत कहें, सूफियाना अंदाजे का कलाम है, सब लोग उसका आनंद लें।
1: दे दे खुदा के नाम,
2: दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर देने की, ले ले।
1: आलम आरा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, और बताते चलें कि 1931 की पहली बोलती फिल्म थी, जो दादा ने बताया, शेखर दादा ने भी जानकारी दी कि ये रिलीज़ हुई थी 1932 में। अब शेखर दादा एक और ऐसे गायक हैं जिन्हें 8 साल की उम्र में ही गायक सम्राट का दर्जा मिल गया था
0: जी।
1: तो उन गायक का नाम,
0: दरअसल ये 1930 के दशक में
1: जी
0: ये बच्चा था छोटा सा
1: जी,
0: और चूंकि हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे
1: जी,
0: तो अगर कोई छोटा बच्चा गाता था तो हम उसको मास्टर कहते थे, और कोई छोटी बच्ची गाती थी तो नाम बेबी जुड़ जाता था
1: जी जी।
0: तो इस गायक का नाम था मास्टर मदन
1: जी।
0: 1927 में उनका जन्म हुआ और 1942 में उनका निधन हुआ, मतलब पूरा उनका जीवन कालखंड जो है वो सिर्फ 15 साल का था
1: जी जी।
0: लेकिन इस 15 साल में उन्होंने बहुत सारे ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड किया, और उस समय लोग पागल हो गए थे। मास्टर मदन एक ऐसा नाम था कि लोग सुनते थे कि मैंने कहीं अगर अनाउंस हो जाता था कि यहाँ मास्टर मदन आने वाले हैं या बच्चा आने वाला है, तो लोग पागलों की तरह वहाँ भीड़ जमा हो जाती थी। ये जादू मास्टर मदन के बाद फिर कुछ वर्षों के बाद दिखाई दिया था, जब कुमार गंधर्व जी बच्चे थे
1: जी जी।
0: तो कुमार गंधर्व जी के भी लिए लोगों का वैसा ही क्रेज था, और मैं चाहता हूं कि मास्टर मदन का ये एक गीत आप सुनाएं। ये राग खमाज में है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि उनकी प्रसिद्धि से जल करके कुछ दुष्ट लोगों ने उनको दूध में जहर मिला करके पिला दिया था, और जिसकी वजह से धीरे धीरे वो मृत्यु का ग्रास बन गए। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर एक दाना भी मिल जाए तो आपको मालूम पड़ता है कि वो दाना कितना पका हुआ है और कितनी सुगंध है। वैसा ही ये गीत है, पर मैं चाहूँगा पहले हम लोग राग खमाज का मैं थोड़ा सा परिचय दे दूँ।

0: और आते समय पूर्ण संपूर्ण होता है, पर रे जो है वो मींड में लगता है, सीधे रे नहीं लगाया जाता। पर ये राग इतना प्रसिद्ध राग है
1: जी, जी.
0: कि मुझे लगता है कि सुगम संगीत की आधी रचनाएं राग खमाज में या मिश्र खमाज में या मांझ खमाज में आपको मिल जाएंगी
1: जी.
0: तो मैं चाहूँगा कि हम राग खमाज में मास्टर मदन की ये रचना सुने
1: जी।
0: मोरी बिनती मानू कान्हा रे।

0: शेखर दादा, हम चाहते हैं कि राग खमाज में ही आप एक रचना खुद सुनाएं, क्योंकि आपके स्वर के लिए भी लालायित थे हमारे श्रोता।
1: मैं एक पारंपरिक रचना सुनाता हूं, क्योंकि हमारे पास दरअसल जो खजाना है
0: जी,
1: वो पारंपरिक इतना बड़ा खजाना है
0: जी,
1: तो एक कलाकार के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, और श्रोताओं के नाते आप सभी संगीत सरिता के श्रोताओं की भी ये जिम्मेदारी है कि हमारी जितनी भी पारंपरिक रचनाएं हैं
0: जी,
1: उनको गाएं और उनको आगे अपनी अगली पीढ़ी को सिखाएं।

0: वाह दादा, आपने अद्भुत गाया। अब तो लग रहा है कि बस इस कड़ी को समाप्त न करें और आपसे अनुरोध करते रहें कि आप गाते रहिए।
1: नहीं, अब इसके लिए हम लोग कल मिलेंगे अपनी चौथी कड़ी में।
0: जी,
1: आप सभी श्रोताओं को एक बार फिर से पुनः प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे थे श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। आज आपने सुनी इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी, तबला संगत आशीष विश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से थोड़ी ही देर में आप
4: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम संगीत सरिता। FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम। नमस्कार अलवर।

कार्यक्रम नमस्कार अलवर सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आज के अंक को लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो मित्र आशीष मालानी। श्रोताओं, प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए स्वच्छ हवा, जल, वन और जैव विविधता का अनमोल उपहार दिया है। हमारे जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है बल्कि असंख्य वन्य जीवों और पक्षियों का प्राकृतिक घर है। वन्य जीव हमारे पर्यावरणीय संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आज हम नमस्कार अलवर में एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे पर्यावरण, हमारी जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से सीधे जुड़ा

आज का हमारा मुख्य विषय है वन्य जीव सप्ताह। वन है तो जीवन है, वन्य जीवों से धरती महान, प्रकृति बचाएं, जीव बचाएं, यही हमारा अभियान।

श्रोताओं, वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर 26 से और 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है। यह अवसर हमें वन्य जीवों के महत्व को समझने, उनके संरक्षण के प्रति जागरूक होने और प्रकृति के साथ अपने संबंध को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। भारत जैव विविधता से समृद्ध देश है। यहाँ अनेक प्रकार के वन्य जीव, पक्षी, सरीसूप और अन्य जीव पाए जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो हमारे राज्य के वन और अभयारण्य वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। अलवर और उसके आसपास का सरिस्का क्षेत्र भी वन्य जीवों और प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है।

श्रोताओं, वन्य जीवों का संरक्षण केवल वन विभाग या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। जंगलों को नुकसान न पहुंचाना, वन्य क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखना, वन्य जीवों को परेशान न करना और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, ऐसे छोटे छोटे कदम हैं जिससे हम प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। आज के समय में पर्यावरण में हो रहे बदलावों का प्रभाव वन्य जीवों पर भी पड़ता है। जब जंगलों और प्राकृतिक आवासों पर दबाव बढ़ता है तो अनेक जीवों के सामने भोजन, पानी और सुरक्षित आवास की चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ वनों और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण भी आवश्यक है।

इसीलिए बच्चों, किसी ने कहा है, छोटे को छोटा मत जानो, मत समझो बेकार, सुई जहां पर काम आए वहां करेगी क्या तलवार।

श्रोताओं, वन्य जीव हमारे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक जीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, प्रकृति की व्यवस्था में अपना योगदान देता है। यही कारण है कि हमें वन्य जीवों को केवल देखने का या आकर्षण का विषय मानने के बजाय उनके प्राकृतिक महत्व को समझना होगा। वन्य जीव सप्ताह हमें यह संदेश देता है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि हम आज अपने जंगलों, नदियों, पहाड़ों, वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियां भी इस प्राकृतिक संपदा को उसी सुंदरता के साथ देख पाएंगी, उसे महसूस कर पाएंगी।

श्रोताओं, बच्चों और युवाओं में वन्य जीवों के प्रति जागरूकता पैदा करना बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम, चित्रकला, निबंध, प्रश्नोत्तरी और जागरूकता अभियान विद्यार्थियों को प्रकृति के करीब लाने का माध्यम बन सकते हैं। वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता केवल जंगलों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, हमारे आसपास रहने वाले पक्षियों और छोटे जीवों के लिए भी सुरक्षित वातावरण बनाना प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। पक्षियों के लिए पानी रखना, पेड़ पौधों की रक्षा करना और आसपास स्वच्छता बनाए रखना भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक

अंत में श्रोताओं, वन्य जीव सप्ताह केवल एक सप्ताह तक चलने वाला आयोजन नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने और उसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने का अवसर है। हम जीवों के प्राकृतिक आवास और उनका सम्मान करेंगे तो पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान देंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की इस अनमोल विरासत को सुरक्षित रख पाएंगे। वन बचेंगे तो वन्य जीव बचेंगे, वन्य जीव बचेंगे तो प्रकृति बचेगी, और प्रकृति बचेगी तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।

अब दीजिए इजाजत अपने रेडियो मित्र आशीष मालानी को, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार अलवर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आपको पहला गीत सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में लाट साहब फिल्म से। गीत की रचना है हसरत जयपुरी की और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: लेकिन वो बात
1: मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को अपनी आवाज दी मोहम्मद रफी ने। गाने की धुन तैयार की थी ओपी नैयर ने। फिल्म का नाम फिर वही दिल लाया हूं का अभी आपने गीत सुना। अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में पराया धन फिल्म का गीत। गीत की रचना है आनंद बख्शी की और संगीत आर डी बर्मन का।

हसरत जयपुरी के लिखे गीत को अपनी आवाज दी लता मंगेशकर ने, गाने की धुन तैयार की शंकर जयकिशन ने, फिल्म का नाम झुक गया आसमान का भी आपने गीत सुना। अब आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाज में प्यासा फिल्म का गीत। गीत की रचना है साहिर लुधियानवी की और संगीत एसडी बर्मन का।

अभी आपने सुना गीता दत्त मोहम्मद रफी को प्यासा फिल्म में। अगला गीत भी आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी गीता दत्त की आवाज में मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से। गीत की रचना है मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत ओपी नैयर का।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये सफर यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से

0: से लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
2: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from their heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
1: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3,00,000 लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
5: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा

0: समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
2: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1,094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
3: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी, वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गांव में, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है, उससे मैंने गेहूँ में, चावल में, इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रुपए तक की इनकम कर ली।
2: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
4: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिर

0: जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास। सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमरीका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी शाही खेलों में भारत की कुमकुम मोहित ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम आज आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फतेह अली खान के गाए हुए गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
6: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
5: हाँ।
6: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
5: हाँ।
6: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
5: हाँ? पता नहीं।
6: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे नुसरत फ़तेह अली खान को। इसी के साथ सुगम संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:30 हुए हैं। आई सुनते हैं कार्यक्रम बातें फिल्मों की, जिसमें हम आज आपको सुनवा रहे हैं 90 के दशक के थिरकते हुए तराने। स्वर व आलेख है अर्चना जैन का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं शिव कुमार शर्मा।

नमस्कार। फिल्मी गीतों की दुनिया में नृत्य हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। जब पर्दे पर एक साथ कई कलाकार कदम मिलाकर थिरकते हैं तो गीत सिर्फ एक अभिनेता या अभिनेत्री का नहीं रहता, वह पूरे माहौल को उत्सवमय बना देता है।

ऐसे ही समूह नृत्यों से सुशोभित कुछ नगमे हमने हमारे कार्यक्रम के पिछले अंक में आपको सुनवाए, जिसमें शामिल थे 60, 70 और 80 के दशक की बेहतरीन फिल्मों के चुनिंदा तराने।

आज 90 के दशक के कुछ ऐसे ही खास नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं, जहां समूह नृत्य में थोड़ी और भव्यता आई। इस दौर से लेकर उसके बाद की हिंदी फिल्मों में समूह नृत्य ने गीतों को सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि देखने और साथ साथ थिरकने का अनुभव बना दिया।

चालबाज फिल्म के इस समूह नृत्य में जहां श्रीदेवी का थोड़ा चुलबुलापन और नटखट अंदाज हमने देखा, तो वहीं साल 1991 में आई लम्हे फिल्म के इस गीत में श्रीदेवी बड़े सादगीपूर्ण और समर्पण भाव से नृत्य करती नजर आई।

इस गीत में सुंदर और जानदार आवाज रही लता जी और इला अरुण की, वहीं इसका शानदार संगीत दिया था शोहरी ने।

साल 1990 में आई फिल्म थानेदार के एक गीत ने सामूहिक डांस की मस्ती और स्टेज परफॉर्मेंस की मस्ती को खूब लोकप्रिय बनाया।

सामूहिक नृत्यों में माधुरी दीक्षित ने अपनी उम्दा नृत्य शैली की ऐसी छाप छोड़ी कि लगभग उनकी हर फिल्म में उनका नृत्य पर आधारित एक गीत जरूर होता था।

साल 1991 में आई सुपरहिट फिल्म साजन के इस गीत में खनकती आवाज रही अलका याग्निक की। संगीत था नदीम श्रवण का और बोल थे समीर के।

0: की जोड़ी के साथ डांसर्स की पूरी टोली रंगीन परिधान और तेज लय इन गीतों की खास पहचान बने, जो आज भी पार्टियों और समारोह में सुनाई देते हैं।
1: ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये

साल 1993 की इस थ्रिलर फिल्म बाजीगर के इस गीत में रोमांस के साथ शरारत, मस्ती और डांस की भरपूर ऊर्जा दिखाई देती है।

90 के ही दशक की फिल्म दीवाना में पायल की झंकार के साथ नृत्य की लय और कलाकारों की सामूहिक प्रस्तुति में नदीम श्रवण के संगीत, समीर के बोल और कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज चार चांद लगाती है।

बात हो 90 के दशक की फिल्मों के सामूहिक नृत्य वाले गीतों की, जहां रंग बिरंगे परिधान, थिरकते कलाकार, मधुर धुन और सुंदर नृत्य मिलकर उत्सव का माहौल जमा देते थे, वही याद आता है सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन का ये मशहूर गीत, जो आज भी हर जुबान पर रहता है।

शायद यही वजह रही कि फिल्मी गीतों में समूह नृत्य हमें बार बार अपनी ओर खींचते हैं। जहां माधुरी दीक्षित के नृत्य आधारित गीतों की खूबी थी, तो वहीं गोविंदा के चुलबुले और मस्ती भरे अंदाज में एक से बढ़कर एक समूह नृत्य वाले गीत लाखों कदमों को आज भी थिरकने पर मजबूर कर देते।

गोविंदा का ऐसा ही मस्ती भरा अंदाज हमें उनके बहुत से गानों में देखने को मिलता है, जहां एक तरफ नायक नायिकाओं की नोकझोंक है तो दूसरी तरफ गीत के बोल और संगीत भी मस्ती भरे माहौल को और बढ़ा देते हैं।

90 के आगामी दशक की फिल्म कुली नंबर 1 के इस गीत में मस्ती भरा संगीत और बोल थे आनंद मिलिंद और समीर के, जिसे शरारती और नटखट अंदाज में गाया कुमार सानू और अलका जी ने।

हमारी बॉलीवुड फिल्मों में जहां प्यार के रंग, शादी के उत्सव, सामूहिक नृत्यों की खूबी रहे, तो वहीं कॉलेज की दोस्ती, प्यार और मस्ती को भी गीतों के जरिए बाखूबी पर्दे पर उतारा।

जहाँ बात हो युवाओं के जोश, ऊर्जा और चंचलता की, तब लाखों जवान लोगों के होठों पर चढ़े इस मस्ती भरे तराने को कैसे भूला जा सकता है।

कदमों को थिरकने पर मजबूर करने वाले उस दौर की फिल्म कल हो ना हो के इस गीत में बेहतरीन अदाकार थे शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा।

90 के दशक के इन गीतों ने सामूहिक नृत्य की मस्ती को और खूबसूरती से उभारा और लोकप्रिय बना दिया, जहां इन गीतों में प्यार की खूबसूरती के साथ परिवार, दोस्ती और उत्सव के माहौल अलग अलग रंगों में नजर आए।

उन नृत्यों से भरे कुछ चुनिंदा नगमों के इस सफर में लेखन और वाचन के साथ आज आपकी हम सफर रही मैं अर्चना जैन। और इसके प्रस्तुत करता रहे शिव कुमार शर्मा।

सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम बातें फिल्मों की। अगले हफ्ते होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ यादगार बेहतरीन संगीत और बोल से सजे मधुर तरानों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें फिल्मों की एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पंचायती राज आम चुनाव 2026 के कार्यक्रमों की घोषणा आज संभव। प्रदेश में आज नारी शक्ति सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के चार प्रमुख धार्मिक स्थलों पर विकास कार्यों के लिए 51 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के पारे में गिरावट का सिलसिला जारी। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान पंचायती राज आम चुनाव 2026 के कार्यक्रमों की आज घोषणा की जा सकती है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लग जाएगी। चुनाव में करीब 1,59,000 से अधिक जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। इनमें 14,403 सरपंच, करीब 1,30,000 वार्ड पंच, 1,403 जिला परिषद सदस्य और 8,245 पंचायत समिति सदस्य शामिल हैं। प्रदेश में आज राज्य स्तरीय नारी शक्ति सम्मेलन और संवाद 2026 आयोजित किया जाएगा। जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शिरकत करेंगे। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी और उनके अधिकारों से जुड़े विषयों पर संवाद होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अजमेर के जवाहर रंगमंच पर जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा, जहां जयपुर के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम में महिला जनप्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं, स्वयंसेवी तथा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही जिले में महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रयासों और उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। पाली में पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कुल 126 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 100 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 89 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हो चुके 59 कार्यों का लोकार्पण किया गया, जबकि 47 करोड़ 40 लाख रुपए के 41

0: नए कार्यों की आधारशिला रखी गई। मंत्री जोराराम कुमावत ने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष कम बारिश के कारण किसानों और पशुपालकों के सामने आने वाले समय में पानी और चारे की समस्या हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए पेयजल और चारा डिपो खोले जाएंगे।
1: निश्चित रूप से फसलों का नुकसान हुआ तो किसानों को भी नुकसान हुआ, तो इस संबंध में जैसे पीने के पानी और पशुओं को पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था करें, किसी तरह की पीने के पानी की समस्या नहीं रहे, टैंकर शुरू करना है टैंकर करें, वो बावड़िया यदि मीठे पानी की है तो उनको भी ठेके पर लेकर के उनके पीने के पानी की व्यवस्था करें, सारे जो जल स्रोत है सरकारी जल स्रोत है उनको भी कंट्रोल करके उनको शुरू करने के लिए व्यवस्था करें। साथ ही चारा डिपो खोलने के लिए भी निर्देश दिए और स्पेशल गिरदावरी के भी निर्देश दिए।
0: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के परकोटे की स्थिति पर चिंता जताते हुए पिंक सिटी का विश्व विरासत स्थल का दर्जा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने राज्य सरकार सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट रजिस्ट्री को मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज कर 26 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले एकलपीठ ने परकोटे में अवैध और अनियमित निर्माण, अतिक्रमण तथा ऐतिहासिक भवनों में बदलाव को लेकर संबंधित विभागों से कार्ययोजना और जवाब मांगा था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के पश्चिम क्षेत्र के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों से श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं का विस्तार होगा और धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि रामदेवरा, माँ देगराय, मेहोजी मांगलिया और पाबूजी राजस्थान की लोक आस्था और सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि इन स्थलों के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार विकास भी विरासत भी की सोच के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं के साथ राजस्थान की लोक परंपराओं और विरासत का संरक्षण कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं का नया तंत्र विकसित होगा। बूंदी में वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसकी थीम जुड़े आवास और वन्य जीव विकास रखी गई है। सप्ताह के शुभारंभ पर स्कूली विद्यार्थियों और युवाओं को वन्य जीव और प्रकृति संरक्षण की शपथ दिलाई गई। विद्यार्थियों को रामगढ़ टाइगर रिजर्व में विचरण करने वाले वन्य जीवों और उनके व्यवहार की जानकारी दी गई। जंगल भ्रमण के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य वन संरक्षक सुगनाराम जाट ने बताया कि सप्ताह के दौरान प्रश्नोत्तरी, रंगोली प्रतियोगिता, वन्यजीव फोटो प्रदर्शनी, पौधारोपण और संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं, चों को जैसे जंगल भ्रमण के लिए भी रवाना किया गया और इसके साथ ही जो है प्रतिदिन जो है यहाँ के आसपास के स्कूलों के बच्चों को टाइगर रिजर्व में उनको भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही जो है ट्रैकिंग, नेचर ट्रेल, बर्ड वाचिंग, इस तरह की एक्टिविटीज भी जो है टाइगर रिजर्व के जो सारे अलग अलग क्षेत्र है, चाहे इंद्रगढ़ एरिया है, भोपतपुरा है, कालदा है, रामगढ़ और जयपुर है, इन सब में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा, स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए और बच्चों को भी जो है पर्यावरण के जो कंजर्वेशन के महत्व को समझाया जाए।
0: प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ दिन का तापमान बढ़ रहा है जबकि रातें ठंडी होने लगी है। पिलानी और श्रीगंगानगर में दिन

0: का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार पिलानी में कल अधिकतम तापमान 40.2 और श्रीगंगानगर में 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के 7 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। जयपुर में अधिकतम तापमान 36.2 और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 सप्ताह प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना जताई है। इस दौरान दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के तापमान में गिरावट जारी रह सकती है। जयपुर में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए आपनों जयपुर हरित संगम एक पेड़ पूर्वजों के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से प्रकृति संरक्षण के प्रयासों से जुड़ने और हरियाली को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा, महापौर सुनील कोठारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जयपुर में 5 प्रमुख सड़कों पर करीब 9 किलोमीटर लंबाई में फुटपाथ विकसित किए जाएंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार इसके लिए 6,33,00,000 रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। ये फुटपाथ न्यू सांगाने रोड, किंग्स रोड, गोपालपुरा बाईपास, महेश नगर 80 फीट रोड और हंस मार्ग पर बनाए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज आम चुनाव 2026 के कार्यक्रमों की आज घोषणा संभव। प्रदेश में आज नारी शक्ति सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर विकास कार्यों के लिए 51 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के पारे में गिरावट का सिलसिला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला आकाशवाणी दिल्ली से।
2: प्रस्तुत है परिचर्चा मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। इसमें भाग ले रहे हैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
3: नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा करते हैं जन सेवा से देश सेवा की। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, CEO एंड सेक्रेटरी जनरल PhD चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही साथ डॉक्टर शरद कोहली, इकोनॉमिक एनालिस्ट। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद।
4: नमस्कार निहारिका, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा अभिवादन।
3: तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। एक समय ऐसा था जब हमारा देश एक कंज्यूमर इकोनॉमी था, यानी कि हम हर प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे। वहां से लेकर एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने तक का सफर कैसा रहा?
5: इंडिया हमेशा एक बहुत लार्ज मार्केट की तरह हमेशा देखा गया है, और इनफैक्ट मेक इन इंडिया ने ये इस देश को दिया है कि इस देश में कितनी, हम सिर्फ अपना एक लार्ज मार्केट ही नहीं है बल्कि हमारा विजन है। हम इस देश में मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम जो पिछले 10 साल में क्रिएट हुआ है, उससे आप एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए जैसे मोबाइल फोन्स। इससे पहले हमारे यहाँ 100% मोबाइल फोन हमेशा इंपोर्ट होते थे देश में, लेकिन आज मेक इन इंडिया जब 2014 में लॉन्च हुआ, आज 10 से 11 साल के पीरियड में पूरा हम 99% मोबाइल फोन्स हम इंडिया में बना रहे हैं। यही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर देशों में हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ओवरऑल आप एक इकोसिस्टम की बात करें मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप आज हमने डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान।

0: रहेगा, क्योंकि हमारे देश में करीब 80 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं। तो एमएसएमईज हैं तो उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना, क्योंकि हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी इससे पहले तक थे, हमारे आयात में हमारे कई सारी चीजें डिपेंड करती थी। लेकिन आज मेक इन इंडिया की वजह से आप देखिए, हमारे यहाँ चाहे वंदे भारत ट्रेन की बात करें, आप डिफेंस सेक्टर में आप देख लीजिए, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल में देख लीजिए, आप 2020 में कोविड आया था तो आप कोविड में किस तरीके से, जब पूरी दुनिया जूझ रही थी तो भारत में एक बहुत ही साइलेंट मूवमेंट चल रहा था कि कैसे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और स्ट्रांग करें। तो चाहे आप डिजाइन की बात करें, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो सिर्फ इंपोर्ट करके आप एक असेंबली करना ही उसमें काफी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है, बन रहा है, चाहे डिजाइन की बात करें, उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें, और उसके बाद ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। तो मेक इन इंडिया ने देश को एक ऐसा विश्व स्तर पर एक ऐसी पहचान दी है कि हम सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम जो बाहर की कंपनीज, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, तो अगर यहीं पे वो बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्ट करके हर स्टेट में जाकर के, जहां जहां स्टेट्स में भी इसमें बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया, आज उस देश में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्योंकि इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट है। और जो बाहर के इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक सुविधा है कि यहाँ पे अगर अपनी सप्लाई चेन डेवलप करेंगे, इस इकोसिस्टम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उनको जो है बाहर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक खुद ही एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। और इससे पहले अगर आप देखें तो साउथ साइड में हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉन्सेंट्रेशन था, लेकिन मेक इन इंडिया के बाद आप देख रहे हैं, चाहे नॉर्थ में यूपी फॉर एग्जाम्पल लैंड लॉक्ड स्टेट होने के बाद भी, और जिस तरीके से वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है और जो फैक्ट्रीज लग रही हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज लगते हैं तो देश में युवाओं के लिए रोजगार पैदा होता है, तो ये मेक इन इंडिया की खास बात ये रही है, इसने देश को एक नई पहचान दी है और हमारे उद्यमियों को एक ऐसा इकोसिस्टम दिया है जहां पे वो अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट करने के लिए भी अपनी चीजों को बना रहे हैं।
1: इनफैक्ट मेक इन इंडिया की जो बुनियाद रही है वो रही है इन्वेस्ट, डिजाइन और इनोवेट, यानी हर तरीके से हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हर कड़ी को अपने से जोड़ सकें। डॉक्टर शरद, आपके क्या विचार हैं इस विषय पर?
2: जिस तरीके से चाइना का डोमिनेंस था, चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता, अभी तक बोला जाता था, और अगर हम पश्चिमी देशों में जाएं तो वहां पर जो चाइना प्लस वन की बात करी जाती थी कि उनको, वो लोग ढूंढते थे कि चाइना के अलावा कोई और भी होना चाहिए जो कि हमारी जरूरतों को पूरी कर सके। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को, जब वो पावर में आए तो आज 12 साल हो चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले, हमें याद है वो जो शेर एक था मेक इन इंडिया का, और वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके गरजने लगा, और जितना गरजने लगा, जैसे डॉक्टर मेहता बता रहे थे कि आज हर भारतीय जो मोबाइल फोन यूज करता है वो ऑलमोस्ट आप भारत का मैन्युफैक्चर, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मोबाइल हाथ में जब लेते थे कोई कहाँ बन के आते हैं, किस जगह, ज्यादातर तो चाइना में बनते थे और भी देशों में बनते थे। और खाली मोबाइल फोन तक अगर मैं सीमित नहीं रखूं बात को, तो मैं दवाइयों की बात करूं, आज भारत दुनिया की फार्मेसी है और भारत की दवाइयां अमेरिका से लेकर यूरोप तक ना केवल पसंद की जाती हैं बल्कि वहां उसकी कीमत को भी मैच कर पाना बाकी देशों के लिए मुश्किल होता है, जितनी रिसर्च जाती है उसमें। बहुत सारी चीजें हैं, टेक्सटाइल्स है, लेदर है, फुटवेयर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, मतलब हम अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाएं तो अब ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो कि सजावट के लिए होती है, पर उसमें भी आज भारत को महारत था। तो जरूरी चीज दवाई जैसी जिसके जो लाइफ सेविंग होती है, और एक सजावट वाली चीज, तो हमने, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में हमने अक्रॉस द बोर्ड हमने सब जगह एक जगह अपनी बना ली है दुनिया में, और दुनिया को आज लगता है कि हमें पूरी तरह से चाइना पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। भारत आज वो जगह धीरे धीरे लेता जा रहा है, और मुझे ये भी लगता है निहारिका कि भारत जैसा जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 140-145 करोड़ लोग जिनके अगले साल सामने आ जाएंगे, सेंसस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा जब पॉपुलस कंट्री होती है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग ना केवल भारत की पहचान बताता है उत्पादन के क्षेत्र में, बल्कि यहाँ पर जैसा डॉक्टर मेहता ने कहा कि लोगों को रोजगार देने का बहुत बड़ा जरिया है। और अगर इतने बड़े स्केल पर देखिए, सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ कृषि क्षेत्र से आते थे, आज तक तो जब भारत आजाद हुआ था तो कृषि क्षेत्र पर ज्यादातर निर्भर था, आज वो निर्भरता धीरे धीरे धीरे धीरे कम हो गया है। मैं नहीं कहता कि कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो गया है, पर उस पर निर्भरता कम हुई है, और वो युवा आज जो, जिसको हम एस्पिरेशनल यूथ कहते हैं, वो पढ़ के निकल रहा है और वो चाहता है कि काम करना, कुछ भारत के लिए करके दिखाना, तो इसको हम वैल्यू एडिशन बाय यूथ कहते हैं, यानी कि

0: आपने कोई चीज बनाई, उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग के जरिए उसको कुछ और शेप दे दिया, इनोवेट करके कुछ और बना दिया। और मुझसे तो आप सच पूछिए, बहुत लोग पूछते हैं जो युवा आते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि अगर हम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप आप देखते हैं युवा ज्यादातर उनका इंटरेस्ट टेक की तरफ होता है, कोई ऐप बना ली, किसी ने कोई गाड़ियां इकट्ठी कर ली, किसी ने पार्किंग इकट्ठी कर ली, किसी ने खाना इकट्ठा कर लिया। तो मेरे जो दिल, मैं एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूँ, मेरे दिल के करीब जो रहते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वाले रहते हैं। और मुझसे जब वो सवाल पूछते हैं कि क्या चीज मैन्युफैक्चर करी जाए, तो बड़ा आसान है, मैंने कहा तो आप, हम जैसे चाइना से बहुत सारा सामान मंगाते हैं, $100 बिलियन से भी ज्यादा का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना से। मैंने कहा जो चाइना से सामान आता है, प्रधानमंत्री जी भी जब बार बार कहते हैं कि जब किसी पर निर्भरता रहेगी तो वो निर्भरता आपको कभी ना कभी तकलीफ देगी, और ये हमने अभी हाल में जो दुनिया के हालात हैं उसमें हमने इसको होते देखा और आज भी हम देख रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप ये जो लिस्ट है चाइना से आने वाली, मेरे पास वो लिस्ट है, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है, उसमें से कोई एक आइटम उठा के, चाहे आप अपने छोटे से गराज में, अपनी कहीं दुकान हो किराए की, दोस्त की कोई जगह हो, वहां पर आप छोटे से शुरू करिए। और डॉक्टर मेहता तो चेंबर से आते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी स्टोरीज आप पीछे जाके देखेंगे तो जब उन्होंने कभी शुरुआत की थी किसी जमाने में, तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेंगी, छोटी सी घर के कोने में, एक घर की गराज में, एक छोटी सी दुकान में, एक छोटी सी मशीन लगा के एक फैक्ट्री लगाई थी, आज वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी है। तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में भारत में पॉसिबिलिटीज बहुत है, और युवा शक्ति इसमें जितनी जुड़ेगी उतनी इसको निहारिका आपको धीरे धीरे रफ्तार मिलती मिलेगी, और पहचान भी इसकी तभी बनेगी, क्योंकि जब युवा आता है तो इनोवेशन साथ लाता है, युवा आता है तो इन्वेंशन साथ लेके आता है। और मुझे लगता है वही मैन्युफैक्चरिंग, ये चाइना ने ये करा बहुत साल पहले, और मुझे लगता है वही भारत की एक अलग पहचान बना के दिखाएगा।
1: आपने इसमें बहुत अहम कड़ी जोड़ दी जो है आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत का आगाज 2020 में हुआ था, और उस वक्त पैंडेमिक के दौरान हमारा मकसद था तत्काल आर्थिक सहायता हमारे देश को दी जाए, लेकिन अब उससे आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक रेजिलियंस की ओर हम आत्मनिर्भर भारत को ले जा रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का आगे जाकर क्या रोल रहने वाला है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने में कैसे सहायता करेगा?
2: ये बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत भी एक मैन्युफैक्चरिंग से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत एक धारणा है, एक ऐसी पहचान देश को देनी है कि जिसमें कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस ना करें, हमें हर चीज, हमारी ऐसी कैपेबिलिटीज, हम अपने देश में ऐसी कैपेबिलिटीज बनाएं जिससे कि हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस ना रहे और हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को कर सकें। और ये हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे कि कोविड के टाइम में ये शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने, कि उसमें कई सारी ऐसी स्कीम्स, क्योंकि हमारे देश का जो एमएसएमई का इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप देखें तो 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था, तो उस टाइम हमारे देश में करीब 400 स्टार्टअप थे, बट आज जो है 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में काम कर रहे हैं, और उसमें करीब वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, तीसरे हम बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं। इसमें आत्मनिर्भरता की एक ऐसी एक मुहिम, एक चलिए मूवमेंट चला है जिसमें कि हमारे देश का हर युवा, क्योंकि आज भारत एक सबसे बड़ा आबादी वाला देश ही नहीं है, बल्कि हमारी 65% जो हमारी आबादी है, लोग हैं, इसमें युवा हैं, जिससे जो कि 35 से 40 साल तक के जो युवा हैं, तो उनके लिए ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक मूवमेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, तो इसमें ये दर्शाता कि हमें हर चीज अपने देश में, क्योंकि अपना देश में जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन की कमी नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ओरिएंटेड है, और चाहे गांव में आप, चाहे विलेजेस में, उसमें चाहे आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देख लीजिए, क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उससे कई ऐसी रोजगार की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं, कि हम फॉर एग्जाम्पल एक पोटैटो है, अगर आप आलू का, अगर एक आलू लेंगे तो मैक्सिमम कितने कुछ पैसे का मिलेगा, बट एक आलू से चिप्स का पैकेट बिकता है वो 15 से 20 रुपए का बिकता है, वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की पावर। तो ये छोटे छोटे जो उद्योग हमारे गांव-गांव में, क्योंकि इंडिया में आज हमारी जो इकोनॉमी है रूरल इकोनॉमी है आज भी, तो वहां पे आत्मनिर्भरता तब आएगी जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है उसे जो है शहरों की तरह माइग्रेट ना करना पड़े, वो जो है उनके लिए ऐसे रोजगार की संभावनाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और स्टेट में पैदा हो जाएं, कि जिससे कि वो वहीं पे उसको पैदा कर सकें और वो अपना आत्मनिर्भर अपने आप में हो सकें, वो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई होगी। इसके लिए क्या है, भारत सरकार ने इस टाइम जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए हैं पूरे देश में, उससे क्या है एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, क्योंकि हमारे देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, तो इसी आत्मनिर्भरता की

0: शाम ये देखा सरकार ने कि एक्सप्रेसवे को बना के, रोड्स को बना के, और जो ट्रेन से और शिपिंग सारा जो है इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्रिएट करके ये देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया, जिससे कि हम जगह जगह गांव में हर जगह आज रोड है, जहां पे रोड है वहां पे कोई भी आप उद्यम शुरू करके, कोई भी उद्योग शुरू करके उसको हब तक, जो बिजनेस हब्स हैं वहां तक आसानी से ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है।
1: आपने अपने उदाहरणों के जरिए और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करके एक बहुत अहम कड़ी और इसमें जोड़ दी। मेरा ख्याल है अब हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में भी बात करनी चाहिए। हमारे विजन की शुरुआत हुई थी निवेश आकर्षित करने से, लेकिन अब वही विजन आगे बढ़ के स्केल, कंपेटिटिवनेस और एक्सपोर्ट कैपेसिटी को विकसित करने में जा चुका है। तो इस संदर्भ में पीएलआई की क्या भूमिका रहेगी और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए? डॉक्टर कोहली, पहले अगर आप कुछ कहना चाहें इस बारे में।
2: प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्योंकि जब बात आई आगे बढ़ाने की, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए, तो मुझे लग रहा है पीएलआई सेक्टर ने, यहाँ पीएलआई की जो पूरी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और हम अगर आप नंबर्स में जाइए तो टोटल प्रोडक्शन सेल्स की मैं बात करूं तो 20 लाख करोड़ से ज्यादा का इसके जो एनकंपस हो चुका है, इसके अंतर्गत आ चुका है। एक्सपोर्ट देखें तो 8 लाख करोड़ से ऊपर के एक्सपोर्ट्स पीएलआई के अंतर्गत आ चुके हैं। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, मान लीजिए किसी का एक शेड चलता है, वहां से उसको दो शेड लगाने के लिए एक इंसेंटिव मिल रहा है, वो मेहनत करता है, कोशिश करता है कि ऑर्डर्स और लेकर आए, तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है निहारिका, अगर हम उसको देखें तो करीब 14-15 लाख लोगों से भी ज्यादा को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इसके जरिए मिल चुकी है। और मुझे लगता है सरकार का इसमें एक तीर से कई निशाने लगते हैं। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एक तरफ आपकी प्रोडक्शन स्केल अप होती है, एक तरफ जो स्पेयर कैपेसिटी है वो पूरी होती है, और सबसे बड़ी बात जो एक इकोनॉमी का इंजन होता है जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जिसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो वो केपेक्स इसमें निकल के आता है, प्राइवेट केपेक्स। तो मुझे लगता है एक पीएलआई से ये इतनी कामयाब स्कीम रही है कि हालांकि आम आदमी को शायद सीधी तरीके से इसका ना पता लगे, हो सकता है हमें जो लोग सुन रहे हैं सबके सब, डॉक्टर मेहता तो खुद इंडस्ट्री से आते हैं, पर जो आम कंज्यूमर है उसके लिए पीएलआई स्कीम शायद सीधे तौर पे उसको मायने नहीं रखती है, पर पीछे से जो आप तक सामान पहुंच रहा है, शायद आपके घर का कोई व्यक्ति वहां नौकरी कर रहा है उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में, हो सकता है वो पीएलआई स्कीम की वजह से उसको नौकरी मिली हो, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री स्केल अप नहीं करती, अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करती, अगर वो उसको नेक्स्ट लेवल पे ना ले जाती, तो शायद ये जो मैंने 15 लाख से ऊपर नौकरियों की बात करी, शायद ये नौकरी नहीं मिलती। तो मुझे लगता है पीएलआई के ऐसी स्कीम रही है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो ये हो नहीं सकता कि हम चाइना का एक मॉडल का ना सोचें। तो चाइना में जिस तरीके से काम किया गया, जब उसमें युवा का हाथ पकड़ के उनको प्लॉट दिया गया, उनको फैक्ट्री लगाई गई, उनको पैसा दिया गया, तो वो तरीका था कि उसमें बहुत सारे युवा ऐसा भी थे जो काम नहीं करना चाहते थे, पर उनको ऐसा लग रहा था कई बार जैसे हम उसमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये पीएलआई स्कीम ऐसी है जहां पर आप एक स्कीम बनाते हैं, आपको एक टारगेट दिया जाता है, अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, बहुत काम की रही है। और एक स्कीम के जरिए सरकार ने देखी ना, जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो टैक्सेस भी आते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है तो ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ते हैं, नौकरियों की मैंने पहले ही बात करी, और आपके जो देश में स्पेयर कैपेसिटी है मशीन्स में, मैं बहुत सारी फैक्ट्रीज में जाता हूं जहां पर कोई 70% पे काम कर रही है, कोई 60% पे काम कर रही है, कोई 50% काम कर रही है, उनके पास जगह भी है और कुछ एक के पास तो मशीन्स भी होती हैं, पर वो कहते हैं हमारे पास इतने ऑर्डर्स नहीं। अब जब इंसेंटिव मिलता है, ये एक मानसिकता है इंसान की कि जब कोई इंसेंटिव होता है तो वो आपको ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है, आपको और मेहनत करने के लिए वो उकसाता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात पीएलआई स्कीम में हो रही है कि इसकी कामयाबी को देखते हुए इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज इसमें जोड़ी जा रही है। आप हर साल कुछ कुछ समय बाद सुनते हैं, अब इसमें भी पीएलआई स्कीम लाई जा रही है, अब इसमें भी लाई जा रही है, तो मुझे लगता है इसकी कामयाबी इस स्कीम को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है।
1: बिल्कुल, और आपने जो नौकरियों का उदाहरण दिया, शायद उसके जरिए हमारे श्रोताओं के लिए पीएलआई की आवश्यकता समझना बहुत आसान होगा। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। आज के जमाने में जहां आज की जीवन शैली टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और हमारी छोटी से छोटी चीज मोबाइल फोन से होती है, वहां पे सेमीकंडक्टर्स का क्या रोल है? आज के जमाने में सेमीकंडक्टर्स इतने ज्यादा आवश्यक क्यों हैं? और उसी रिस्पेक्ट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की क्या भूमिका है?
0: भी जैसे डॉक्टर कोहली ने भी कहा, क्योंकि पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो प्राइवेट केपेक्स है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने जो है देश में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, और उनमें से एक जो सनराइज सेक्टर है, जो फ्यूचर का सेक्टर है, जो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक है।

देश के लिए, तो वो है सेमीकंडक्टर मिशन। क्योंकि जो इंडिया का सेमीकॉन मिशन है, ये बहुत बड़ी सोच है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ किन्हीं कारण से। बट आज ये हुआ है कि इसमें क्या है कि जब जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे आप गाड़ी लीजिए, चाहे आप घड़ी ले लीजिए, बड़ी सी बड़ी रॉकेट्स ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए, उसमें सब में क्या है, मोबाइल फोन है, सब में चिप आती है। तो चिप की मैन्युफैक्चरिंग देश में जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, और जो हम डिफरेंट कोलैब, क्योंकि आज जो है दुनिया में जो सबसे ज्यादा चिप का जो एक है वो है ताइवान में, तो जापान है, ताइवान है, इन देशों ने बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम बना रखा है। तो अब हम लोग उनके साथ कोलैबोरेट करके देश में, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन है, क्योंकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी चिप की, तब तक हम बड़े बड़े जो इनोवेशंस हैं देश में, जो नए नए प्रोडक्ट आएंगे, और जिस तरीके से एक पूरा परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, एक पूरा रैपिड चेंज हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आज टेक्नोलॉजी दिनों में नहीं घंटों में बदल रही है, इस युग में आज हम जी रहे हैं। तो उसमें जो है सेमीकंडक्टर मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है, बहुत ही एक

0: हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी चिप की, तब तक हम बड़े बड़े जो इनोवेशंस हैं देश में, जो नए नए प्रोडक्ट आएंगे और जिस तरीके से एक पूरा परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, एक पूरा रैपिड चेंज हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आज टेक्नोलॉजी दिनों में नहीं घंटों में बदल रही है
1: जी।
0: इस युग में आज हम जी रहे हैं, तो उसमें जो है सेमी कंडक्टर मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है बहुत ही एक महत्वाकांक्षी और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्कीम है हमारे देश के लिए। और इसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से हमारे देश से इसमें हिस्सा ले रही हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, चिप में आज हम विदेशों में निर्भर करते हैं, तो इसके अगर पूरा हमने प्रोडक्ट भी बना लिया, अगर चिप अगर नहीं है तो प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए चिप की हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, राइट फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड देन फाइनली मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो एक देश में सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम सरकार ने बनाया है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कदम है जो इस देश को विकसित भारत बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी बाय 2047। मैं समझता हूँ जिस तरीके से इस पूरे मूवमेंट में, इस पूरे मिशन में बड़ी बड़ी कंपनीज देश हमारे जुड़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी उसमें हमारे देश में भी डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से जो इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल प्रोवेस है, जो हमारे देश के बच्चे हैं जो कि काफी साइंस है, मैथ्स है एसटीएम के, तो ये बहुत ही ज्यादा इसमें जब इसमें काम करेंगे तो जल्दी ही देश में एक नया इनोवेशन लाएंगे। तो ये वो दिन दूर नहीं जब चिप टेक्नोलॉजी में या सेमीकंडक्टर में हमारे देश भी दुनिया के देशों के बराबर का हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है ग्लोबल सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज की अगर हम ग्लोबल स्थिति देखें, आज की अगर हम दुनिया की दिशा देखें या रुख देखें, इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी हमारा देश डटा रहा, तो ऐसे केस में आत्मनिर्भर होना कितने मायने रखता है, और ऐसे केस में सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर मिशन की महत्ता क्या और बढ़ जाती है?
2: जैसा कि अभी बात हुई कि TSMC जो ताइवान की कंपनी है जिसका मुख्यतः इसमें शेयर हुआ करता था, आजकल कुछ साउथ कोरिया, कुछ जापान, कुछ चाइना, थोड़े बहुत अमेरिका के पास भी था, तो इस कदर से निर्भरता थी कि कोविड जब आया, और मुझे अभी भी याद है एक समय लैपटॉप्स की शॉर्टेज हो गई, फिर जितनी भी चीजें, सब लोगों को एहसास हुआ कि चिप नाम की भी कोई चीज है। उससे पहले तो लोगों ने इसके बारे में इतना सुना नहीं था। ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, डिफेंस हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्मार्टफोन्स है, रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बिना चिप के नहीं बन सकती। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को देखा, और आज हम 2026 की शुरुआत की बात करें तो करीब 10 प्रोजेक्ट्स भारत में इस समय पाइपलाइन में है, लगने के अलग अलग स्टेज पे हैं, और कुछ तो सेंटर्स भी बन रहे हैं। तो इसमें भारत को अपने आप को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हम दुनिया की मार्केट है, और सोचिए वो मार्केट अगर निर्भर रहे किसी के ऊपर। अभी हाल में हमने देखा कि जब तेल की दिक्कत आई, सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, यहाँ पर हमें तेल के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, भारत सरकार ने उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी संभालने की, पर कीमतों के लिहाज पे हम मजबूर हो गए। तो मुझे प्रधानमंत्री जी का बार बार वो बात याद आती है कि जो दूसरे पर निर्भर रहेगा वो कभी ना कभी परेशानी में जरूर आएगा। तो मुझे लगता है यहीं से आत्मनिर्भरता 2020 में कोविड जब आया था उस समय निकल के आई, और सप्लाई चेन आपने देखा कि दवाइयों की हो, रेयर अर्थ मिनरल्स की हो, फूड ग्रेन्स की हो, हालांकि भारत को आज दवाइयों के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सेमीकॉन में भी आज से एक दो साल बाद हमें हो सकता है कि हमें हम उल्टा दुनिया की जरूरतों को पूरी करें अपनी जरूरतों के अलावा, और कपड़ों के मामले में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर बहुत सारे देश निहारिका आज दुनिया में ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा दुनिया पर निर्भर करते हैं, और ऐसे वक्त जब कुछ देश कोशिश करते हैं कि इसको हम दूसरों को ना सप्लाई करें, नए नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, टैरिफ्स लगाए जाते हैं, तो ऐसे में और जरूरी हो जाता है आत्मनिर्भरता। मुझे लगता है आत्मनिर्भरता जितनी कोविड में जरूरी थी आज उससे कई गुना आज की परिस्थिति में और ज्यादा जरूरत बन चुकी।
1: बिल्कुल, मेरा ख्याल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करनी चाहिए हमें इस चर्चा में। जहां तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, एक डिफरेंस मैं हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं हुआ कि हम कुछ इम्पोर्ट नहीं कर रहे
2: जी।
1: लेकिन जहां तक डिफेंस की बात है, वहां पर सेल्फ रिलायंस वर्सेस बेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना, इन दोनों में बैलेंस और संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, हमारे देश की क्या भूमिका रही है?
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि आत्मनिर्भरता का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने आप को दुनिया से काट लें और हम अलग थलग हो जाएं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जितनी आपकी ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ तो वोकल फॉर लोक

0: बल्कि ग्लोबल की बात की जाती है। आत्मनिर्भरता मतलब है कि अगर कोई देश या कोई दुनिया की सप्लाई चेन अपने आप को काट देती है, रोक लेती है, तो उससे हमें परेशानी ना आए। और डिफेंस की आपने बात करी, एक जमाना था जब हम नट्स एंड बोल्ट्स भी जो हमारे टैंक्स में मशीन गन्स में लगते थे वो भी बाहर से आया करते थे। और आज अगर आप देखें तो 2014-15 से लेकर आज तक की बात करूं तो करीब 1,78,000 करोड़ के हम टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में जा चुके हैं। इसमें आज भारत का बना तेजस जो लड़ाकू विमान है उसको अभी पीछे विदेशी मेहमान आए थे उनको बैठा के उसमें चलाया गया, और ब्रह्मोस मिसाइल है जिसके हमें ऑर्डर्स दुनिया भर से मिल रहे हैं। करीब करीब 70-80 देशों को आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में। वो देश जो नट्स एंड बोल्ट्स बाहर से मंगाता था आज ना केवल अपने लिए बना रहा है बल्कि दुनिया के लिए बना रहा है। तो यही मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग का सारा जादू है कि आप किसी तरह धीरे धीरे उसको सब्स्टिट्यूट करके पहले खुद अपने लिए बनाएं और अपने लिए बना के फिर आप दुनिया के लिए बनाने लग जाएं। तो ये डिफेंस एक ऐसा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद दूसरे नंबर पे अगर आप मुझसे पूछें कि जहां इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने महारत हासिल करी है तो डिफेंस में दूसरे नंबर पर डालूंगा। जहां पर हालांकि मैंने जैसे आपको कहा लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स है, ये सब तो चलते ही है, पर जहां पर हम पूरी तरह से निर्भर थे वहां पर अगर हमने काफी हद तक आत्मनिर्भरता लाई है तो वो डिफेंस सेक्टर है, और यहीं पर सप्लाई चेन का महत्व बढ़ जाता है। और आजकल जैसी निहारिका ये ना भूले, हम जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया में बन रही है, मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर का धीरे धीरे आपको महत्व और बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
1: बिल्कुल,
2: देखिए डिफेंस एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पहले हम एक नट बोल्ट भी बाहर से इसमें इम्पोर्ट करते थे, बट आज डिफेंस सेक्टर को जो स्ट्रेंथ मिली है, आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल की बात करिए, आज हम ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश को ही सुरक्षित नहीं कर रही है बल्कि पूरी हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ऐसे कई आप देश आज, चाहे आप चांद में देख लीजिए, वहां जाने की तैयारी कर, रॉकेट हमारे लॉन्च किए, प्राइवेट कंपनीज ने हमारे यहाँ से रॉकेट लॉन्च किए हैं। तो ये जो एक इकोसिस्टम बना है जिससे कि डिफेंस में हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम हाई टेक्नोलॉजी डेफिनेटली जैसे रफाल्स हैं ये सब हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम उसका भी अपने देश में इकोसिस्टम बना रहे हैं।
1: अब अगर मैं एक बात ये करूं, निजी स्तर पे शायद हमें डिफेंस सेक्टर की बातें बहुत दूर की लगें या शायद ये लगे कि इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात जिससे आम आदमी का रिलेशन है, संबंध है, वो है वंदे भारत ट्रेन। अब वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी चीज है जो ना केवल ये कहने के लिए है कि भारत के पास एक नई ट्रेन है, लेकिन वो इंडिजिनस इंजीनियरिंग का बहुत खूब प्रदर्शन है।
2: देखिए वंदे भारत उस एक पूरे इकोसिस्टम का एक रिजल्ट है जो पिछले 12 साल में देश में बना है, जो मेक इन इंडिया है। तो कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वंदे भारत जैसी ट्रेन भी हमारे ट्रैक्स में चलेगी, और जहां पे की जो सुविधाएं हैं जैसे प्लेन में मिलती है वही सुविधाएं आपको वंदे भारत में एकदम क्लीन, नीट, क्लीन, फास्ट, ऑन टाइम, बिल्कुल ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कि आपको सफर करने में एक बार आप उससे जर्नी करेंगे तो आपको बार बार उसमें करने का दिल करेगा। ये एक नए भारत की पहचान है, वंदे भारत एक नए भारत की नई पहचान है, एक कॉन्फिडेंट इंडिया की पहचान है।
1: आपके विचार वंदे भारत ट्रेन के बारे में?
0: मुझे लगता है निहारिका के जो लोग विदेश जाते थे और खासकर जो विकसित हिस्सा दुनिया का है वहां जाके जब ट्रेन में बैठते थे तो अक्सर उनके मुंह से एक बात आती थी कि ऐसी ट्रेन हमारे यहाँ क्यों नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है वो सपना पूरा हो चुका है। अगर आप वंदे भारत को देखेंगे, जिन लोगों ने सफर किया, आज 162 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन भारत में ऑपरेशनल हैं, और हर थोड़े दिन बाद हमें एक नई वंदे भारत होती है, अब तो उसमें स्लीपर भी आ गया है। तो मुझे लगता है वंदे भारत ने भारत के रेल नेटवर्क को एक नई पहचान दी है, और इसको आधुनिकीकरण में पूरे के पूरे रेलवे का बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसमें स्पीड आई है, कम्फर्ट आया है, क्लीनिनेस आई है, एफिशिएंसी आई है, और आपको एरोप्लेन का जो अनुभव जो लोग करते थे उनको लगता था कि ट्रेन, क्योंकि यहां से जब जाते थे लोग कहते थे जो प्लेन में सुविधाएं हैं वहां ट्रेन में दिखती हैं, आज वो सुविधाएं हमारे देश में आ चुकी हैं। और इसकी वजह से निहारिका मैं ये भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन हुआ है। आज रेलवे स्टेशन वो पहले वाले रेलवे स्टेशन नहीं रहे, आज बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि आपको एयरपोर्ट की शक्ल में दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल, एक सवाल मैं यहाँ पर हमारे देश के MSMEs के बारे में पूछना चाहूंगी। हम यूं तो बड़े उद्योगों की और बड़ी फैक्ट्रियों की बात करते हैं जब हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें MSMEs की भी बहुत अहम भूमिका है।
2: बिल्कुल, देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आज हमारे देश में जो पहले रजिस्टर्ड MSMEs हुआ करते थे करीब वो थे 2 से 3 करोड़, आज 8 करोड़ जो है रजिस्टर्ड, 80 मिलियन रजिस्टर्ड MSMEs हमारे देश में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि GST लाने के बाद जिस तरीके से एक फॉर्मल इकोनॉमी में इनका इंक्लूजन हो गया, और जिस तरीके से कोविड के टाइम में जो एक MSME

0: जिसको पूरा उसपे बहुत बड़ा दिक्कत आई थी, सरकार ने जिस तरीके से एमएसएमईज को सपोर्ट किया उसके बाद जो एमएसएमईज की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 3-4 साल में, ये इसलिए देखने को मिली है जो इतने सारे जो हमारे स्कीम्स, बड़ी बड़ी जो योजनाएं चली हैं, चाहे आप मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात कर लीजिए, आत्मनिर्भर भारत की बात कर लीजिए, या अब सेमिकॉन की बात करें, तो उसमें जो सप्लाई चेन में जो है, क्योंकि एक तो बड़ी कंपनीज है लेकिन उसमें एमएसएमईज की बहुत बड़ी भूमिका है। जब एक ओवरऑल सप्लाई चेन, एंड टू एंड सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो हमारे देश के एमएसएमईज उसमें जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे एक देश के लिए ओवरऑल इकोसिस्टम बनाने में बहुत बड़ी मदद होगी और पूरा मैन्युफैक्चरिंग कल्चर हमारे देश में इससे पैदा हो रहा है।
1: बिल्कुल, और मेरा ख्याल है इससे और अपॉर्चुनिटी डेवलप करना भी एक बहुत आसान चीज हो जाएगी, ताकि आगे जाकर यही फैक्ट्रियां बड़े स्तर पर काम कर सकें।
0: बिल्कुल।
1: एक आखिरी सवाल दोनों से मैं करना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम बड़े चित्र को देखें, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई, डिफेंस, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा है और आगे जाकर हमारी कहानी किस तरह की होने वाली है?
2: मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव, शुरू में डॉक्टर मेहता ने बताया कि हमारे 65% आबादी 35 साल से कम की है, तो सबसे बड़ा बदलाव हमारी युवा शक्ति का एस्पिरेशनल होना है कि आज हमारी युवा शक्ति सपना देखती है, और वो 2047 में विकसित भारत खाली एक तारीख नहीं है, एक साल नहीं है, हर युवा कोशिश कर रहा है कि अपनी बेहतरी के साथ साथ वो देश की बेहतरी करे। और सबसे बड़ा बदलाव तो मैं मैन्युफैक्चरिंग को मानता हूं, ये तो मैं, इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग जब भारत में जीडीपी में योगदान इसका बहुत कम हुआ करता था, धीरे धीरे वो योगदान बढ़ रहा है। और जो अगला बदलाव सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स, जिसकी बात करी, तीसरा बड़ा हम इकोसिस्टम है, और युवा आज नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए मेहनत कर रहा है कि मैं और साथ में लोगों को नौकरियां, तो बहुत लाखों लोग आज स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। बदलाव की बात करें निहारिका, तो शायद हमें 2 घंटे भी कम रहेंगे पर मुख्य मुख्य आपने पूछे तो मैंने उसका जिक्र
1: जी किया। बिल्कुल बिल्कुल।
0: सबसे बड़ा बदलाव जो पिछले 12 साल में देश में देखने को मिला है, ये एक बहुत ही विश्वास से भरा नया भारत, जो नया भारत आज भारत की पहचान है, भारत के नागरिक जब विदेशों में जाते हैं, जो पहले जाते थे, जिस तरीके से उनमें विश्वास है और जो लोग जिस तरीके से हमें देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जिस तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, और जो बाकी सेमीकंडक्टर अब जो मिशन बना रहे हैं, और बाकी फार्मास्यूटिकल्स में, जिस तरीके से हमने सारे स्ट्रेटजिक सेक्टर में अपने देश में एक नया इनोवेटिव कल्चर पैदा किया है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि आज जो है इनोवेशन जो लाने में सबसे बड़ी भूमिका है वो है स्टार्टअप्स की। और जिस तरीके से पिछले 3-4 साल में करीब 114 से ज्यादा यूनिकॉर्न इस देश में आए हैं, जो कि 2-2, 3-3 साल में, ये हमारी उस ताकत को दर्शाता है कि जब इकोसिस्टम एक बनाया जाएगा तो कैसे इस देश का युवा पूरे दुनिया को दिखा सकता है कि भारत कुछ भी करने को तैयार है। ये एक नया भारत है, ये हमारी नई पहचान है।
1: बिल्कुल, यानी आज के जमाने में हमें हर रूप में आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
2: शुक्रिया।
0: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्य।

बॉर्डर फिल्म का ये गीत संदेश आते हैं, ये आज भी फौजी भाइयों के बीच ही नहीं, उनके परिवारजनों और तमाम देशवासियों के बीच ये गीत बहुत लोकप्रिय है। जेपी दत्ता द्वारा बनाई गई, निर्देशित की गई वॉर फिल्में हैं बॉर्डर, LOC और बॉर्डर 2। जेपी दत्ता ने बंटवारा, यतीम और गुलामी जैसी जो फिल्में बनाई वो भी लीक से हटकर फिल्में रही हैं। जेपी दत्ता द्वारा बनाई फिल्म रेफ्यूजी, इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने अपना करियर शुरू किया। रेफ्यूजी में सीमा विवाद को जेपी दत्ता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फिल्म रेफ्यूजी में पिरो दिया और दर्शकों के सामने एक अलग तरह की फिल्म के रूप में पेश किया।

0: फिल्म निर्माता और निर्देशक जेपी दत्ता पर केंद्रित रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत आज के इस कार्यक्रम में आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर है ममता सिंह का।
2: आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करती हुई लॉन में आ गई है। लॉन के किनारे किनारे की घास अभी भी गीली है। क्यारियों में लगे फूलों और पौधों की पत्तियों पर ठहरी ओस की बूंदों पर पड़ती सूरज की किरणें मोती सी चमक रही हैं। धुएं जैसे उड़ते हुए बादल सूरज को ढक लेते हैं। छिपा छिपी खेलती बदली और धूप उसे गुदगुदा रही है। मन भी धूप छाही हो रहा है। घास पर जैसे मोर पंख बिछ गए हों और उसकी आंखें जगर मगर कर रही हों। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी
3: FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
4: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
5: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
6: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
5: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
7: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
9: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
8: हाँ।
9: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
8: हाँ।
9: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
8: हाँ? पता नहीं।
9: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

शूटिंग में उसे बहुत सारी समस्याएं हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। शूटिंग के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट जब आते तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि कुछ ऐसा हो कि शूटिंग कैंसिल हो जाए, जबकि इस मुश्किल डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने का उसने प्रण खुद ही किया था। सचमुच उसकी प्रार्थना सुन ली जाती, शूटिंग कैंसिल भी हो जाती। एसपी की शूटिंग के दौरान कुछ अलग तरह की समस्याएं होती, जैसे कि सवालों का चुनाव भी वो स्वयं ही करते थे। शुरुआती दिनों में तो मारे घबराहट और डर के रातों को नींद नहीं आती थी। मदद के लिए 5 टीचर्स का पैनल बना था, उसमें आपस में ही पॉलिटिक्स होती थी। हर टीचर खुद क्रेडिट लेना चाहता था। सही मायनों में तो प्रणव सर, जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती।

0: बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कॉम्पिटिशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन।
1: बीते हुए दिन कुछ

वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठकर कमरे में बंद हो गई थी। वॉल साइज विंडो पर लगे पर्दे झटके से खींचकर कमरे में अंधेरा कर एसी चलाकर चादर तान कर लेट गई थी।

0: 7 बजे यहाँ सूर्यास्त होता है, 8 बजे लोग दफ्तर से घर लौटकर शाम की चाय पीते हैं। ये कोई सोने का वक्त है। उठो दिव्या, दिव्या उठो। कहते हुए पारो ने चादर खींचकर परे सरका दिया। वो सिराने बैठकर दिव्या को दुलराती हुई बोली, भूख हड़ताल से तुम अपने मन की करवा लोगी। दिव्या तमक कर उठ बैठी।
1: तो फिर तो क्या करूं मम्मी, क्या करूं कि मेरी डिमांड पूरी होगी? आखिर इस घर में जरा भी अपनी मर्जी के करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कॉलेज की 10 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं उस कैटवॉक शो में। मम्मा मैं अकेली नहीं हूं, उस शो में सिर्फ 1000 रुपए ही तो फीस है, आखिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग?
0: सवाल रुपए का नहीं है, ड्रेस का है, ड्रेस का। फैशन टीवी की नेकेड लड़कियों की तरह तुम भी पूरा बदन हिलाकर बिल्ली चाल चलोगी? हाँ मम्मी, बिल्ली चाल नहीं, कैटवॉक। अरे तो कैटवॉक कर मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया बन जाओगी। क्या कहेंगे हम लोग अपनी सोसाइटी वालों से?
1: सोसाइटी वाले अब दूर हो गए हैं ना, अब तो चौल की दुनिया से हम टावर में रहने आ गए हैं। अब भी सोसाइटी वालों का आखिर कैसा डर, कैसा खौफ?
0: मम्मी ये सिर्फ फैशन शो है, स्टेज पर कैटवॉक करना है।
1: अरे इस पर हमें प्राइज मिलेगा, आजकल स्कूल कॉलेज में इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। पता है लास्ट ईयर रीना ने जीता था ये अवार्ड, उसे तो आप जानती है ना, कितनी अच्छी है रीना।
0: अरे बिटिया हमने हामी भर दी तो तेरे पापा नहीं मानेंगे, जैसे तैसे तेरे पापा को भी मना लिया ना तो तेरे चाचा को खबर लग गई ना तो वो पढ़ाई छुड़वा कर तेरी शादी करवा कर ही दम लेंगे। हाँ अपने पापा को तो तू अच्छी तरह से जानती है ना, चाचा के खिलाफ एक को लफ्ज नहीं सुनते वो।
2: दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। ये ड्रेस मत पहनो, स्लीवलेस नहीं चलेगा, शॉर्ट्स मिनी स्कर्ट पहनना तो अलाउड ही नहीं था, सिर्फ कॉलेज जाते वक्त जीन्स और टॉप पहनने की बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल सकी थी, लेकिन साथ में स्टॉल या दुपट्टा डालना जरूरी था।
0: कॉलेज के शुरुआती दिनों में दिव्या घर से सलवार सूट पहनकर निकलती और रायमा के घर चेंज कर जीन्स टॉप पहनती और उसके बाद कॉलेज जाती। एक दिन चाची ने देख लिया तो खूब हंगामा हुआ। पापा की हर बात मानने वाली मम्मी ने इस बार मर्म को समझा और उन्होंने वेस्टर्न पोशाक पर मुहर लगा दी थी, पर शर्त ये कि गला डीप नहीं होना चाहिए। कॉलेज जाते वक्त किसी लड़के से मेल जोल नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, किसी की बाइक पर लिफ्ट नहीं लेना जैसी नसीहतों की घुट्टी मम्मी रोज पिलाती थी। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना, एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। कभी कभी रायमा की बिंदास बातें उसे सही लगती थीं। सब कुछ अपनी मर्जी से करो, घर वाले कन्विंस्ड ना हो तो उनसे बहाने बनाओ। वो तो अक्सर लड़के लड़कियों के ग्रुप के साथ ट्रैकिंग पर चली जाती थी, उसके घर वाले राजी भी हो जाते थे। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं कि अभी भी गांव वाली मानसिकता उनके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। अरे समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है, विचार उसूल ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। वक्त पर खाना खाना, पैसे कमाना, साल में एकाध बार कहीं परिवार के साथ घूमने जाना, यही शानो शौकत की जिंदगी है इनके लिए। उनके मुताबिक दिव्या को ये सब तो मिल रहा है। पारो दिव्या को समझाकर परेशान हो गईं, दुखी होकर वो कमरे से चली गईं। उनके जाते ही दिव्या उठी, अपने कटे बालों में बैकपिन लगाते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आगे पीछे मुड़कर गर्दन टेढ़ी करके हर तरफ से अपने को निहारती हुई अपने ही

पर मुग्ध होती रही। रंग सांवला है तो क्या हुआ, रूप और फिगर तो है ना खूबसूरत और चार्मिंग। दिव्या ने वार्डरोब से अपनी टाइट फिट साइड कट मैक्सी निकालकर पहनी, हल्का मेकअप किया और इस तरह मटक कर हाथ हिलाकर बोलती रही जैसे टीवी की कोई वीजे हो, अगर मम्मी पापा राजी हो गए तो पक्का कॉलेज क्वीन का खिताब उसे ही मिलेगा। सोचते हुए आंखें मूंद कर थोड़ी देर के लिए दिव्या अपनी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल की कायद से बाहर निकलकर फैशन शो के भव्य स्टेज पर पहुंच गई थी, जहां सामने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बैठे थे। दर्शकों का हुजूम था, तालियों की गड़गड़ाहट थी। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी, जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी।

कंग्रेचुलेशंस। अरे किन ख्यालों में खोई हो बार्बी डॉल। इरफान दिव्या से हाई फाई करते हुए बोला। दिव्या अपने कॉलेज के दिनों से छम से कूदकर वापस आ गई हॉस्टल के लॉन में, जहां सर्दी की नरम धूप का एक टुकड़ा दिव्या के नीले स्वेटर पर अटक गया था। क्यारियों में दुपहरिया खिलकर मुस्कुरा रही थी। हॉस्टल की दीवारों पर लटके बोगनविलिया रानी गुलाबी रंग

दिव्या के नीले स्वेटर पर अटक गया था। क्यारियों में दोपहरिया खिलकर मुस्कुरा रही थी। हॉस्टल की दीवारों पर लटके बोगनविलिया रानी गुलाबी रंग से नहाकर और ताजा हो गए। दिव्या, यू आर वेरी लकी, तुम्हारा प्रोजेक्ट खूब खूब लाइक किया गया है। और पता है, रावत सर लास्ट मीटिंग में तुम्हारी और तुम्हारी बनाई डॉक्यूमेंट्री की चर्चा कर रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। दिव्या बुत बनी बैठी रही, कोई जवाब नहीं दिया उसने। दिव्या के मन में इस समय यादों का भूचाल सा आया हुआ है। हॉस्टल में आए 3 साल हो गए हैं, घर वालों को लेकर वो कभी भी इतनी व्यग्र नहीं हुई, पर आज मम्मी जैसे सामने हैं। सौम्या दी की नसीहतें सामने हैं। दिव्या स्मृतियों की रेतीली आंधी और तपिश से झुलस गई है। उड़ती हुई रेत से दिव्या अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेत की किरकिरी मुंह में भी भरी जा रही है और जैसे उसका पूरा बदन और मन रूखा हुआ जा रहा है। तपिश और दंश को छोड़ आई है घर पर वो, लेकिन हॉस्टल की जद्दोजहद भी कहाँ कम है। आर्थिक तंगी, पढ़ाई का प्रेशर, प्रोजेक्ट पूरा करने का तनाव और दबाव, रिश्तों के समीकरण, इस सब में निपट अकेले तालमेल बिठाना कितना कठिन हो गया है। एक समय था जब अपनी सारी जिम्मेदारी घर वालों पर थी, सारा दोष घर वालों पर मढ़क देती थी, पर अब अपनी गलतियों की सजा खुद को ही देनी है, खुद को अपनी पीड़ा से भी निकाल

0: दिव्या खुद को तपते रेगिस्तान में पाती है, जहां दूर तक वीराना है। मालूम है नियत दूरी तय करने पर उसे लोग मिलेंगे, शहर मिलेगा, पर उस दूरी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और बहुत लंबा संघर्ष है। हॉस्टल के कलीग्स, दोस्तों और टीचर्स के साथ के बावजूद वो खुद को मरुस्थल में जैसे अकेला पाती है। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। कामयाबी कई बार अपनों से भी दूर कर देती है।
1: व्हाट हैपेंड दिव्या,
0: क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो?
1: अरे अब तो डॉक्यूमेंट्री से भी पैसे आ जाएंगे ना, तुम्हारी कड़की के दिन भी अब खत्म होने वाले हैं। रिलैक्स्ड, अब सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे नहीं जीना होगा तुम्हें।
0: नहीं यार, खुश हूं, खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। आज पता है, आज मुझे घर वालों की बहुत तलब लगी है, मम्मी की बहुत याद आ रही है।
1: खैर छोड़ो।
0: अरे तू तो उन्हें फोन करके बता दे कि तू बहुत खुश है, तुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, वो लोग भी खुश होंगे ना।
1: नहीं नहीं इरफान, उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। उन्हें पता नहीं है कि हम यहाँ रात रात भर बॉयज और गर्ल्स साथ साथ काम करते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, लेकिन हम सब सिर्फ एक दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स। वे कभी नहीं समझेंगे मेरी प्रॉब्लम, कभी नहीं समझेंगे। पता है फाइनल एडिटिंग वाले दिन मैं, रायमा और प्रणव सर ने एक ही रूम शेयर किया था, बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी बारी बारी से, उन्हें इन सब की भनक भी लग जाए ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं कौन सा उनके लिए जिंदा हूं, कहां जिंदा हूं मैं उनके लिए। उस दिन मम्मी ने मुझे कह दिया था, तू हम सब के लिए मर चुकी है, मर चुकी है तू हम सब के लिए।
0: छोड़ ना यार, अब आगे की सोच। 2 महीने बाद फंक्शन है, ड्रामा का थीम तैयार हो गया है। इस बार एक ड्रामा और साथ में एक कोरस सॉन्ग भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है?
1: हाँ यार, इट्स गुड आइडिया। पिछले साल का फंक्शन अप टू द मार्क नहीं था, इस बार हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।
0: मैं तो बस 2 साल और बिताकर यहाँ से सीधा मुंबई वापस लौटूंगी। मम्मी पापा से दूर आई हूँ उन्हें नाराज करके, तो कुछ बन कर ही उनके पास जाऊंगी। मुझे तो टेलीविजन चैनल में काम करना है, बस इतना सा ख्वाब है।
1: हाँ पर तुझे प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो सुना है तेरी बनाई वो साइबर क्राइम वाली डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए अप्रूव हो गई है, वो भी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए।
0: हाँ यार, अभी तो सिर्फ अप्रूव हुई है ना, टेलीकास्ट नहीं हुई है। मेरे सीरियल्स जब कई चैनल पर टेलीकास्ट होंगे तब वो मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। वैसे एक चैनल ने हम सब की डॉक्यूमेंट्री का एक

इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। 12वीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। 3 भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था। सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है। तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में? दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है। जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी। मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं माँ? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हाँ, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना। हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आज़ादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता, दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली। आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ, पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती, क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर हैं आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को माल्शेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। माल्शेज घाट की

गंजूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोस ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब से खिली थीं। टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। मैटिनी शो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज का दिन है जश्न का। जश्न उस आवाज का जो बरसों से हमारे घरों में गूंजती रही है। जश्न उस साथी का जिसने हमारी खुशियों में हमें मुस्कुराना सिखाया, हमारी तन्हाइयों में हमारा साथ दिया और हमारी जिंदगी के हर रंग को संगीत से सजाया। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि आज विविध भारती का स्थापना दिवस है। हम सभी VBS के स्थापना दिवस के 70वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। उस विविध भारती की सालगिरह जो सिर्फ
1: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
6: करना भी सिखाया, किसानों से बात करनी भी सिखाई, और विविधता जो भारत की एक धरोहर है उसके सारे रंग आपकी विविध भारती पे मुझे मिले, तो बहुत मुबारक।
0: तो अब समझ आया, आपने कहा कि फौजियों से प्यार करना सिखाया, तो आपका इशारा कहाँ था? कहीं ना कहीं प्यार आपको भी हुआ किसी से?
6: कहीं ना कहीं नहीं, मैं ऐसी लड़की, मुझे कई बार हुआ। और जो जवानी के दिन थे ना
0: जी,
6: उसके प्यार का तो सारा मतलब जिम्मेदारी विविध भारती की है। गाने ऐसे थे
0: जी, बिल्कुल
6: प्यार जिससे हो रहा है उसकी शक्ल दिमाग में, मतलब विविध भारती देखी रे, टीवी तो था नहीं
0: जी, बिल्कुल।
6: तो उस समय की बात कर रही हूँ कि वो जो मोहब्बत थी ना, इतनी पाक
0: जी,
6: साफ
0: जी,
6: और आप अपना दिल लुटा देते थे। ऐसे कई गाने हैं जो मैं चाहूंगी कि आप बजाएं, अगर वो लोग जिंदा हैं तो याद करेंगे, नहीं है तो उनकी याद में मैं गाने पेश करूंगी।
0: बिल्कुल, तो हम एक कार्यक्रम की शुरुआत में ये गीत सुन लेते हैं और उसके बाद श्रोता समझ जाएंगे कि आज हम क्या क्या बातें आपसे करने वाले।
6: जी जी, आपका जो मन में आए
0: जी।

0: छन चूड़िया छनन छन चूड़िया खन के गई देख साहिबा चूड़िया खन के गई हाथ मा मोरनी
1: तो देखिए यहाँ बैठी सभी महिलाओं की चूड़ियाँ भी खन के गई हैं आपके इस गीत से।
2: मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये गाना मेरी जिंदगी का, मतलब मैं क्या कहूँ, एक ऐतिहासिक गाना है
1: जी।
2: जब पहली बार मुझे भारत की कोकिला लता जी के साथ लाइव,
1: बिल्कुल
2: देखिए उस जमाने में ये था कि ऐसा नहीं था कि 100 साजिंदे आके पहले बजा के चले गए, आज तो सब कुछ वैसे भी कीबोर्ड पे हो रहा है
1: जी।
2: पर तब इतने म्यूजिशियंस और ये लाइव, एक तरफ लता जी और एक तरफ मैं, और जिसने कभी कुछ ज़्यादा गाया ना हो, सीखा ना हो। और मैं शिव जी को भी याद करती हूँ, पंडित शिव जी को भी, और अपने हरिप्रसाद चौरसिया जी को भी याद करती हूँ, और सबसे पहले यश जी को, और श्रीदेवी जी को, और सरोज खान जी को। देखिए मेरे लिए बड़ा इमोशनल मामला है, इनमें से आधे लोग रहे नहीं है, पर गाना कैसे बनता है, कैसे पकता है। और इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट है कि जब सरोज जी ने देखा कि मैं डांस भी कर रही थी, सर्दी का मौसम था और दोहरों पे, मतलब रेगिस्तान के टीलों पे, तो उन्होंने कहा ये तो ज्यादती है कि गाना इन्होंने गाया है और ज्यादा हिस्सा श्रीदेवी जी के पास है
1: जी।
2: तो उन्होंने एक लता जी की लाइन पे मुझे डांस करवा दिया। अब मुश्किल ये थी कि इसको डब करना था, तो कैसे ये गाना बाद में हरी जी ने, और उनका सुर बहुत हाई है
1: जी।
2: और मेरा ऑक्टिव नीचे है, कैसे ये हुआ, वो है सुनी सेज पे सैया सारी रात में जागी
1: जी।
2: और ऐसे गाना बनता है जो कि टीम वर्क है। तो आज मैं समर्पित उन हमदम परिंदों को जिनके दम से जिंदगी के लम्हे महक गए, मगर उन परिंदों की याद बहुत आएगी जो मेरे गुलशन में दो पल को चहक गए।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो लता जी के साथ बिताए पल के बारे में आप बताना भी चाहती थी, जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा मैं जरूर बताना चाहूंगी, तो बताइए ना कि इस गाने को गाते वक्त लता जी के साथ क्या माहौल रहा आपका।
2: पहले तो मैं ऐसे कांप रही थी, मैं क्या बताऊं आपको, कि जिनको जिंदगी भर आपने, आपके लिए तो मतलब ऐसा है कि
1: भगवान
2: उनके दर्शन होंगे भी कि नहीं होंगे
1: जी, जी।
2: और वो सादगी का एक ऐसा सरस्वती रूप, तो वो आई और शिव जी हरि जी ने मुझे कंफर्टेबल कर दिया क्योंकि मैं जानती थी। अब जब मैंने उनका सुना तो मेरी तो आवाज ही नहीं निकली, वैसे भी थी नहीं, और भी गड्ढे में गई। फिर जब रिकॉर्डिंग करने गए तो बाद में उन्होंने एक मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, आपके गुरु जी कौन है। बस इस बात से मैं मतलब सोच रही थी या तो गुरुजी की मार पड़ेगी गुरुजी को, और या फिर ये उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है क्योंकि मैंने सीखा नहीं था कहीं। उनके साथ गाने में बहुत अच्छा लगा, मैं जो कुछ मैंने सीखा मजदूरों से बंजारों से सुन सुन के, मेरे पास कान है आवाज का पता नहीं
1: जी।
2: तो
1: अरे आपकी आवाज में पूरी राजस्थान की मिट्टी है।
2: तो लता जी के साथ दो गाने हो गए, ये भी था और रैना बावरी भाई अनु मलिक जी, मैंने सुना आपके साथ आने वाले
1: आने वाले हैं,
2: तो उनके साथ जाल फिल्म का एक गाना था वो भी मैंने लता जी साथ गाया था
1: जी।
2: पर ये सिर्फ एक बहुत ही इमोशनल यादगार है, बहुत सुरीली गायिकाओं को भी मौका नहीं मिलता है कि लता जी के साथ गाएं, और मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं यश जी की और हरि जी और अपने शिव जी की बहुत बहुत मैं उनके आभारी हूँ।

0: शुक्रगुजार,
1: और हम भी ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपसे हमें आज मिला दिया। हम उनके आपकी आंखों से या आपके मन से उन तक पहुंच रहे हैं आज। जी, बहुत बड़ा पल है हमारे लिए, विविध भारती के लिए, सभी विविध भारती के परिवार के सदस्यों के लिए, कि आज इला जी दोस्तों हमारे स्टूडियो में पधारी हैं, अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिता रही हैं। तो इला जी, आप गायिका हैं जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अभिनेत्री हैं और आप लेखक हैं। आपकी अभी अभी एक किताब आई पर्दे के पीछे।
0: जी जी, है ना, मलाई जी लोग देख तो नहीं सकते हैं। हाँ, पर मेरी किताब ये है, क्या पर्दे के पीछे,
1: बहुत सुंदर, पर्दे के पीछे। और आप भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं पर्दे के पीछे, देखिए। तो इसमें आपने अपने जीवन को खोल कर रख दिया है
0: जी।
1: क्या कहना चाहती हैं आप, मतलब ये आपका आत्म कथात्मक एक कहते
0: हैं कि जिंदगी पूरी है, कि क्या हुआ देखिए, गाना मैंने गाया था।
1: हाँ,
0: तो लोग बाग जो होते हैं ना, कलाकार को कलाकार नहीं समझते हैं। और गायन को भी, क्योंकि फिल्मों में सिचुएशंस होती हैं। एक गाना मैंने गाया था, मैं तो कह सकती हूँ, चोली के पीछे। तो उससे लोगों ने मतलब उसको जैसे ऐसे मान लिया जैसे कोई बहुत बुरा गाना गाया हो, जबकि इसमें लड़की की तो कोई बुराई नहीं है। ये लड़के हरकतें करते हैं जो ऐसी बातें पूछते हैं, बट एनीवे वो मेरा एक, मेरे लिए झंडा हो गया कि ये तो यही गाना गाती हैं, पर मेरी जिंदगी पर्दे के पीछे। मैंने रंगमंच किया अपने बचपन से, जिसके आगे आपको याद हो बचपन में मखमल का पर्दा हुआ करता था
1: जी, बिल्कुल।
0: फिर छोटा स्क्रीन, फिर बड़ा स्क्रीन, तो पर्दे। और फिर जहाँ राजस्थान से हूँ वहाँ लाज का भी पर्दा है, घूंघट का भी पर्दा है। तो पर्दे के पीछे जो मेरी ये ऑटोबायोग्राफी है, उसमें ना केवल मैं हूँ, वो भी तमाम औरतें हैं जो मेरे इर्द गिर्द मुझे मतलब कहीं ना कहीं प्रेरणा देती रही। इसमें बहुत कहानियां हैं, और खास तौर से औरतों, क्योंकि औरत की नब्ज को मैं समझती हूँ, उसके दर्द को समझती हूँ, उसके अंदर के जोश को मैं अपने गानों में सेलिब्रेट करती हूँ, पर उसके दर्द को मैं अपने नाटकों में निकालती हूँ। तो पर्दे के पीछे मैं एक माँ भी है, एक जवान लड़की भी है, उसकी मोहब्बतों का भी, स्कूल की शैतानियों का भी जिक्र है, फिर एक नानी का भी जिक्र है, बहुत सारी चीजें, एक मदर भी हूँ। तो औरत तो बहुत दौर से गुजरती है,
1: और आपने औरतों पर बहुत काम किया, इस पर भी हम आपसे एक सवाल करेंगे। लेकिन क्या पर्दे के पीछे ये जो किताब आपने लिखी है, इसे लिखना अपनी जिंदगी को दोबारा जीने जैसा था आपके लिए, कि कलम हाथ में लेने की जरूरत आपको कब महसूस हुई?
0: देखिए, वैसे तो मैं काफ़ी लिखती रही, लोगों को पता नहीं है, कभी कभी कविताएं लिखती थी, कभी मैं नाटकों का अनुवाद मैंने बहुत किया है, नाटक लिखे
1: जी, जी।
0: पर जहाँ तक पर्दे के पीछे के लिए, मुझे जो पब्लिशर थे वो पीछे पड़े थे, आप तो जानते हैं आजकल वो स्टार्स हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। पर मुझे तो ऐसा था कि कलम जैसे हाथ में आई ना, तो मेरे लिए एक संवेदात्मक जर्नी हो गई, बचपन को पुनः जीना,
1: बिल्कुल
0: अपने आप में एक एक हिंडोला, जैसे कहते हैं ना, झूले पे गए और झूले से वापस आप आए, तो वो उस दौर से दोबारा गुजरना मेरे लिए एक उपलब्धि थी। भावनाओं को मैं ऐसे समेट पाऊंगी, जिंदगी तो बहुत बड़ी है
1: जी।
0: तो मैंने एक जगह किसी और का ही था कि जिंदगी गुजर गई है किरदार निभाते निभाते, मैं कौन हूँ, ये सवाल आज भी है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने इस किताब में उन महिलाओं का भी जिक्र किया है जो आपके अनुभव में रही, आपके साथ रही।
0: बिल्कुल, जो मेरे साथ काम करती थी, जैसे पूरी की एक अधूरी कहानी, पूरी उसका नाम था, पर उसकी जिंदगी में वो जिस जाति से आती थी, बंजारन थी, उसका क्या था, उसके पीछे क्या कहानियां थी। या फिर मेरी दोस्त मानू ने सुसाइड क्यों किया, पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे मैंने अभी नाटक किया है, पर तब औरतों को आधा हिंदुस्तान नहीं समझता है कि जब वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके लिए एक जीवन को पुनः पाना है और जीना है, उसमें हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं। तो ये सब चीजें, मानू का मरना या पुष्पलता का कैसे भगना, ये सब ये किरदार मेरी मस्तिष्क में समाते रहे। और सबसे बड़ी बात तो है मेरी माँ, जो जिनका एक चीज है मेरी किताब में लिखी हुई है, आवेश में कभी विवेक मत खोना। ये क्लैपर बोर्ड था, यानी आवेश तो जवान होंगे तो आएगा ही आएगा, पर जब भी ऐसी बात आती थी तो क्लैपर बोर्ड गिर जाता था। जी, जी। आवेश में कभी विवेक, सो मदर, उनकी लोकोक्तियां बहुत कुछ है, मतलब मैं सोचती हूँ पढ़ना चाहिए लोगों को, मेरे लिए नहीं पढ़ना चाहिए, औरत को समझने
1: के लिए पढ़ना चाहिए। तो हमारी जो श्रोता इस वक्त आपसे आपको देख रहे हैं, आपको जान रहे हैं, समझ रहे हैं,
0: और सुंदर महिलाएं बैठी हैं
1: सामने, जो खूबसूरत महिलाएं बैठी हैं, उन सबसे हम अनुरोध करते हैं कि, और मैं भी ये किताब जरूर पढ़ूंगी और इसका इसके बारे में आपसे विचार विमर्श भी करूंगी, इस किताब को पढ़ने के बाद क्या महसूस हुआ। अभी गाना जो आप सुनना चाहती थी, आपने कहा कि मैं पुराने दौर में लौटना चाहती हूँ, क्योंकि विविध भारती में लोग पुराने गानों को पसंद करते हैं, तो आपकी पसंद का गीत हम

0: तो बताइए।
1: तो ऐसा हुआ
0: जी
1: कि देखिए उस जमाने में आप तो कह नहीं सकते थे ना माँ बाप से कि हमें कुछ हो रहा है। तो गर्मियों की छुट्टियों में
0: जी
1: एक हमारे दूर के रिश्तेदार भी ना कहें कम्युनिटी के कुछ तो बड़े हैंडसम से थे, सफेद चिकन का कुर्ता पजामा पहन के आए और बहुत अच्छा गाते थे
0: जी जी।
1: और मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए गाया हो।
0: अच्छा
1: अच्छा जो कुछ भी था उसके बाद सारी दोस्ती विविध भारती ने निभाई। यानी कि जब कोई खतो किताबत ना हो सके और ये गाना आपकी भावनाओं को मतलब कहीं ना कहीं आपको सहारा दे तो क्या होता है उसी वक्त आप चिट्ठी लिखने बैठ जाते हैं और आपके आंसू टपक रहे हैं और आप चाहते हैं टपके ताकि अगले वाले को पता पड़े कि हम कितने रो रहे हैं। पर ये गाना वाकई में मुझे पता नहीं भगवान वो जिंदा हो जहाँ भी है पर वो एक वो जो जवानी मैं जो म्यूजिक जो काम करता था वो भी विविध भारती का
0: बिल्कुल
1: क्योंकि आकाशवाणी में तो क्लासिकल और ये सब कुछ चलते थे। तो आप लोगों का बहुत सहयोग है कि आपने हमें उस आयु को जीने का एक मौका दिया और हमारी भावनाओं को समझा
0: बिल्कुल।
1: हर गाना लगता था जैसे आप हमारे लिए बजा रही
0: हैं। बिल्कुल सही कहा इला जी, हमारे श्रोता भी लगातार सुबह से लेकर रात तक विविध भारती सुनते हैं और इस वक्त भी आपको देख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज इला अरुण जी का हार्दिक स्वागत है, साथ ही विविध भारती परिवार के साथ विविध भारती की स्थापना दिवस की भी हम हार्दिक शुभकामनाएं और विशेष

0: दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज इलाजी भी ओल्ड इज गोल्ड है, जियो हजारों साल, हम श्रोताओं की लख लख दुआएं हैं इलाजी के नाम भी और विविध भारती को भी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि इलारुन जी इज ऑफ माई फेवरेट गायिका, बेस्ट ऑफ इंडिया रेडियो चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, जहां पर आज इलाजी पधारी है और इला मैडम का हम स्वागत करते हैं। और लिख रही है कि आज मंदाकिनी जी और इला जी को विविध भारती के स्टूडियो में साथ देखकर बहुत ही आनंद की जो हमें प्राप्ति हो रही है, बहुत ही आनंद आ रहा है।
1: मुझे भी आनंद आ रहा है आपको देख के। आप तो मुझे साधना की याद दिला रही, साधना कट।
0: अरे
1: और 70s में जो आप लोग तैयार हुए ना वो कमाल है। किसी ने, दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी ने पोलका डॉट पहना है, किसी ने सीक्वेंस पहना है, किसी ने, सब चमकीले बढ़िया भड़कीले लग रहे हैं और पुरानी तारीखों की याद दिला रहे हैं
0: जी। और ये सब आपके लिए है, हम सब आपके लिए तैयार हुए हैं और विविध भारती
1: हमारा काम है। ये काम, ये महिलाओं का काम क्या है, हर उत्सव को मनाना
0: जी। तो इला जी आज हम उत्सव मना रहे हैं विविध भारती के स्थापना दिवस के रूप में। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके गले में जो राजस्थान की मिट्टी है, आपके गाय गीतों में जो आपकी आवाज में एक अलग ही धमाल है, जैसे कि रेशम का हा, ये जो आप करती हैं, ये है क्या? हुल्लड़, एक ठसक, एक देसी अंदाज, ये क्या है? मतलब आपने इस अंदाज को कैसे बनाए, कुदरती था आपके अंदर या आपने इस अदा को कहीं से संवारा? क्योंकि हमारे श्रोता आपकी इस अदा के कायल हैं और हम भी कायल हैं।
1: मैं इसमें राजस्थान की शुक्रगुजार हूँ। वो जो बेझिझक बना है, जो उनमें, जो उनका फड़त का लहंगा और उनके चूड़े और उनके उनकी आवाज़ें और उनका निसंकोच होकर के गाना, ये शायद कहीं कानों में पड़ता रहा। हमारी माँ तो हमेशा ये कहती थी, तुम हर वक्त मत गाया करो, अगर उनका बस चलता तो मैं आज यहाँ होती नहीं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे एक अप्रिसिएशन की, एक कान दिए थे और कहीं ना कहीं मैं उनको जैसे गेहूं वाली हैं, जैसे कोई भी वहाँ भीख जो है वो मांगता नहीं है, वो भी कलाकार ही होता है।
0: बिल्कुल, वो उनमें भी कलाकार ही।
1: और उनमें हमें क्या फर्क है, हम परफॉर्मेंस करते हैं, पैसे लेते हैं, वो उनके पास स्टेज नहीं है, तो वो सड़क पे आते हैं, गाते हैं। उनकी जो धुने हैं, उनकी जो मस्ती है, वो कहीं ना कहीं मैं राजस्थान कि को इस मामले में मानती हूँ कि राजस्थान ने मुझे बहुत कुछ दिया है।
0: जी, जी।
1: और ये खराश या जो कुछ भी है, मुझे ईश्वर ने अगर गला ऐसा दिया होगा, जो कि मम्मी कहती थी कि क्या तुम्हारी भारी आवाज है, बट
0: यही आवाज आपके लिए वरदान बन गई
1: जी। जो कई कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने उसे प्यार किया, या उस समय जिस समय पतली आवाजें हर जगह थी, या पार्श्व गायिकाएं या प्लेबैक सिंगर,
0: पतली आवाज को
1: उस समय कभी भी ऐसा नहीं था कि मोटी आवाजें आए। तो फिर हमारी रेशमा जी तो मेरी रोल मॉडल रही है, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। फर्क इतना है कि वो सब एक गायक घरानों से थी, उनके कहीं ना कहीं उनके खानदानी सारंगी और सब था। मैंने एक्वायर किया है, मैंने उन लोगों को अपना एक, जिसको कहते हैं वो मेरे लिए एक प्रेरणा रहे हैं, और मैंने उनसे कहीं ना कहीं फेस्टिवल से, उनके अंदाज से कहीं ना कहीं मैं प्रभावित हुई। और फेस्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने चाहे पूरा भारतवर्ष देख लीजिए, राजस्थान नहीं है, कोई भी फेस्टिवल बिना संगीत के अधूरा है। और अगर आप फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे, आज मैं कह सकती हूँ कि मैं न केवल राजस्थानी बल्कि शादी जिनके घरों में होती है उनकी मैं एक महानायिका रह चुकी हूँ।
0: बिल्कुल,
1: अगर 5 फंक्शन होते हैं, एक इलारुन का जरूर होता था।
0: बिल्कुल,
1: तो वो हमेशा था कि वो ट्रेडिशनल, लोग चाहते थे कि कुछ ट्रेडिशन आए, तो हमें अपने जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए। और ट्रेडिशंस ही हैं जो आज दोबारा फैशन में आ गए हैं।
0: और ये हमारी हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, जो कहीं नहीं जा सकती,
1: कहीं नहीं जाएगी।
0: और आपने कहा कि हर फेस्टिवल में आपका एक गाना जरूर होता है, एक गाना जो अब हम लेकर आए हैं आप ही की पसंद का, उसको सुनकर भी हमारे श्रोता जो है झूम उठेंगे। और मुझे लगता है खासतौर से महिलाएं आपके गानों को सुन सुनकर अपने घाघरे के जो स्टाइल है ना वो बदलती रही है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत आप ही की आवाज में।

0: गए हो।
1: तुझे सर सर बजा के पुलिस दौड़ी चली आई, तुमने मारा उतारा हाथ खड़ी अपन आई थानेदार क्या कि फिर मैं मुस्काए मेरे दियो लटको उन्हें खायो झटको थोड़ी टेढ़ी हुई।

आदमी का घना मोर्चा, कोई प्रेस वाला, कोई मोटा लाला, कोई संतरी जी, कोई मंत्री जी, कोई या बोले, कोई वाह बोले, मैंने उठे ले गया, मैंने बटे ले गया, मैंने रुपया खिलायो, मैंने बड़ा दमकायो, मैं फेर भी ना मार।

0: वाह वाह, क्या घाघरा घुमाया आपने।
1: देखिए ऐसा है कि ये इसके पीछे की जो कहानी है ना वो गजब की है
0: जी।
1: एक छोटी सी कहानी है, एक लड़की है वो गांव में खड़ी है और खीरा खा रही ककड़ी
0: जी।
1: उतरे हुए मिनिस्टर का लड़का था और वो आकर के उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसको लकड़ी मार देती है। वो कहता है कि देखो भाई मैं मिनिस्टर का लड़का हूँ, तुम नहीं जानती हो। वो कहते होगी। बात यहाँ से बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वो लड़की स्वाभिमानी है, वो कहती है ये मेरा वस्त्र नहीं है, ये मेरा शस्त्र है। अगर मैंने 20 मीटर का घाघरा घुमाया तो जैसे कि रेगिस्तान में आंधी आती तुम सब उड़ जाओगे।
0: अरे वाह।
1: उसके बाद प्रेस आती है, उसके बाद पूरी जर्नी है, उसके बाद कोई आया मोटा लाला, प्रेस लाला, सीटी सर सर बजाती, पुलिस दौड़ी चली आई, कंगन मारा, उतारा, हथकड़ियां पहनाई, थानेदार के आगे फिर मैं मुस्कुराई, मैंने दियो धच को, उन्हें खायो लच को, थोड़ी टेढ़ी हुई, थोड़ी मेढ़ी हुई, मारी कमर को मैंने

0: ऐसी लचकाई, तो अपना जो उसका
1: एक जो एक दूसरा है,
0: एक तरह तो स्वाभिमान है, दूसरा जयंती आदमी को कहां मैं गिरा सकती हूँ, ल्योर कैसे कर सकती हूँ। और एंड में फूलन देवी की तरह से होता है, इन्हें टिकट दिलाओ, इन्हें मंत्री बनाओ, चुनाव चिन्ह घाघरा ले बना। सो दिस इज नॉट पॉलिटिकल, इट इज अबाउट विमेन। औरत को कमजोर मत समझना, तो ये गाना उस पे था। इसकी रिदम अच्छी है, ये पहली बार राजस्थानी में रैप,
1: या सबसे बड़ी बात,
0: नहीं लड़की में ऐसी, नहीं लड़की में वैसी, हमारे सामने तू क्यों अकड़ी, क्यों तू क्यों झगड़ी, ये सारा कुछ जो है 7.5 मिनट का रैप मैंने लिखा है।
1: राजस्थान का पहला रैप है। जो इलाजी की आवाज में है। श्रोताओं, आप इस वक्त इलाजी से रूबरू हैं और हम आप सभी श्रोताओं से गुजारिश करते हैं कि अपने संदेश हम तक पहुंचाएं। इलाजी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कम शब्दों में अपनी बात रखें, इलाजी से हम जरूर वो सवाल पूछेंगे और वो उसका उत्तर देंगे। तो चूंकि बात चल रही थी आपके लोक गीतों की, अभी इन दिनों एक बहुत खूबसूरत लोकगीत आपका बहुत चर्चा में है, चरखा, जिसका जिक्र आप भी करना चाहती थी। तो ये गीत जो चरखा है,

0: सभी श्रोताओं से गुजारिश करते हैं कि अपने संदेश हम तक पहुंचाएं। इलाजी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कम शब्दों में अपनी बात रखें, इलाजी से हम जरूर वो सवाल पूछेंगे और वो उसका उत्तर देंगी। तो चूंकि बात चल रही थी आपके लोकगीतों की, अभी इन दिनों एक बहुत खूबसूरत लोकगीत आपका बहुत चर्चा में है, चरखा, जिसका जिक्र आप भी करना चाहती थी। तो ये गीत जो चरखा है, अगर सोशल मीडिया में जाएं तो लाखों फॉलोवर इसको,
1: एक करोड़ हो चुका है, 10 मिलियन।
0: क्या है इस चरखा लोकगीत में जो आपके दिल के इतना करीब है? और आपने मुझे कई बार कहा कि चरखा लोकगीत पर हम जरूर बात करने वाले हैं और अपने श्रोताओं को सुनाएंगे।
1: इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं सारी स्त्रियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि खुल के सामने आए, चाहे वो पुलिस की हो। आप शॉक्ड रह जाएंगे, वो शायद इंदौर था या बंगलोर था, वो सिक्योरिटी की लेडी थी और अपने ड्रेस में थी, उनको अलाउड नहीं था कि वो सेलिब्रिटी से बात करें। उसने कहा, मैडम आप मेरी रील देखिए, मैं जब घर जाती हूँ तो मैं नारी हो जाती हूँ। ये चरखा है वैसे 400 साल पुराना है, इसे आदिवासियों ने भी गाया है, पर जब मेरे सन इन लॉ ध्रुव घानेकर ने इसको, क्योंकि देखिए लोक संगीत को अगर जिंदा रखना है तो उसको हमें एक नया पैकेज लाना पड़ेगा, वरना वो क्या होगा, चौपाल जैसे हम करते थे। ये तो किसानों का नहीं है, जो ताकत लोक संगीत में, हर म्यूजिक डायरेक्टर लोक संगीत को ही चुरा रहा है क्योंकि वो धुने, वो आवाज़। तो ये जो चरखा मैंने जब दोबारा गाया, तब यंगर जनरेशन को समझ में आया कि लोक संगीत क्या है। मैं तो चरखे से वैसे भी, चाहे कबीर ने चरखा कहा हो, चाहे वो हमारी सूफी गानों में आया हो, पर ये चरखा औरत की बात करता है कि औरत जब सूत काटती थी, गांधी जी का चरखा तो है
0: जी, जी,
1: पर ये औरत का वो चरखा है कि पहले वो अपना धागा बुनती थी, उसके बाद वो उससे अपना वस्त्र बनाती थी। और वो कहती है कि चरखे री कमाई से मैं ननदल ने परणाई, चरखी
0: जो को मैंने ब्याह
1: किया है
0: इसकी कमाई,
1: ये
0: यानी औरत की कमाई,
1: कमाई जो है वो ये। हमारे यहाँ जोधपुर की भी एक आपकी अनाउंसर है जो मुझे मिली थी, और मैं चाहूंगी कि वो जहाँ भी बैठी इस गाने पे डांस करें, क्योंकि चाहे वो जोधपुर है, चाहे बीकानेर, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई सा भी हिस्सा है, चरखे ने जो दोबारा एक क्रांति लाई है और औरत को जो एक फ्रीडम दी है, यानी जिन पोशाकों में उन्होंने डांस किया है वो कॉम्बिनेशन तो मुझे भी नहीं पता थे कि क्या पर्पल के साथ चटनी ग्रीन हो सकता है, क्या कत्थे रंग के साथ बैंगनी आ सकता, ऐसे ऐसे बेस पहन के ट्रेडिशनल चूड़े, ये सब चीज़ें जो मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ वो पहन के औरतें आई। तो आप ये चरखा गाना मेरी तरफ से मेरे श्रोताओं को 70वीं वर्षगांठ विविध भारती पे मैं भेंट करना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल, हम सुनवाने वाले हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप ध्रुव का नाम ले रही हैं इस संगीत से, लोक संगीत के साथ, तो ध्रुव ने किस तरह से लोक संगीत की जड़ों को समकालीन संगीत के साथ जोड़ा, आप क्या सोच रही हैं?
1: अब उनके जीवन में एक पुरातन आ चुकी थी इला अरुण, जो कि उनकी मदर इन लॉ हैं और वो वर्ल्ड म्यूजिक करते हैं। मैंने उनके साथ एक जो आजकल नया ट्रेंड चला है कोक स्टूडियो में, निमरी निमोली भी मैंने गाया है, ही इज वेरी गुड, क्योंकि वो खुद भी गायक भी हैं, तो वो गाने की ताकत को समझते हैं और ये भी समझते हैं हमें कहाँ तक पहुँचाना है इंटरनेशनली, हमारी ऑडियंस तो इंटरनेशनल भी है, तो वो जो उन्होंने भरा है ना, और उसकी चरखे की मादकता को रखते हुए जो इसका ग्रूव बना है
0: जी,
1: ग्रूव इसकी ताकत है, मतलब अगर ध्रुव मेरी ताकत है तो ग्रूव इस गाने की ताकत है
0: जी। जब ध्रुव की बात चली है तो ये गीत तो हम आपको सुनवाएंगे, हम लगे हाथों आपकी बेटी इशिता जी की भी बात कर लेते
1: जी,
0: हैं
1: जी,
0: ध्रुव
1: जी।
0: और इशिता की बात इस वक्त हम कर रहे हैं, वो भी कला और अभिनय की दुनिया से जुड़ी हुई है
1: जी, वो गाती भी बहुत अच्छा है, पर पता नहीं क्यों नहीं पब्लिकली गा रही है, पर गाती भी बहुत अच्छा है।
0: तो क्या कभी ऐसा हुआ इला जी की पुरानी कला और नई कला के बीच में, या जो बदलते तौर तरीके हैं युवा पीढ़ी की ओर से, उस सोच को लेकर कभी आप दोनों में कोई टकराहट हुई?
1: किस वक्त नहीं हुई, हर वक्त टकराहट होती है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल भी, वो तो उन्होंने देखा है कि मैं मेरी माँ को पुनः जी रही हूँ, पर वो महाराष्ट्र में रही हैं और मराठी तो आपने देखा फरफट बोलती हैं वो
0: जी,
1: तो बहुत ज्यादा बिंदास भी हैं, ह्यूमर भी अच्छा है, पर मैं उनसे बराबर ये बात कहती हूँ कि मैं पुराने को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती हूँ, पुराने ने जो दिया वही हमारी ताकत है। टकराहट होती है पर वो वाद विवाद अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं इतनी भी ना मैं अपने अंधकूप में घुस जाऊं कि मैं कहूं नहीं हम ही अच्छे हैं। तो ये जो समन्वय है ये नए और पुराने का, इशिता का मतलब ही है गॉड गिफ्टेड पावर विच कैन

0: अट्रैक्ट एनीबडी, ईश्वर प्रदत्त शक्ति हो जो सबका मन मोह ले। तो मुझे लगता है कि टकराहट के साथ भी कहते हैं ना, पहला नाद आया था टकराहट से, तो मेरी जीवन का नाद है, नाद स्वर है, और ये टकराहट मुझे पसंद है
1: जी। और ये टकराहट होनी चाहिए, हेल्दी टकराहट,
0: ना वो दबी रहे ना मैं दबी रहूं, और इससे कुछ अच्छा निकल के आए तो अच्छी बात है।
1: चलिए तो पहले चरखा लोकगीत सुन लेते हैं। चूंकि बात ध्रुव और इशिता की हमने की, तो आप अपनी ग्रैंड डॉटर को नहीं भूल सकती है। आपने बातचीत करते समय उनका जिक्र किया था,
0: उनका एक गाना बाद में सुनाइएगा,
1: और उस पर आपके विचार भी लेंगे कि किस तरह से आप गीतों को जीती हैं।
0: जी,
1: अभी एक चरखा लोकगीत सुनते हैं
0: जरूर।

0: तो मुझे ये कहना है केक तो बड़ा अच्छा है
1: जी,
0: लोग पता नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ जो 70 साल मन रहे हैं
1: जी,
0: यानी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, कोई अनाउंसर है, कोई स्टेशन डायरेक्टर है, सब डांस कर रहे हैं इस पे, वैसे ही जैसे राजस्थान में चरखे पे डांस होता है। पर यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं जितने भी शोज बाहर भी मैंने किए और यहाँ भी किए हैं, मैं लंगा और मांगनियार
1: जी,
0: ये जो हमारी कम्युनिटी है, ये जो आपने आलाप सुनी होगी,
1: बिल्कुल,
0: तो जब ये पहली बार रिकॉर्ड कर आए ना, तो मैं तो इनके बाप दादों के साथ कर चुकी हूँ। तो जब एक लड़का आया, उसको मैंने कहा, उसने कौन सा गाना है, अरे मैंने कही तो तुम्हारा ही गाना है, तुम्हारे दादाजी गाते थे
1: जी।
0: तो देखिए मैं उनके गाने को प्यार कर रही हूँ,
1: और
0: वो लोग जो हैं, वो लोग सब कुछ आज के पॉप पॉप बनना चाहते हैं, सनग्लासेस लगाना चाहते हैं, जर्सी पहनना चाहते हैं, और मैं चूड़े पहनना चाहती हूँ, मैं टैटू कराना चाहती हूँ, चाहती नहीं हूँ, ये फैशन नहीं है,
1: नहीं ये आपके अंदर है,
0: ये मैंने मुझे अगर मैं ना पहनूं, सॉरी बच गए होंगे ये, तो मैं उतारने वाली थी, पर मैंने आज क्यों नहीं उतारे, हर स्टूडियो में मेरा एक झुमका छूट जाता है
1: जी, जी।
0: क्योंकि वो टन टन करता है, फिर वो स्टूडियो की इंजीनियर जैसे अभी आई थी, उन्होंने कहा आपका कुछ बज रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, पर उतारूंगी नहीं, हर बार उतारती हूँ वो वहीं रह जाता है।
1: बहुत अच्छी बात, लेकिन आज आपको नहीं उतारना है। और पता है अभी जब सभी लोग डांस करने लगे थे तो लगा कि हम जैसलमेर आ गए हैं, रेगिस्तान के धोरों में आ गए हैं, आपने विविध भारती के स्टूडियो को एक तरह से रेगिस्तान के धोरों में तब्दील कर दिया,
0: मुझे बहुत मजा आया, एक्चुअली उन्होंने मुझे जोश दिलाया
1: जी। तो हमारे श्रोता भी कह रहे हैं कि आज एला जी को लाइव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बचपन में दूरदर्शन पर इनके गाने बहुत देखने सुनने को मिलते थे, और लिखते हैं कि आप भी एक गीत गाकर हमें बताइए, क्योंकि हम आपको सामने से गाता हुआ देखना चाहते हैं, तो एक गीत आप हम गवाएंगे, लेकिन चूंकि
0: ये मत करिएगा, क्योंकि क्या है कि ये जो उम्र का एक वफा गुजर गया, तो उसके बाद मैं अब गाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो, अब आप गाइए ही मत, अब आप बंद कर दीजिए।
1: नहीं हमारे श्रोता बिल्कुल आप चाहेंगे और एक ही लाइन से सुनेंगे, लेकिन अभी नहीं,
0: हाँ अभी मुझे थोड़ा रेस्ट दीजिए, क्योंकि कल ही मुझे डॉक्टर ने कहा था कि देखिए आपको कुछ दिन का, क्योंकि परसों मैंने एक नाटक किया था लाइव, है ना, तो सच बोलना चाहिए, तो मैंने बहुत जोर का बोला, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने उसको डैमेज किया, या तो आप थोड़ा वॉइस रेस्ट लीजिएगा, और कुछ नली दी मुझे करके पानी में करना है, वो सब हुआ। दूसरा, मैं गांधारी का रोल बहुत अच्छा करती हूँ, तो जब मैं श्राप देती हूँ ना, तो कृष्ण जी अगर होते उससे मेरी आवाज श्राप से जाती रही, तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है।
1: बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम है और हमारे श्रोता बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके पति परम करते हैं, आपके जो अधिकारी नेवी अधिकारी रहे अरुण जी, उनकी जिंदगी जो है समुद्र और सफर से जुड़ी रही हमेशा, और आपकी दुनिया गीत संगीत की मिठास से लगातार जुड़ी रही, तो कभी ऐसा हुआ कि समुद्री सफर में और आपके सुरों के सफर में कभी टकराव हुआ हो, भूचाल आ गया हो, या फिर किस तरह का योगदान आपके अरुण जी का आपके जीवन में रहा?
0: अरुण जी, मैं बताऊं, जैसे कि जहाज पे लंगर कहते हैं ना, एंकर, एंकर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो जहाज हिलने लगता है
1: जी, बिल्कुल।
0: अरुण जी मेरी जिंदगी के बहुत ही सशक्त एंकर रहे हैं, ही हैज ऑलवेज एडमायर्ड, और एक आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्पेस की, और उन्होंने मुझे ये स्पेस दी। अगर आप खुला छोड़ेंगे, तो जैसे मम्मी कहती थी कि जैसे जहाज को पंछी पुनी जहाज पर वापस आए, वो हाल है, उन्होंने मुझे उड़ने दिया, और मैं कभी भी इस बात को भूलूंगी नहीं, सो दैट्स अ वेरी गुड एडजस्टमेंट। वो आर्टिस्ट नहीं, पर आर्टिस्ट की कद्र करते हैं, जैसे मैं अपना उठती हूँ, मेकअप होता है, ये करते हैं, ही ऑलवेज एडमायर्स, और हो सकता है अभी सुन रहे हो, तो शायद अरुण का मतलब, अगर मुझे करेक्ट करिए, जैसे सूर्य पृथ्वी का होता है, पृथ्वी उसकी धुरी

0: पृथ्वी की दूरी पे सूर्य घूमता रहता है
1: जी।
0: तो वो ही हमारा संबंध है। और मैंने अरुण जी के साथ 3-4 वॉयज भी किए, मतलब मैं 35-35, 40-40 दिन, उन दिनों में जब मैं बहुत यंग थी तो मैंने दुनिया के 3-4 चक्कर काटे हैं।
1: आप अभी भी उतनी ही यंग हैं।
0: तो वो जो अकेलापन होता है ना, वो आपको और मौसिकी आपके अंदर की कवित्री जगती है, आपके अंदर के सुर जगते हैं। बट ही हैज बीन नेवर हर्डल, ये तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हर औरत को जीवन साथी ऐसा मिलना चाहिए जो उसको उसके लिए थोड़ी सी स्पेस दे
1: जी, जी।
0: क्योंकि औरत जो है ना वो खिलती है
1: जी।
0: अगर आपको वो हर मिनट क्वेश्चन करते रहेंगे, आप सब भी आ रहे हैं, काम पे आ रहे हैं, तो फिर बात बिगड़ जाती है
1: जी।
0: या हो सकता है अगर कलाकार से शादी की होती, कहीं हमारा ईगो ही ना टकरा जाता तो अच्छा है। मतलब सब कुछ ठीक है, हाँ श्रोता हूँ, मेरी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है।
1: बिल्कुल, आपकी जिंदगी में बिल्कुल सही चल रहा है। और चूंकि आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, आपने अभी अपनी बेटी और दामाद को लेकर बात की, अभी हमने अरुण जी के बारे में बात की, और आप हमसे जब फोन पर बात कर रही थी तो बार बार अपनी ग्रैंड डॉटर की बात कर रही थी कि उन्हें नए गाने बहुत पसंद है। आपने कहा टन टन तारा और इस तरह के गाने।
0: अरे मैं इसका जो किए बता रही हूँ, उनका नाम है, एक का नाम है अमाला, एक का नाम है अलाया। अमाला जब पैदा हुई थी ना तो ये गाना कोई मान नहीं सकता कि इलारून बजाएगी, यानी इतना बड़ा उनका खोपड़ा था और उस समय उनके बाल नहीं थे। दिल ने मारी टंक मारी टन टन टन टन, तो वो मुझे अभी तक याद है। पर दोनों बच्चे उनके, क्योंकि पिताजी म्यूजिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, दोनों पियानो बजाते हैं, दोनों गाते हैं। अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि उनमें से कोई रेशम का रुमाल एक दिन गाए, क्योंकि ये बम्बई के बच्चे तो अंग्रेजी गा रहे हैं, वो मेरा दुख है। पर मैं चाहती हूँ कि वो राजस्थानी भी सीख जाएं या हिंदुस्तानी, पर वो इंडियन क्लासिकल भी सीख रहे हैं, तो सुर तो है कहीं ना कहीं। देखते हैं आगे क्या
1: पसंद, अभी उम्र के मुताबिक है,
0: स्कूल भी है, उम्र के मुताबिक है, पर बहुत ज्यादा वो म्यूजिक को समझती हैं, पियानो बजाती हैं, क्लासिकल सीखती हैं, और पिताजी तो बराबर लगे रहते हैं तो
1: उनको समझाने में।
0: तो भारत की संस्कृति, जरूरी नहीं कल को कोई डॉक्टर बने, कोई लॉयर बने, पर ये तो आना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि हमारे उसमें है।
1: आप कह रही थी हमसे डॉटर की बात, तो आपने कहा कि मंदाकिनी पुराने गीतों में प्रेम शब्दों में नहीं होता था, भावनाओं में, पुराने गीतों में ठहराव होता था
0: जी,
1: भावनाएं होती थी, इशारे होते थे और उसमें हम प्रेम करने लग जाते थे। लेकिन आजकल तो टन टना टन टन टन तारा करते हुए हम गर्दन हिलाते हैं, नायक या नायिका से प्रेम हो जाता है,
0: शब्द और लिरिक्स रहे नहीं है ना
1: जी। जी, तो आप इस पर भी चाहती थी कि मैं कुछ कहना चाहूंगी कि कितना अंतर आ गया इन गीतों में, एक जमाने में महान गीतकार किस तरह के गीतों को रचा करते थे और आज थोड़ा
0: क्योंकि उसके पीछे की जो टीम होती थी, जहाँ इंदिवर जी लिख रहे हो, आनंद बख्शी लिख रहे हो, नीरज जी लिख रहे हो, और उस समय की हमारी सोशल वैल्यू भी ऐसा था कि कलम से और हारमोनियम तक पहुंचने का जो एक वो था, जर्नी थी, वो बहुत ही भावनात्मक स्तर थी। समाज ही बदल गया ना, कहते हैं समाज साहित्य का दर्पण है।
1: बिल्कुल,
0: तो अभी जब सारे लोग इस पे डिस्को पे डांस कर रहे हैं तो वो धुने हैं। और मैं चाहूंगी कि एक गाना आप जरूर सुनाएं कि वो है मैं ना पहनूं थारी चुनरी, जो मैंने लिखा है और उन कुंवारी लड़कियों के लिए लिखा है जो अपने घर से विदा होती हैं। मारे बाबू सा ने चुनरी रंगाई, मारो जियो उस चुनरी में जाए, मैं ना पहनूं थारी चुनरी, जो चुनर तुम लाए हो वो नहीं पहनूंगी, मैं बाबू सा की चुनरी पहनूंगी।
1: तो
0: मैं अभी तक पुराने शब्दों को लाने की कोशिश कर रही हूँ, पर उल जुलूल शब्दों में भी कुछ तो है। किसी को कमेंट करने की स्थिति में नहीं, जो चल रहा है उसे चलने दो और जीवन को जियो, यही मेरा कहना है।
1: तो अभी आपकी ग्रैंड डॉटर की पसंद का गीत
0: टन टन टन
1: टन टन

0: मेरी आंखों के आगे ना उनका बिना बालों का सर याद आ रहा है, वो तो लिटरली कार में मारती थी।
1: जी जी,
0: टन टन टन।
1: तो दिल में घंटी तो हमारी बजी चुकी है, और आपने तो कहा कि आपकी घंटी दिल में बहुत बार बजी थी।
0: क्या करूं, कलाकार ऐसे होते हैं।
1: तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वाह, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, और राजस्थान लोग की बात करते समय दो राजस्थानी महिलाएं, अरे विविध भारती के स्टूडियो में अगर आज हैं तो इससे बेहतर और क्या होगा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही बिंदास हैं इला जी, और बहुत अच्छा लग रहा है उनका ये बिंदास रूप देखकर, आज तो बड़ा सुंदर समा बंध गया है।
0: थैंक यू।
1: तो इला जी, जब बात चल रही थी कि दिन में घंटी कब बजती है आपसे, जब हम पर्दे के पीछे बात कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, तो आपने कहा था कि प्रेम और जवानी, इस विषय पर हम जरूर बात करने वाले हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मैं भी, कि लापसिंह ठक्कर का एक नाटक किया था मैंने, पीला गुलाब और मैं, उसमें नायिका कहती है कि जब मैं अपने डायलॉग्स बोलती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो अपने पति से कहती है कि वही डायलॉग जब मैं रात को तुम्हारे साथ बोलती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, मुझे वो असल का एहसास क्यों नहीं होता कि मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। और इसी उधेड़बुन में वो लगभग पगलाई सी हो जाती है कि ये क्या है, सच्चाई क्या है, तो अपने पति से सवाल करती है कि क्या सच है, मतलब मैं नाटक के डायलॉग बोल रही हूँ या सचमुच मैं तुम्हें
0: रियल एंड रियल।
1: हाँ, तो आपके जीवन में आपने पर्दे के पीछे प्रेम के कितने ही रंग जिए होंगे, और आपकी आवाज में भी जो मोहब्बत का एक पैगाम लोगों को तो पहुंचता है, महिलाओं तक पहुंचता है, एक कलाकार जब जिंदगी भर प्रेम का अभिनय करता है, प्रेम भरे गीत गाता है, तो क्या सचमुच वो प्रेम को महसूस करता है, या उनके अपने जीवन में प्रेम उसे एक रटा रटाया वाक्य सा लगता है, या रटा रटाया सा भाव लगने लगता है, आप क्या सोचती हैं?
0: ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। पर सवाल है कि हम नाटक में ही कहते हैं कि जब भी अपनी लाइनें कहो तो ये मत सोचो कि तुमने पहले कही है।
1: जी, जी,
0: अगर पहले रटा रटाया करेंगे ना तो वहाँ भी एक स्टैग्नेशन, एक आपका मतलब वो फीलिंग होगी नहीं। हम जब कोई नाटक करते हैं, खास तौर से मैं, तो उस पल को मैं जीती हूँ, वो हर पल नया होता है, चाहे नाटक का 200
1: एपिसोड चल रहा हो,
0: यस नाटक किया जा चुका हो, पर ये बात वास्तविकता में आप कहेंगे कि क्या यही डायलॉग, क्या मैं कहूंगी अपने आप, बताइए कि मैं घर से निकलूंगी, लो मेरे लाल गुलाब, मैं निकल रही। धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ जब जिंदगी शुरू की जाती है तब वो रोमांस होता है, सभी की जिंदगी में हुआ होगा, मेरा भी हुआ होगा, फिर धीरे धीरे जीवन सामने आता है, और जीवन में जितना एडजस्टमेंट हम करते हैं वो हमारा रोमांस है। आई कैन नॉट बी ड्रामेटिक विद माई हस्बैंड, अगर वो ये सोचे कि वहाँ ये कह रही थी, यहाँ ये कह रही है कि वो गैस वाले का बिल नहीं आया, तो उसमें भी कंसर्न है ना। तो वो जितना रियाज करेंगे आप भावनाओं का, और वो कहीं ना कहीं आपके जेस्चर्स बोलने लगते हैं, डायलॉग नहीं होता है, जेस्चर्स आपके बोलते हैं कि आपका कंसर्न्स क्या है, जो भावनाएं क्या हैं। तो बड़ा डिफिकल्ट है। और एक मैंने पहले भी अपने हस्बैंड को कहा था, और सबसे कहती हूँ कि कलाकार दरअसल एबनॉर्मल होता है, उसको आप थोड़ा तो सोच लें कि आम व्यक्ति जैसी नहीं है, ये थोड़ा अगर उसका
1: टेढ़ा होता है,
0: टेढ़ा होता है, वो सच्चा भी होता है,
1: जी, बिल्कुल,
0: वो कल्पना में भी होता है, और उसकी सच्चाई कभी कभी उससे टकरा भी सकती है। एवरीथिंग इज गुड विद मी, नो ये सही नहीं,
1: उसको मैनेज करना
0: पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है।
1: और इला जी, बहुत हम समय को भी अब मैनेज कर रहे हैं, एक अंतिम सवाल के बाद एक लाइन आपको हमारे श्रोताओं को गा के सुनानी है, रेशम का रुमाल पर, अनु मलिक साहब हमारे जाने माने,
0: नहीं उनको मत आने दीजिए, उन्होंने गाना गवाया था दरवाजा खुला छोड़ा है नींद के मारे, मैं पूरे होश में हूँ, मैं आज दरवाजा नहीं खोलूंगी। अच्छा नहीं, ये गाना मैं सुना नहीं सकूंगी।
1: अनु मलिक जी आने वाले हैं, उनके साथ बिताए पल आप याद करेंगी जब अभी आप उनसे मिलेंगी
0: जी।
1: तो दो शब्द अनु मलिक जी के लिए कहिए, और फिर रेशम का रुमाल की एक लाइन गाते हुए आप इस
0: दरअसल मेरा, मैंने जैसे कहा गला बहुत खराब है, पर

0: कहेंगे तो मैं गाने की कोशिश करूंगी
1: जी, जी.
0: और क्योंकि मुझे वाकई में प्रॉब्लम है. अनु मलिक जी के साथ पहली फिल्म मैंने करी थी जाल
1: जी.
0: और वो शायद आज कह भी सकते हैं कि पहला ब्रेक उन्होंने कमर्शियल फिल्म में दिया. वैसे जगजीत सिंह जी के साथ मैंने आशियाना की थी तो वो बड़े अच्छे, इज ए नेचुरल पर्सन, मतलब वो भी हुड़क में रहते हैं और उस हुड़क में हमारा समय समाप्त हो गया शायद.
1: तो रेशम का रुमाल की एक लाइन हो जाए,
0: आप गाना सुना दीजिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा. रेशम का रुमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ.

तो दोस्तों हमारे दरवाजे पे बहुत सारे कलाकार अनु मलिक साहब भी आ गए हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग अंदर आ गए हैं। आज का ये मैटिनी शो यहीं समाप्त होता है। आप सभी का साथ बना रहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मैटिनी शो से अब अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमरीका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह 9:43 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। हिंगोली जिला प्रशासन ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 2002 में शिव कपूर ने पुरुष स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन पर खेल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार FM 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं।

0: सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। विविध भारती के स्टूडियो से लाइव है मेरे साथ अनु मलिक। 70वें वर्ष में विविध भारती प्रवेश कर रही है और इस समय अनु मलिक हैं विविध भारती के स्टूडियो में बिल्कुल लाइव। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई।
0: अनु जी, आपसे बातें करने के पहले जरा एक बार आपका एक प्रोफाइल प्ले कर देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वो कौन से अनमोल गाने हैं जो आपके इस सफर में आपने हमें दिए हैं और विविध भारती से पिछले कई सालों से बजते रहे हैं। उन्होंने बनाए हैं कुछ बेमिसाल गाने।

0: अनु जी, इतने सारे गाने और ये सारे एक से बढ़ के हिट हैं और विविध भारती जो है वो इस समय विविध भारती का ये कार्यक्रम दुनिया के कोने कोने में सुना जा रहा है। न जाने कितने देश हमें सुन रहे हैं और जिस तरह की हमने पब्लिसिटी की थी कि आप विविध भारती पर आ रहे हैं। विविध भारती देश का सबसे पुराना एंटरटेनमेंट रेडियो चैनल है और 70वें साल में प्रवेश कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे और रेडियो से क्या नाता रहा है आपका?
1: देखिए, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं
0: जी
1: कि विविध भारती ने मुझे याद किया। विविध भारती एक ऐसा शब्द है जो हमारे नस नस में, रग रग में है
0: जी।
1: अब आप पूछेंगे ये कैसे? मैं उनका बेटा हूं जिनका नाम है सरदार मलिक साहब,
0: मशहूर संगीतकार सरदार मलिक,
1: जिन्होंने कमाल कमाल के गाने बनाए। बचपन से ही मुझे उनसे सुनने को मिलता था। और ये कहा उन्होंने कि जब भी विविध भारती ने याद किया है मैं वहां गया हूं और आगे चलकर तो कितना भी नाम कमा ले, याद रखना कि ये वो जगह है विविध भारती जहाँ ऐसे ऐसे संगीतकार आके

0: अपनी कहानियां सुना के गए हैं, ऐसा कमाल का काम किया है, उन्हें कभी ना मत कहना।
1: वाह,
0: आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, मेरा 100 बार ये दिल से एक आवाज निकल रही है कि आप कितनी भी मेरी तारीफ करो, ये कहो कि आप आए हैं, अनुज जी आए हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ और कहता हूँ कि थैंक यू आपने मुझे यहाँ बुलाया।
1: क्या बात है,
0: आपके इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को एक अंदाजा होने लगेगा मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी जान तोड़। आप जो गाने सुना रहे थे मैं अपनी यादों में चला गया।
1: जी बिल्कुल,
0: और वो यादें हैं उन निर्माता की, ज्यादातर निर्देशक का नाम लेते हैं लेकिन निर्माता जो प्रोड्यूसर होता है
1: जी
0: कम लिया जाता है उनका नाम, वो निर्माता सब याद आते हैं। जब आपने रफी साहब का गाना सुनाया अभी, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, मेरी उम्र थी 16 साल, 17 साल जब मैंने ये गाना बनाया था
1: पूनम फिल्म के लिए
0: जी, और ये हरमेश मल्होत्रा साहब ने मुझे मौका दिया था। फिर आपने सभी गाने सुनाए और सभी मेरे निर्देशक निर्माता सब याद आए, मेरे गायक याद आए, मेरे लेखक याद आए जिन्होंने गाने लिखे हैं।
1: हाँ जी,
0: मेरे साजिंदे याद आए।
1: बिल्कुल, क्या बात है, ये कितनी प्यारी बात है कि आप अब म्यूजिशियंस को भी याद कर रहे
0: हैं। बिल्कुल, मैं इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि संगीत एक संगत का काम होता है यूनुस जी।
1: जी,
0: आपको ये सब लोग सही मिल जाएं तो गाने बन जाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने पिताजी को याद किया। हम यहाँ ये दावा कर रहे हैं कि विविध भारती ने 70 बरस का अपना सफर पूरा किया
0: जी,
1: और इन 70 सालों में हमने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लेजेंड्स को रिकॉर्ड किया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेडियो चैनल है जिसके पास यादों का एक बहुत बड़ा खजाना है, और आपके लिए मैं एक तोहफा लेकर आया हूँ। ये तोहफा है पिताजी की आवाज। मुझे सौभाग्य रहा है कि मैं पिताजी से मिला हूँ, विविध भारती में ही मिला हूँ जब वो विविध भारती में आए थे, और आज मैं आपके लिए खास तौर पर पिताजी की याद, उनकी आवाज लेकर आया हूँ। बरसों पहले की ये रिकॉर्डिंग, 1 मिनट का टुकड़ा मैं आपको सुनवाता हूँ।

ये गाना के जिसने गाया वो भी उतना ही बड़ा आर्टिस्ट था। उन्होंने कहा, मलिक साहब मैंने बहुत अच्छे गाने गाए, लोगों ने पसंद भी बहुत किए, लेकिन हर एक ने कहा कहीं ना कहीं आप फीके पड़ते हैं। मैंने कहा अगर आप मेहनत करें, जी मैं करूँगा, तो आप 10 से लेकर 12 बजे तक मेरे पास रोजाना इस कुटिया में आकर बैठिए। 1 मंथ आप बिलीव करिए कि वो इंसान मेरे पास बैठा, और हर वक्त ये पूछता था क्यों कोई कसर तो बाकी नहीं।

0: मनु जी कैसा लगा पिताजी की आवाज सुन के?
1: मैं एक्चुअली भावुक हो गया हूँ क्योंकि मैं ये गाना, मेरी माँ कहती हैं, अब तो माँ भी नहीं रही, माँ कहती थी कि तू 4 साल का था जब मुकेश जी घर पर आया करते थे, तो डैडी की गोद में बैठता था।
0: अच्छा।
1: और रिहर्सल होती थी सारंग तेरी याद में, तो वो दिन ऐसे अब याद आ रहे हैं।
0: जी जी।
1: और जिस अंदाज से डैडी ने ये गाना बनाया और जो गाया है मुकेश जी ने, और मैं उनका भी तारीफ करना चाहता हूँ जिन्होंने गाना लिखा, भरत व्यास साहब का।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वो अम्बुवा का झूलना, वो पीपल से छाव, घूंघट में जब चांद था मेहनती लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गांव। डैडी एक महान इंसान थे, भरत व्यास जी, मुकेश जी, और ये गाना आज ऐसा लगता है कल रिकॉर्ड किया गया है।
0: बिल्कुल।
1: इतनी ताजगी है।

0: इसकी तर्ज में कि वो कूट कूट कर मेरे अंदर भरी हुई है, जो को सीखा वहीं से आया है, और मैं अपने फादर को नमन करना चाहता हूँ।
1: FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
4: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
5: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
6: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
8: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
7: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
8: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
7: पर रेरा तो शहरों में।
8: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
7: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्य।

0: अनुजी बिल्कुल जज्बाती मोड पर हम पहुंच गए, पिताजी को याद किया और उसके बाद
1: ये गाना आया सुभाष घई की फिल्म
0: यादें। और सबसे बड़ा कमाल ये है कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरोज के गाने आपने बनाए। एक वो दौर था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, एक वो दौर था जब आपने अमिताभ बच्चन के लिए लगातार गाने बनाए, आगे भी बनाए, तो वो यादें बांटिए, यादें हैं।
2: देखिए ये माँ सरस्वती की कृपा है। मैं बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट था
0: जी
2: ऐसे महान सुभाष जी के साथ, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करना। उसकी जद्दोजहद बहुत हुई
0: जी,
2: आसान नहीं रहा, क्योंकि हमारे सामने बड़े जबरदस्त संगीतकार थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब
0: जी,
2: आर डी बर्मन साहब, कल्याण जी आनंद जी साहब, जो कमाल कमाल के गाने बना रहे थे। उनके सामने फिल्म मिलना भी बड़ा मुश्किल काम था
0: जी जी,
2: लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंदर गाने बनाने की एक चाह है
0: जी।
2: मैं गाना बनाता था, उसे कैसेट्स में रिकॉर्ड करता था, बाजा लेकर चल पड़ता था।
0: यस,
2: सुभाष घई साहब का म्यूजिक बड़ा कमाल रहा है,
0: बिल्कुल
2: उनकी हर फिल्म का म्यूजिक कमाल रहा है। तब जाके जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, अब ये जो गाना है नगमे हैं शिकवे हैं, इसमें आनंद बख्शी साहब बहुत याद आते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: बख्शी साहब ने कहा कि सुभाष जी सुनाओ ये लड़के ने क्या बनाया। मैंने जब ट्यून सुनाई उनको
0: जी,
2: मैंने ऐसे सुनाया

0: अचानक वो रुक गए। बख्शी साहब कहते हैं, अनु मुखड़ा यहीं खत्म हो रहा है। मैंने कहा कुछ और आ सकता है। माजी ने भी ये कहा, मैं और क्या लेके आया है कि अचानक मैं समझ गया बख्शी साहब क्या चाहते हैं। वो लिखना और चाहते थे,
1: हाँ उसके आगे।
0: तो मैंने आगे ऐसे ऐसे गाया, और उसके बाद जो तर्ज उनको इतनी पसंद आई, लिखने के बाद गाना वो सुभाष जी की तरफ देखते हैं।

0: बख्शी।
1: हाँ हाँ
0: बख्शी साहब बोलते हैं सुभाष ये तेरा लक्ष्मी है।
1: वाह
0: आनंद बख्शी।
1: हाँ हाँ
0: बख्शी साहब बोलते हैं सुभाष ये तेरा लक्ष्मी है।
1: वाह वाह वाह क्या स्टेटमेंट है ये।
0: ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था क्योंकि ये कहना सुभाष जी को
1: हाँ
0: अन्नू तेरा लक्ष्मी है।
1: वाह वाह
0: मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि बख्शी साहब बड़े बड़े उस वक्त भी संगीतकारों के साथ काम कर रहे थे जो लाजवाब काम कर रहे थे।
1: जी जी
0: उन्होंने कहा ये बैठे बैठाए मेरे सामने अगर इस लड़के ने डा डा डा डाडी डा डा डा डा। अब ये आप सवाल बहुत से लोग पूछते भी हैं बहुत से लोग पूछते भी नहीं है ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। इतने संगीतकार है दुनिया में
1: जी।
0: और गुनीजन है गुनीजन मैं क्यों बोलता हूँ उनको सीखे हुए लोग हैं।
1: हाँ जी
0: मैं एक नेचुरल म्यूजिशियन मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज अ नेचुरल म्यूजिशियन। नेचुरल म्यूजिशियन वो होता है जो चीजें आमद होती सरस्वती माँ की कृपा है।
1: जी जी
0: मैं बाजे पर बैठा हूं और बाजा बजा रहा हूं और ये नोट साक्षात अंदर आते हैं।
1: क्या बात है
0: जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं मैंने बहुत इंटरव्यू से कहा है अब आप पूछेंगे अनु जी आप क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं बात करते करते भी एक दिमाग में एक सेक्शन ऑफ मेरे दिमाग में ट्यून चल रही है।
1: अच्छा
0: एक लय चल रही है तो मैं कभी फुल मैं ये कहूंगा कि एक तो मेरे फादर
1: जी
0: एक तो बड़े बड़े महान संगीतकार जिनको मैं बहुत मैं सभी संगीतकार ने बहुत अच्छा काम किया हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लेकिन मैं दीवाना हूं शंकर जयकिशन का आर डी बर्मन का इसलिए दीवाना हूं मैं क्योंकि मैं समझता हूं कि शंकर जयकिशन आर डी बर्मन एक कंप्लीट लोग थे।
1: जी जी
0: उसके बाद फिर लक्ष्मीनाथ प्यारेलाल साहब और उसके बाद आप गिनते जाइए मदन मोहन जी के गाने सुन लीजिए
1: वाह
0: सलील दा के सुन लीजिए सचिन देव बर्मन के सुनिए नौशाद साहब के सुनिए क्या काम किया लोगों ने। अभी भी मुझे लगता है मुझे और मेहनत करनी है और काम करना है बल्कि आपको मैं न्यूज बताना चाहता हूं कि जब आपके 70th ईयर है ये
1: जी
0: भारती का
1: जी
0: जनवरी 11 को 2027 में मैं 50 साल काम आई विल बी कंप्लीटिंग 50 इयर्स।
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: 14 साल की उम्र में शुरू हुआ था फिल्म थी हंटर वाली 77।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: आपको याद होगा
1: बिल्कुल
0: मैंने काम किया है लता जी के साथ आशा जी के साथ
1: रफी साहब के साथ
0: किशोर दा के साथ और मोहम्मद रफी साहब के साथ यहां तक मन्ना दा के साथ भी काम किया है बस मुकेश जी के साथ नहीं किया। एक बेबाक लड़का 14 साल की उम्र में बाजा लेकर पहुंचता था सबके पास बोलते मेरे पास तर्ज है सुनोगे मेरे पास तर्ज है। कुछ लोग हंसते भी थे कुछ लोग मजाक भी बनाते थे लेकिन मैं हारा नहीं और आज भी मुझे लगता है कि मैं फिर से काम शुरू करने को तैयार हूं।
1: क्या बात है रफी साहब से जुड़ी कोई याद
0: बहुत सी यादें खास करके इसी गाने की मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता हुआ यूं कि मैंने उनको अप्रोच किया हरमेश मल्होत्रा साहब ने कहा कि अन्नू रफी साहब से गवाते हैं मैं जाता हूं उनको मिलने के लिए तो उनके ब्रदर इन लॉ थे जहीर भाई उनको फोन किया मैं रफी साहब से मिलना चाहता हूं तो रफी साहब से उन्होंने बात की और कहा कि कौन है आप मैं बस मैंने इतना कहा मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूं तो वो बहुत खुश हो गए कि मलिक का बेटा मुझसे मिलना चाहता है किस सिलसिले में मैंने एक फिल्म साइन की है आपसे गाना गवाना चाहता हूं।
1: हाँ
0: उन्होंने कहा कल सुबह 9 बजे मेरे घर पर आ जाना।
1: क्या बात है
0: मैं पूरी रात सोया नहीं पूरी रात और सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली कि मुझे रफी साहब को मिलने जा रहा था मैं भूल गया वक्त इतने बजे बुलाया था मैं 6 बजे पहुंच गया।
1: अरे बाप रे इतने सुबह
0: 6:15 बजे मैं पहुंच गया और बाहर खड़ा हो गया उनके दरवाजे के बंगला था उनका ये बैंड्रा में
1: हाँ
0: अभी वहां बिल्डिंग बन गई है
1: जी
0: और रफी साहब मुझे पता नहीं था कि रफी साहब भी जल्दी उठते थे वो सुबह अपने गार्डन में बैठते थे
1: जी
0: और झरोके से जब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो दरबार रोक रहा था तो उन्होंने देख लिया तो देखकर हैरान हो गए अरे भाई मैंने आप बहुत सॉफ्टली बात करते थे
1: हाँ
0: कौन हो मैं बोला अन्नू मलिक हूं सरदार मलिक साहब का बेटा अरे मैंने तुम्हें 9 बजे बुलाया था। नाराज होने के बजाय उन्होंने मुझे इशारा किया अंदर आओ मैं अंदर चला गया।
1: हाँ
0: 6:30-7 बजे ही मैं जाके लॉन्च में खड़ा हो गया वो उठे कुर्ता पहना हुआ था लुंगी पहनी हुई थी और अचानक मुझे रूम में बुला लिया। जैसा मैं रूम में गया मैं क्या देखता हूं

0: चारों तरफ अवार्ड्स ही अवार्ड्स है, एसी ऑन है, खूबसूरत समा और खुशबूदार रूम था. रवि साहब सामने बैठ गए, बोला गाना लिखे आए हो? मैंने हाँ, सुनाइए. और मैंने बाजा खोला और अपना गाना सुना. तो सबसे पहले बोलते, अरे तुम बायां से बजाते हो?
1: हाँ.
0: हाँ मैं लेफ्टी हूँ. अच्छा अच्छा सुनाओ सुनाओ. अब मैं गाना गा रहा हूँ, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे रंग लाती है शराब. उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो गाना लिखते जा रहे थे.
1: जी.
0: मैंने चीज नोटिस की कि रवि साहब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे.
1: ओ.
0: चुप थे.
1: हाँ हाँ.
0: मैं गा रहा हूँ, अचानक एक चीज मेरे दिमाग में, मैं बोला चलो अंतरा गाते हैं. अब जैसे मैंने अंतरा गाया, अभी कम सिन हो क्या जानो, तो मुझे कहते हैं वापस गाओ. मैंने कहा अभी कम सिन हो क्या जानो, तो वही रफी साहब से एक चीज सीखा मैं. बोला ये जो तुम गा रहे हो
1: जी
0: थोड़ा गलत है.
1: ओ.
0: तो मैं बोला सर क्या गलत है? तुम गा रहे हो अभी कम सिन हो क्या जानो, इसको मिला दो, तुम एक शब्द को दो टुकड़े कर दो. अभी कम सिन हो क्या. और मैं उनके पांव पर गिर गया.
1: वाह वाह.
0: मैं अपने आप को भाग्यशाली क्यों मानता हूं, ऐसे महान लोगों से मुझे सीखने का मौका मिला. फिर जब गाना रिकॉर्ड हुआ, वो दिन अच्छी तरह याद है, मैं जब कंडक्ट कर रहा था, मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर वहां, मतलब जो अरेंजर थे वो वहां थे, तो एक पीस आया और मुझे नोटिस कर रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं. मैंने बोला फर्स्ट म्यूजिक ऐसा करते हैं, डंग डंग डंग डंग डंग डंग, मैं खुद ही गा रहा था. तो मैं साजिद को समझा रहा था, डंग डंग डंग डंग डंग तुरु, मुझे इंटरलूड बनाने का बड़ा शौक है.
1: तारा
0: तीरा तीरा भी कम से. तो बोला अरे क्या अंतरा उठा है, आके मुझसे गले मिले. और मुझे अच्छी तरह याद है, जब गाना जब खत्म हुआ तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा.
1: क्या बात है.
0: और जो इस यहां उनका हाथ था, लेफ्ट मेरे हाथ पर कंधे पर, और मुझे ऐसे पकड़ा.
1: वाह.
0: और उसी शाम को उन्होंने डैडी को फोन किया था, मलिक तेरे पास एक संगीत का नग है.
1: वाह.
0: एंड डैडी की आंखों में आंसू थे कि रफी साहब ने मेरी तारीफ की. ये मैं लम्हा कभी नहीं भूल सकता हूं. और वही रिकॉर्डिंग जब खत्म हुई, इतने महान इंसान थे. अनफॉर्चुनेटली प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं था.
1: हाँ.
0: तो मुझे आगे कर दिया कि भाई इनसे कुछ रिक्वेस्ट करो. तो बोले मैंने गाना गा दिया, पैसा तो चाहिए मुझे. बोले रफी साहब वो कह रहे हैं कि ही इज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, पैसा है ही नहीं. तो मुझे मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं, अनु एक काम कर, पैसा तो मैं लेके ही जाऊंगा. अब मैं डर गया.
1: बिल्कुल.
0: मैं बांद्रा से आया हूं.
1: हाँ हाँ.
0: घर वापस जाना है. प्रोड्यूसर को बोले मुझे 50 रुपए दे दे, पेट्रोल का पैसा तो दे दे. सिर्फ 50 रुपए लेकर उन्होंने वो गाना गाया था, मोहब्बत रंग लगी जनाब आहिस्ता. इसलिए लोग उनको फरिश्ता बोलते थे.
1: क्या बात है. अब एक मोमेंट आएगा, एक ऐसा गाना आएगा जो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि वो कौन सा गाना है, और उसके बाद मोहब्बत रंग लाएगी आएगा.
0: जी जी.
1: लेकिन कमाल ये है कि पहले आता है पिताजी का गाना, रफी साहब की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल,

सरदार मलिक का संगीत मोहम्मद रफी की आवाज और यहां से आता है अनु मलिक का संगीत मोहम्मद रफी की आवाज। फिल्म का नाम पूनम, साल

0: क्या कमाल, क्या कमाल जी, कहिए।
1: यही जो आप पीस सुना रहे हैं ना
0: जी,
1: डा डा डा डा डा,
0: इसी की बात हो रही थी।
1: इसी की मैं बात कर रहा था कि जब मैं बना रहा था ना ये पीस,
0: हाँ,

0: इंक्लूड बनाने का मेरा जी बहुत शौक है
1: जी जी जी।
0: तो उसके बाद ही उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा,
1: बताइए,
0: और फिर डैडी को फोन किया था। मैं ऐसे इंसान को भूल नहीं सकता,
1: बिल्कुल
0: ऐसे इंसान थे, इतने इनकरेजिंग थे, मोहम्मद रफी साहब इतना प्यार करते थे कि चंद शब्दों में उनके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा।
1: अब मैं एक और गायिका की तरफ आ रहा हूं, लेकिन यहां भी जो बात है ना वो गाने के सिरे को पकड़कर होगी, और वो गाना है ये।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। अनु जी, बातें रफी साहब से चल के और आशा भोसले तक आ गई। शुरुआती दौर था उमेश मेहरा की फिल्म, और ये जो म्यूजिक है ये पूनम से बिल्कुल अलग है। इसमें पूरा एक पंजाबी फ्लेवर है, सोनी महिवाल, और क्या तो गाना। यहां सब लोग उस गाने की मस्ती में डूब गए।
1: तो आपने जो अभी बात कही कि ये बिल्कुल अलग है उस गाने से,
0: हाँ जी,
1: तो इसकी इंस्पिरेशन कि मैंने कसम खाई थी कि मैं वो संगीतकार बनना चाहता हूं जो हर किसी के गाने बनाए। हाँ। उसके पीछे थे आर डी बर्मन साहब
0: जी।
1: मैं जब छोटा था मैंने एक गाना सुना था, डांग डांग डांग डांग डांग डांग डांग डांग डांग, ये दम मारो दम, ये सुना था।
0: हाँ, हाँ।
1: उम्र थी 10 साल।
0: हाँ।
1: वही इंसान बनाता है चिंगारी कोई भड़के, अभी वही इंसान। इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट, मैंने बोला कि मैं आगे चलकर ऐसा संगीतकार बनना चाहता हूं कि मैं सिचुएशन में अपने आप को ढाल लूंगा। अगर रोमांटिक गाना है तो मैं वो बनाऊंगा, अगर पंजाब पर बेस्ड है सोनी मेवाल लव स्टोरी पर मैं वैसे गाने बनाऊंगा, अगर जुड़वा है जिसमें मस्ती वाले गाने चाहिए जैसे कि ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है मैं वो करता हूं, तो आर डी बर्मन साहब ओ हसीना जुल्फों वाली भी कर देते, आर डी बर्मन साहब चिंगारी कोई भड़के भी बनाते थे, और मैंने अपने आप को कसम दी कि आई कैन कंपोज ऑन एनी सिचुएशन एनी टाइम एनी वेयर एज लॉन्ग एज माई डायरेक्टर इज विद मी।
0: और ये आपने किया है?
1: एक बार नहीं, हजारों बार, और अभी भी कर रहा हूं।
0: बिल्कुल, मैं ये सोच के बड़ा हैरान हूं कि एक पूरा 80s का दौर था जहां बहुत अलग तरह का म्यूजिक बन रहा था, और कमाल की बात यह है कि उस पूरी धारा में भी आप 80s के हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो के लिए ये गाना बनाते हैं। और देश के गली गली शहर शहर चौराहे चौराहे पर गूंजता है ये गाना।
2: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला हे, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला।
0: बच्चन साहब के लिए गाने बनाना कोई छोटा काम नहीं था?
1: बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे साथ एक महान निर्माता निर्देशक साहब थे मनमोहन देसाई, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि अनु मलिक आप सोचिए नसीब गोली अमर अकबर एंथनी जैसे एक आउटस्टैंडिंग म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और एक नए लड़के को चांस देना
0: जी,
1: वो भी अमिताभ बच्चन साहब के साथ
0: इतनी बड़ी फिल्म,
1: तो ही हैड फुल कॉन्फिडेंस। और मैं बताना चाहता हूं संगीत बनता है कॉन्फिडेंस से।
0: हाँ हाँ,
1: संगीत अगर आपका निर्देशक आप पर भरोसा करता है कि दिस मैन कैन डिलीवर, तो हजारों चीजें होती है। और मनमोहन देसाई साहब से जब मैं मिला भी था तो उन्होंने बहुत से मुखड़े सुने मुझसे, बहुत से मुखड़े, लेकिन मुझे मुखड़े

0: लिखने की भी आदत है, मैं मुखड़े के जो फ्रंट पहली जो चार लाइनें होती है मैं लिख देता हूँ। तो मैं बोला सर कैरेक्टर का नाम क्या है? बोला एक सोच रहा हूँ मैं, पिक्चर का नाम सोच रहा हूँ मर्द। तो मुझे टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव लगा मर्द, और बोला वेरी गुड टाइटल। तो मैं बोला सर मुखड़ा दिमाग में आ रहा है, कैच करता है यार, वो टांगा चलाता है। तो बोलता हुआ मुखड़ा, ये मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। और वहीं से वो मेरे गले लग गए। और फिर मैंने कुछ 200 300 400 500 कितनी ट्यून सुनाई उनके दनादन। और एक दिन उनने कहा चल आज सिटिंग करते हैं, और बच्चन साहब के साथ सिटिंग हुई। बच्चन साहब ने रिएक्शन तो कुछ दिया नहीं, वो कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बस चुपके सुनते जा रहे थे। लेकिन आधे घंटे के गाने के बाद, डेढ़ घंटा गाया मैंने, बोला फिर अचानक मनमोहन जी ने बोला उनसे कैसा लगा। बाहर आके मुझे बोलते हैं तू अपनी शर्ट तो नहीं फाड़ेगा, यू आर नाउ साइंड फॉर मर्द।
1: क्या बात है।
0: आई वुड थैंक अमिताभ बच्चन साहब फॉर एक्सेप्टिंग मी अ न्यू बॉय। आई वुड थैंक मनमोहन देसाई साहब, अगर बच्चन साहब ने हाँ नहीं बोला होता, मनमोहन जी ने हाँ नहीं बोला था, अन्नू मलिक आपके सामने बैठे ये बातें नहीं कर रहा होता।
1: बहुत सही बात है।
0: उमेश मेहरा साहब ने मुझे सोनी मेवाल दी
1: जी,
0: राजीव मेहरा साहब ने मुझे एक जाने हम दी
1: जी,
0: एफसी मेहरा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी जिंदगी में, जैसे हरमेश बल्होत्रा, उससे पहले सलीम अख्तर साहब,
1: बिल्कुल
0: ये सब लोग बड़े।
1: एक चीज मुझे याद आ गई, मर्द में कुछ बड़े म्यूजिक बड़े लिरिसिस्ट थे जैसे राजेंद्र कृष्ण।
0: बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। वो थे ज्यादातर एक्चुअली वो तूफान में थे, अल्लाह रखा तूफान में।
1: हाँ।
0: लेकिन इसमें प्रयागराज जी थे, किकला साहब थे, मिलजुल कर मैं जब ट्यून सुना रहा था सब अपने करते जा रहे थे कि अन्नू की ट्यून इतनी अच्छी है हम कैची वर्ड लिखेंगे।
1: हाँ।
0: मनमोहन देसाई वॉज अ फैबुलस डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर दुनिया में नहीं आएगा।
1: मतलब कोई खींचतान हुई किसी ट्यून को लेके किसी
0: बहुत बहुत बहुत, मैंने तो बैकग्राउंड भी किया था इस फिल्म का। खींचतान इसलिए हुई क्योंकि मेरे अंदर तो ये था ना कि मैं जिस बैनर पे काम कर रहा हूँ वह एमकेडी फिल्म्स है।
1: हाँ।
0: और जिसका संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, हमारे गुरु। और अगर अच्छा संगीत होता तो अलग बात होती, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने तो लाजवाब संगीत दिया था, लाजवाब। अमर अकबर एंथनी देख लो, नसीब देख लो, कूली देख लो, कोई भी फिल्म उठा लो उनकी।
1: हाँ।
0: मतलब सुपर ड्यूपर हिट गाने। अब मनमोहन देसाई साहब अन्नू मलिक को ले रहे हैं, एक्सपेक्टेशन तो बहुत
1: हाई
0: हो गया था।
1: यस।
0: अब मैं गाने क्या बनाऊं, तो मैंने बड़ा अतरंगी उल्टे स्टाइल के गाने बनाए।
1: हाँ।
0: अगर आप मर्द के गाने सुनोगे, मैं बोला हटके बनाना पड़ेगा।
1: और वो
0: दिमाग में ये बात थी कि वेरी जस्ट 22-23 इयर्स ओल्ड, सामने मनमोहन देसाई बैठा है, इट इज नॉट इजी। क्योंकि मनमोहन जी के कानों में कल्याण जी आनंद जी के सुर थे,
1: बिल्कुल
0: मनमोहन जी के कानों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुर थे, मनमोहन जी के कानों में रफी साहब की आवाज थी। अनफॉर्चुनेटली रफी साहब चले गए थे उस वक्त
1: जी,
0: हमारे पास वो सिंगर नहीं था जो, और उन्हें रफी साहब की आवाज से ज्यादा किसी की आवाज पसंद नहीं थी
1: बाकायदा।
0: तो उस वक्त मैं मुखड़े सुनाता था जो मैंने अपने मुखड़े लिखे हुए थे, कैची मुखड़े, लाइक सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया क्या करें, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करे, मैं तेरी टांगे वाली। मन मुझे उछल गए, बोला तू मेरी, तू गाना नहीं बना रहा है सिर्फ।
1: हाँ।
0: तू मेरे सीन लिख रहा है।
1: अच्छा।
0: That was a great compliment from मनमोहन देसाई कि मेरा सीन है कि टांगा वाला कौन है।
1: हाँ।
0: अमिताभ बच्चन।
1: हाँ।
0: इश्क करता है इस लड़की से, तो उसका आपने ये नहीं कहता कि तू मेरी जान है या मेरी जानम है।
1: हाँ।
0: तूने कहा सुन रूबिया, लड़की का नाम रूबिया, तुमसे हाँ। प्यार हो गया, डायरेक्ट है।
1: हाँ।
0: प्यार हो गया क्या करें, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करें, या छोड़ दिया।
1: हाँ।
0: तो मन में सोचा आगे क्या आएगा।
1: हाँ।
0: और सर ये लाइन डालता हूं, मैं तेरा टांगे वा, तू मेरी टांगे वाली, मैं तेरा टांगे वाला, मतलब टांगे वाले की शादी टांगे वाले से हो रही है।
1: हाँ।
0: मैं टांगा चलाता हूं तो मुझे इश्क करती है, एंड वो उछल गए। या फिर वो गाना था कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा न जाए, विल यू मैरी मी। उस जमाने में टू गेट अ न्यू इंग्लिश वर्ड अभी ट्रेंड हो गया है।
1: हाँ।
0: उस जमाने में बड़ी नई बात थी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: यार वाई सिंह विल यू, अच्छा सर क्या मुझसे शादी करो, मैंने नहीं सर ऐसा मत करेंगे। सर कहने की तो

0: बात नहीं है फिर भी रहा न चाहे, विल यू मैरी मी? और लड़की कहती है नो नो सॉरी जी. सो एवरी सॉन्ग बिकेम अ चार्ट बस्टर बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेशनेस, न्यूनेस. और बच्चन साहब ने कैरिड इट टू अ डिफरेंट लेवल. अमृता जी थी उसके अंदर,
1: yes.
0: उसमें दारा सिंह साहब थे, उसमें क्या क्या गाने पिक्चराइज किए गए,
1: yes.
0: माहौल क्या था वो.
1: बिल्कुल बिल्कुल. अब जो है बातचीत को फिर से बदलते हैं और अब मैं एक ऐसे गाने के साथ बात को आगे बढ़ा रहा हूं जिस गाने में एक नशा है, इस गाने में एक तरंग है. फिल्म में अलग गायक की आवाज में आता है, रिकॉर्ड पर अलग, लेकिन इस फिल्म के तमाम गानों के बीच इस गाने ने अपना जादू बनाया है. अस्सी के दशक से नब्बे के दशक में आ गए विविध भारती लाइव, सत्तरवें वर्ष में प्रवेश और प्यार का इजहार.

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न, जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। अनुजी, बाजीगर फिल्म का ये गाना, मैंने बाकी तमाम गानों को छोड़कर इस गाने की बात की है, कोई तो बात होगी।
1: मैं समझता हूँ इसलिए बात होगी, मैं देखिए ये जो फिल्म का गाना आपने बजाया है
0: जी,
1: पंकज उदास जी की आवाज में बजाया है आपने, और इसको बाद में गाया था विनोद राठौड़ ने।
0: हाँ,
1: सो क्या हुआ, महान रतन जैन, मैं उनको महान रतन जैन बोलता हूं, वीनस के जो मालिक हैं
0: जी जी जी,
1: और महान गणेश जैन, दो भाई, इनकी वीनस टेप्स एंड रिकॉर्ड्स
0: जी,
1: सात भाई, उनमें से अनफॉर्चुनेटली एक चले गए, हमारे प्यारे चंपक जी
0: जी जी,
1: भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उस वक्त जब मैं 80s में से निकलकर 90s की तरफ जा रहा था, 80s का दौर बदलता जा रहा था, आप समझ गए, नए नए संगीतकार फिर अपना अपने कदम जमा रहे थे
0: जी,
1: उस वक्त धीरे धीरे मेरा काम जाने लगा
0: जी,
1: एंड मेरी जिंदगी में इस गाने से पहले एक इंसान आए जिनके बारे में हम जरूर बात करेंगे, जिनका नाम है महेश भट्ट साहब
0: जी जी जी।
1: उसके बाद ये पिक्चर आई, मैंने एक एल्बम किया रतन जैन साहब के लिए
0: जी जी,
1: उसमें ये गाना था
0: जी।
1: तो एक दिन रतन जी कहते हैं, यार मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं।
0: हाँ,
1: फिल्म का नाम है बाजीगर।
0: वाह,
1: इसमें एक नया लड़का है शाहरुख खान।
0: हाँ,
1: नई हीरोइन है काजोल, और डायरेक्टर भी वर्चुअली न्यू है, एक फिल्म इनकी हिट हो चुकी है। तुम आओगे? मैं बस, सर डूबते हो गए, तिनके का सहारा वाली बात है, मेरे पास तो काम ही नहीं है, नई नई शादी हो चुकी थी मेरी। उन्होंने कहा काम करते हैं। मैंने जब ये मुखड़ा सुनाया इतने खुश हुए। फिर हमने ये गाना विनोद राठौड़ से गवाया था
0: जी।
1: जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हुआ है, महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, तालियां बज रही थी।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि 90s की एंट्री

0: हाँ
1: का ब्यूगल बज चुका था, सिर्फ अनु मलिक का नहीं।
0: हाँ
1: जितने भी संगीतकार 90s में थे
0: जी,
1: वो अपना नया रंग लेके आ रहे थे।
0: जी जी जी,
1: और ऐसे एक था अनु मलिक।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इन्हें बहुत अच्छा काम किया। जितने भी अगर 90s का म्यूजिक सुनोगे तो लोग कहते हैं दैट्स द रेनेसांस ऑफ, जैसे 60s का म्यूजिक था।
0: हाँ।
1: नए म्यूजिक के बारे में बात करते हैं।
0: हाँ।
1: उसके बाद ऐसा म्यूजिक बना ही नहीं है।
0: जी जी।
1: एवरी कंपोजर, एवरी लिरिसिस्ट, एवरी प्रोड्यूसर, एवरी डायरेक्टर
0: जी,
1: एवरी म्यूजिशियन, एवरी सिंगर्स हो, लिरिसिस्ट हो, संगीतकार हो, म्यूजिशियंस अपने उस जमाने के क्या थे, लाइव म्यूजिक चल रहा था।
0: जी जी,
1: एंड उसका नतीजा है 90s का म्यूजिक। जब ये बाजे के गाने बने थे तो लोग दीवाने हो गए थे, बोलते कैसेट्स में फ्लाइंग लाइक हॉट केक्स।
0: हाँ।
1: मुझे लोग आके बोलते हैं कैसेट्स बिकते थे, हर दुकान के कैसेट बिक रहे थे। मतलब अगर बगल में चार कैसेट बेचने वाले बाजीगर के हो तो चारों दुकान से बिक रहे थे, ये देखिए एक दुकान में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उसका नतीजा ये निकला कि आज टुडे जब ये गाने लोग सुनते हैं तो मुझे मैसेजेस लाके देते हैं, कहते हैं अनु जी ये गाने ऐसे लगता कल रिकॉर्ड किया आपने।
0: हाँ।
1: इतनी फ्रेशनेस कैसे है। आई वुड से उस वक्त ऐसा एक सर पे एक जुनून सवार था कि कुछ अच्छा करना है।
0: बासीगर में तो आपने वो रैप भी किया था,
1: वो काली काली आंखें में, उसकी भी स्टोरी है। अब गाना बजाए तो बताऊंगा।
0: अच्छा, गाना बजाना पड़ेगा। ठीक है, गाना बिल्कुल बजाएंगे और बाजीगर का वो गाना भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं ये चाहता हूं अनु जी के हम इसके बाद वो बात करेंगे बॉर्डर की, लेकिन बाजीगर का गाना अभी आ रहा है।

हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हमारे ये कार्यक्रम विविध भारती के स्टूडियो से फेसबुक पर लाइव देखा जा सकता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भी लिख सकते हैं।

ये वो पोर्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें, विविध भारती पर अनु मलिक मिली।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक के संग।
1: ये सुनो जी, ये काली काली आंखें,
2: ये जो काली काली आंखें का गाना है, इसमें जो आज इतना ट्रेंड सेटिंग हो गया रैप
1: जी,
2: उस वक्त ये सब नहीं।

0: जी
1: हुआ यूं कि गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मुखड़ा बन चुका था, सेट पर सब थे, अचानक 16 बार का एक फर्स्ट म्यूजिक में टेम्पो बज रहा था, टक टक टक चिटक टक टक चिक टक टक टक चिटक टक टक टक टक टक टक, बहुत कुछ ट्राई किया उसमें कुछ हो रहा नहीं था। मैं बोले ये खाली जा रहा है, ये खाली जा रहा है पूरा जगह, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैंने एक दिमाग में आइडिया आया, मैं चला गया सेट के ऊपर, मैं बोला यार एक काम करते हैं, माइक पर जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये खाली जगह को मैं कवर करना है। अभी मुखड़ा खत्म हो चुका है, अंतरा आने वाला है, अंतरा आने से पहले की म्यूजिक पीस है, लेकिन ये 16 बार मैं करूं तो क्या करूं, बहुत सोच रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा मैं ये वर्ड डालता हूं,
0: जी
1: मैं मिला, तू मिली, तू मिली, मैं मिला, मैं मिला, तू मिली, तू मिली, मैं मिला, दुनिया चले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे, राम पाम पाम बारा पाम पाम। अब पूरा ब्रास आता है वहां से, हाँ। तो पूरा मैंने टाइमिंग कवर किया उसके अंदर, एंड वहां अब्बास मस्तान, रतन जैन ऑल जंप्ड अप, ये बहुत अलग चीज की तूने, और इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट उन्होंने कहा मुझे लगता है बहुत अलग चीज हो गया, मैं मिला और जो तेरा अंदाज है ना तू मिली, तो वहां देव कोहली साहब भी थे लिरिक राइटर, मैं बोला देव जी पहला हाफ तो मैंने लिख लिया है, दूसरा हाफ को लिखे देते हैं, सेकंड अंतर में भी डालते हैं, मैं तो कर झटपट, मैं तो कर खटपट, मेरे आचा तो निकट, वो देव जी ने वही लिख दिया, वो भी कमाल के इंसान थे देव कोहली साहब,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: महान राइटर थे वो,
0: महान राइटर।
1: तो वो उन्होंने, मैंने बोला सर ये जो मैंने तैतू लिखा है फर्स्ट, मैं मिला तो मेरा आपको बुरा तो नहीं लग रहा है, बोला अनु जी गो हेड रिकॉर्डेड, बहुत अच्छा लग रहा है, देव जी की परमिशन मिली मुझे और मैंने कर दिया। बट जो नेक्स्ट उन्होंने लिखा वो भी मैंने बोल दिया, ना तू कर खटपट, तू आजा तो निकट, तेरे प्यार झटपट, ना तो जुल्फ झटक, ना तू पैर पटक, ऐसा ये सब किया था मैंने। आज वो गाना लोग बोलते हैं वॉज अ ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग, वन फॉर इट्स साउंड,
0: बिल्कुल
1: द म्यूजिक प्रोडक्शन वॉज वेरी न्यू,
0: यस यस,
1: डेढ़ महीना लगा था उस गाने को बनाने के लिए, डेढ़ महीना टू गेट द म्यूजिक राइट, पाम पाम पारा पाम पाम पाम, तो करते करते बहुत टाइम लगा, आई वांटेड टू सेट अ ट्रेंड। और आज लगता है लोग मुझे बोलते हैं कि यार इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है, एआई आ चुका है, लेकिन लगता है ये गाना कल रिकॉर्ड हुआ है। मैं 3 बार ये लव्स यूज कर चुका हूं, बिकॉज आई बिलीव अ सॉन्ग शुड साउंड एज फ्रेश एज इट वाज रिकॉर्डेड यस्टरडे इवन टुडे।
0: बाजीगर के टाइटल सॉन्ग में आपने वायलिंस बड़े प्यारे इस्तेमाल किए हैं, वो क्या था मामला?
1: कहानियां बहुत है इसके बारे में, लोग बोलते हैं अनु जी आप ये बताइए कि गाना बना कैसे। बाजीगर इज अ वेरी टफ वर्ड, बाजीगर, अगर इस पर आपको बोला जाए गाना बनाओ, हाउ डू मेक अ सॉन्ग?
0: जी जी,
1: तो मेरे दिमाग में एक दिन मैंने रतन जी को फोन किया, सर एक मुखड़ा है दिमाग में, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, तो बोला सुना, तो मैंने ऐसे सुना है, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, ऐसे सुना रहा हूं, बोला बहुत कैसी मुखड़ा, त्रिवड़न तत्तरा, अप्रूव हो गया, लेट्स रिकॉर्ड द सॉन्ग।
0: जी जी जी,
1: मेरा अब ये जो लाइन आती है ये सुनने वाले में, सेट पर हम पहुंचे, सिंगर्स आर ऑन द माइक, सिंगर्स आर ऑन द माइक, अब्बास मस्तान खड़े हुए, पूरा लाइव ऑर्केस्ट्रा, 60 वॉयलेंस, वियोलास, चैलोस, एवरी वन, रिदम फॉर्मेशंस, एवरीथिंग इज रेडी। अब सब बोल रहे कि अनु मलिक इज रिकॉर्डिंग फॉर अ न्यू हीरो, अ न्यू हीरोइन, सबके फैमिलीज आए हुए हैं
0: जी,
1: सब सुन रहे हैं, और मैं सेट पर हूं, अचानक जब गाना रिकॉर्ड करो, जो आपने पूछा कि वॉयलेंस आए कैसे, ये मैं बोला यार 1 2 3 4 गाना शुरू होता है, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, तरन टन टन टडन, सीधा फर्स्ट म्यूजिक आ रहा था, टडम पम पम बम बम तरम पम तम ददम ददम दरा, मैं बोला कुछ कमी है यार गाने में, दम नहीं है, लोग हैरान हो गए, बोला सेट पर हो आप, गाना हमने अप्रूव कर लिया है, अब्बास मस्तान कह रहे हैं, सर ये गाना उठ रहा नहीं है,
0: कुछ करना पड़ेगा,
1: मैं बड़े इंट्रोडक्शन बनाते हैं।
0: हाँ,
1: वही सेट पर इंट्रोडक्शन बनाया, तो मैं चाह रहा था ब्रास शुड बी कमिंग डाउन, ये सब

0: वाले चल रहे हैं, अभी भी कुछ कमी है, मुखड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। तो वहां मेरे एक सोलोइस्ट थे हमारे, उनको मैंने बोला यार एक काम करते हैं, हम लोग स्ट्रिंग्स लेके आएंगे, या रोक देंगे,
1: ओ वाह भाई,
0: और वहां ही मेरा मुखड़ा बजाओ।
1: ओके,
0: मेरा ही मुखड़ा बजाओ, तारी री री राम ता। तो ऑल वे लुकिंग एट मी, ये क्यों किया? फिर बोला इसके बाद मुखड़ा नहीं उठ रहा है।
1: हाँ
0: हाँ, सडनली आई गॉट एन आइडिया, मैंने गाना यहां से शुरू करते हैं, वहीं लिखा गया है।
1: अच्छा,
0: मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर, डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा। ब्रेक, बाजीगर ओ बाजीगर। तो गाने किस तरह बनते हैं, गाने का चेहरा बदल जाता है सेट के ऊपर,
1: क्या बात।
0: एंड आई बिलीव इन इंस्टिंक्टिव क्रिएशन। उस वक्त अब्बास मस्तान रतन जैन मेरे पास आए, बोला तुमने चेहरा बदल दिया गाने का, मुखड़ा उड़ गया।
1: वाह।
0: एंड बाजीगर वॉज बॉर्न विद दैट सोलो वॉयलेंट पीस एंड द सिंगिंग एंड द राइटिंग। क्या मतलब उसका अंतरा भी क्या बना था, धक धक धड़कता है ये दिल, बोलो ना क्या कह रहा है, मेलोडी थी। तो सिंगर सैंग विद अ लॉट ऑफ लव, सॉन्ग वाज रिकॉर्डेड विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, एंड द रिजल्ट कि आज भी गाना बजता है। और पिक्चराई भी शाहरुख पर और काजल पर इतना ब्यूटीफुल किया था सरोज जी ने कि लोग याद करते हैं उस पिक्चराइजेशन, और क्या शाहरुख लगा और काजल लगी उस गाने के अंदर, लाजवाब पिक्चराइजेशन।
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा और मुझे लगता है कि दिस इज द राइट प्लेस टू प्ले दिस इंट्रोडक्शन म्यूजिक, जिसके बनने की कहानी अभी आपने सुनाई है। विविध भारती पर फेसबुक लाइव भी है ये कार्यक्रम। और हां, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसमें से कुछ चुनिंदा सवाल हम अनु मलिक से पूछेंगे। ये है वो म्यूजिक जिसके बनने की कहानी अभी सुनाई अनु मलिक ने।

समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नीतियां बनाते समय जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। वे आज नई दिल्ली में पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि नीतियां बदलती परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती

से अलग करके नहीं देखा जा सकता। विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों और देश के हर क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए। प्रदेश में आज नारी शक्ति सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी और उनके अधिकार से जुड़े विषयों पर संवाद किया जा रहा है। साथ ही जिले में महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रयासों और उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की जा रही है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान जयपुर, जोधपुर और कोटा के लिए नई आपातकालीन एम्बुलेंस की सौगात भी दी गई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय विश्नोई ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक के दौर में कानून के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही है। उन्होंने विधि विद्यार्थियों से तकनीक के साथ डेटा, निजता और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों की समझ विकसित करने का आह्वान किया। वे आज जयपुर में यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में देश भर से युवा विधि विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। न्यायमूर्ति विश्नोई ने कहा कि मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को कानूनी मामलों का विश्लेषण करने, तर्क रखने और वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों का सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक सीख में बदलने और कानून की व्याख्या करने का अवसर देती है। इस कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल भी मौजूद रहे। राजस्थान पंचायती राज आम चुनाव 2026 के कार्यक्रम की आज घोषणा की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह आज जयपुर में इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लग जाएगी। चुनाव में करीब 1,59,000 से अधिक जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। इनमें 14,403 सरपंच, करीब 1,30,000 वार्ड पंच, 1,403 जिला परिषद सदस्य और 8,245 पंचायत समिति सदस्य शामिल हैं। जोधपुर में कृत्रिम गर्भाधान से तैयार गोडावन के चूजों को प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। इसके लिए विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि राज्य में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से गोडावन के चूजे तैयार किए गए हैं। जोधपुर के गोडावन ब्रीडिंग सेंटर में वर्तमान में 98 चूजे मौजूद हैं। रामदेवरा और सम क्षेत्र में वैज्ञानिकों के प्रयासों से गोडावन संरक्षण का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 130 गोडावन प्राकृतिक आवास में मौजूद हैं। गोडावन संरक्षण के लिए टनल और अन्य सुविधाओं पर करीब 8.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एशियाई गेम्स के दौरान खेले जा रहे पुरुष क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 212 रनों का लक्ष्य दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर ताबड़तोड़ 61 रनों की पारी खेली, वहीं तिलक वर्मा ने 22 गेंदों में 51 रन बनाए। अंतिम समाचार मिलने तक पाकिस्तान को जीत के लिए 35 गेंदों पर 84 रनों की आवश्यकता है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव सप्ताह के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में स्कूली विद्यार्थियों, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट, नेचर गाइड, पार्क स्टाफ और रिक्शा चालकों ने भाग लिया। प्रतियोगिता प्रतिभागियों ने वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वन्य जीवों की सुरक्षा और आर्द्रभूमि को स्वच्छ रखने के प्रति जागरूक किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

एक घंटे के होते हैं, आपके दो ही गानों में आधे घंटे का प्रोग्राम निपटाया जा सकता है। सीमाएं बुलाएं तो जी चल रही और संदेश आते हैं खत्म, दो आधे घंटे का प्रोग्राम खत्म, इतने बड़े गाने बनाना आसान काम नहीं है। तो सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही भारतीय सेना को समर्पित, बॉर्डर और उसके बाद एलओसी करगिल। अनु मलिक ने

0: आप को बार बार साबित किया है। 70 के दशक के अंत में शुरुआत होती है, 80 के दशक में करियर शबाब पर चढ़ता है, 90 के दशक में रीडिस्कवर होते हैं और उसके बाद मोह मोह के धागे के जरिए नए संगीतकारों को बताते हैं कि गाने कैसे बनाए जाते हैं।
1: शिवाय बुलाए तुझे चल रही।

विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। अनु मलिक कहानी बाकी है, 12 बजे से लाइव शुरू किया है, 2 बजे तक चलने वाला है। 2:30 पर तिग्मांशु धूलिया लाइव विविध भारती 70वें साल में प्रवेश कर रहा है और जश्न हो रहा है लाइव प्रोग्राम में। ये वो गाना है जो हमारी तन्हाइयों का साथी है।

महेश भट्ट के बारे में भी बातें करनी बाकी हैं अभी अनु मलिक से। क्या आप पहचान पाए कौन सा है ये गाना?

और ये गाना जिसमें एक फलसफा है, जिसमें एक नाजुकी है, ये गाने हमें गुजरे वक्त में ले जाते हैं, स्वीट 90s में।

0: यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। बहुत कम लोगों को पता है ये कैफी आजमी का लिखा हुआ गाना है।
1: बहुत याद करता हूँ कैफी अंकल को
0: जी।
1: एक्चुअली जब मैं मिला था उनको, उनकी तारीफ करने पहुंचा था जानकी कुटीर में।
0: अच्छा,
1: कि अंकल आपने जो मदन मोहन जी के साथ काम किया है,
0: वाह वाह वाह,
1: क्या क्या गाने लिखे थे, बड़े मुस्कुराए थे। और एक सिचुएशन है जो भट्ट साहब पिक्चर बना रहे हैं, फिर तेरी कहानी याद आई, तो कहते हैं कि मैं, बड़ा टीवी की फिल्म है, उस जमाने में इतना अटेंशन नहीं दिया जाता टीवी को, तो भट्ट साहब का नाम सुनकर बड़े खुश हो गए, महेश भट्ट साहब का नाम। महेश भट्ट साहब की बड़ी अपनी एक, उनका एक मुकाम है, उनकी बड़ी इज्जत है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो बोला तुम संगीत दे रहे हो, बोला तो ये मुखड़ा सुनो।
0: अच्छा,
1: मेरे दाएं में बैठे हुए थे वो।
0: हाँ हाँ,
1: मैं बैठा हुआ था आराम से, उनकी तबीयत इतना ठीक नहीं थी
0: जी,
1: फिर भी बोलते हैं सुनो ये लिखो, आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ पल अपना है, हम गुजरे हुए पल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। तो मैंने उसी वक्त उनकी बोल सुनते सुनते ये ट्यून बनाई थी। जब वो ट्यून बनी तो उन्होंने ऐसे ऐसे थे, ऐसे बैठे थे, सामने देख रहे थे, अपनी तरफ मुझे देखा, शौकत जी भी थी।
0: हाँ,
1: और कहता है यार मेरे सामने तुमने बनाई है,
0: बिल्कुल
1: ट्यून। मैं ना बाजा भी नहीं था उस वक्त, वैसे गुनगुना रहा था
0: जी,
1: इसको फौरन रिकॉर्ड करो। मैंने रिकॉर्ड कर ली कैसेट प्लेयर के ऊपर, छोटे थे उस जमाने में कैसेट प्लेयर होता था, उसमें रिकॉर्ड कर ली। और मही जी को बोला उन्होंने कि इसने को ट्यून सुनाई आप सुनो।
0: हाँ,
1: और वो ट्यून इतनी पसंद आई क्योंकि बोल कमाल के थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: ट्यून तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जो शब्द थे उनके, कैफी साहब के, वो ऐसे लाजवाब वर्ड थे, वो दोनों का तालमेल हो गया। और मही जी ने बोले यही गाना रिकॉर्ड करेंगे, और फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। और आज भी ऐसा लगता है कि ये गाना, यही बैठे हैं कैफी अंकल और यही बैठे हैं महेश भट्ट साहब, और ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है।
0: कितनी प्यारी बात है, गुजरा हुआ कल बस अपना है, हम गुजरे
1: और यादों के हर जंगल में रहते हैं। ये जो लाइन है, यादों के जुगनू के जंगल में रहते हैं, ये पेंट करना शब्दों के जरिए,
0: बिल्कुल
1: वो कैफी साहब ही कर सकते थे।
0: अच्छा, मैं एक और शायर का जिक्र करना चाहता हूँ, और वो इसलिए भी कि उनसे आपका एक ताल्लुक भी है, वो आपके मामा रहे, मामा है।
1: बिल्कुल, वो ऐसे ऐसे गाने लिखे उन्होंने, उनका जो एक कॉम्बिनेशन था, मैं देखिए मेरा बचपन बीता है
0: जी
1: लिस्निंग टू शंकर जयकिशन, क्योंकि मेरे मामा ने गाने लिखे थे, या बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है।
0: हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हम बात कर रहे हैं अनु मलिक जी के मामा जी, यानी जाने माने गीतकार
1: हसरत जयपुरी साहब,
0: हसरत जयपुरी की।
1: और हसरत साहब हमारे मामा ही नहीं थे, वो कमाल के एक इंसान थे। मैं उनके पीछे पड़ा रहता था, मुझे इस रिकॉर्डिंग पर लिखे चलो, बल्कि एक मेमोरी बड़ी ये है कि उनके जो रिकॉर्ड आते थे ना
0: जी जी,
1: तो उनके बेटे घर में बैठ के, मैं बोलता था यार ये शंकर जयकिशन गाना सुनो, आप 11 साल का बच्चा गाने सुन रहा है, जिंदगी सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, या फिर वहां से पुराने पुराने बरसात के गाने सुनते थे।
0: हाँ जी,
1: राज साहब के जितने भी गाने, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, फिर आजा सना मधु चांदनी में हम, मुझे लगता है ये सब जितने भी गाने थे दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में सवाल, ये सुनते सुनते मेरे अंदर चले गए थे गाने।
0: हाँ,
1: और उसका नतीजा ये था कि जब उन्होंने भी मेरे गाने लिखे
0: जी,
1: आपको याद होगा राधा का संगम।
0: हाँ,
1: ओ राधा तेरे बिना। अब यहां जो बातें हम करते हैं, हम लोग बात नहीं करते ऑफ ऑल दीज महान सिंगर्स, उनमें से आप, जैसे हमने आशा जी के बारे में आप

0: मेरा गाना बजाया सुनी मेवाल का
1: जी।
0: तो आपने वो पूछा ही नहीं कि आशा जी का क्या योगदान रहा है मेरी लाइफ में।
1: नहीं नहीं बिल्कुल वो बात है।
0: पहला मेरी लाइफ का पहला गाना
1: जी जी
0: वो संग बाय आशा भोसले।
1: क्या बात है।
0: 1977 मतलब 1975 में आई वाज ओनली 14।
1: हाँ
0: 1977 उस वक्त गाना जुल्मो सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा और ये नाम है अंटर वाली ये सब ये मुझे याद है। जुल्मो सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा तेरा जमाना है मैंने माना मेरे भी एक दिन आएगा। आशा भोसले जी ने भी डैडी को फोन करके बोला था ये आदमी सिखाए क्या।
1: हाँ
0: आशा जी ने पूछा।
1: वाह।
0: तो डैडी ने बोला नहीं ये क्या करता है कि मैं कोई शब्द देता हूं और ये अचानक गाने बना लेता है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो आशा जी बोलती है खड़े खड़े बैठ ये लड़का ये कैसे कर लेता है। तो यहां सरस्वती माँ ही बोल रही है और वो ही नतीजा है कि आशा जी लता जी आशा जी लता जी रफी साहब किशोर कुमार
1: जी
0: ये सब मेरे गाने गाते थे और मुझे आशीर्वाद देके जाते थे।
1: क्या बात है।
0: यानी कि किशोर दा ने तो मुझे कंपेयर किया था बोला तुझमें पंचमता की खुशबू आती है। जब मैंने गाना बनाया था बन के नजर दिल की जुमा
1: हाँ, हाँ।
0: कहने लगी एक दास्ता जो किशोर दा ने गाना गाया था।
1: यस, यस,
0: मैं बोला क्यों क्यों बोला जितना तेरा मुखड़ा मीठा है
1: हाँ।
0: उतना ही तेरा अंतरा मीठा है। अब ये भी मैंने सीखा
1: हाँ।
0: कि मुखड़े पर दम मत तोड़ना
1: हाँ।
0: मुखड़े पर दम मत तोड़ना मुखड़े पर अगर तूने दम तोड़ दिया तो अंतरा मजा नहीं आएगा। अ गुड कंपोजर इज वन हु मेक्स अ वेरी गुड अंतरा। ये हमने सीखा था आरडी बर्मन से। ये हमने सीखा था कल्याण जयानी जी से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से। ये हमने सीखा था शंकर जयकिशन से। आप जितने भी गाने सुनते हो
1: हाँ।
0: सचिन देव बर्मन के गाने सुन लो उनके मुखड़े अंतरे सुन लो
1: हाँ, हाँ।
0: मदन मोहन जी के सुन लो सलील दा के सुन लो नौशाद साहब के सुन लो डैडी के सुन लो रोशन साहब जिनके बारे में हम नहीं बोलते सी रामचंद्र जी
1: बिल्कुल
0: ये ऐसे महान लोग हो चुके हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यूनुस भाई आप मेरी तारीफ कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है मुझे और बहुत दूर जाना है बहुत मेहनत करनी है। अभी तक मैं वहां पहुंचा नहीं हूं जहां ये बड़े बड़े मास्टर्स पहुंचे हैं।
1: देखिए
0: मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कोई कमाल का काम किया। आप लोग मेरी तारीफ करते तो मैं हैरान हो जाता हूं। मैं तो ये बड़े बड़े गाने सुनता हूं तो मैं बोलता हूं क्या लाजवाब लोगों ने लिखा है काम किया है गाया है मैं कैसे गाने बनाऊं ऐसे। आज भी मेरे अंदर ये एक आग लगी हुई है कि मैं ऐसा काम कैसे करूं और कब करूं।
1: जी एक और शख्स के साथ आपने काम किया है जो बहुत ही जादू भरा काम है। ये वो शख्स हैं जिनके हम सभी दीवाने हैं और जो ये गाना लिखते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस गीतकार की बात कर रहा हूं पर इस गाने के जरिए आपको लगेगा अंदाजा। जहां तक मुझे अंदाजा है इनके साथ चार फिल्में की हैं आपने।
2: मोहब्बतों में जीने वाले खुशनसीब हैं मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन फासलों पर रहते हैं लेकिन
0: उनके साथ मैंने गाना सबसे पहली फिल्म थी वो थी अक्स ये रात जल्दी की छिपकली रात
1: हाँ
0: ना निगली जाए ना उगली जाए
1: हाँ
0: गुलजार अंकल
1: जी
0: के बोल ही तरस छीन कर लेके आते थे। तू हवा है फिजा है जमी की नहीं तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह आ मेरे आशियाने में आ। या फिर जो गाना मेरा फेवरेट है
1: हाँ।
0: सौ दर्द है
1: सौ राहतें
0: सौ राहते
1: वाह
0: सब वाँ। मिला है मुझे एक तू ही नहीं
1: क्या गाना बना है?
0: इसमें मैंने जान लगा दी थी ये वर्ड्स मुझे इतने अच्छे लगे थे जाने मन का म्यूजिक था
1: जी।
0: अशोका में अगर आप सुनो गाने रोशनी से भरे भरे
1: बिल्कुल
0: भरे भरे नैना तेरे छू कर बोले ना छूना मुझे क्या लाइन है। तो अक्स हो या फिर फिलहाल उनकी
1: हाँ।
0: मेघना गुलजार की पहली फिल्म
1: जी
0: उसका म्यूजिक मैंने दिया बल्कि मैं अपने, अपने अपने अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि जितने भी मेजर डायरेक्टर्स लॉन्च हुए हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर उनकी पहली फिल्म मेरे साथ रही है। ये इस लोग जानते नहीं है कि मेघना गुलजार की पहली फिल्म मेरे साथ थी
1: जी।
0: फिलहाल तनुजा चंद्रा की पहली फिल्म मेरे साथ थी
1: जी।
0: फराह खान की पहली फिल्म मैं हूं ना
1: जी
0: जिसे गाने बड़े लोकप्रिय हैं मेरे साथ थी। राजकुमार हिरानी साहब की पहली फिल्म मेरे साथ थी
1: मुन्ना भाई
0: MBBS
1: जी।
0: तो बहुत से डायरेक्टर्स हैव लॉन्च द कैरियर्स विद मी एंड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत से सिंगर्स को हमने डिस्कवर किया है
1: जी
0: और मैं अपने आप को इतना मतलब भाग्यशाली मानता हूं कि लोग कभी कभी कहते हैं यार तुमने इस

0: डिस्कवर किया, इसका काम किया। मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझ पर एहसान किया है कि मुझे अच्छे अच्छे लोग से मिला है। ये बहुत नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा काम करूं अगर अच्छे लोग मेरे साथ नहीं आते। मैं बार बार कहता हूं संगीत संगत का काम है।
1: जी जी जी,
0: हर आदमी को समझना चाहिए कि संगीत एक आदमी नहीं बनाता, उसके साथ बहुत से लोग होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: जो मिलकर जान लगाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और एक ही प्रॉब्लम होता है संगीतकार की, जो मैं फिर आपके विविध भारती पर कहना चाहता हूं कि सबसे अकेला भी एक ही आदमी होता है जब गाना बनता है, वो है संगीतकार। अब आप पूछेंगे अनु जी संगीतकार अकेला कैसे होता है, सुनने वालों को बताना चाहता हूं।
1: यस,
0: ये मैंने हर प्रोग्राम में बोला, अभी भी बोलूंगा कि जब निर्माता निर्देशक घर पर आते हैं और कहते हैं हमें आपको साइन करना है, फिर निर्देशक सिचुएशन बताता है, उस वक्त सबसे अकेला महसूस जो अकेला होता है वो आदमी, वो होता है संगीतकार। उसके उस वक्त पर ना लिरिक राइटर होता है, ना उस वक्त सिंगर होता है, ना उस वक्त साजिंदे होते हैं, कोई नहीं होता। सामने डायरेक्टर बैठा होता है और बोलता है मेरी सिचुएशन। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं
1: जी,
0: फिल्म है मुन्ना भाई MBBS।
1: यस,
0: आना कहते हैं हमें एक गाना चाहिए। मैं बोला गाना पिक्चराइज कहां किया जाएगा?
1: हाँ,
0: और उनका डायलॉग आता है गाना अस्पताल में पिक्चराइज किया जाएगा। आप मुझे सोचिए अगर आपको बोला जाए कि अस्पताल में गाना पिक्चराइज हुआ, हाउ वुड योर रिएक्शन बी? आप क्या गाना सोचेंगे? हॉस्पिटल रात को गाना है। अब क्योंकि गाना लोकप्रिय हो चुका है तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब वो संगीतकार के सामने वो सिचुएशन दी जाती है, और मैं ही नहीं, ऑल द कंपोजर्स इन द वर्ल्ड, द लोनलीएस्ट मैन ऑन द प्लैनेट व्हाइल मेकिंग अ सॉन्ग इज द कंपोजर।
1: यस यस,
0: और वहां डायरेक्टर बैठे हुए हैं राजकुमार हिरानी, और मैंने गाना मैंने तर छेड़ी तो राजकुमार हिरानी जी ने डॉक्यूमेंट किया है ये।
1: हाँ,
0: बोला भी है कि अनु मलिक उठे और अपने हॉल में 15 मिनट चले आए। मैं दरवाजे से देख रहा था अनु मलिक यहां चल रहे हैं, और चलते चलते अचानक 15 मिनट बाद आए और बोलते हैं एक मैंने चीज सोची है।
1: अच्छा,
0: तो 15 मिनट में, और मैंने ऐसे गाया मैंने एक ही बोल देख ले आंखों में आंखें। अब ये गाना बना कैसे?
1: हाँ,
0: उन्होंने एक लाइन बोली थी राजकुमार हिरानी साहब ने कि एक आदमी 12 बजे और 4 बजे के बीच में अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहिए उसको।
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि 4 बजे वो गुजर जाएगा, ही विल डाई, ही इज गॉट अ टर्मिनल डिजीज।
1: राइट राइट,
0: मगर उसको वो हर खुशी मिलनी चाहिए बिटवीन 12 एंड 4। तो मैंने ये भी सोचा कि ये अगर मैं सॉफ्टली शुरू करूं और भी पेशेंट्स हैं, तो मैं लाउडली शुरू करूं, लाउडली बात होगा, तो मैंने ऐसे शुरू कर देख ले आंखों में आंखें सीख ले जीवन के बल है चार याद रख मरने से पहले जीना
1: सीख ले
0: सीख ले। तो आज ये गाना लोग सुनते हैं तो पूछते हैं बना कैसे। तो उस वक्त जो संगीतकार अकेला होता है वो संगीतकार ही जाता है, और वो मेरी बात नहीं है, पंचमदा भी अकेले होंगे, शंकर जयकिशन भी अकेले होंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी अकेले होंगे, मेरे फादर भी अकेले होंगे, और इनको मैं इसलिए सलूट करता हूं, बार बार घूम के इसी बात पर आता हूं कि आप दुआ करो कि मैं इनके करीब थोड़ा भी आ सकूंगी। ये महान लोग हैं, आप आज भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैंने ऐसा कमाल का कुछ काम किया है जो इनके करीब आ सके।
1: मुन्ना भाई MBBS, ये वो गाना है जो विविध भारती पर अक्सर सुबह बजता है और लोगों से ये कहता है कि सुबह हो गई जाग जाओ, अनु मलिक का गाना सुन लो, जॉगिंग करो, चाय पियो।

0: शुरू हो गई मामू।
1: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जानी मनी संगीतकार अनु मलिक के संग।

और अब ये गाना, फिल्म का नाम अशोका, गुलजार और अनु मलिक की जोड़ी

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग
1: गुलजार साहब के साथ के चार गाने बजाए मैंने।
2: बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि गुलजार साहब जितने अच्छे राइटर हैं उतने ही आउटस्टैंडिंग लाजवाब इंसान हैं, और इतना इनकरेजिंग लिरिक राइटर, इतने इनकरेजिंग इंसान मैंने आज तक नहीं देखा
1: जी।
2: बहुत ही प्यार करने वाले हैं
1: बिल्कुल,
2: और इतना कुछ कर चुके हैं, इतना उनसे मैंने चीज सीखी रहा हूं, नम्रता, मोहब्बत, अपने काम को कितना प्यार करना चाहिए, कितनी शिद्दत से, लगन से काम करना चाहिए। जितने भी गाने, और मुझे बहुत प्यार करते हैं वो, आज भी मेरा फोन उठा लेते हैं।
1: हाँ।
2: और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुलजार साहब डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं।
1: कितना बड़ा चैलेंज था कि उनके अल्फाज आपके पास आ रहे हैं और ट्यून बनाना है,
2: क्योंकि मेरे दिमाग में तो

0: अचानक मदन मोहन जी याद आ गए,
1: बाबा
0: पंचमदा याद आ गए, और मैंने बोला कि ऐसे लोगों के साथ काम करने वाला इंसान सामने बैठा हुआ है, खुद एक कमाल के डायरेक्टर हैं, स्टोरी स्क्रीन पे उनके आंधी फिल्म की आप फिल्म देखो, म्यूजिक सुनो, तब मुझे पता लगा कि मैं जिसके सामने बैठा हूं मुझे जान तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मगर मैं बार बार कहता हूं उनके बोलों में इतनी ताकत और शिद्दत है,
1: हाँ,
0: कि बोलों में तरस छुपी हुई होती है।
1: क्या
0: उन्होंने लिखा कि तू हवा है फिजा है जमीन की नहीं, तो घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं। अचानक मेरी ट्यून को सुनते सुनते तू हवा है फिजा है जमीन की

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग।
1: अनु जी, एकदम अलग दौर के गानों की बात मैं करने
2: जी सर,
1: ये जो कमाल है ये क्या था? एक तरफ अगर तुम मिल जाओ, दूसरी तरफ भीगे होंठ तेरे।
2: वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है
1: जी,
2: वक्त के साथ इंसान को तर्जे बनानी पड़ती है। नए निर्माता आते हैं, नए निर्देशक आते हैं, अपनी अपनी अपने अपने इमोशंस लेके आते हैं।
1: हाँ।
2: नए हीरोज आते हैं, एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं।
1: हाँ।
2: वो अपने एक अंदाज लेके आती हैं। जनरल पब्लिक जो है एक चेंज मांगती है। हमारे अंदर एक कहावत है ना, आपको परिवर्तन ही संसार का नियम है
1: जी।
2: और अगर आप अपने आप को उन्हीं यादों में रखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: आपको हर वक्त बदलना पड़ता है, हर वक्त नई चीज करनी पड़ती है, हर वक्त ऐसे गाने पब्लिक के लिए बनाने पड़ते हैं जो उनको देखो। हर हिंदुस्तानी के अंदर एक चीज मैंने नोटिस की है, बड़ा मेलोडिक होता है। वो गाना गा सके या ना गा सके लेकिन वो गाना समझता बहुत है।
1: बिल्कुल,
2: वो गुनगुना लेता है उसके अंदर। अगर आप ऐसा गाना बना दो जो उनके दिल की बात है तो वो गाने को सीने से लगा लेंगे।
1: एक चीज जो मैंने देखी है कि आपकी पूरी संगीत की यात्रा में जहां मौका मिलता है वहां मेलेडी का दामन पकड़
2: के वही बिल्कुल गुनगुनाने लायक वाले गाने नहीं होंगे तो गाना में दम ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा, फिर बार बार कहूंगा, हर हिंदुस्तानी के अंदर संगीत कूट कूट के भरा हुआ है।
1: यस,
2: किसी भी प्रांत में चले जाओ, महाराष्ट्र में देखो।
1: हाँ।
2: गुजरात में देखो।
1: हाँ।
2: लोकगीत जो है
1: बिल्कुल,
2: गुजरात में भी क्या टैलेंट है।
1: यस,
2: आप चले जाइए साउथ में।
1: हाँ।
2: आप चले जाइए पंजाब में, आप चले जाइए राजस्थान।

0: आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, आप कहीं भी चले जाइए, बंगाल चले जाइए, आपने कभी नोटिस किया है कि ऐसे ऐसे कलाकार हैं इस देश में कि जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं समझता हूं कि लाजवाब सिंगर्स, लाजवाब कंपोजर्स, लाजवाब म्यूजिशियंस, लाजवाब टैलेंट है हमारे देश में। हिंदुस्तान एक ऐसा महान देश है जहां इतना टैलेंट खूट खूट के भरा है, गली गली में है। उनमें से मुझे चुनकर सरस्वती माँ ने अगर अन्नू मलिक बनाया है तो मैं उनका जितना शुक्र करूंगा कम है।
1: बिल्कुल,
0: मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूं।
1: यस,
0: कान में 2 साल की उम्र से अगर आप सुरी सुर सुन रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है।
1: लेकिन अन्नू जी, एक गाना ऐसा जो 7 समुंदर पार तक भी गया था, जरा वो गाना बजा देते हैं, बहुत सारी लड़कियां भी इंतजार कर रही हैं।

0: यस अनु जी, चाइना गेट बहुत ही अलग तरह की
1: फिल्म। ये गाना एक ही गाना था चाइना गेट में, एक ही गाना चाहिए था। इट वॉज अ मेल ओरिएंटेड फिल्म।
0: हाँ,
1: और बड़ा चैलेंज था। राजकुमार संतोषी साहब ने कहा कि यार कोई ऐसा गाना बना दो।
0: हाँ,
1: उनके फाइनेंशियल भरत भाई भी आए थे।
0: जी जी।
1: कि बड़ा एक लोकप्रिय गाना बन जाए।
0: जी,
1: तो मैंने ये सोचा कि छम छम ये बना भी कैसे, मतलब छम छम छम छम सब बोलते हैं।
0: हाँ,
1: चूड़िया खनकी, खनकाने वाले आ गए, छम छम बाजरे पाए लिए। लेकिन मैं बोला राजी, मेरे दिमाग में मुखड़ा आ रहा है। छम को छम्मा कर, छम्मा छम्मा। लेकिन जब ट्यून बनी ना, तो ट्यून सुन के वो गदगद हो गए।
0: हाँ।
1: दा, दा, दा, दा, और समीर जी ने फिर उस गाने को जो लिखा है।
0: जी जी,
1: समीर अंजान साहब
0: बिल्कुल,
1: और बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है। तो गाना फिर जब बन गया और रिकॉर्ड हुआ, फिर जो पिक्चराइज हुआ, तो मेरा गाना ये, मैंने आपको पता, बड़ा शौक है। आपने समंदर पार बोला, मैडम एक्चुअली बड़ा इसमें मेरा ये अजीब बिटर स्वीट मेमोरी है।
0: बिटर स्वीट,
1: हाँ, स्वीट मेमोरी है कि गाना इतना लोकप्रिय हुआ।
0: बाद में हॉलीवुड की फिल्म,
1: हॉलीवुड में जब गया, वहां जब मैं एलए में था, सैन फ्रांसिस्को में, तो मैं एक थिएटर में जाके पिक्चर देखता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरा गाना बज रहा है छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी बाजे रे निकोल किडमैन पर। वहां सबका सिंगर का नाम दिया, लिरिक राइटर का नाम दिया, मेरा ही नाम नहीं है।
0: अरे अरे अरे,
1: और मुझे बड़ा रंज हुआ है। क्योंकि जब हमने इतना मेहनत की मुखड़े पर, अंतरे पर, ट्यून पर,
0: हाँ,
1: कोई बात नहीं, लेकिन हमें हिंदुस्तानियों का प्यार मिल गया, वही काफी हमारे लिए।
0: बिल्कुल,
1: मैं बाहर नहीं देखता हूँ। हमारा हिंदुस्तान इतना महान देश है कि या हर एक हिंदुस्तानी आपको सीने से लगा लेता है, उससे बड़ा, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
0: Yes, और अनुजी, अब एक ऐसी फिल्म जिसमें इतनी स्वीटनेस थी इन गानों में, और एक नई गायिका को लेकर आया।

0: अनुजी जोश फिल्म की बातें हो रही हैं, मंसूर खान की फिल्म, और संजीवनी को आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। और
1: ये फिल्म थी करीब,
0: जी हाँ सॉरी करीब, करीब
1: हाँ ये जोश की नहीं, ये फिल्म थी करीब, विधु विनोद चोपड़ा साहब की फिल्म थी।
0: हाँ,
1: और वीर चोपड़ा जी जो अभी नहीं रहे याद आते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो उन्होंने कहा कि हमारी नई हीरोइन है और एक नई आवाज चाहिए फीमेल के लिए, और बहुत ऑडिशनिंग हुई और संजीवनी जी से मिलाया इन्होंने मुझे, इनकी आवाज बहुत ही अच्छी लगी, बहुत इमोटिव आवाज है, बहुत शिद्दत से गाने वाली इंसान है, और नतीजा ये हुआ कि आज जितने भी गाने ये आज इतने चलते हैं गाने अभी भी, कि अगर मैं शो पर परफॉर्म करूं तो लोग चाहते हैं कि ये गाने सुनाए जाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बाकायदा असल में ये हुआ कि ये दोनों करीब और जोश इसलिए मिक्स हो गई कि मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं जोश और अकेले हम अकेले तुम की भी बातें करूं, और अकेले हम अकेले तुम में
1: बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं फिर तेरी कहानी याद आई, जोश और अकेले अकेले तुम की बात कीजिए, मंसूर खान साहब याद आते हैं मुझे फिल्म जोश के, उनकी पहली फिल्म मैंने की थी अकेले हम अकेले तुम, और उसके गाने बट यू लव मी डैडी, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, या फिर राजा को रानी से प्यार हो गया, या फिर दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, हम दिल को कभी, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं, ये गाने सब आज इतने लोकप्रिय हैं। और मंसूर ने जो काम निकाला, नासिर साहब के बेटे हैं, सुरीले इंसान है, बहुत मेहनत करवाई, लेकिन मजरू अंकल ने भी जो काम किया है उसमें, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, जिनका आपने नाम अभी तक जिक्र नहीं किया, लेकिन अकेले मगले तो में जो मजरू साहब ने काम किया मेरे साथ, ओए होए क्या बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना सुनते हैं।

एक तरफ मजरू साहब का ये गाना और दूसरी तरफ एक ऐसा गाना जो बहुत बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। फिल्म का नाम है डुप्लीकेट।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। विविध भारती की सालगिरह का जश्न अनु जी के संग हो रहा है और दो गानों की बातें करेंगे और उसके बाद हम साइन ऑफ करेंगे। ये गाना जिसके गाने के बनने की कहानी चाहिए हमको, जिस तरह के तबले आते हैं हिंदुस्तानी फिल्म म्यूजिक के लिए ये नया था। बताइए अनु जी,
1: ये आपने कमाल कमाल के इस्तेमाल किए हैं और मेरे जितने भी गाने आपने बजाए हैं उसकी कहानियां सुनी हैं आपने
0: जी,
1: इसका बड़ा कमाल काम है। ये पिक्चर बन रही थी फराह खान की पहली फिल्म
0: जी,
1: और फराह खान कम्स आउट विद एन आइडिया कि यार अनु इस फिल्म में
0: हाँ
1: कवाली करते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, कवाली बनाना इतना आसान नहीं, और कवाल को मैं जितने भी कवाल्स हैं हिंदुस्तान में उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि कवाली बनाना बहुत मुश्किल काम होता है
0: जी।
1: तो उस समय नहीं, मुझे कवाली चाहिए
0: जी।
1: तो मैं बोला अगर कवाली करेंगे तो मेरे स्टाइल में करेंगे।
0: हाँ।
1: तो जावेद साहब सामने बैठे हुए थे
0: जी,
1: बोला व्हाट इज योर स्टाइल, व्हाट डू यू मीन कवाली योर स्टाइल।
0: हाँ।
1: अरे सर लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्सअप।
0: अरे बाप रे
1: विकेड, मैंने ऐसे बोला जावेद साहब भड़क गए, उड़ गए वो। बोला मैं ऐसे जा रहा हूँ, ये कवाली नहीं हुई।
0: हाँ।
1: तो फराह खान पकड़ के ले गए।
0: हाँ हाँ।
1: तो मैंने एक पीस सुनाया उनको। तो जावेद साहब बोलते हैं ये तो म्यूजिक पीस है ना। मैंने सर नहीं सर, फराह बोलती इस पर भी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा बता, बड़ी छोटी जगह स्टैकाटो है ये।
0: हाँ।
1: लगाड़ो भी नहीं, लगाड़ो दारी रा रा रारी रा, ऐसा नहीं है तारी डांडी दारी डांडी दारी डांडी दान। तो इतनी छोटी जगहों पर उन्होंने जावेद साहब ने जो वर्ड लिखे, देखो बेहारे ये न जा रहे ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: एंड वहां पर वो लिखा है तुमसे मिलकर मैंने ट्यूशन दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा। तो उन्होंने लिखा तुमसे मिलके दिल का है जो हाँ, सामने लिखा उन्होंने। अब गाने की जब रिकॉर्डिंग आई तो मैं चाहता था, उस जमाने में बड़े बड़े कव्वाल थे उनके साथ मैं काम करना चाह रहा था
0: जी।
1: नई डायरेक्टर, बजट का प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये मुश्किल होगा कव्वाल्स को लेके आना। तो कुछ मैंने अपने साजिंदे को बोला कि उन्होंने बोला कि यार माही में कोई है साबरी ब्रदर्स बोलते हैं बहुत गुनी है। तो मैं बोला ये जगह है, देखो प्यारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने। वो आए, उन्होंने बहुत मेहनत की और आकर उन्होंने ये गाना गाया। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है कि रिदम क्या होगी।
0: हाँ ये रिदम बिल्कुल,
1: तो रिदम कैसे होगी। तो मैं बोला कव्वाली के अंदर एक ढोलक तबला आता ना टिपिकल ता ता ता ता ता, ये होता
0: हाँ हाँ
1: ये ठेका होगा। आई वांट टू चेंज दिस ठेका, आई वांट टू चेंज इट।
0: हाँ।
1: तो मैंने बोला भाई साहब मेरे बोला भाई साहब तबले बुलाते हैं।
0: हाँ
1: हाँ। तबले मतलब 20 तबले,
0: 20 तबले।
1: हाँ
0: हाँ।
1: मगर सिर्फ उनकी चाटियां बजाएंगे, बाया नहीं बजाएंगे।
0: ओके।
1: मैं तो बेस गिटार तनांग चिक दुंग तंग कचक दिंग तनांग चिक दिंग तंग कचक दिंग तनांग चिक दिंग। अब ये साउंड जब बजा है, रिकॉर्ड हुआ है, तो तारा नंदा धारा नंदा धारा नंदा धारा नंदा धाम बाम बाम बाम बाम बाम बाम र तनांग कचक दिंग तंग कचक दिंग तना। और ये भाई साहब हमारे इतना गुनी इंसान रंजीत जी, उन्होंने बोला अनु जी आपने ये बात जो मुझे बोली है
0: हाँ।
1: इस पर मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं लगता हूँ इसके ऊपर
0: जी।
1: और फिर भाई साहब लगे उस पर
0: जी,
1: और हम बैठे हैं रात से सुबह हो गई
0: जी।
1: ये आइडिया उनको बजाते बजाते उसके जो साउंड है था ना, उसके जो चाटी का साउंड, उसको ट्यून के सुर में लाना था। कौन से
0: हाँ।
1: कौन सा जो मुखड़ा है तुमसे मिलके दिल का है जो हाँ अलग। अब ये इसी सुर में द तुरी दुरी दुरी दुरी दुरी दुरी दारी रारी रा रा राम ये तनांग चिक दिंग ता कचिक दिंग तनांग। तो बेस गिटार लेके साउंड लाके स्ट्रिंग्स डाल के अचानक फिर जो गाना बना, फिर वहां साबरी ब्रदर्स वहां सोनू जी सब मिलकर जो फिर वो जो हरा नाची है
0: क्या बात है।
1: हाँ उससे बोले ये क्या गाना मिल गया। और गाना तो कव्वाली का ट्रेंड शुरू हो गया था।
0: वाह।
1: तो बहुत मेहनत की मैंने इस गाने पर, आई टेल यू समथिंग, उसके अंतरे बनाते बनाते जावेद साहब ने कमाल लिखा, पिक्चराइज मेरे चुपचाप हुआ था और सब पर जो पिक्चराइज किया फरहान ने, इट बिकेम अ मैजिकल सॉन्ग।
0: बिल्कुल बिल्कुल। इसका ये ओपनिंग पीस सुनते हैं और उसके बाद एक बहुत ही नशीले गाने की बात।

विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। और अब इस गाने की बात, जिसके बिना ये गाना अधूरा, ये कार्यक्रम अधूरा। ये गाना ये दिखाता है कि अनु मलिक खुद को रीडिस्कवर करते रहते हैं, बदलते वक्त के साथ खुद को साबित करते रहते हैं। 70 के दशक के आखिर से शुरू हुआ ये सफर, 80 के दशक पर परवान चढ़ता है, 90 के दशक में रीडिस्कवर होता है, 2000 के दशक में वो बड़े बड़े छक्के मारते हैं और अपने आप को साबित करते हैं, और उसके बाद मोह मोह के धागे, यानी नई सदी में भी अनु मलिक का जादू कायम।

0: अनु जी, ये गाना तो मैजिक है। नए गीतकार वरुण ग्रोवर, शरद कटारिया की फिल्म, बताइए।
1: सबसे ज्यादा श्रेय जाता है YRF को
0: जी,
1: जिसके हेड हॉन्चो हैं हमारे फेवरेट्स, हम सबके फेवरेट आदित्य चोपड़ा साहब।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जिनका मुझे बुलावा आया। वो ज्यादा क्रेडिट लेना नहीं चाहते इस बारे में, बोलते मेरे बारे में ज्यादा मत बुला करो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि उन्होंने मुझे फोन करके मैसेज देके बुलाया। और शरद कटारिया साहब की स्क्रिप्ट सुनकर मैं गदगद हो गया, कमाल की स्क्रिप्ट
0: जी।
1: आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर ने जो काम किया है इसमें
0: जी,
1: मनीष शर्मा प्रोड्यूसर थे इसके, ये दोनों आए मेरे पास और आदित्य साहब ने बोला कि अगर आप इनको कन्विंस कर जाएं तो ये पिक्चर आपकी है ना, ये गाना करते हैं। मुझे जब सिचुएशन बताई तो मैं समझा, इन्होंने बताया कि हरिद्वार का सेटिंग है ये, मैं समझा, पता नहीं मेरे दिमाग में बनारस क्यों चल रहा था। और मैं अकेला रूम में बैठा हुआ तरह सोच रहा था। 4 घंटे चले गए, 5 घंटे चले गए, 6 घंटे चले गए, कोई रिएक्शन नहीं। तब दरवाजा खुलता है और शरद कटारिया साहब आते हैं, मनीष शर्मा आते हैं। मैंने ट्यून सुनाई, पहले तो कुछ बोले नहीं, फिर शरद जी बोले अगर हम कोई नया राइटर लाएं इसके अंदर तो आपको ठीक चलेगा। हमने पहले सोचा था, मैंने बोला भाई गुलजार साहब होंगे
0: जी,
1: बोला नया राइटर जरूर ले आइए प्लीज, आई एम गेम टू वर्क विद एनीबॉडी। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके इस प्रोग्राम के जरिए कि ये जो शब्द वरुण ग्रोवर ने मुझे दिए
0: जी,
1: ये मोह मोह के धागे,
0: बाद में तेरा चाव लगा के जैसे घाव लगा, वो भी
1: उन्होंने लिखा था
0: जी।
1: मैंने बोला ये लाजवाब राइटर है, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे।
0: वाह वाह वाह।
1: और जब तर्ज बनी तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मैंने मुझे वो सिंगर्स चाहिए जो मेरे साथ बैठे रिहर्सल करें। और इसका तो एक वीडियो भी बनाता है रिहर्सल का, जो बहुत लोकप्रिय हुआ है
0: जी जी।
1: कितनी मेहनत की हमने इस गाने के ऊपर। गाना जब रिकॉर्ड हुआ और जो पिक्चराइज हुआ, और आज मैं आपको बहुत खुशी से कहना चाहता हूं कि 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले
0: बिल्कुल
1: इस फिल्म को, इस गाने को, द बेस्ट लिरिक्स एंड द बेस्ट सिंगर मिला। ये अलग बात है कि अनु मलिक को भूल गए मुझे नहीं मिला उसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बेस्ट फिल्म भी मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार।
0: यस यस यस।
1: एंड 2016-17 की बात है ये।
0: और उस फिल्म के एक गाने में आपने 90s को रिलीव किया था, एक झलक सुनवाता हूं।
1: तुमसे मिले दिल में हुआ दर्द करार।

ये गाना भी अनु मलिक का। विविध भारती के स्टूडियो में ढोल बजने लगा।

0: अनुजी, अब बहुत कम वक्त बचा है, विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश कर रहा है, इतने सारे लोग और सभी आपके दीवाने, बताइए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि मैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा आभारी हूं, जिन्होंने मुझे अन्नू मलिक बनने का मौका दिया। मैं अपने देश का बड़ा आभारी हूं, जिस देश में मैंने जन्म लिया है, जहां मुझे ये कला मिली है। हर सुबह उठ के इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं और ऊपर वाले से कहता हूं कि भगवान, अगर दूसरा जन्म है तो इसी देश में हो, हिंदुस्तान में हो, क्योंकि सारी दुनिया में अगर नाम हुआ है तो इसी देश से हुआ है। मैं अपनी जनता का बहुत बड़ा आभारी, जिन्होंने मुझे हर तूफान में हर वक्त संभाला है।
0: अनुजी,
1: मुझे मेरे गानों को प्यार दिया है, मुझे इज्जत दी है। आज जितने भी मैं विविध भारती में आया हूँ, जितने भी मुझे यहाँ लोग मिले हैं
0: जी,
1: ये सब मेरी बहनें जिनको मैं देख रहा हूँ, इतना प्यार से गाने नाच रहे थे और इतने दिल से रिएक्शन दिया है कि विविध भारती का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया
0: जी।
1: आपका यूनुस भाई, जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, और मेरा दिल कहता है कि हमारी जनता को ये प्रोग्राम बड़ा पसंद आया होगा, और जरूर सीने से लगाकर इसको एक यादगार प्रोग्राम समझेंगे। 70 इयर्स इज नो मीन अचीवमेंट।
0: यस,
1: तो मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी 11 को अन्नू मलिक 50 साल कंप्लीट कर रहा है इंडस्ट्री में,
0: तब भी बैठेंगे और तब लंबी बातें करेंगे।
1: और 14 साल की उम्र से शुरू हुआ वह आदमी अपने बाजे को लेकर चला था मैं, और एक ही शब्द बोलता हूं,
2: ecosystem based on cattle farming, giving push to rural economy, says Union Cooperation Minister Amit Shah. Commerce Minister Piyush Goyal says India's free trade agreements to cover 75% of world economies. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completes 12 years today. Five Indian nationals rescued safely after Kuwait-flagged tanker struck by projectile in Strait of Hormuz. And on the final day of Asian Games, Indian men's cricket team bags gold with 19-run win over Pakistan in finals. In men's hockey finals, India to take on Malaysia in a short while. Now the news in detail. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that the Narendra Modi government is developing a complete ecosystem around cattle rearing, from converting cow dung into biogas and organic fertilizer.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें

0: गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भील दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भील दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में US इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
3: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अभी तक, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या GDP देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप विकसित देश, और उन सब की अगर GDP का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो
0: जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं। यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आइए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
2: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि यही में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपके पास है ना नहीं पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CPS में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जनरल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
3: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
4: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना

0: दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल SP सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में शुरू होगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज लेकर आई हूं एक खास मेहमान। वो है जाने माने लेखक, निर्देशक और एक्टर तिग्मांशु धूलिया जी। तिग्मांशु जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं हम।
1: नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
0: तिग्मांशु धूलिया एक लेखक, निर्देशक और अभिनेता जिनकी कलम में

0: हाथ की कहानियां हैं।
1: 28 बरियर, 7 पानिया गड्ढा पार करके सारा नेशनल चैंपियन माने, कौन ने पूछा? ये 3 स्टेट की पुलिस को चकमा देके एक किडनैपिंग कर लाई तो पूरा देश से पान सिंह नाम होगा।
0: जिनकी कैमरे में जिंदगी की सच्चाई है, अभिनय में किरदार की धड़कन, गैंग्स ऑफ वासीपुर, शाहिद, माझी द माउंटेन मैन और भी बहुत सारी फिल्में।
2: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाए।
0: हासिल से हासिल हुआ कामयाबी का सफर।

0: स्वर्ण कमल दिलाया, फिर तो साहब बीबी और गैंगस्टर, शागिर्द, बुलेट राजा, राग देश, मिलन टॉकीज जैसी बहुत सारी फिल्में उनके निर्देशन और लेखन से आई। तो आइए एक बार फिर स्वागत करें दिग्मांशु धूलिया का। दिग्मांशु जी, विविध भारती का ये 70वां स्थापना दिवस है और रेडियो से आपको बड़ा प्यार है, तो बताइए आज इस जश्न के मौके पर हमारे देश भर के श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एक तो मुझको इस अपनी इस वर्षगांठ में बुलाने के लिए विविध भारती में बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आप सबका। ये मेरी पहली बार नहीं है, मैं कई बार, 2-3 बार पहले भी आ चुका हूँ।
0: जी जी,
1: तो पता नहीं क्यों आप लोग मुझे बार बार बुला लेती हैं, इसका पता नहीं क्या कारण है।
0: क्योंकि आपको रेडियो से बहुत प्यार है और हम सबको आपसे।
1: हाँ, तो रेडियो का ये कि बचपन में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेडियो ही था, ट्रांजिस्टर, जिसको हम अपने सोते वक्त तकिए बगल में लगा के सो जाते थे, और हवा महल, और फिर बहुत सारे वो बिना का गीत माला, और फिर उसके बाद प्रायोजित कार्यक्रम भी होने लगे, मोदी कॉन्टिनेंटल और ये वो, टायर
0: छाया गीत
1: और तमाम। और तो एक तो भाषा अच्छी होती थी बहुत रेडियो की उस वक्त, उसने बहुत दिया
0: जी।
1: और हमें सिर्फ अपने वक्त के गानों से, अपने वक्त में जो हो रहा है सिर्फ उससे ही नहीं, जो पहले भी हो चुका है, जो जो जो, जो गाने या जो उस तरह के कल्चरल मोमेंट्स जो हैं, जो इतिहास से पहले भी दर्ज हो चुके हैं, उसके बारे में भी पता चलता था। संडे को कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे जो प्रायोजित होते थे
0: जी।
1: और बहुत बहुत, इट वाज अ, इट इज स्टिल अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, बहुत कुछ सिखाया है रेडियो ने
0: जी। बिल्कुल, तो रेडियो सुनते सुनते आपने अपने भीतर सपना कैसे बुन लिया एक निर्देशक बनने का, एक्टर बनने का और लेखक बनने का, कैसे आपके भीतर बीज बन पा?
1: वो रेडियो की वजह से नहीं हुआ। रेडियो उस वक्त हम लोग जब छोटे थे तो हम इलाहाबाद में पढ़ा हूँ मैं, तो हमारा एक बैंड भी होता था, तो फिर वो युवाणी में पहले तो जो बच्चों का कार्यक्रम होता था संडे को,
0: बाल संग, नन्ही दुनिया वगैरह,
1: उसमें उस पे छोटे छोटे हम लोग जाते थे वहीं पे आकाशवाणी, तो वहाँ पे भैया, कौन भैया होते,
0: बड़े भैया जी,
1: बड़े भैया जी और दीदी होती थी
0: जी जी,
1: और सारे बच्चे होते थे, कोई कविता सुनाता था, कोई कहानी सुनाता था, कुछ क्विज होता था, वहां से शुरुआत की मैंने। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो युवाणी में कई बार पार्टिसिपेट किया
0: जी,
1: और उसकी वजह से फिर थिएटर में घुस गया। मेरा एक जरिया बना, पहला जरिया तो रेडियो ही बना कि अपनी अपने अंदर थोड़ी बहुत जो भी कला थी बचपन में जो होती थी उसको एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म जो पहली बार मुझको मिला वो ये
0: जी रेडियो ही मिला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो ही मिला।
0: और विविध भारती से हम सबको खासा लगाव रहा है, हम सबका बचपन ऐसे ही बीता है कि हम विविध भारती सुन सुन के अपने भीतर सपनों के बीज रोपते रहे हैं। आपने इलाहाबाद का जिक्र किया, तो इलाहाबाद की बहुत सारी यादें हैं, हम तो सुनते हैं कि आप इलाहाबाद में ही रहते हैं, मुंबई में शूटिंग करते हैं, मुंबई आते हैं शूट करते हैं और इलाहाबाद चले जाते हैं, तो कोई खास याद इस वक्त हो आपके जहन में तो आप साझा करना चाहेंगे विविध भारती के श्रोताओं से?
1: मैं जो भी हूँ शहर की वजह से हूँ,
0: और
1: क्या बात है? वो शहर जो है, मैं एक सैकड़ों बार ये बात बोल चुका हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस शहर में पैदा हुआ, और जिस तरह का माहौल मिला दिया उस शहर ने मुझे, तो वो उसी की वजह से मैं जो भी हूँ, और भी सभी लोग को अपना शहर पसंद आता है मैं यहाँ, लेकिन इलाहाबाद बहुत खास है, तो जो लोग इलाहाबाद में नहीं भी पैदा हुए वो भी चुप हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं इलाहाबाद से, तो समझ जाते हैं वो लोग बैकफुट में होना चाहिए उनको।
0: जी बिल्कुल, इलाहाबाद संगम, नौका विहार, वहाँ का मन कामेश्वर मंदिर के किनारे से।
1: मैं तो अभी परसों ही लौटा इलाहाबाद से डुबकी लगा के।
0: अच्छा, तो अभी भी जाते हैं तो संगम तीरे जाते हैं, और
1: पितृपक्ष शुरू हो गए थे इसलिए था।
0: जी जी, इलाहाबाद की एक बड़ी मशहूर शूटिंग है, बहुत ही मशहूर फिल्म है जिसने आपको बहुत कुछ हासिल कराया, और आप फिर कहेंगे कि हमने बहुत कुछ बोला है, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं, जो आपकी ये बातें नहीं जानते हैं, उनके लिए बताइए कि फिल्म हासिल जो आपकी कामयाब पहली फिल्म थी, उसके पहले तो आपने शुरुआत कर दी थी।
1: नहीं, हासिल मेरी पहली फीचर फिल्म हासिल ही थी।
0: अच्छा, तो हासिल से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए, शूटिंग से जुड़ी हुई, हमने सुना सुना है कि फिल्म हासिल ने आपको कामयाबी दी और साथ में उसने आपको रुलाया भी था, वो रोने वाली कौन सी घटना है, जरा वो घटना बताइए हमें।
1: जैसा मैंने कहा इलाहाबाद टेस्ट करता है वो

0: शहर वो मुश्किल शहर है, अगर आप वहां पे किसी तरह का वृक्ष बोना चाहे या पौधा बोना चाहे तो उस शहर की मट्टी पूछती है कि तुम्हारे औकात है करने की
1: जी,
0: तो
1: क्या बात है।
0: उसने उस शहर ने मुझे टेस्ट किया, तो मैं तो पहली फिल्म थी तो मैं बहुत एक जवान बहुत एक्साइटेड बच्चे की तरह अपना शहर जा रहा हूँ, शूटिंग करूंगा अपनी पहली फिल्म की। क्लाइमैक्स मैंने कुंभ मेले में ऑलरेडी सेट कर दिया था, जिसको मैं पहले शूट कर चुका था 2000 वाला जो कुंभ मेला था। तो बट वहाँ के लोग जो थे उनको लगा कि मैं शहर को वहाँ की यूनिवर्सिटी को एक बहुत गलत अंदाज से पेश कर रहा हूँ, उनको ऐसा लगा
1: जी।
0: तो मैं उनसे कहता रहा भाई रामायण में रावण भी है राम भी है, मैंने रावण की सीन पहले शूट कर ली है, तो उन्होंने वो देखा तो उनको लगा कि ये तो ऐसी फिल्म है
1: जी।
0: अब तो मेरा बड़ा विरोध हुआ वहाँ बहुत बुरी तरह, मतलब मुझे बहुत बेइज्जत किया गया और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, और मैं पहली फिल्म थी तो उस तरह से लोग मुझे उस तरह से तब जानते भी नहीं थे, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। बट फिर उन्होंने, मैंने कहा कि ये शहर मेरा टेस्ट ले रहा, तो जिस दिन उन्होंने रोकी मेरी शूटिंग मैं कहीं और जाके गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह मैंने वहां शूटिंग की, मैंने एक भी दिन काम नहीं रोका क्यों, मुझे था कि काम रुकेगा प्रोड्यूसर रुकेगा अपने शहर लेके गए उसका नुकसान होगा, तो मैंने कहा शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं भी अगर वो इलाहाबादी मेरे खिलाफ थे तो उनको नहीं पता मैं भी
1: एक इलाहाबादी
0: से ही लड़ रहे
1: जी,
0: और वो हार गए सब। मेरी फिल्म रिलीज भी बनी, उससे सब कुछ दिया, सक्सेसफुल रही
1: और लोगों ने बहुत सराहा, तो वो इसी वजह से रोए थे आप, मतलब ये
0: हाँ रोया तो
1: रोने वाले
0: हाँ, मुझे वहां पे डीएम को दफ्तर में बुला लिया
1: जी,
0: और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने पुराने पुराने दिग्गज सब एक्स प्रेसिडेंट या नेता जो भी थे वो आ गए डीएम के ऑफिस में, और उन्होंने कहा देखिए ये तो शूटिंग वाले हैं ये तो चले जाएंगे आपको यही रहना है
1: जी जी,
0: और ये लोग यात्री होटल में हैं तोड़ देंगे उसका शीशा उनकी गाड़ियां, उस लड़के को सर मुंडवा के गधे पे बैठा के शहर में घुमाएंगे।
1: ओ बाप रे
0: तो मुझे तो आंसू आ गए मेरे, मैं अकेला हूँ, ये कम से कम 25-30 लोग डीएम ऑफिस में, मैं इसको डिफेंड करने वाला कोई भी नहीं। तो फिर मैं रो दिया, फिर लेकिन मैं निकला बाहर, मैंने शूटिंग नहीं रोकी। इवेंचुअली एक देर बात हुई, मुझे फोन करने पड़ा,
1: तो मतलब आंसुओं की उस उन लड़ियों ने मुस्कान की और खुशी के मोती आपके जीवन में दिए,
0: और तो ही
1: है। बहुत सारे मोतियां। तो यहाँ पर बात हासिल की चली है, तो क्या हासिल फिल्म का गाना सुन लिया जाए
0: जी? बिल्कुल,
1: और आपका पसंदीदा गीत है शायद ये
0: जी जी,
1: सुनते हैं।

0: तो ये हासिल फिल्म का गाना था, उदित नारायण और साथियों की आवाजें थी, सोनाली वाजपेयी की आवाज थी साथ में, और जतिन ललित का संगीत था। और कुछ श्रोता भी तिग्मांशु जी लिख रहे हैं और आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, ये चार शब्द सुबह सुबह घरों की खामोशी में पिछले 70 सालों से जीवन रस घोल रहे हैं। रेडियो की धीमी आवाज, शहनाई की मंगल धुन आज भी करोड़ों भारतवासी के हृदय में अपनी पहचान बनाए हुए। विविध भारती की खासियत यह है कि उसके दर्पण में हर किसी के सपनों की आहट, ख्वाहिश की झिलमिलाहट और दूर तक अपने साथ ले जाने की फितरत शुमार है। एक श्रोता की ओर से सवाल है आपसे, तो पहले मैं जतिन ललित के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं श्रोता का सवाल शामिल करूं?
1: सवाल ले लेते हैं पहले
0: जी। हमारी एक श्रोता है, इन्होंने लिखा है कि तिग्मांशु जी, आपने इरफान खान के साथ काफी फिल्में की हैं, उनके साथ फिल्म मेकिंग से संबंधित ऐसा कौन सा लम्हा है, कौन सा पल है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है?
1: अब ऐसे मोमेंट्स और लम्हे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो खास बात हमारे कॉम्बिनेशन में ये थी कि आप जब भी किसी एक्टर के साथ काम करते हैं और ठीक है, आप उससे मिलते हैं पहली बार, उसको स्क्रिप्ट सुनाते हैं, तभी शायद आप जान पहचान होती है, और फिर शूटिंग के दौरान, लेकिन एक आप वो आपका दोस्त नहीं होता है।
0: जी जी,
1: वो एक साथ में एक फिल्म बनाने में जो एज ए टेक्नीशियन है वो एक्टर है, वैसा ही रिश्ता रहता है। और एक्टर्स क्योंकि थोड़े नाजुक मिजाज होता है इनका
0: जी,
1: तो आप उनको बहुत सहम के उनके साथ बिहेव करते हैं
0: जी,
1: कि कहीं कुछ ना हो जाए। इरफान के साथ ये था कि मेरा दोस्त था वो, तो मैं दोस्त के साथ फिल्म बनाता था
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं अकेला नहीं बना रहा होता था, मेरे साथ वो भी रहता था, उसके साथ मैं कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकता था, बाकी एक्टर के साथ मैं ये फैसिलिटी नहीं है मेरी। तो उससे थोड़ी मेरी उसकी जो फिल्में रही हैं
0: जी,
1: वो थोड़ी ज्यादा लोगों के
0: संवेदनशील भी रही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो बात लोगों तक पहुंची है
0: जी। और इरफान से आपके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो कुछ पारिवारिक इरफान की जो निजी बातें हैं, उनकी फिल्मों के अलावा कौन सी बात आपको याद आती है? आज इरफान नहीं है लेकिन हम सब के दिल के करीब हैं वो ऐसा लगता है कि एक्टिंग नहीं, सामने बातचीत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, मेरे भाई जैसा था वो, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो, जो कि दूसरा है नहीं उसके जैसा कोई
0: जी।
1: तो उसके जाने से मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ
0: जी,
1: और ये सच बात है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और फिर पारिवारिक जो आपने कहा कि मतलब घर बिल्कुल पारिवारिक माहौल, मतलब कि मेरी हम मैं इरफान हमारे और भी 2-3-4 दोस्त जो करीबी थे, ब्रिजेंद्र काला ये सब जो थे, तब बहुत मिला करते थे हम लोग सब बाप बने हैं, मतलब सब 5-6 महीने के गैप में सबके सब
0: जी जी,
1: मतलब सबकी बीवियां मोटी मोटी
0: अच्छा
1: स्वीट और इरफानी, उनको गाड़ियों में बैठा के घुमाना या उनको जैसे चाट वाट खाने का बहुत मन करता है ना, तो वो सब इरफानी करता था
0: जी जी,
1: 3-4 महिलाओं को बैठा के और घुमाना, और फिर सबके 5 बच्चे हुए, सब 4-5 महीने 3 महीने के गैप में, तो इससे इतना बड़ा परिवार हो गया हमारा
0: जी। बिल्कुल, ब्रिजेंद्र काला का आपने नाम लिया, तो वो तो आपकी फिल्म में भी पत्रकार की भूमिका निभाई थी।
1: हाँ, मेरा कजन ब्रदर है,
0: तो जो पत्रकार की भूमिका थी वो बड़ी अलग किस्म की थी।
1: हाँ।
0: तो क्या सचमुच वो ऐसे हैं या उस फिल्म में आपने शामिल किया था, उनका कैरेक्टर गढ़ा था?
1: वो तो बहुत अच्छा एक्टर है, वो थिएटर का एक्टर है, बहुत पुराना एक्टर है, और उसको कुछ बताने की जरूरत मुझे खास पड़ी नहीं, थोड़ी बहुत उसकी ये कि दीवार पे लग के लिखो वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा, और डायरेक्टर किस काम का है, नहीं तो अपने आप में बहुत ही माहिर एक्टर है वो
0: जी जी। एक्टिंग की बात चली कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप खुद भी तो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारी फिल्में की हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो किरदार है रामा धीर सिंह
1: जी जी,
0: तो वो तो नाम से ही मशहूर हो गया था, तो कैसे आप वहां पहुंचे, मतलब एक्टिंग आगे एक्टिंग ही तो नहीं कर...

0: ना चाहते हैं,
1: नहीं
0: मतलब हम लोग चाहते हैं कि आप डायरेक्ट बताओ, डायरेक्टर फिल्में देते रहे।
1: एक्टिंग में मुझको मतलब वो मैं ऐसी पता नहीं क्यों वो अपना अनुराग और कश्यप और जो कास्टिंग डायरेक्टर है हमारे मुकेश छावड़ा साहब, उन्होंने पता नहीं क्या उनके जहन में आया कि ये रोल मुझसे कराना है। मैं एक्टर तो था नहीं, मतलब एक्टर पे था, ड्रामा स्कूल में मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की, लेकिन मैंने कभी एक्टिंग के परसू नहीं किया। मैं फिल्म डायरेक्शन में आ गया, कंप्लीटली अलग
0: जी, जी।
1: स्ट्रीम। उन्होंने बोला, मैंने हाँ कर दी, मुझको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा रोल है ये वो, तो ऐसे मिल गया और मैंने कर दी। अब हमेशा एक्टिंग में, कल भी बच्चों के साथ एक वर्कशॉप किया था, मैंने कहा एक्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कॉन्फिडेंस। वो बहुत तरह एक चीज नहीं होती, बहुत चीजों से आती है, थोड़ा एक्सपीरियंस से आती है, थोड़ा रिस्पेक्ट से आती है, थोड़ा आपने अच्छा काम कर लिया हो तो उससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हो चुका था। उस यूनिट पे जब गया तो सब दोस्त थे, मनोज वाजपेयी हो, ये वो नवाज होगा, तब सब दोस्त हैं
0: जी।
1: अनुराग कश्यप दोस्त है आपका, कैमरामैन को आप जानते हैं, तो मुझको कोई ऐसी जगह नहीं गिरी कि अरे मैं अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ कर रहा तो शायद मैं घबराता थोड़ा।
0: तो
1: इसलिए वो हो गया कॉन्फिडेंस में और
0: जी
1: अच्छा
0: तो
1: हो गया।
0: वो जो थप्पड़ मारे थे आपने फटाफट, वो असली वाले थे कि नकली थे? क्या हुआ था फिर उसके बाद?
1: वो विपिन को जब मारता हूँ कहाँ गाड़े थे
0: उस
1: तो मैंने विपिन को बोला, विपिन मेरा सीनियर है नेशनल स्कूल ड्रामा से, मुझसे तो 3-4 साल सीनियर है। तो मैंने विपिन को बोला, अभी मैंने विपिन यार से जैसे हम लोग फिल्म नहीं मारते हैं वैसे मार दो क्या? कहे नहीं नहीं मारना मारना। मैंने कहा यार लग जाएगी, मेरा थोड़ा भारी हाथ है। कहे नहीं नहीं कोई नहीं,
0: अच्छा
1: कह दिया तो मैंने मार दिया।
0: फिर बाद में झगड़ा नहीं हुआ?
1: नहीं नहीं झगड़ा बिल्कुल।
0: अच्छा ओके। और बात एक्टिंग की चली है तो शाहरुख खान के साथ भी तो आपने एक फिल्म की है, दिल से।
1: हाँ डायलॉग्स लिखे थे उसके
0: जी,
1: तो मैं पूरी शूटिंग में था
0: जी
1: उस दिल से की जी।
0: तो शाहरुख खान के साथ लिखना आपके लिए एक अलग अनुभव रहा होगा, कुछ अनुभव?
1: मैं शाहरुख के लिए नहीं लिख रहा था, मैं मणि सर के लिए लिख रहा था, मणि रत्नम जी के लिए लिख रहा था। मैं लिख क्या रहा था, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा था एक्चुअली में
0: जी।
1: वो अंग्रेजी में बता देते थे कि ये चाहिए मुझको और उस इतना समझ के कि शाहरुख का किरदार ऐसा है, मनीषा का जो कैरेक्टर्स को इतना तो समझ थी मुझे
0: जी,
1: तो उस किरदार को समझते हुए मैंने उस तरह की हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया और उस जो अंग्रेजी में मणिसन ने लिखा था उसको मैंने एक अच्छे ढंग से अडेप्ट कर लिया, बस ये काम था मेरा
0: जी। तो इस समय उनकी फिल्म का जिक्र चला है तो यहाँ पर आपको कौन सा गाना हम सुनवाएं? हालांकि आपकी पसंदीदा गानों की हमने लिस्ट बनाई है तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, कुछ पुराने दौर में जाना चाहते हैं या नए दौर के गाने सुनना चाहते हैं?
1: ये तेरे मेरे सपने का गाना
0: जी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज है, ये गाना हम सुन लें
1: जी। बिल्कुल,
0: नीरज के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत है और आपकी जिंदगी में गानों की बहुत दखल रही है तो इस गाने के बाद हम कुछ गीत की बात करेंगे, कुछ पुराने गानों की।

0: तिग्मांशु जी, ये गाना हमने आपकी ओर से नजर किया अपने श्रोताओं को, और आपकी एक लंबी यात्रा है, आपका परिवार इलाहाबादी है मन से, आप अक्सर कहा करते हैं, तो एक बार फिर इलाहाबाद की गलियों में चलते हैं और याद करते हैं आपकी माँ को। आपकी माँ से जुड़ी हुई कौन सी याद है जो आप साझा करेंगे? संस्कृत की प्रोफेसर थी वो?
1: जी जी, मेरे पिताजी वकील थे, बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी बने। वो बहुत ज्यादा दिन जी नहीं पाए वो, बट मदर मेरी पढ़ाती थी और दोनों चले जाते थे अपने वो हाईकोर्ट या अपने स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए। हम तीन भाई थे तो हमारे घर में एक था आनंद कुकर, और वो चीज मैंने किसी और घर में देखी नहीं।
0: अच्छा,
1: वो इतनी खूबसूरत चीज थी कि जैसे उस जिसके टिफिन बॉक्स होता ना, जैसे
0: जिसमें
1: हम लंच लेके ऑफिस में लोग जाते हैं, दो तीन उसमें वो होते हैं दाल चावल डब्बे होते हैं, उसमें बड़ा सा एल्यूमिनियम का था और नीचे उसमें आप कोयला जला दीजिए।
0: अच्छा
1: हाँ, और इसलिए बड़ा स्मोकी फ्लेवर भी होता ना, और जो नीचे उसमें दाल रख लीजिए, फिर थोड़ा चावल रख दीजिए, फिर जो सब्जी उबल जाए घर आए, सीधे काटे छोंक दे बन गई, उस तरह की आलू या परवल या इस तरह की चीजें आप ऊपर रख दीजिए। और हम लोग आते थे 1:30-2 बजे स्कूल से, तो और फट से बना बना खाना मिलता है गरम गरम। तो ये आनंद कुकर बहुत ही ब्यूटीफुल चीज थी, वो पता नहीं गायब होगी, लोगों को रखना चाहिए अपने घर में। उसका तो फ्लेवर भी खाने का बहुत अच्छा आता है।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: तो कोयले में पका हुआ एक तो इधर ही बसता है और बहुत सच्चा डिलीशियस खाना बनता है। तो मदर फिर आती थी इलाहाबाद की गर्मी, तो आपको पता ही आप भी वहीं की हैं।
0: बिल्कुल, भीषण गर्मी,
1: भयंकर गर्मी। तो तब वो रिक्शे में आती थी, एक रिक्शा वाला बेचारा उनको ढो के सबको, तब तभी रिक्शा ही चलता था। तो वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर था, नए नए फ्लैट सिस्टम इलाहाबाद में आया था, तो हमारे घर वालों ने खरीद लिया था एक फ्लैट, आज भी है वो फ्लैट। तो दिन में आती थी 3:30-3 बजे में, भीषण गर्मी, और रिक्शे वाले को ऊपर ले आता, रिक्शे वाला पसीने से लथपथ होता था।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन उनसे मैंने एक चीज की, जब वो आती थी मतलब कहते रिक्शे वाले को पानी पिलाओ, पानी पिलाने के पहले उसको गुड़ दो।
0: क्या बात है, ये वहाँ का चलन है।
1: मैं बड़ा सा एक ढेला गुड़ का उसको रिक्शा वाले को देता था, वो पहले बेचारा गुड़ खाता था और फिर वो ठंडा पानी पीता था और बहुत दुआएं देके जाता था। ये हम हर रोज होता था।
0: क्या बात है।
1: तो ये चीज मुझे बहुत याद रही अपनी मदर की, कि
0: ये सिखाया। और जी, और आपकी फिल्मों को जब उन्होंने देखा, निर्देशन किया, तो उन फिल्मों में कुछ बारीकियां वो समझाती थी?
1: उनको प्रॉब्लम होती है मेरी फिल्मों से, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़ा खून गोलियां बहुत चलती है, तो उनको इस बात का वो उनको वो है, वो एतराज करती है इस पे, कैसी फिल्म बनाते हो।

0: तो आपने बात मानी नहीं उनकी एक कोई प्रेम कहानी लेकर आइए और बड़ी संवेदनशील जहाँ प्रेम आलाप हो जो इलाहाबाद की गलियों में होता है।
1: हाँ नहीं, पान सिंह तोमर जैसी फिल्म तो उनको भी अच्छी लगी थी, उसमें फिर अवार्ड अवार्ड कभी मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाती है वो।
0: किसे नहीं अच्छा लगता है, पान सिंह तोमर एक बेहतरीन फिल्म थी, हम सब ने देखी है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सचमुच इरफान की एक्टिंग, जब भी पान सिंह तोमर की बात चलती है तो इरफान का जिक्र ना हो ये हो ही नहीं सकता। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने तो ये इलाहाबाद का जिक्र किया, माँ का जिक्र किया, और आपके भाई भी अभी जज है इलाहाबाद में।
1: वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे और लास्ट और अगस्त में रिटायर कर गया
0: जी। तो वो जो परिवार इतना आपका क्या कहते हैं इलाहाबाद में जो भाषा कहते हैं दबंगई, तो वो दबंगई आपकी फिल्मों में भी कहीं आप लाते हैं। और छोटे शहरों के जो कस्बे के संवाद होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, किरदार होते हैं, वो आपकी फिल्मों में खूब दिखाई देते हैं, तो वो क्या इलाहाबाद की देन है कि आपके निर्देशक की कलाबाजी है?
1: नहीं, एक बचपन से मुझे फिल्में ही हुई पसंद थी जिसमें थोड़ा से इस तरह के एलिमेंट्स हों जो किसी के आदेश का पालन नहीं करते वाले किरदार जो होते हैं, जो किसी से दब के नहीं रहते हैं, क्योंकि इलाहाबादियों में एक बात होती है दब के नहीं रह सकता किसी से। तो पता नहीं क्या बात थी, मुझे फिल्में भी वैसी अच्छी लगती थी, मुझे लव स्टोरीज पसंद ही नहीं आती थी। तो ये टेस्ट वाली बात है कि आपको कौन सा खाना पसंद है, उसी तरह की चीज थी मुझको थोड़ा, जिसमें पोस्टर में अगर पिस्टल है तो वो पिक्चर देखनी है, इस तरह का था। वही चीज चली आ रही है तो मैं बनाता भी वैसी फिल्में हूँ। लव स्टोरीज मैंने शायद एक ही बनाई, वो चली हुई नहीं
0: साहब वो जी, और उसमें वो गाना भी खूब मशहूर हुआ था, आंखें भी दिल की जुबान,
1: ये तो हासिल,
0: तो हासिल का है। और साहब बीबी गैंगस्टर में भी खूब गोलियां चली हैं
1: जी, जी, जी।
0: तो साहब बीबी गैंगस्टर से जुड़ी कुछ बात हमारे श्रोताओं को बताइए, शूटिंग के समय किस तरह का माहौल आप रचते हैं, आपका जो निर्देशक का?
1: साहब बीबी के मैंने तीन पार्ट बनाए थे, तो जो पहला पार्ट बन रहा था जब बनाया था तो हमारे पास कोई काम नहीं था किसी के पास, पान सिंह तोमर बन चुकी थी और फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, और मैं तो वेट करता था कि पिक्चर रिलीज होगी, अगर कुछ हुआ तो फिर अगली फिल्म मिलेगी, ऐसे ही चलता करियर, और फिल्म रिलीज ही नहीं कर रहे थे वो लोग। हम ऑफिस जाते थे, कुछ नहीं करते थे, फिल्में देखते थे और टीटी खेलते थे, चले आते थे, तो ऑफिस में कई लोग आते थे, रणदीप हुड्डा भी आता था, वो भी टीटी खेलता था हम लोगों के साथ, और जिमी तो खैर दोस्त तो आता ही था। तो फिर सोच, मतलब उसी वक्त ये डिजिटल नेगेटिव गया और डिजिटल आया हिंदुस्तान में, जब डिजिटल पे शूट करते हैं ना सब कुछ
0: जी जी,
1: तो उससे कॉस्ट बहुत कम हो गई फिल्म बनाने की, बहुत ज्यादा। तो मुझको लगा कि मैं डिजिटल पे, मैंने कहा 1.5 करोड़ में फिल्म बना दूंगा, किसी को देगी नहीं पैसा, जो भी खाना होने का खर्चा है लोगों, थोड़ा बहुत करके 1.5-2 में बना दूंगा। और उल्टी बही गंगा, हमको, हमने पहले टाइटल डिसाइड किया साहेब बीवी, और मुझको साहेब बीवी गुलाम का एक इंडियन मॉडर्न वर्जन बनाना था
0: जी जी जी।
1: वो बहुत अच्छी फिल्म है, सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो पुनः गया गुलाम नहीं गैंगस्टर, अच्छा टाइटल, पहले टाइटल आया, फिर उस तरह की लोकेशन ढूंढने गए, जब लोकेशन मिली तो लोकेशन के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी गई, उल्टा, पहले तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है फिर जाते हैं हम लोकेशन ढूंढने, यहाँ उल्टी भाई सब बड़ी गंगा
0: जी।
1: ये कहकर हमने वो फिल्म बना दी और वो पिक्चर ने बहुत क्रिटिकल अक्लेम और चली भी पिक्चर वो
0: जी,
1: और उससे उसकी वजह से फिर सेकंड भी आई और फिर थर्ड भी आई
0: जी। तो तीनों को बनाने में जो कि पहली फिल्म पहली से, मतलब दूसरी फिल्म पहली से और अच्छी हो और उत्तम हो, तो उसके लिए क्या खास ख्याल रखा आपने?
1: कुछ ऐसा ख्याल, मुझको तो उसी दुनिया में बनानी थी, कहानी का ही हर पहले का ही एक्सटेंशन था, सेकेंड और थर्ड भी। तो उसे सिर्फ गैंगस्टर बदलते हैं, पहली वाले में रणदीप हुड्डा गैंगस्टर थे, सेकंड वाले में इरफान था। तो पहली भी चल गई थी और तो सेकंड वाले में थोड़ा हमको मिल गया स्टूडियो फट से, बहुत झंझट नहीं हुआ
0: जी जी,
1: थोड़ा बजट भी थोड़ा बढ़ गया, तो उसमें थोड़ा सा आपने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया पोलो मैचेस, जितने प्रिंसली वाले जो पोलो खेलते हैं उस तरह के मैचेस, और ये वो थोड़ा गानों में खर्चा ज्यादा, वो सब किया आपने सेकंड में
0: जी। एक झलक सुनते हैं गाने के, साहबीबी और गैंगस्टर, नूरा सिस्टर्स की आवाज में।

0: ये साहबीबी और गैंगस्टर फिल्म का गाना था नूरा सिस्टर्स की आवाज में, और तिग्मांशु जी की ही ये फिल्म है। तिग्मांशु जी, हमारे बहुत सारे श्रोता विविध भारती के बुक पेज से जुड़े हैं और आपसे बहुत सारी बातें पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं। एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आपने अभिनय और निर्देशन दोनों में काम किया है, कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे काम करने में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या महसूस होता है?
1: दोनों अलग अलग चीजें हैं, अंतर क्या बहुत ही दोनों, मुझे मजा कैमरे के पीछे ज्यादा आता है, मुझे डायरेक्शन करने में ज्यादा मजा आता है। एक्टिंग मैं करता हूं क्योंकि मैं बाय मिस्टेक एक्टर बन गया इसी तरह से, और वो लोगों को पसंद आ गया तो अब मुझे कभी कोई रोल ठीक ठाक होता है या पैसे थोड़े ठीक ठाक मिलते तो मैं रोल कर लेता हूँ, बाकी मुझे बहुत शौक नहीं है एक्टिंग करने का।
0: जी,
1: दुनिया का सबसे आसान काम है एक्टिंग।
0: अच्छा, तो उस समय आपका निर्देशक भी काम करता है आपके भीतर कि जो निर्देशक बोलता है वही करते हैं?
1: जी नहीं, आप उसको स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते कि आप कंप्लीटली स्विच ऑफ, तो लेकिन ये है कि डायरेक्टर कोई और होता है तो मैं ज्यादा सवाल जवाब करता नहीं हूँ। अंटिल एंड अनलेस बहुत ही मेजर कोई प्रॉब्लम लग रही है कि जो वो डायरेक्टर समझ नहीं पा रहा, तब मैं कभी कभी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर वो अड़ा रहे तो मैं डायरेक्टर की ही बात मानता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे एक्टर भी ऐसे ही करें, तो मैं भी डायरेक्टर की ही बात मानता हूँ, माननी भी चाहिए
0: जी।
1: तो लेकिन एंजॉय मैं ज्यादा डायरेक्ट करना करता हूँ
0: जी। एक श्रोता कह रहे हैं कि अवधि में कुछ बोल के बताइए।
1: अरे कहा बताई भैया, उन्होंने एक सवाल बढ़िया से पूछो तो बताई फिर तुमको।
0: तो बतावे कोनो शूटिंग से जुड़ी हुई कोनो बात याद हो तो बताओ जे।
1: अरे अब शूटिंग इतनी पिक्चर बन गई, इतने कांड हुए हैं और इतनी कहानियां हैं कि सुबह से रात हो जाएगी।
0: तो एक आध कोनो छोटा सा अंश बता दे ताकि हमारा श्रोता खुश हो जाए।
1: नहीं ऐसे जब बहुत कुछ होता था कि एक बजे से पान सिंह तोमर की एक बार शूटिंग कर रहे थे हम लोग चंबल में, तो बहुत खूबसूरत जगह है चंबल, बहुत ही वो नदी इतनी खूबसूरत।

0: है, इतनी साफ, इतनी आप उसको आप ऊपर से देखें बोट से तो आपको नीचे तक दिखाई देता है,
1: ट्रांसपेरेंट है
0: एकदम, आपको नीचे कछुए और ये सब चीजें तैरती हुई दिखाई देंगी, ब्यूटीफुल रिवर। और साथ में वो चंबल के घाटियां और रमेंस जो है, तो शूटिंग करते थे फिर सोचते थे यार, क्योंकि सारे दोस्त तैयार है, इतनी 100-150-200 की यूनिट है, हम लोग सोचते थे यार एक जैसे की जगह शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो हमने कहा साहब मैं इरफान हूं, मैंने कहा यार रात को ना बैकअप के बाद यही मंदिर बनाएंगे,
1: क्या बात है
0: तो यही बैठा जाएगा,
1: डर नहीं लगता था रात की शूटिंग में
0: उस, तो पुलिस तो रहती थी हम लोग के साथ, लेकिन हम लोग सोचा लगे बैठेंगे अपना कुछ मजा वजा करेंगे यही आसपास, खाना वाना कहीं बनवा लेंगे गांव में, और पूरी तैयारी के साथ, और बहुत कैसे जिस कैसे जल्दी पैकअप हो और कैसे हम लोग सब रिलैक्स कर रहे हैं नदी के बगल में, घड़ियाल बहुत है वहाँ, चंबल जो नदी है उसके कट पे एलिगेटर्स जो है बहुत सारे हैं,
1: जी जी,
0: ऐसे मुंह खुले हुए सब लेटे रहते हैं सब। तब तक खबर आई, हमने पूरा इंतजाम कर लिया कि आग वाग का सबका, हर तरह की आग का, तो फिर पाया कि देखो शूटिंग देखने के लिए आते हैं ना बहुत सारे लोग, कौन क्या है उसमें क्या मालूम, कहते हैं नहीं डकैत लग गए हैं यहाँ पे 3-4 और आप लोग ये सब एंजॉय करना भूल जाइए, चुपचाप गाड़ी में बैठिए होटल जाइए। तो वही किया, नहीं तो पता चला कि जो हीरो है उनको उठा के ले गए, पकड़ बन गए, वो हम उनकी रैंसम दे रहे हैं वो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं शूटिंग के दौरान, आपको क्योंकि लोकेशन नहीं होती है, आप थोड़ा ज्यादा एडवेंचरस होना चाहते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे किस्से इस तरह के,
1: जी जी
0: बहुत है। लेकिन डाकू आते थे हमारी शूटिंग देखने।
1: अच्छा हाँ, तो कभी आपको उनसे डर नहीं लगा, डराया धमकाया नहीं?
0: इस तरह के थोड़ी होते हैं
1: जी,
0: इस तरह के थोड़े गधे बेवकूफ थोड़ी होते बाकी लोग, लग
1: जी
0: उनको अगर किसी को किडनैप करना हो तो पूरे प्लानिंग के साथ आएंगे तो करेंगे, लेकिन ऐसे वो किसी को
1: हार्म नहीं पहुंचाते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते।
0: अब वो पूरे एरिया में सब घर हर घर में बंदूकें हैं, क्या करेंगे डाकू परेशान।
1: और आप जैसे जो इलाहाबाद की जो दबंगई है, दबंग किस्म के इंसान तो डर ही नहीं सकते, ये भी बात,
0: ऐसी बात नहीं है, डर तो लगता है, सबको लगता है, मुझको भी लगता है
1: जी,
0: और लगना भी चाहिए,
1: बिल्कुल सही बात है। खतरों से खतरों का सामना करना ठीक है, लेकिन खतरों के खिलाफ खड़े होके अनायास मोर्चा लेना भी ठीक नहीं होता जी। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आज के दौर में जब सिनेमा तेजी से बदल रहा है, तो आपको लगता है कि कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसे प्रस्तुत करने का तरीका?
0: फिल्म चलने के पीछे, अच्छी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों पे बात बोल सकता हूं। देखिए फिल्म के चलने के पीछे अच्छी कहानी हो जरूरी नहीं है
1: जी, कौन सी फिल्म चल जाए कुछ पता नहीं,
0: नहीं नहीं नहीं, उस पिक्चर का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपको क्या चाहे कैसी भी कहानी हो, सिंपल कहानी हो, लेकिन उसको जिस तरह से आप कह रहे हैं वो अंदाज आपका, उस फिल्म की पैकेजिंग, किस तरह से टाइटल्स आ रहे हैं, किस जगह पे गाना आ रहा है, स्क्रीन प्ले जिसे कहते हैं हम, मंजर कशी जिसे जावेद साहब तो पूछा गया था कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में फर्क क्या है, तो स्टोरी इज व्हाट एंड स्क्रीन प्ले इज हाउ, तो आपका अगर हाउ बहुत अच्छा है तो एक कमजोर या बहुत ही सिंपल सी सामान्य सी कहानी भी अच्छी फिल्म हिट बन सकती है। लेकिन अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म में तो यह है कि कहानी अगर हो तो फिर वो यादगार बन जाती है, अगर कहानी अच्छी है तो।
1: जी बिल्कुल, तो आपको बतौर, चूंकि आप लेखक भी हैं और निर्देशक भी हैं, तो कभी अपने लिखे को एक निर्देशक के रूप में खारिज भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, कोई ऐसे उदाहरण देके बताइए हमारे श्रोताओं को कि
0: लिखना तो एक्चुअली सबसे बड़ी, जब क्योंकि मैं लिखता भी सारी फिल्म खुद की, सारी जितना भी अब तक काम किया मैंने खुद ही लिखा है सब, तो वो एक बहुत ही पैनी और उससे स्क्रूटनी से होकर गुजरता है, बहुत आलसी लेखक भी हूँ मैं, मुझे जल्दी भी नहीं लिखा जाता।
1: अच्छा
0: हाँ, बहुत टाइम लेता हूँ मैं, तो मैं मुझको ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने कभी कोई खराब, ऐसे नहीं, मेरी सारी पिक्चर, बहुत सारी पिक्चर फ्लॉपी है मेरी,
1: ये आप कह रहे हैं ना,
0: नहीं सच बात है, उसमें उसमें क्या है, हर पिक्चर तो हिट, किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्टर का जिसका भी आप बड़े से बड़े के नाम लें, पूरे फिल्मोग्राफी में 3-4 पिक्चरें होती हैं जो अच्छी होती हैं
1: जी,
0: बड़े से बड़े की, बहुत एक्सेप्शनल कोई केस हो गया तो उसकी बात छोड़ देते हैं, बिमल रॉय को हटा देते हैं इस फेरिस से, और राज कपूर साहब और गुरुदत्त इन जैसे लोगों को हटा देते हैं, वो लोग तो लेजेंड्स हैं, वो लोग उन्होंने ग्रामर लिखा है सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का, तो उनसे तो हम कभी देख भी नहीं सकते, सिर्फ नतमस्तक हो सकते हैं उनके सामने। बाकी जो और लोग जिन पे हम लोग जैसे डायरेक्टर आते हैं, तो उन सबकी फेरिस में देखिएगा तो अगर 15

0: रहे हैं तो 40 पिक्चरें होंगी जो सही पड़ी होंगी, बाकी तो आदमी फेल करता ही करता है।
1: आपकी ये बात बड़ी मन भाई कि इतनी ईमानदारी से अपनी फिल्मों की समीक्षा खुद ही कर रहे हैं और पुराने दौर के गोल्डन इरा के निर्देशकों की बात की और फिल्मों की बात की, तो पुरानी फिल्में आप देखते हैं, उनके गाने
0: सुनते हैं? मैं तो आजकल पुरानी ही देखता हूँ
1: जी,
0: मैं तो आजकल पुरानी फिल्में ही देखता हूँ। कई फिल्में मिस हो, सब पिक्चर तो अच्छी नहीं देखी, कई पिक्चर मिसिंग भी है, कहीं आ जाती, तो मैं यूट्यूब में खोज खाज के वो फिल्में देखता हूँ। मैं
1: कौन कौन सी फिल्में देखी इन दिनों में?
0: मैंने अभी ख्वाजा अदम अहमद अब्बास की एक दो फिल्में देखी जो कि नहीं देखी थी, देव साहब की एक दो फिल्में थी जो मैंने नहीं देखी थी, और जैसे मेरी बहुत अच्छी पिक्चर जो मैंने नहीं देखी थी इसका नाम था शंकर हुसैन
1: जी जी,
0: जिसके गाने
1: बहुत ही
0: खूबसूरत गाने, तो मैं गाने तो बहुत सुने थे, पिक्चर नहीं देखी थी, वो देखी मैंने। तो ऐसे ऐसे कई फिल्में हैं जो कि मैं देखता रहता हूँ, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी।
1: तो गाने आपकी जिंदगी में कैसे जुड़ते हैं, क्या दखल रखते हैं आपकी जिंदगी में पुराने गाने?
0: अब गानों के साथ म्यूजिक के साथ, जब हम लोग इलाहाबाद में थे तो हमारा बैंड था तो अंग्रेजी गाने बजाते थे हम लोग
1: जी जी,
0: मैं रिदम गिटार बजाता था और गाता था
1: जी,
0: और मैं गाता ठीक ठाक था, तो मुझे सब जगह जितने इलाहाबाद के लेवल पे और फिर यूनिवर्सिटी लेवल में कॉम्पिटिशन या सब फेस्टिवल्स होते हैं ना सब स्टूडेंट्स का अपना, तो उन फेस्टिवल्स में मुझको हमेशा बेस्ट वेस्टर्न सोलो मेल अवार्ड हमेशा मिलता था, तो मैंने चैंपियन था मैं उसका।
1: क्या बात है भाई, ये तो
0: जी, मैं गिटार कभी बहुत अच्छा बजा नहीं पाया, रिदम बजा लेता था, लेकिन मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बनना चाहता था जो मैं कभी नहीं कर पाया, मैं आज भी सोचता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बन जाऊँ।
1: क्या बात है,
0: वहां से सिलसिला शुरू हुआ म्यूजिक का, और फिर मेरे जो मैंने वो ही किया जो मेरे दोनों बड़े भाइयों ने किया, उन्हीं की नक्शे कदम पे मैं चला हूँ। बड़े भाई साहब मेरे वो डिफेंस में चले गए, वो नेवी में थे, रिटायर कर गए, बट अभी भी उनका आर्ट और पोइट्री वो पसू करते रहते हैं गोवा में। बीच वाले भाई साहब वो जुडिशरी में चले गए, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जज बने, फिर चीफ जस्टिस बने गुवाहाटी हाई कोर्ट के, भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने, वो उनकी पूरी जिंदगी जुडिशरी, लेकिन वो भी मुझसे अगर वो फिल्मों में आते तो शायद मुझसे बेटर फिल्में कर बनते वो
1: जी जी।
0: अब ये था, मैं छोटा था, हम लोगों में एज डिफरेंस बहुत है, 7-8 साल का डिफरेंस है भाइयों में मेरे और उनमें, तो उन्होंने छोटे भाई को प्रमोट किया कि करने दो उसको, तो उनकी बदौलत में बढ़ गया आगे
1: जी जी जी। तो अब यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाएं, शंकर हुसैन का भी जिक्र किया आपने, आपकी पसंद का कोई और गाना?
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना है दाग फिल्म का
1: जी जी,
0: विच इज अ वेरी अनलाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सॉन्ग
1: जी जी, तो वही गाना सुनते हैं।
0: ये मेरे दिल में आज का
2: आज

0: साई साहब ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी, किशोर कुमार की आवाज और
1: दाग
0: फिल्म। तो ये गाना तो हमने सुना और हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, तो वो उन्हें बड़ी जिज्ञासा है, तो उनकी ओर से एक सवाल है, वो ये कि आपका नाम तिग्मांशु है और धूलिया है, तो ये दोनों का मतलब क्या है? दो नाम है या एक ही नाम है?
1: नहीं, नाम तिग्मांशु है, धूलिया मेरा सरनेम है
0: जी।
1: तो तिग्मांशु संस्कृत नाम है, इसका मतलब है सूर्य। तिग्मांशु तो तेज, जिसकी अंशु है, किरणें हैं, वो है तिग्मांशु। जो तो सूर्य सहस्त्र नाम, अगर आप जो सारे नाम सूर्य भगवान के आप सुनिएगा तो उसमें तिग्मांशु भी आता है
0: जी जी।
1: तो मुझको नहीं लगता मेरे नाम किसी मेरा नाम का कोई और दूसरा है, बड़ा सोच समझ के रखा गया मेरा नाम।
0: बिल्कुल, शायद आहट मिल गई थी आपके माता पिता को
1: क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाइयों का हिमांशु सुधांशु है, वो चंद्रमा से वो है, तो वो उनको लगा एक तो सूरज हो
0: जी।
1: तो और धूलिया का क्या है, मैं भी पूछता रहता हूँ कि क्या रब है। तो मुझे जो मुझे एकदम साइंटिफिक और हिस्टोरिकली थोड़ा रेलिवेंट और करेक्ट लगता है वो ये लगता है कि शायद हम लोग धूले से हैं, महाराष्ट्र से
0: जी जी।
1: तो वैसे तो मैं हूँ उत्तराखंड का, हम लोग पहाड़ के रहने वाले, तो तब तो उत्तराखंड तो 2000 में बना, उसके पहले तो यूपी का ही पार्ट था सब। तो मुझको एक मेरी थ्योरी लगती है, जब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जब पेशवा साहब वहां से चल के पानीपत मतलब हरियाणा लड़ाई करने आया है मशाद अली से
0: जी।
1: तो वह सिर्फ सेना नहीं आती ना, तब तो साथ में बहुत सारे लोग आते हैं, पुजारी भी आते हैं और गाने वाले भी आते हैं, बहुत मिलों तक का ट्रेवल होता है। तो मुझको लगता है कि पानीपत के उसमें फिर कई पुजारी जो है रह गए वही। और ये भी होता था कि वहां तक जा रहे हैं तो जो भी ब्राह्मण होते थे उनको ये लगता था काशी तो हो आए या बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कर लें, ये सब बहुत होता था ना वहां से आए हैं, यहाँ तो हवाई जहाज तो थे नहीं कि पहुंचे घटाकर, तब तो पैदल चल रहा है सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग धूले से थे और हम लोग रह गए वहां और उनको अच्छा लगा शायद पहाड़ में रहना
0: जी,
1: तो उत्तराखंड में सेटल हो गए, ऐसा मुझे लगता है
0: जी। बात उत्तराखंड की चली है, उत्तराखंड के बारे में हम जानना चाहते हैं। तिग्मांशु जी, एक टिप्पणी है, जानी मानी कथाकार है मनीषा कुलश्रेष्ठ, उन्होंने अभी टिप्पणी की है और इस पूरे कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रही हैं और लाइव फेसबुक पेज पर देख रही हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं
1: जी। जी बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। और एक श्रोता ने पूछा है आपसे, विविध भारती ने हिंदी सिनेमा के संगीत को घर घर पहुंचाया है, आपकी फिल्मों में जैसे पान सिंह तोमर है, हासिल है, साहब बीबी और गैंगस्टर में भी संगीत का एक खास मिजाज है, रेडियो पर बजने वाले पुराने गानों ने आपके संगीत के सेंस को कितना प्रभावित किया है?

0: मुझे हिंदी फिल्म म्यूजिक मुझे को मैं एक बहुत ऊंचे लेवल पर रखता हूँ। इससे बड़ा बढ़िया हिंदी फिल्म म्यूजिक, एक फ्यूजन म्यूजिक का इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता।
1: जी,
0: बाद में सब जैज और फ्यूजन म्यूजिक आया कि इंडियन क्लासिकल और जैज को मिक्स, वो सब हिंदी फिल्म म्यूजिक ये काम 200 साल पहले से कर रहा था।
1: बिल्कुल
0: बहुत इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड हिंदी फिल्म म्यूजिक है,
1: जी,
0: तो उसको पसंद अगर मैं करता हूं या जो भी लोग पसंद करते हैं वही कारणों से करते हैं, ये को लिरिक्स बहुत पसंद आती है। अब पुराने जमाने में क्या था, जो कि लिरिक राइटर जो थे वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, और हिंदी फिल्म के जो राइटर्स थे सबसे ज्यादा, बाकी लोग इतने थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, चाहे वो डायरेक्टर्स भी ही क्यों ना हो। तो हमारी हिंदी फिल्म म्यूजिक को इतना पॉपुलर करने के लिए पीछे लिरिक राइटर्स का हाथ बहुत, और मैं आज एकदम पूरे दम से बात कहता हूं कि गाने कविता की वजह से ज्यादा चलते हैं बजाय उसकी मेलेडी की वजह से।
1: क्या बात कही आपने, सच
0: लिरिक, जी बिल्कुल, लिरिक्स की वजह से ज्यादा चलते हैं आज, उनको हम याद ही इसलिए करते हैं बिकॉज वो लिरिक्स हमको समझ में आती हैं और हमारे दिल को छूती हैं, और डेफिनेटली उसके बाद एक मेलेडी कॉम्पोजिशन का हाथ तो होता ही है, लेकिन इट्स फर्स्ट थिंग आई थिंक इट इज ऑल पोएट्री।
1: जी बिल्कुल, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो कविता होती है वो गाने खूब चलते भी हैं, इसीलिए शायद हमें पुराने गाने कंठस्थ होते हैं और नए वाले गाने हम बहुत कोशिश करते हैं, अच्छे भी लगते हैं तो भी हम याद नहीं करते,
0: बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आजकल गाने को, उनको लगता है हम कोई बड़ी बात बात कहते हैं। अरे महसूस जिंदगी में किया नहीं, से बात करने से थोड़ी होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ इश्क करना सीख लेना, से इल्म से शायरी नहीं आती है, इश्क तो कर।
1: जी बिल्कुल,
0: तो पुराने राइटर्स से जैसे हिंदी फिल्म म्यूजिक राइटर बहुत ग्रेट ग्रेट राइटर्स है, लेकिन जो सब वो राइटर्स जिनकी फिल्मोग्राफी बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा भी है परसेंटेज, वो मजरूह सुल्तानपुरी है, वो आनंद बख्शी जी हैं, सिंपल राइटिंग है एकदम,
1: जो सबके
0: पिक्चरें देखती हूँ उनकी पहले सबसे ज्यादा है ना
1: जी।
0: तो उसका हिंदी फिल्म गाने लिखने का एक जो शऊर है वो सबको नहीं पास नहीं आता।
1: जी जी, तो इस समय आप जो नए दौर के बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनके लिए कुछ कहिए, और हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आपकी फिल्मों के गाने कविता के रूप में आए, क्या आप ये वादा करेंगे, और नए बच्चों के लिए कुछ कहेंगे कि वो नए गानों से, हिंदी गानों से कैसे जुड़े।
0: देखिए कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि मीडियोक्रेटी ज्यादा है, अच्छा काम तो कम ही होता है
1: जी,
0: बुरा काम ही होता है ज्यादा तो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोशिश करते रहो बस
1: जी,
0: कोशिश करते रहो, भले ही हम लोगों की संख्या कम हो लेकिन फिर इवेंचुअली हम ही लोग असरदार बनेंगे, तो इसलिए कोशिश करना मत छोड़ो, हार मत मानो कि यार ये गाने चलते नहीं है कौन सुनेगा मेरे गाने, नहीं लिखो, वही इवेंचुअली कुछ ना कुछ मिलेगा।
1: बिल्कुल, आज के दौर में भी इरशाद कामिल, स्वानंद किरकिरे जैसे गीतकार जो कविता रचते हैं अपने गानों में और हम सब पसंद करते हैं।
0: तो ये दिक्कत ये है ना कि हमारे फिल्मों में गाने खत्म हो गए।
1: जी,
0: प्रॉब्लम ये है, हम क्यों ये सारे जो हम भी गाने सुन रहे हैं पुराने गाने हैं, नया गाना को तो कोई सुनता भी नहीं है
1: जी,
0: और पिक्चरों का जिस तरह से बजट हो गया है, जिस तरह की चीजें हो गई, आप गाना आप रख नहीं सकते कि, तो गाने को रिकॉर्ड करने में पैसा खर्चा होता है, फिर उस गाने को पिक्चराइज करने में 3-4 दिन, अच्छा गाना हो तो 3-4 दिन तो जाएगा ही जाएगा
1: जी,
0: तो वो बजट में बहुत बड़ा एक पैकेट सा बन जाता है म्यूजिक, तो सबसे पहले सोचा म्यूजिक कटाओ, बैकग्राउंड में रख दो गाने थोड़ा, यही हो गया है। सिर्फ बड़ी फिल्मों में गाने होते हैं, बाकी छोटी फिल्मों में तो बैकग्राउंड में कुछ गाना, वो गाना चलते वलते भी नहीं है कुछ।
1: जी जी,
0: पहले जमाने में तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अमिताभ बच्चन की नई पिक्चर भी आती थी कोई मुकद्दर सिकंदर, तो साथ में अमोल पालेकर साहब की भी गोलमाल आती थी, उसके गाने भी अच्छे थे।
1: जी जी बिल्कुल, और वो गाने याद किए जाते थे, गुनगुनाए जाते थे, और आज भी जो म्यूजिकल शो होते हैं चाहे वो अंताक्षरी हो निजी तौर पर या कहीं, तो वहाँ पुराने गाने ही गाए जाते हैं।
0: और देखिए बात ये, उस वक्त के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो बड़ी पिक्चर भी करते थे और वो छोटी पिक्चर भी, ये जानते थे कि छोटी पिक्चर का बजट कम होगा, आर डी बर्मन के आप मैक्सिमम गाने जो अच्छे हैं वो छोटी पिक्चर होंगे, आप उठा के देख लीजिए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो गोलमाल, बुड्ढा मिल गया, मासूम, ये सब पिक्चर छोटे बजट की पिक्चर है, फिर उन्होंने बड़ी रमेश सिप्पी शोले ये सब किया, लेकिन उनकी जो छोटी जो कम बजट की पिक्चर है, ऋषिकेश मुखर्जी की सारी पिक्चरें बेमिसाल देख लीजिए, कितनी फिल्में देख लीजिए, सब में म्यूजिक उन्हीं का है ना।
1: जी बिल्कुल,
0: छोटी फिल्म है देख लीजिए आप।
1: तो यहाँ पर जिक्र गानों का है, तो कौन सा गाना आपकी पसंद का हम सुनवाए?
0: वो गाना बहुत अच्छा लगता है, वो फिर में लोग कभी इस बात का वादा कर लो, वो ओपी नैयर साहब का बहुत खूबसूरत गाना।
1: जी जी, वो गाना हम सुनवाते हैं, ये रात फिर ना आएगी
0: जी,
1: ये वाला गाना आपको आपने पसंद किया तो सुनते हैं।

0: विविध भारती के इस जश्न के मौके पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। तिग्मांशु जी, हमें बताइए कि एक फिल्म थी दिल से जिसमें आपने स्क्रीन प्ले किया,
1: डायलॉग्स
0: और डायलॉग्स किए, और एक नाम है जानुसी, आपकी बेटी का नाम है, तो हमें ये पता चला है

0: कि उसमें एक गाना है गुलजार साहब का लिखा हुआ, उस गाने से कहीं इंस्पायर होकर वो लिखा, क्या है कहानी बताइए ना हमारे श्रोताओं को।
1: उसमें हुआ ये कि दिल से का जब म्यूजिक रिलीज हुआ तो उस पार्टी में सब लोग जो फिल्म से जुड़े हुए लोग होते हैं सबको बुलाया जाता है जो होते हैं,
0: तो एज ने भी गाना,
1: हाँ तो उसमें सीडी मिला, पिक्चर अभी के गाने पब्लिक में रिलीज नहीं हुए थे
0: जी,
1: तो मैं उसका सीडी, अब जवानसी मेरी बिटिया पैदा हो चुकी थी, उसका नाम भी रख हुए थे, उसका नाम रखा गया था श्रेयसी, तो
0: आपकी वाइफ ने रखा था,
1: हाँ घर वालों ने भी मिलके, मदर ने भी सब करके,

0: सीढ़ी। अब जवानसी मेरी बिटिया पैदा हो चुकी थी, उसका नाम भी रख हुए थे, उसका नाम रखा गया था श्रेयसी। तो
1: आपकी वाइफ ने रखा था?
0: हाँ, घर वालों ने भी मिलके, मदर ने भी सब करके कि श्रेयसी। मेरी मदर क्योंकि संस्कृत की हैं, वो तो नामों को लेके उनका
1: जी जी
0: हमारी फैमिली में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब ये हुआ कि मैं घर में वो सीडी लेके आया, उसमें गाना शुरू हुआ वो छैया छैया के बाद ये और फिर ये जब गाना सुना शुरू आया अजनबी तू भी, तो उसमें हम लोग सुन रहे थे गाने तो कमाल थे दिल से, के खैर आज भी झटका दे देते हैं हर एक गाना उसका। तो उसमें वो जान सी कहां,
1: क्या बात है,
0: और भी तुलका लेकर रुको रुको रुको रुको रुको, जानसी वर्ड, बेटिया का नाम जानसी, मैंने कहा ठीक है। तो मैं कहता हूँ आश्चर्य बेटी बेटी का नाम गुलजार साहब ने रखा है।
1: क्या बात है। तो जानसी का असल में अर्थ क्या है?
0: जान जैसी,
1: जान जैसी,
0: सिंपल
1: जी। तो ये तो बिटिया की कहानी हो गई, और बिटिया भी फिल्मी दुनिया में आ चुकी है और आपकी तरह ही धमाके कर रही है।
0: तो अभी अभी जी अभी तो मुझको असिस्ट कर रही है।
1: आपको असिस्ट कर रही है?
0: हाँ।
1: ओ
0: तो उसने 4 साल का कोर्स किया फिल्म मेकिंग का, और उसके बाद जैसे होते हैं बच्चे पहले शॉर्ट फिल्म बनाना है पापा, इस सब जैसे भी कब करते हैं वो करते रहते। फिर मैंने कहा थोड़ा रियल फिल्म मेकिंग में आ जाओ। तो वो मेरे साथ है अभी।
1: जी कौन सी फिल्म बना रही है
0: अभी? तो मैं बना रहा हूँ, तो मुझको असिस्ट कर रही है।
1: अच्छा।
0: तो बनाएंगे
1: जी। तो उसने भी ट्रेनिंग ली बाकायदा?
0: जी मैंने कहा ना 4 साल की, उसने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया।
1: जी जी जी। तिग्मांशु जी, आपकी बहुत सारी फिल्मों में जिमी शेरगिल रहे हैं, और तो जिमी शेरगिल हालांकि अगर शायद वो देश से बाहर है, परदेश में है, नहीं तो आज आपके साथ वो यहाँ माइक के सामने होते और हमें लगता है कि और ज्यादा हमें रोचकता बढ़ जाती। तो उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ खास बात बताइए।
0: जिमी से ये था कि मुलाकात, जो पहली फिल्म कास्टिंग कर रहा था तो मैं उसमें जिमी से मिला, उसको चाहिए था उस जैसा जैसा है जिमी, बड़ा शरीफ लड़का, मेरा किरदार भी बहुत बहुत ही शरीफ सा था,
1: सलोने से दिखते भी हैं।
0: तो उसमें कैरेक्टर का वो था दिखाना था कि किस तरह से एक सीधा साधा लड़का जो पढ़ाई में है और थिएटर भी करता है, किस तरह से एक उसकी सोहबत खराब हो जाती है, गुंडे के साथ वो रहने लगता है और उसका कैरेक्टर बदलता है, फिर इवेंचुअली फिर वो संभलता है। तो मुझको चाहिए था कि उस तरह का एक अच्छा शरीफ चा। तो जिमी के, और ये बात मैं आपको 2026 साल पुरानी बता रहा हूँ,
1: तो जी बताइए। बिल्कुल
0: हाँ। तो उस वक्त हम लोग भी सब यंग थे और जिमी तो और भी शरीफ लगता था तब। तो ये हुआ, फिर ये क्या भाई, जैसे याराना दोस्ती बढ़ गई, मिलना जुलना, तो फिर इतनी सारी फिल्में की हमने साथ में।
1: जी जी। और आपकी एक फिल्म है बुलेट राजा,
0: जी
1: उसके बारे में जरा बताइए, उसकी क्या कहानी, कहाँ से आपके मन में आइडिया आया बनाने का?
0: और आया तो वो यूपी के कुछ गैंगस्टर्स हैं, उनके उसमें से एक गैंगस्टर की कहानी से मैं थोड़ा उससे उसके कारनामों से आप थोड़ा
1: इंस्पायर हुए।
0: इंस्पायर नहीं, वो कारनामे विचलित भी कर देते थे आपको सुन करके, और ये भी करते थे कि कितना इसमें हिम्मत कहाँ से आ गई सब करने की, है ना।
1: तो समाज के सामने सच्चाइयां लाना?
0: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। समाज के सामने समाज से में सच्चाई है तो अखबार पढ़ के समझ में आ जाती है, मुझको अखबार थोड़ी बनानी, फिल्म बनानी, एंटरटेनिंग होनी चाहिए वो। तो मैं उस तरह का बदलाव वाला परचम लेके नहीं चलता हूँ, मेरी फिल्मों में दिख जाता है कहीं ना कहीं, और वही काम है फिल्म का।
1: बिल्कुल सच्चाई यथार्थ के करीब,
0: मतलब हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। तो उस एक किरदार को मैंने 2 में स्प्लिट कर दिया, तो एक बन गए हमारे सैफ साहब, सैफ अली खान, और दूसरा बन गए जिमी शेरगिल। क्योंकि मुझे दोस्तों की, मुझे दोस्ती बहुत प्यारी, एक ये रिश्ता होता है ना दोस्ती का,
1: जी बिल्कुल।
0: तो हासिल में डायलॉग भी, बाकी रिश्ते तो बने बनाए मिलते हैं, दोस्ती के ऐसा रिश्ता जो आदमी खुद बनाता है।
1: बिल्कुल।
0: आपके चाचा ताऊ मम्मी पापा तो मिले हैं, आपने क्या किया उनको कर, लेकिन दोस्त आप खुद बनाते हैं। तो आपका जो एक वो मोरालिटी का और गुड और बैड का जो सेंस आपके अंदर है, जो इनबॉर्न है, वो आपको उस दोस्तों को उस तराजू पे खड़ा तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, ये आपका खुद का अचीवमेंट है
1: जी।
0: तो इसलिए मैंने मुझे दोस्त का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने बुलेट राजा में ये दोस्त रखे
1: जी। और इसी फिल्म में गुलशन ग्रोवर भी थे।
0: हाँ, बाकी इसमें और भी कैरेक्टर थे। जी, जी जी जी।
1: तो सैफ अली खान और गुलशन ग्रोवर से जुड़ी हुई, जब आप शूट कर रहे थे तो कुछ खास बात बताना चाहेंगे?
0: अब उनके बारे में, उन्होंने तो इतनी फिल्में की हैं, सब लोगों ने, सैफ के साथ दोबारा मैंने कभी काम नहीं किया, ना ही गुलशन जी के साथ काम किया, मिलते हैं तो मैंने सैफ के साथ किया एक्टिंग की। मैंने एक बड़ा वो बैंड शायद भी होगा, एक शो था तांडव, जिसमें कुछ उन्होंने कुछ गलत गलत चीजें दिखाई, उसके वजह से उसमें

0: था, मैं शुरू के दो एपिसोड में था, पहले में तो मर जाता हूँ, बाकी दो एपिसोड मेरी मतलब बतौर लाश में पड़ा हूँ. तो उसमें सैफ का मैं फादर बना था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसे दिखाया था.
1: जी,
0: तो,
1: जी.
0: तो बस वो काम हमने साथ में किया, उसके बाद हमने कभी साथ में काम किया नहीं.
1: यहाँ अब गानों का फिर से जिक्र करते हैं और बताइए आपको पुराने गाने ज्यादा पसंद है, हालांकि नए दौर के एक कामयाब डायरेक्टर पसंद करते हैं ज्यादातर पुराने गाने, तो यहाँ पर कोई गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
0: आप वो दिल तो है दिल,
1: मुकद्दर का सिकंदर,
0: मुकद्दर का सिकंदर का वो कल्याण जी आनंद जी का, ये बड़ा यूनिक सॉन्ग है
1: जी,
0: बहुत बहुत खूबसूरत गाना है.
1: आप चाहें तो इस गाने में सुर मिला सकते हैं.
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं.
1: आपने कई बार
0: लता जी गा रही, मैं गा सुन
1: सुनते हैं ये गाना.

तिग्मांशु विविध भारती के सजीव प्रसारण में हमारे सामने बैठे हैं और आज विविध भारती का जश्न हम मना रहे हैं। 70वां स्थापना दिवस है ये। और तिग्मांशु जी, आपने छोटे पर्दे के लिए भी बहुत काम किया है, लिखा भी है और एक्टिंग, आप कहते हैं कि एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं लेकिन

0: एक्टिंग भी की है। छोटा पर्दा बड़ा पर्दा दोनों आपको कौन सा ज्यादा आकर्षित करता है?
1: नहीं, हमेशा से बड़ा पर्दा ही आकर्षित किया है। वो तो छोटा पर्दे पर इसलिए कर रहे थे बिकॉज घर भी चलाना था तो और उस जब भी लेकिन हमने मैंने जब टीवी किया और मेरे साथ के जितने भी और हमारी क्लास के जितने डायरेक्टर हैं मेरी कक्षा के जो हम लोग हम उम्र हैं सब थोड़े थोड़े तो सबने टीवी किया है। बट उस वक्त टेलीविजन अच्छा होता था, भले हफ्ते में एक एपिसोड आता था, आप उसको बनाते थे आराम से तीन चार दिन में एक एपिसोड। अब उसके बाद वो डेली सोप हो गया, एक दिन में आधे दिन में बनाइए तो उसकी क्वालिटी गिरती चली गई। बट एक्चुअली वो शायद उस तरह के टेलीविजन की डिमांड थी। तो हमने जब टीवी कर रहे थे तो अच्छा टीवी होता था। उसके बाद फिर जाना तो फिल्मों की ही तरफ था।
0: जी जी, तो आप अपने वाले दूरदर्शन की बात कीजिए। जब इलाहाबाद में रह रहे थे या उत्तराखंड में रह रहे थे तो दूरदर्शन के जो कार्यक्रम होते थे, जो धारावाहिक होते थे, वो आज भी हम सबको याद हैं। तो वो कुछ यादें आप ताजा कीजिए।
1: बहुत सारे थे, कितने थे, मतलब बाप रे। श्याम बेनेगल जी का आता था के फिर भारत एक खो जाता था,
0: फिल्मों का इंतजार होता था,
1: फिल्मों का हर संडे को इंतजार होता था। इलेक्शन होते थे, हम लोग छोटे होते थे, हम इलेक्शन से हमको लेना देना नहीं। इलेक्शन के टाइम पे फिल्में तो खूब दिखाई जाती थी, दिन में तीन तीन चार चार पिक्चर है तो उसका हम लोग घर में बड़े लोगों को चुनाव के नतीजे पे थे हम लोग को था कि पिक्चर कौन सी देखी जाए। तो तब तो बहुत अच्छा टीवी था, बहुत ही खूबसूरत था।
0: जी जी, तो पढ़ाई जब आप करते थे तो घर वाले कहते थे, रोकते थे, मतलब कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं कि क्यों देख रहे हो फिल्म, पढ़ नहीं रहे हो, ऐसी कोई याद?
1: इलाहाबाद में टीवी ना बहुत बाद में आया,
0: एशियाड जब शुरू हुआ था
1: तब आया था 82 में।
0: जी,
1: तो और जब आया था तो सबके घरों में टीवी होता भी नहीं था, धीरे धीरे आने लगा लोगों के यहाँ। तो जब तक टीवी आया तब तक हम लोग के घर वालों के हाथ के बाहर हो चुके थे बड़े हो गए थे थोड़े तो लेकिन उतना टीवी के सामने मैंने छोटे छोटे जब होते तब बहुत गुजारा है, लेकिन उसके बाद नहीं था। आउटडोर एक्टिविटी हम लोग ज्यादा, जैसे मैंने कहा थिएटर करते थे तो कहीं बजाना है या फंक्शन में इधर उधर, तो घर के बाहर ही ज्यादा रहते थे तो टीवी देखना इतना होता नहीं था।
0: थिएटर के लिए जब आपने शुरुआत की, मतलब थिएटर की ओर गए, एनएसडी किया, तो घर वाले आपके इतने सब पढ़े लिखे, माँ प्रोफेसर, पिताजी जज, तो कहा नहीं कि कहाँ जा रहे हो फिल्मी दुनिया में? अमूमन ये सुना है कि डायरेक्टर, मतलब इस दुनिया में जो आना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है पढ़ो लिखो कुछ बनो, इस दुनिया में मत जाओ। तो आप
1: कभी कभी नहीं मना किया, कभी नहीं, इनफैक्ट हमेशा प्रोत्साहित ही किया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे मदर फादर दोनों फिल्में खूब, खुद भी बहुत फिल्में देखते थे और शायद मैंने छोटा, सबसे छोटा होने का मुझे, मैंने उसका नाजायज फायदा भी उठाया तो मुझे डांटा भी कम जाता था।
0: दुलारे बेटे थे?
1: हाँ, दुलारा बेटा था जैसे मैंने बड़े भाइयों में जो 7-8 साल का डिफरेंस था तो जो भी होता था उनके साथ होता था, मुझे कुछ नहीं कहते थे। तो जब तक मैं एनएसडी में गया तब तक तो माय फादर हैड पास्ड अवे, गुजर गए थे, लेकिन मदर ने हमेशा पूछा जाओ।
0: तो मुंबई आए शुरुआत में, तो मुंबई की शुरुआती संघर्ष किस तरह के थे?
1: मैंने बिल्कुल कोई संघर्ष नहीं किया। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने वड़ा पाव खाया है और लोकल ट्रेन में चढ़ा हूँ लेकिन ऐसे कुछ
0: तकलीफों से नहीं गुजरा,
1: बिल्कुल नहीं। मैं बहुत इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि घर वाला, मेरे भाई, फादर मुझको ऐसे मिले जिन्होंने मुझको इस तरह की लाइन में भी पहले तो एनकरेज किया कि म्यूजिक बजाओ, करो थिएटर, कभी नहीं रोका। उसके बाद ड्रामा स्कूल गया था, मदर ने भी कभी नहीं रोका कि जाओ। मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया ड्रामा स्कूल में
0: जी।
1: तो और उसके बाद मैं दिल्ली में रहकर मैं फिल्में कर रहा था उस वक्त, होता नहीं था। फिर बैंडेड क्वीन भी तो शेखर जी के साथ में मुंबई आ गया था, जो मुंबई आया तो मैं ऑलरेडी शेखर कपूर का असिस्टेंट था तो मुझे कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत, पैसा नहीं मिलता था वहां लेकिन कहने को होता था कि आप शेखर कपूर के असिस्टेंट हैं तो उनका नाम सब जानते थे, रिश्तेदार भी सब जानते थे, अच्छा शेखर कपूर, बाकी डायरेक्टर को नाम तो लोगों ने सुने नहीं थे कि शेखर कपूर का नाम सब जानते थे,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि वो डिग जैम के मॉडल भी हुआ करते थे तो लोगों उनको पता था उनके असिस्टेंट, और ठीक है
0: जी।
1: तो ऐसे करते करते मैं काम करने लगा। मैं जब यहाँ आया तो पहले मैं साल भर अपने बड़े भाई साहब के यहाँ रहा, वो नेवी में थे, ये जो इधर INS हमला जाते हैं
0: जी जी,
1: वहाँ रहते थे तो मैं साल भर उनके साथ था तो कोई दिक्कत नहीं, नेवी में आप हैं, बढ़िया सा कमरा है, तब नेवल फैसिलिटी, नो प्रॉब्लम।
0: तो हमारे जो युवा श्रोता हैं जो फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं उन्हें कुछ कहिए कि क्या हो तो मुंबई आए स्ट्रगल करने।

0: के लिए, और क्या ना हो तो ना आए।
1: ये मैंने कल ही कुछ बच्चों को ये बोला कि जिंदगी में इस बात का एहसास अगर हो जाए कि मैं कर पाऊंगा कि हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा,
0: बिल्कुल
1: इसका एहसास आपको अगर हो गया ना, वो सबसे बड़ी चीज है। तब तो आपको लगे कि बॉस मैं कर पाऊंगा, तब तो आगे बढ़ो, लेकिन कहीं भी लग रहा है कि नहीं कर सकता तो एकदम पीछे मुड़ जाओ। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप डर के भाग गए, आप रणछोड़ नहीं कहलाओगे, आपने अच्छा करेक्ट डिसीजन। मैंने जब एनएसडी में मैं थर्ड सेकेंड ईयर में था, मुझको पता चल गया था मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, और मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था।
0: जी जी,
1: नहीं तो मैं एक्टिंग करके आता तो मुझको बालाजी के एक आध सीरियल में कुछ एक आध रोल रोल करके जिंदगी खत्म हो जाती।
0: जी बिल्कुल। और आप तो हमें आपकी इतनी सारी फिल्में कैसे मिलती तो, और आपकी एक फिल्म है साहब बीबी और गैंगस्टर, जिसका जिक्र श्रोता भी बार बार कर रहे हैं और हमने भी किया, उसका एक गाना है जो हम श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं, उस गाने से जुड़ी हुई कोई बात बताइए, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई, किस तरह से रिकॉर्ड हुआ गाना?
1: पार्ट टू का गाना है, इसको पीयूष भाई ने गाया, पीयूष मिश्रा जी ने बहुत खूबसूरत गाया है, और छोटा संदीप ने इसको कंपोज किया है। लेकिन कंपोज करते हुए ये ध्यान में रखते हुए कि ये, और संदीप नाथ एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर है, इलाहाबाद से भी उनका कनेक्शन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बढ़ावा से कई गाने पान सिंह तोमर के भी गाने लिखे संदीप नाथ ने, तो ये सोच के कि ये भाई गाना जो है गाएंगे पीयूष भाई, तो उसी तरह से गाने का मीटर रूटर की जो उनको जो उनके इमेज के साथ जाता है, लोग पीयूष भाई को ऑन स्क्रीन भी देखा है लोगों ने, तो आप सुनाइए गाना, बड़ा बहुत बहुत मजेदार और बहुत बढ़िया गाना है, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं।
0: जी सुनते हैं ये गाना।
2: बस छल कपट प्रपंच है, हर स्वार्थ का ये मंच है, यहाँ रक्त से मिटे है शोध, लोभ मोह काम क्रोध, यहाँ दोष भी निर्दोष है, प्यार में भी रोष है, मुर्दे में भी एक जोश है, ईर्षा ही शब्द कोष है।
3: आप भी राजा हैं और हम भी, मगर आपका खून आलसी हो चुका।

0: तो ये गाना हमने सुनवाया तिग्मांशु जी आपकी फिल्म का गाना, और आपकी ओर से हमने नजर किया। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आप जो लीक से हटकर फिल्में बनाते हैं, तो क्या आगे भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बनती रहेंगी आप द्वारा या अन्य फिल्म मेकर्स के द्वारा भी?
1: मैं ऐसी कोई बहुत लीक से हटके नहीं बनाता हूँ। अगर आप मेरी फिल्मों की पूरी मतलब मेरी पूरी फिल्मोग्राफी देखिएगा तो मैं बहुत ही एक कमर्शियल एक जो चलने वाली फिल्में होती है ना उसी गली की फिल्म बनाता हूँ। कहने का थोड़ा अंदाज मेरा फर्क है सिर्फ, जिसको आप बोलते हैं एस्थेटिक्स, वो मेरा बाकियों से फर्क है।
0: जी,
1: बाकी
0: जी।
1: मैं कोई लीक मैं लीक से बिल्कुल हटना भी नहीं चाहता। मेरे लिए फिल्म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैज टू बी एंटरटेनिंग। वो कोई बोरिंग स्लो पेस्ट वो सब चीजें मुझे मैं नहीं देखता भी नहीं, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, मैं कभी बनाऊंगा मैं।
0: जी जी।
1: तो वो एस्थेटिक्स जो है वो ओवर द इयर्स एक तो आपके खुद की जिंदगी का एक्सपीरियंस से आता है, और फिर एक होता है आपका एक्वायर्ड विजडम जिससे मैं आपसे मिलूंगा, आपकी आपने कोई बात कही मुझसे, मैंने आपसे बात मुझे लगा कि आप अच्छी बात कर रहे हो, किसी दोस्त से किसी नए आदमी से मिलकर

0: फिल्म देख के, कोई नॉवल पढ़ के, आपकी जो एक्वायर्ड विजडम है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जिंदगी में एक बार आके फिर टिक जाता है, फिर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते आप।
1: जी जी बिल्कुल।
0: आप एक सेट लाइफ में जीने लगते हो, फिर आप बहुत कभी कभी एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन जो एक्वायर्ड विजडम है जो आपको बाहर चीजों से मिलती है उसका जो स्रोत है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। वही आपके सारी कला, आप किस तरह से कहानी कहना चाहते हैं, सबके पीछे वही है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो जो एक्सपीरियंस करते रहेंगे वो फिल्म बनाते रहेंगे, जिन्होंने एक्सपीरियंस करना छोड़ दिया कि मैं हो गया बॉस गॉडफादर, अब तो मेरे बराबर कोई है नहीं, उसका पतन निश्चित है।
1: जी बिल्कुल। 2026 की फिल्म है घमासान आपकी फिल्म।
0: जी जी।
1: तो उसमें कौन सा ऐसा प्रसंग है शूटिंग में जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा या कठिन रहा, या इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई बात हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: कठिन तो कुछ नहीं होता
1: आपके लिए तो बिल्कुल नहीं।
0: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब जो काम आप कर रहे हैं, आपने किया, आपको मालूम है कैसा होना है। वहां पे कठिनाई होती है अगर आप ऐसी जगह पे, जैसे हमने वो घमासान की शूटिंग हमने की चित्रकूट के एरिया में, जहाँ पे रामचंद्र जी ने 14 साल पे 11.5 साल अपने वनवास का वहां बिताया।
1: जी।
0: और ये पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका, बांदा वाला, रीवा, सतना, मध्य प्रदेश, यूपी, इलाहाबाद के भी बहुत नजदीकी है।
1: जी जी।
0: तो वहां पे एक बार जंगल में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सड़क बहुत दूर नहीं थी, वहां पे पुलिस भी थी हमारे साथ, वो बैठे रहते थे अपनी जीप में, तो शूट कर रहे थे हम लोग। सडनली मैं आगे और लोकेशन देखते हैं जंगल में, थोड़ा सा एक दो असिस्टेंट के साथ बढ़ गए आगे, जाके मैंने देखा कि एक पेड़ से एक मोटे सा नायलॉन का जो तार, ऐसे रस्सी होती है, वो ऐसे लटकी हुई थी, नीचे कुछ टूटी पट्टी चप्पल दो पड़ी हुई थी, और उस नायलॉन के तार से कुछ फटे फूटे कपड़े ऐसे लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आदमी था यहाँ, या तो खा गए जंगली जानवर, ये क्या हुआ, सबमडी, या तो मार के लटकाया गया है या खुदकुशी की है किसी ने। और देख के मैं सन्न रह गया, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था कि आदमी लटका होगा, उसको जंगली जानवर खा गए होंगे, आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन बाकी उसका सब कुछ पड़ा था, चप्पल वही नीचे थी, कपड़े स्ट्रिंग्स लटके हुए थे, और क्योंकि नायलॉन की थी वो टूटी भी नहीं थी, पक्की सी थी। अरे देख के ऐसे दहशत हो गई सबको कि ये क्या देख रहे हैं हम। तो उसका ये एक्सपीरियंस था। फिर हमने वहां देखा, वहां पे एक स्पॉटेड डियर था, बड़ा सा मेल, उसको जंगली कुत्तों ने दौड़ा के हमारी आंखों के सामने मारा जंगल में। तो ये सब चीजें, हाँ, थोड़ा एक्साइटिंग हो जाती फिल्म मेकिंग, तो मजा आ जाता आपको।
1: जी जी। डरावना भी लगता है लेकिन रोमांचक भी होता है। तो यहाँ क्या घमासान फिल्म का ही गाना सुनवाए?
0: जी सुनाइए, धाएं धाएं
1: सुनते हैं।

0: तिग्मांशु जी, ये घमासान फिल्म का गाना था और काफी चर्चित है इन दिनों, ये गाना भी खूब बज रहा है और वायरल भी हो रहा है, जिसे हम वायरल कहना कहते हैं इंस्टा और फेसबुक के युग में। अरशद वारसी हैं इसमें और प्रतीक गांधी हैं, इनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
1: नहीं, इस फिल्म के बारे में तो मैंने बताया, मैंने कि वहां पे एक लटका हुआ आदमी के मतलब अस्थि पंजर दिखाई
0: दे। अब हमें बताइए कि एक लेखक और निर्देशक पढ़ता भी बहुत है और पढ़ना आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, जानकारी भी देता है, तिग्मांशु धूलिया जी क्या पढ़ते हैं अपनी फिल्मों के नजरिए से कि एक अच्छी फिल्म दे दर्शकों?
1: मैं फिक्शन ऑलमोस्ट नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं और चीजें पढ़ता हूँ, मतलब बायोग्राफीज और एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क या पॉलिटिक्स पे किसी ने या जियोपॉलिटिक्स पे किताबें, इस पे मैं ज्यादा इन चीजों को पढ़ता हूँ। फिल्मों पे कुछ किसी ने कुछ अच्छा नई किताब कुछ अच्छी लिखी तो पढ़ता हूँ, लेकिन फिक्शन मैं उस तरह से नहीं पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगता है फिक्शन बहुत
0: जी।
1: मैं और तीन तीन चार चार किताबें एक साथ पढ़ता हूँ, मैं किसी का एक चैप्टर किसी का दूसरा चैप्टर ऐसे पढ़ता हूँ मैं। हाँ,
0: और अब बताइए कि चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दीजिए और आपकी आने वाली फिल्म, आने वाला प्रोजेक्ट क्या है?
1: आने वाला प्रोजेक्ट, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिस जो कि आपको तो पता ही होगा, उदय प्रकाश जी जो हिंदी के बहुत महान लेखक हैं, उनकी एक कहानी है दिल्ली की दीवार, उसको मैंने अडेप्ट किया है। उसका नाम है वो फिर कभी दिखा नहीं।
0: क्या बात है।
1: और उसको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब वही है, जब भी आप कुछ नया अलग तरह का काम करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी अड़चने आती है, तो उन अड़चनों का सामना करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी फिल्म शुरू कर दूँ।
0: जी जी। और अब हम हमारे श्रोताओं के लिए कुछ पैगाम दीजिए।
1: जो मैं क्या पैगाम दूंगा, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ को पैगाम दूँ। सब लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सब अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर मैं उनको पैगाम दूंगा, जीते चलो, जिंदाबाद रहो, देश को आगे बढ़ाओ, सब लोग मिलके इस खूबसूरत दिन में, आज विविध भारती के 70 इयर्स पूरे हुए हैं, उसको याद करते हुए विविध भारती के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे जिंदगी में।
0: जी, आपकी पसंद का ये आखिरी गाने की झलक।

0: ये श्रोताओं से भी ये कहना है, तिग्मांशु जी विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और ये 1.5 घंटे कैसे बीत गए हमें तो पता ही नहीं चला। हमारे श्रोता भी यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। आप फिर आइए, वादा कीजिए कि विविध भारती के स्टूडियो में आप फिर आएंगे और आज के इस जश्न में आप शामिल हुए। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। मैं जरूर आऊंगा, जल्दी मिलेंगे
0: जी। शुक्रिया।

0: नाम से वो खूब मशहूर। बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी-मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आइए सुनते हैं तीसरा और अंतिम भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का

0: सिलसिला शुरू करते हैं।
1: मुझे लगता है कि अब सुषमा श्रेष्ठ के उस दौर से निकलकर मैं पूर्णिमा जी से बात करने अब आना चाहती हूँ, है ना?
2: तो स्वागत है आपका।
1: बिल्कुल, मुझे अब अपने आप को ये देखना है कि मेरे सामने पूर्णिमा बैठी है जो एक इस तरह के गाने जिन्होंने गाए हैं और हमें नचा दिया है। तो सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का ये सफर क्या था, कैसा था और क्यों था?
2: देखिए, सुषमा श्रेष्ठ एक बाल गायिका के बतौर एक बाल गायिका ही जानी जाती थी। पता है मंदाकिनी जी, मैंने जब वो गाना गाया था ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तब मैं 18-20 के बीच, अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन चोपड़ा साहब की जिद थी कि नहीं, मुझे तो सुषमा ही चाहिए। रविंद्र जैन जी ने बुलाया था,
1: तो जब तक पूर्णिमा में कन्वर्ट
2: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन हुआ क्यों। मुझे इतना ऑड लगता था ना मंदाकिनी जी, मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा था कि क्या ये मम्मी को अंदर बुलाना चाहिए, वो रबिश। इतनी बड़ी मैं ना, बहुत ऑड लग रहा था मुझे, तो इसका कुछ तो करना चाहिए, पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हमारे परिवार में, हमारा जो घर, जिन संस्कारों से मैं बड़ी हुई, हम बिल्कुल ना वैसे फिल्मी नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं हम, मिडिल क्लास, और मुझे गर्व है इस बात
1: जी।
2: अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ, वो दादर का घर ही मुझे पसंद आता है, शिवाजी पार्क। खैर, तो इसके बाद 10 साल का एक बहुत लंबा एक गैप आया, क्योंकि ना मैं बच्चों में मेरी गिनती हो रही थी, ना बड़ों,
1: और ये दौर बड़ा मुश्किल होता है कलाकार के लिए,
2: बहुत मुश्किल। फिर शादी भी हो गई, मेरा बेटा पैदा हुआ बड़ा, उसके बाद मेरा एक दौर जिंगल्स का शुरू हुआ, रेडियो स्पॉट्स, है ना, नाथन अंकल हुआ करते थे, वैद्यनाथन जी, जो फिर डैडी के बहुत अच्छे दोस्त, वो मुझे बुलाने लगे। करते करते फिर दिन में 5-6 जिंगल्स, 6-7 जिंगल्स, मैं जिंगल क्वीन, मैं, कविता दीदी, हम मिलकर कुछ वो गाती थी, कुछ मैं। करते करते वक्त बीतता गया, फिर एक दौर आया, आपको अगर याद होगा, कवर वर्जन्स का।
1: जी बिल्कुल,
2: है ना,
1: बिल्कुल,
2: कवर वर्जन्स गाने लगी। तो जब पहला कवर वर्जन का की रिकॉर्डिंग तो खत्म हो गई, वो गणपति के भजन से, पर पता कैसे थे, ये सिंधी जो कम्युनिटी है ना, वो तो सालों से, मुझे लगता पीढ़ियों से, उनके यहाँ पे ये चलन है कि वो लोग फिल्मी गानों पर ही, ये जैसे मेरे स्कूल में एक लड़की थी जब मैं 8वीं 9वीं में थी, वो भी सिंधी थी, तब वो गाना चला था झुमका गिरा रे, तो वो मुझे सुनाती थी कि हम लोग जा रहे हैं वो बाबा जी का जो लंगर होता था उनका, तो मैं भी गाऊंगी। कौन सा गाएगी तू, मैं पूछ, अरे वो रे झुमका गिरा रे ना, उस पर ही, सतगुरु आए हैं हम लोगों को समझाने, सतगुरु। तो ये तो उनका एक सिस्टम ही था, है ना। तो उन लोगों ने ये आइडिया इसमें डाल दिया, टिप्स कंपनी वालों ने, वो भी सिंधी, कि हम फिल्म, वो ही हम करेंगे फिल्मी गानों पे, हम गणपति के भजन, जैसे रमैया वस्तावैया, तो उस पे किया, मोरया गजानना मोरया गजानना सुख दे सकल जना, ऐसे
1: जी।
2: अब वो कैसेट उसके रिलीज के से जरा पहले, उनकी जितनी टीम थी, जो भी, उन सबको ऐसा लगा कि अब तो सुषमा श्रेष्ठ नाम देने से कहीं लोग ये ना समझे कि ये बच्चों के गानों का एल्बम है।
1: जी,
2: होता है, हमें ये पता नहीं चलता मंदाकिनी जी, पर वो लोग तो मार्केट स्टडी करते हैं ना, तो क्यों ना हम तुम्हें एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करें। सुषमा श्रेष्ठा इस नाम को हम नहीं रखेंगे, तुम्हें एक नए नाम, नए इमेज के साथ इंट्रोड्यूस करते। तो पूर्णिमा नाम मैंने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि ये मेरे जन्म पत्रिका
1: जी,
2: उसमें मेरा नाम पूर्णिमा, तो मैंने कहा पूर्णिमा कैसा रहेगा, सबको अच्छा लगा। अब सिर्फ वाद विवाद इस बात पे हुआ कि पूर्णिमा श्रेष्ठा रखें या क्या, तो वहां मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे पूर्णिमा श्रेष्ठा, क्यों, बाकी जो टीम था उनका, कि सुषमा श्रेष्ठा पूर्णिमा श्रेष्ठा एकदम से क्लिक हो जाएगा। पर ठीक है, अब ईगो हैसल्स जहां आ गए उसका तो कोई इलाज ही नहीं मंदाकिनी जी। तो रमेश तो मेरा भाई है, जो रमेश तौरानी जी हैं, मैं कई सालों से उससे राखी बांध रही, ने कहा छोड़ सुषमा, छोड़, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने का, जो है बाबू अपन ऐसे ही करेंगे। तो पूर्णिमा नाम वैसे करके उन्होंने बहुत, मैं कहूंगी टिप्स ने उस वक्त इतना मुझे

0: मतलब स्क्रीन में दो पेज का कवरेज इंट्रोड्यूस, उन्होंने ही मुझे अपनी पहली फिल्म उन्होंने जो बनाई थी बाहरों की मंजिल, राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था वो गाना, अगर आपको मिले प्लीज बजाइए गाना, अमित दा के साथ गाना था, उत्तम भैया ही अरेंजर थे
1: जी।
0: तुम

0: आपने भी हमें उन दिनों की याद दिला दी जब नई नई पूर्णिमा गायिका के रूप में हमारे सामने आई थी। बहुत समय बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठा है जो पूर्णिमा के नाम से गाती हैं। तो बाल गायिका से वयस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी तब मुझसे पहले 4-5 सिंगर्स एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। अनुराधा दीदी, कविता दीदी, अलका, साधना
0: सरगम जी।
1: तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी।
0: बिल्कुल।
1: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा, बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसे नहीं है कि पर चांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूँ, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों की स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल बनाऊं। एक हद तक मैं कामयाब रही उस।
0: बहुत हद तक आप कामयाब रही। एक हद तक नहीं, आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने एक गाना गाया था उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी उस आवाज को बनाए रखा
1: जी।
0: जो दिखाई दी थी है ना, और उसके बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की एक अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
1: ये बात मैं मुझे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। मंदाकिनी जी, ये अबू साहब ने, मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि आप कितने भी मतलब रागधारी सीख कर आओ, कुछ भी करो, 10 आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज

0: जो पहचान जाता है आपकी श्रोता, आपके श्रोता
1: जो भी
0: उस आवाज को पहचान ले तो आप समझ लो कि आप कामयाब
1: सफल हो गए हैं।
0: तो हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही
1: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है।
1: एक जो गले में एक अलग ही रेंज आपकी आती है उन गानों को गाने में
0: जी,
1: वो पूर्णिमा ही मानती हूँ, वो पूर्णिमा ही गा सकती है।
0: ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगा।
1: बिल्कुल। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
0: टेक्सचर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मैच्योर सिंगर?
1: हाँ।
0: मंदाकिनी जी, मुझे लगता है मेरी आवाज कभी मैच्योर हुई ही नहीं, और शायद वो ही मेरा एक यूएसपी है
1: जी। लेकिन वो कमर्शलाइज होती थोड़ा सा,
0: हाँ,
1: एक अलग तरह के मोल्ड हो गई।
0: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई। यस,
1: चुलबुलापन जो आवाज,
0: हाँ, वो एक वक्त के साथ आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत करती थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, ये तो एहसास था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं,
1: वो
0: ये
1: बाल, है, बाल मन था,
0: है ना। लेकिन जहां तक आप अगर मेरे वॉइस का अदरवाइज टेक्सचर की बात करेंगे, तो अभी अभी भी मैंने एक गाना गाया है एक मराठी फिल्म के लिए
1: जी, जी।
0: उत्तम सिंह जी, उत्तम भैया का म्यूजिक है उसमें, कब बशी फिल्म का नाम है। तो मुझे मुझे गर्व ही होता है इस बात का कि मुझे कॉल कर कर के लोग ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी 30 साल की तुम्हारी आवाज लगती
1: जी।
0: तो टेक्सचर आज सच नहीं बदला, हाँ, लेकिन क्या होता है उम्र के साथ हमारा शरीर जैसे फैलता है ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो फैलते हैं
1: जी।
0: तो वो थोड़ा सा फैलाव, थोड़ी सी गहराई और जरूर आ गई आवाज में। यस, और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी प्रोफेशनल साजिश थी
1: जी,
0: कि भाई
1: जी,
0: मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी
1: बनानी है,
0: तो, जी।
1: तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से बात करती है, जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी?
0: सुषमा से पूर्णिमा यही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचम दा को एक अलग कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
1: जी,
0: आ रहा
1: जी,
0: पर
1: जी, एक अलग रूप से जी पाती, उनके,
0: जी
1: संगीत
0: पाती
1: को,
0: उनके संगीत को। यस, क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूँ, शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे, सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया।
1: सुषमा से पूर्णिमा का जो सफर है, यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तारा, ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत है, ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
0: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन, बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलूं, पछाड़ खाई। वो लोग जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे, वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना। हाँ, ये भी देखा, ये दौर भी देखा है, मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना, क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना। तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं, या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले, वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना
1: जी।
0: तो ये सारी जिल्लतें सही, लेकिन एक बात बोलूं मंदाकिनी जी, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी
1: जी,
0: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहला गाना जब गाया, तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा कि बच्चे गा रहे हैं, उन वो पहचान करा रहे हैं सब लोग की, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं
1: जी।
0: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से, और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद

0: वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी।
1: बिल्कुल,
0: मैं हमेशा उनकी पीठ थपथपाऊंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी और वो कुछ भी हो पर उनके होने का एहसास उन्हें दिलाऊंगी।
1: बहुत
0: वो बहुत जरूरी,
1: ये एक बड़ा मन ही ये बात
0: वो बहुत
1: कह सकता है कि मेरे साथ जो बीता मैं आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वैसा बिल्कुल
0: कभी नहीं।
1: पूर्णिमा जी एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पास।
0: शाम है धुआं धुआं।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: कभी।
1: तो पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था तू तू तू तू।
0: पहला तो वो था तुम ताना नाना ताना
1: जी,
0: फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में बीता है
1: जी,
0: तो वो ऐसे मैंने बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रैटेजीज करती थी कि मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊंगी
1: जी,
0: दिस इज नॉट द एंड, मैं आऊंगी।

0: किसी ना किसी तरह मुझे एक मौका फिर से मिलेगा जरूर, क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक आप अगर कहें तो एक अजूबा ही रहा है ना। पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहां जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है ना। तो ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है। मेरी पूरी जिंदगी ही, मैं हमेशा कहती हूँ, एक करिश्मा रहा। तो मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा,
1: है ना? सही कहा।
0: तो उसके बाद मैंने माँ का गाना जब गाया, तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं, और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तुतु तारा के लिए बुलाया गया, है ना। तो उसमें फिर मैंने तुतु तारा के वक्त मैंने थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की। हालांकि गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था वो मैं हूँ गांव के गोरे बाबू रंग लहरे वरा मुझको भी चलना सिखा, वो वाला। तो उसमें मैंने सोचा कि जूही जी के लिए है तो उनका थोड़ा सा वो एंग्लिसाइज टोन है ना, तो आप अगर ध्यान से गाना सुनेंगे ना, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहां
1: जी के जी
0: मैं हूँ गांव के गोरे बाबू रंग लहरे और गीता दत्त जी का स्टाइल जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू, तो वो बहुत कामयाब
1: हुआ।
0: फिर दूसरा गाना तुतु तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो कर दो हमें माफ तुम कर दो ना वो सब, तो वो कामयाब हुआ। तो मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी को पकड़ के हमको चलना है।

0: हर हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, है ना, माने ना माने।
1: हाँ हाँ।
0: मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट, मेरा यूएसपी है मेरा, मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस दे और दे सकती हूँ वो शायद ही कोई

0: सके। जी सॉरी, मैं खुद से ये कह रही हूँ आज,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज है। तो बस मैंने उसी पे काम किया, वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले, तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा जरूर, शाम है धुआं धुआं, वो तो मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में, चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के लिए है
1: जी,
0: तो उनका उनकी डिक्शन बहुत साफ है, क्लियर जिसे हम कहते हैं। और हमेशा एक गाने में एक्सप्रेशन, तो क्वीन नहीं महारानी है वो, लेकिन उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशंस में आप देखेंगे उनके उनके जो माउथ की प्लेसिंग है ना
1: जी,
0: वो एक अलग टाइप की।
1: हाँ बिल्कुल,
0: वो मैंने नोट किया था।
1: और फिल्म अंजाम का ये गीत चने के खेत में माधुरी दीक्षित के करियर हाँ, का सबसे बेहतरीन डांस नंबर्स में से एक बन जाएगा।
0: हालांकि उसके बाद मुझे नहीं मिले माधुरी जी के लिए गाने, लेकिन इस बात का मुझे गर्व होता है कि माधुरी जी जहां आती हैं तो इस गाने को वो डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंस।
1: बिल्कुल सही कहा
0: है ना
1: आपने, और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे करियर का भी। तो बस फिर गाने मिलते गए मंदाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही। और देखिए ना, हीरो नंबर वन
0: जी,
1: बीवी नंबर वन, मैं तो रस्ते से जा रही थी, है ना, कुली नंबर वन, गोविंद और करिश्मा कपूर की जो पर्दे पर दिखाई देती है।
0: हाँ, ये बात हाँ, कि करिश्मा को मेरी इनफैक्ट काजोल को भी, वो मिस्टर लोवा लोवा, मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना ये,
1: क्या बात,
0: किसी और ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया हाँ, ना तुमने तो खुद नहीं गाया, मतलब इतने वो एक्सप्रेशन
1: हाँ,
0: मैं खुद भी मतलब शॉक में हूँ।
1: और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना हाँ, सुना कितना, तो मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है, वो आदमी इंसान ही बेकार है।
0: देखिए करिश्मा का एक अजीब एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका ना, वो सिर्फ मैंने कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उस पे, पर वो कमबख्श जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया, छोड़िए। खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते हाँ, हैं, वो हम पर छोड़ देते
1: जी, जी, जी।
0: सोने जैसा तेरा मन, हे सुन जरा सुन क्या कहते हैं दीवाने दिल की धड़कन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा हाँ तुम मेरा हीरो नंबर वन,
1: क्या बात है।
0: तो ये सब हमारे इनपुट्स
1: जी, बिल्कुल,
0: हीरो तुम मेरा हीरो, ये हमारे इनपुट्स होती है। सब मिलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इवन हमारे साजिंदे, तब जाकर एक गाना बनता है।
1: लेकिन एक गायिका या गायक की खुद की जो IQ है उसका जो है ना, वो होता है कि वो जिस हीरोइन के लिए गाना गा रही है उसे पकड़े, मतलब लगता है कि करिश्मा कपूर ही गाना गा रही है ना, ये चीजें सबसे बड़ी गायिका को, एक कलाकार को आगे तक ले जाती है।
0: कुदरत कुछ साथ देता है
1: हाँ,
0: पर कुदरत भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद से कुदरत की तरफ अपना कदम बढ़ा।
1: तो आप कहें तो यही गाना सुन लिया जाए और थोड़ा थिरक लिया जाए,
0: प्लीज,
1: हमारे श्रोता भी थिरक लेंगे
0: प्लीज,
1: तो आइए सुनते हैं।

0: कई बार इसके चलते ये भी होता है, पूर्णिमा जी की शानदार आवाज और हिट गाने देने के बावजूद सिंगर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है, तो आपको लगता है कभी कि आपको टाइपकास्ट किया गया? या
1: बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो बात आपसे कही थी ना कि मैंने शुरुआत अपनी जिंदगी की 5-6 साल की उम्र में ऐसे इमोशनल गाने मैं गाती थी कि डैडी भी रोते थे। इतने मतलब मैं गाने को समझ कर गाती
0: जी,
1: ऐवें ही नहीं गाती थी। तो उस बच्चे को अगर आप आगे जाकर ऐसे ही गाने, ऑफ कोर्स मैं I'm very proud of all the songs that I sang, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ और भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था, मुझे और अलग टाइप के गाने भी गवा सकते थे
0: जी,
1: और मैं उनको बखूबी निभाती, इसका मुझे पूरा यकीन है। पर ठीक है, इतना भी किसको मिलता है, और ये मैं दिल से कह रही
0: हूँ, जी, जी,
1: इतना भी किसको मिलता
0: बिल्कुल
1: है।
0: और इसी के चलते एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि एक 70 के दशक का चाइल्ड आर्टिस्ट का शानदार दौर और 90 के दशक का आपका चार्ट बस्टर दौर,
1: जी
0: कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि जहाँ हम ये क्षोभ करें या कहीं हम दुख करें कि मुझे वो गाना मिल जाता?
1: नहीं, मैंने ये दुख कभी किया भी नहीं मंदा के नीचे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुदरत जो करता है बहुत सोच। हम फिजिकल फॉर्म में हम माता पिता होते हुए जब अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं तो वो तो जगत पिता है, जगत माता है, वो तो क्या वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे?
0: बिल्कुल,
1: हमारा बुरा कभी नहीं सोचेंगे,
0: और उन्होंने सोचा भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तभी आज पूर्णिमा पूर्णिमा के नाम से जानी
1: बहुत जाती है। बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी, यहाँ सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स अभी भी गा रही हूँ, यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और आज ये सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं। फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं। जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया
0: जी,
1: मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी दो लाइन्स में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्यासाठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता, नवीन माझे पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला सापडला, कुठला देव बाई पाला जीवच कही वरला, उरत धड धड वाढली ठोका सरा चुकला छो मंतर।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: तो ये गाना मंदाकिनी जी, उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया मैंने मना कर दिया। वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वो ही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है, और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा
0: जी।
1: पर मैंने कहा देखो भाई, अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी, अभी ये एक साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूँ, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भाई से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूंगी। ही खत्म हुई, फिर एक हफ्ता वो फोन करते रहा, मैंने मना किया, फिर कुछ 15 दिन के बाद फोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास, वो मुझे हमेशा बेटा ही कहते, बेटू बाजा मैंने है, देखा मैं बजा बाजा, मैं तुझे कॉम्पोजिशन

0: बना रहा हूँ, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे, पर गाना तो तुझे ही है। सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये गाना गवाएंगे, तो ये कितनी बड़ी बात है, ये अहो भाग्य मैं कहूंगी जी। ये किसको मिलता है कि ये गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा। तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
1: ये बड़ी बात है,
0: तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है मंदा की नी जी।
1: बिल्कुल,
0: वो सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक तरफ।
1: बिल्कुल सही कहा। तो एक मराठी गाना सुन ले, बताइए।
0: मेरे बचपन में जब सुषमा श्रेष्ठा के नाम से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खड़े जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, और शांता शेळके जी दिग्गज लिरिसिस्ट, उन्होंने लिरिक्स लिखे थे और खड़े साहब ने, तो मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम HMV ने
1: जी,
0: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं, पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा है
1: जी।
0: किल बिल पक्षी बोलती, झुड़ झुड़ झुड़ झुड़ झरे वाहती, पानो पानी फूले बहरती, फूल पाखरे वर बिर बिरती, स्वप्न

0: बहुत सुंदर, क्या बात है।
1: तो मराठी गाने बस, मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से, बहुत ज्यादा। लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
0: अब जब आ गए हैं हम अन्य भाषाओं के आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि बंगाली, नेपाली, मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी आपने गाया। इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण यानी जो डिक्शन आप करते हैं और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि
1: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग ढांचे में ढल के आई हूँ। मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफकोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज के उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था। मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे क्या, मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं
0: जी, God
1: पर
0: gift.
1: ये गॉड गिफ्ट, ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था। वो हर भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी, तो शायद ये आई से जैसे आवाज मिली वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा। मंदाकिनी जी सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आ रहा है, जब मैंने जब रिमिक्स की बात की ना, नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गाया, पर वो गाना एक्चुअली मेरा है। ये जेंजी क्राउड को पता पड़ना बहुत जरूरी है, ऊंची है बिल्डिंग टाडा टाडा टाडा, लिफ्ट तेरी बंद है टाडा टाडा टाडा, कैसे मैं आऊं टाडा रा रा रा रा रा रा रा रा, आजा आजा आजा बैंड बाजा। तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया था
0: अनु मलिक के साथ,
1: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए है ना, पर वो रीमिक्स से मुझे याद आया।

0: पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया
1: जी,
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी से के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू पंचमदा के साथ, वसंत देसाई जी सबके साथ काम किया, जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलिंद ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया, जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, दिल में है तू, धड़कन में तू, ओ माय जानू आई लव यू, वो ही सब। देखिए क्या होता है, हाँ फर्क सिर्फ माहौल में हुआ, माहौल एज इन रिकॉर्डिंग करने का तरीका। उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं।
0: अब और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता था मंदाकिनी जी, फर्क ज्यादा मुझे अब महसूस हो रहा है, यानी 90s के बाद का जो दौर आया, और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है, हम भी जब तक गाते थे भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनकी सबकी जो एक उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था, नींव उनकी हम सबकी बहुत सॉलिड थी,
0: बेसिक्स बहुत,
1: हम सब म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना। अब के बच्चे, बुरा लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है, एक गाना 10-10 बच्चों से गवाते हैं, उन बच्चों को बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी कि नहीं, है ना। अब आप बोलो कि क्या, अरे तुम, अरे कैसे मना करेंगे, हर कोई चाहे ना कि भाई चांस मिल रहा है, कैसे ना बोलूं। अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरे रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग म्यूजिशियंस, फिर सिंगर्स कैबिन में या तो मैं अकेली सोलो सिंगर कोई भी या हम दो, है ना, तो कम से कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे, तो एक कम से कम नहीं नहीं तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी उस गाने के साथ जुड़ी है,
0: माहौल वैसे ही होता था वो, गर्माहट।
1: क्यों? क्योंकि अगर एक ने गलती की तो शुरुआत से गाना शुरू करना पड़ेगा, तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम करते थे कि हमसे कोई गलती
0: जाए,
1: कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, कि एक गाने में सोचिए ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको क्या होना चाहिए, तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना, उसके सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती हूं।
0: आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
1: जबकि बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूं उनकी, जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल है
0: जी।
1: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है, तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का जमाना है, क्या पूरा गाना गाने पे
0: तुला हुआ है।
1: अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़ो ना यार, कहा अभी मैंने देखा है,
0: मतलब संगीत की ये हालत अगर हो जाएगी तो एक नया सिंगर
1: तो वो पॉजिटिविटी आएगी,
0: वो सीखेगा कहाँ से आगे के लिए,
1: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी जाएगी, है ना। मुझे कमी सिर्फ न मेहनत में कमी है, न उनकी नीयत, शायद हो सकता है नियत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे, आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
0: रातों रात स्टार,
1: इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है,
0: जी, जी,
1: क्या
0: जी,
1: करेंगे वो
0: जी, जी,
1: तो हमने सराहना करनी

0: चाहिए, बच्चों की जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अच्छी सीख दो भाई
1: जी, ताकि आगे चलकर एक उनको उनका करियर जो बनता
0: है। हर बार उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है। हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, हम वो जो हमारा वक्त था हमें नहीं अच्छा लगता था कोई उस्ताद बनने की कोशिश अगर, लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है क्योंकि आज वक्त बदल गया है। तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को वो एक्सेप्ट करके बदले, मुझे लगता समझदारी उसी में।
1: जी, एक गाना सुन लिया जाए,
0: कौन सा बताइए?
1: आप बताइए, आपकी पसंद चल रही है, हमें तो आपके सभी गाने पसंद है।
0: हकीयत मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के, हकीयत चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के। मिसलो वलो व तेरी आंखों का जादू, मिसलो वलो व तेरी, उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना, मेरी आवाज में इतना मुझे दर्द हो रहा है कि पत्ती आ रही है मेरी आवाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही है। मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए।
1: नहीं नहीं बिल्कुल,
0: पर आज का ये मौका मैं नहीं गवाना नहीं चाहती,
1: और हम भी मौका नहीं गवाना चाहते, तभी तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं।
0: अखियां तू मिला ले राजा,

0: ये जाए।
1: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
2: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूं तो मुझे स्टेज शोज करने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आप पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं
1: जी।
2: पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: वहाँ पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
2: शाम है धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, युवा दर्शक होते होंगे और वो भी इस गाने को सुनना
2: बिल्कुल
1: पसंद करते।
2: बिल्कुल, और तू मेरा हीरो नंबर, पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा, और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
1: यही खास
2: स्टेज
1: है?
2: पे यही से मेरे लिए तो यही खास है
1: जी।
2: इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाती हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग।
1: अच्छा,
2: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना, हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा बहते
1: जी,
2: हैं
1: जी।
2: तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर अलग होंगे जब चिता की आग जलेगी
1: जी।
2: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
1: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद।
2: प्लीज, चने के खेत में।
1: अरे
2: 18 बरस की कंवारी कली थी, घूंघट में खड़ा छुपा के चली थी, फसी गोरी चने के खेत में, रहू चोरी चने

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूर्णिमा जी, और मैं तो कहूंगी सुषमा श्रेष्ठा जी भी
1: और अभी पूर्णिमा श्रेष्ठा जी,
0: आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।
1: तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे श्रोताओं को मेरा सादर नमन। बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5 बजे हैं श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी अलवर सरिस्का चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम महिला जगत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी साथी प्यारी रेडियो सखी अर्चना उपाध्याय। सखियों, हर महिला की अपनी एक कहानी है, हर घर की अपनी एक पहचान है और हर जीवन में एक नई सोच और नई दिशा की ज़रूरत होती है। इसी सोच के साथ महिला जगत लेकर आता है आपके जीवन से जुड़े कुछ विषय, आपके स्वास्थ्य और खुशियों से जुड़ी कुछ बातें और समाज और परिवार से जुड़े सरोकार और ऐसी उपयोगी जानकारी जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन को कुछ थोड़ा और बेहतर बना सके। तो आइए आज भी कुछ पल अपने लिए निकालते हैं, कुछ नया जानेंगे, कुछ विचार करेंगे और कुछ अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। सखियों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रकृति के साथ आगे बढ़ना ही विकास है। जानकारियों के अंतर्गत जानेंगे वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है और अंत में चर्चा करेंगे आयुर्वेद में छुपे हैं सेहत के राज। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी अपनी साथी अर्चना उपाध्याय लेकर आई है महिला जगत एक नई सोच एक नई दिशा। श्रोताओं, विकास यह शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या तस्वीर बनती है? बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, नई तकनीकी, तेज इंटरनेट, बड़े बड़े उद्योग, निश्चित रूप से ये विकास का हिस्सा हैं। लेकिन एक सवाल, अगर विकास के साथ हमारी हवा प्रदूषित हो जाए, पानी कम हो जाए, पेड़ लगातार कम होते जाएं और वन्य जीव अपना घर खोने लगें, तो क्या इसे पूरा विकास कहा जा सकता है? शायद नहीं। असली विकास वही है जिसमें इंसान आगे बढ़े लेकिन प्रकृति पीछे न छूटे। हमारे जीवन का अस्तित्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए,

0: भोजन के लिए मिट्टी और कृषि चाहिए और संतुलित पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की आवश्यकता होती है। यानी प्रकृति हमसे अलग नहीं है, प्रकृति है तभी हमारा जीवन है। सखियों, विकास और पर्यावरण साथ साथ कैसे हो सकते हैं? आज विज्ञान और तकनीकी ने हमारे ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। मोबाइल ने दूरियों को कम कर दिया है, इंटरनेट ने जानकारियों को हमारी हथेली तक पहुंचा दिया है, नई तकनीकों ने खेती, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नई सुविधाएं दी हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि तकनीकी और विकास का इस्तेमाल प्रकृति के हित में कैसे किया जाए। जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, पानी की बचत करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, कचरे को अलग अलग रखना और ज़रूरत के अनुसार ही संसाधनों का उपयोग करना। ये बातें छोटी छोटी लग सकती हैं, लेकिन श्रोताओं, ये बातें बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। बदलाव क्योंकि बदलाव हमेशा छोटी छोटी आदतों से ही शुरू होता है। सखियों, घर से शुरू कर सकते हैं प्रकृति की रक्षा। इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि घर की रोज़मर्रा की बहुत सी आदतें महिलाओं के निर्णयों से प्रभावित होती हैं। घर में पानी की बचत, बिजली का अनावश्यक उपयोग न करना, कपड़े या सामान का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल न करना, रसोई के कचरे को सही तरीके से अलग अलग रखना, बच्चों को पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये सब पर्यावरण संरक्षण के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम होते हैं। सखियों, हम अपने बच्चों से कहते हैं, पेड़ केवल लकड़ी नहीं है, ये हमारे जीवन के साथी हैं। पक्षियों को केवल देखने के लिए नहीं, उनके अस्तित्व का सम्मान करने के लिए भी प्रकृति में जगह चाहिए और शायद यही संस्कार आगे चलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। सखियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आज से कई साल बाद हमारे बच्चे हमसे पूछें, जब आपको पता था कि प्रकृति की रक्षा जरूरी है तब आपने क्या किया? तब हमारे पास जवाब होना चाहिए, हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी, हमने एक पेड़ लगाया था, हमने पानी बचाया था, हमने कचरा इधर उधर नहीं फेंका था, हमने पशु पक्षियों के प्रति संवेदना रखी थी और हमने दूसरों को भी प्रकृति से प्रेम करना सिखाया था। यही तो जिम्मेदार विकास है, प्रकृति के साथ आगे बढ़ना। प्रकृति को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना विकास नहीं होता। सखियों, चर्चा हमारी आगे भी रहेगी जारी और अब है मनोरंजन की बारी, तो चलिए सुनते हैं एक मधुर गीत। गीत के बाद हम आपको जानकारी देंगे, वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। पहले सुनते हैं ये गीत।
1: अपनी मोहब्बत के सदके में

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सखियों, उम्मीद है आपको गीत बहुत ही पसंद आया होगा। अब हम अपने प्रोग्राम के दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं। आज की जानकारी, भारत में वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सखियों, हमारे जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है, ये हजारों जीवों का घर है। बाघ, हाथी, चीतल, हिरण, मोर, पक्षियों की अनेक प्रजातियां हैं। सरीसृप, छोटे छोटे कीट, हर जीव की प्रकृति की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर किसी एक कड़ी में असंतुलन आता है तो उसका प्रभाव पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है। सखियों, कई बार हम सोचते हैं जंगल में रहने वाले जानवरों से हमारा क्या लेना देना, लेकिन वास्तव में हमारा जीवन प्रकृति के इन जीवों से भी जुड़ा हुआ है। वन्य जीव पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका संरक्षण केवल जानवरों को बचाने का विषय नहीं है। सखियों, ये प्रकृति और मानव जीवन के भविष्य को सुरक्षित रखने का विषय है। वन्य जीव सप्ताह हमें याद दिलाता है कि हमें अन्य जीवों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों में जाते समय नियमों का पालन करें। वन्य जीवों को परेशान कभी भी ना करें। उन्हें खाना खिलाने या उनके करीब जाने की कोशिश ना करें। प्लास्टिक या कचरा जंगल में कभी न छोड़ें, और सबसे ज़रूरी, वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहने दें। सखियों, जब हम किसी जंगल में जाते हैं और वहाँ हिरण, मोर या कोई वन्य जीव देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम उनके घर में अतिथि हैं, इसलिए हमारा व्यवहार भी अतिथि जैसा ही होना चाहिए, सम्मानपूर्ण और जिम्मेदार। इसलिए वन्य जीवों को संरक्षित रखिए, संवेदनशील बनिए और अपने बच्चों को भी संवेदनशील बनाइए। सखियों, समय हो चला है मनोरंजन का, सुनते हैं एक और मधुर गीत।
5: तुम्हें छू कर आई होगी, मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
6: ये नदियां

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
4: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: सखियों, उम्मीद है ये गीत भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अब समय है आज के कार्यक्रम की विविधा का, और आज का विषय है आयुर्वेद में छुपे हैं सेहत के राज। श्रोताओं, भारत की प्राचीन स्वास्थ्य परंपराओं में आयुर्वेद का महत्वपूर्ण स्थान है। आयुर्वेद केवल बीमारी होने के बाद उपचार की बात नहीं करता, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली, आहार विहार और शरीर के मन पर संतुलन का भी जोर देता है। सखियों, हमारे घरों में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिसे हम सदियों से भोजन और पारंपरिक स्वास्थ्य की देखभाल का हिस्सा मानते हुए आए हैं, जैसे हल्दी, अदरक, तुलसी, जीरा, धनिया, सौंफ, और इनका इस्तेमाल भारतीय रसोई में लंबे समय से होता आया है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात भी है, प्राकृतिक चीज़ का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति के लिए हर मात्रा में सुरक्षित ही होगी। किसी बीमारी, दवा, गर्भावस्था या विशेष स्वास्थ्य स्थिति में आयुर्वेदिक औषधि लेने से पहले योग्य चिकित्सक की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। सखियों, आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण सोच है स्वस्थ रहने के लिए नियमित और संतुलित दिनचर्या। समय पर सोना, समय पर उठना, संतुलित भोजन करना, शरीर को सक्रिय रखना, स्वच्छता का ध्यान रखना और मन को शांत रखने की कोशिश करना। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में शायद ऐसी बातें हम सब ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं। हम अक्सर स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ी चीज़ ढूंढते हैं, लेकिन कई बार स्वास्थ्य की शुरुआत बहुत साधारण चीज़ों से होती है। सही भोजन, पर्याप्त आराम, नियमित गतिविधि और संतुलित जीवन शैली। जी हाँ सखियों, भोजन भी बने स्वास्थ्य का साथी। हम सोचते हैं कि भोजन को हम कैसे अपना साथी बना सकते हैं। आयुर्वेद में आहार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और हमारी प्रकृति तथा जीवन शैली के अनुरूप हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए केवल स्वाद के लिए खाना खाने के बजाय हमें यह भी पूछना चाहिए कि क्या यह भोजन हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। मौसमी और संतुलित भोजन लें, फल और सब्जियाँ लें, दालें और अनाज लें, पर्याप्त मात्रा में पानी लें और अत्यधिक तला भुना, मीठा या अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड भोजन सीमित मात्रा में लें। ये बातें आधुनिक स्वास्थ्य की आहार की सलाह से भी मेल खाती हैं। शरीर से मन का भी रिश्ता होता है, और आयुर्वेद की चर्चा हो और मन की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तनाव हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। काम का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियाँ, लगातार मोबाइल और स्क्रीन, और कभी कभी बिना वजह की चिंता। ऐसे में हम अपने मन को आराम कैसे दें? कुछ समय प्रकृति के साथ बिताइए। सुबह की हल्की धूप लीजिए, थोड़ा पैदल चलिए, अपनों से बातचीत करिए, प्रार्थना करिए, ध्यान करिए, उसके लिए भी कुछ समय निकालिए, और सबसे ज़रूरी बात, अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए। सखियों, ये सारे काम यदि आप कर रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो श्रोताओं, आज की हमारी तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, प्रकृति का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण और स्वस्थ जीवन। अगर प्रकृति स्वस्थ होगी तो हमारा वातावरण स्वस्थ होगा। अगर हमारा पर्यावरण संतुलित होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बेहतर होगा।

और अगर हम अपनी जीवन शैली और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो जीवन में ऊर्जा और प्रसन्नता बनी रहेगी। तो आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें, एक पेड़ की रक्षा करेंगे, पानी की बचत करेंगे, वन्य जीवों का सम्मान करेंगे और अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी जीवन शैली अपनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्रकृति हमारी ज़रूरत है, वन्य जीव हमारी जिम्मेदारी हैं और स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के महिला जगत से मुझे दीजिए अनुमति। मैं हूं आपकी अपनी साथी अर्चना उपाध्याय। आप सुन रहे थे आकाशवाणी अलवर सरिस्का चैनल से कार्यक्रम महिला जगत। मुस्कुराते रहिए, प्रकृति से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोच के साथ जीवन को सार्थक बनाते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई सोच के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 5:30 हुए हैं। पेश है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा।

लाख मुश्किल जमाने में है, रिश्ता तो सिर्फ निभाने में है। स्टूडियो की टाइम मशीन में वक्त हुआ जाता है शाम के 5:30, साल के 365 दिनों में खत्म होता हुआ दिन शुमार 276। आवाज आप सुन रहे हैं संतोष चौधरी की। कुछ बातें जो आप कहना चाहते हैं, कुछ बातें जो मैं सुनना चाहता हूं, तो थामिए मेरा हाथ और चल पड़िए सुहाने सफर पर इस प्रोग्राम के साथ जिसका नाम हुआ करता है दोस्तों युवाणी। दोस्तों, उम्मीद और आशा है कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं और लगातार जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की चर्चा की तरफ। दोस्तों, आज की बात शायद छोटी है, लेकिन अगर इसे हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो बहुत कुछ बदल सकता है। बात है गलती को सही करने में ना लगे रहें, बल्कि उन्हें सुधारने पर ध्यान दें। सुनने में दोनों बातें लगभग एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत गहरा अंतर है। गलती को सही करना अक्सर सिर्फ उस एक घटना को ठीक कर देना होता है, जबकि गलती को सुधारना अपने भीतर उस बदलाव को लाना है ताकि वो गलती वापस दोबारा ना हो। जरा सोचिए, हमसे कोई गलती होती है, हम तुरंत उसे छुपाने लगते हैं, सफाई देने लगते हैं, किसी और पर दोष डालने लगते हैं, या फिर किसी तरह उस गलती के परिणाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी से गुस्से में हमने कोई ऐसी बात कह दी जिससे सामने वाला दुखी हो गया, बाद में हमने उससे माफी मांग ली, गलती सही हो गई, लेकिन क्या सचमुच सब कुछ सुधर गया? अगर अगली बार गुस्सा आने पर हम फिर वही बात कह दें तो हमारी माफी सिर्फ उस पल का समाधान थी, सुधार नहीं। असली सुधार तब होगा जब हम अपने गुस्से को समझेंगे, उसके कारण को पहचानेंगे और अगली बार प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को रोकना सीखेंगे। हमारी जिंदगी में भी यही होता है दोस्तों। परीक्षा में कम अंक आए तो हम अगली परीक्षा के लिए कुछ दिन ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई करने का तरीका नहीं बदला, कमजोर विषयों पर काम नहीं किया और सिर्फ परिणाम सुधारने की कोशिश में लगे रहे तो समस्या तो वही रहेगी। नौकरी में कोई गलती हुई तो हम उसे छिपा सकते हैं या तुरंत ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने ये नहीं समझा कि गलती हुई क्यों, तो भविष्य में वही समस्या फिर सामने आ सकती है। इसलिए गलती का अंत सिर्फ उसे ठीक कर देना नहीं होता है, गलती का असली अंत तब होता है जब उसे हम कुछ सीख सकते हैं। अक्सर हम गलती से ज्यादा इस बात से डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमें लगता है कि गलती स्वीकार कर ली तो हमारी छवि खराब हो जाएगी, लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि गलती स्वीकार करना

कमजोरी नहीं बल्कि आत्म जागरूकता की निशानी है। जो व्यक्ति कह सकता है कि हाँ मुझसे गलती हुई, वही आगे यह भी कह सकता है कि और अब मैं इसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अपनी गलती को स्वीकार करना पहला कदम है, उसके कारण को समझना दूसरा, और अपने व्यवहार में बदलाव लाना तीसरा कदम। कई बार हम अपनी गलतियों के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम कहते हैं कि समय खराब था, सामने वाले ने ऐसा किया, मौका नहीं मिला, हालात मेरे पक्ष में नहीं थे। हो सकता है इनमें से कुछ बातें सच भी हों, लेकिन हर परिस्थिति में एक सवाल हम खुद से पूछ सकते हैं।

याद था सामने वाले ने ऐसा किया, मौका नहीं मिला, हालात मेरे पक्ष में नहीं थे। हो सकता है इनमें से कुछ बातें सच भी हो, लेकिन हर परिस्थिति में एक सवाल हम खुद से पूछ सकते हैं, इस स्थिति में मैं क्या बेहतर कर सकता था। ये सवाल हमें शिकायत से समाधान की ओर ले जाता है। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन खुद को सुधारना मेहनत मांगता है। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है दोस्तों, कि रिश्ते सिर्फ इस बात से नहीं बचते कि हम हर झगड़े के बाद सॉरी बोल दें। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम ये समझने की कोशिश करें कि झगड़ा बार बार क्यों हो रहा है। अगर हर बार माफ़ी के बाद वही व्यवहार दोहराया जाएगा तो माफ़ी सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है। लेकिन जब हम अपने व्यवहार को बदलते हैं, सामने वाले की बात सुनते हैं और अपनी कमियों पर काम करते हैं, तब माफ़ी का अर्थ भी बदल जाता है, क्योंकि तब माफ़ी के भी साथ सुधार दिखाई देता है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: चलिए दोस्तों, अपनी चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें अपनी गलतियों से भागना नहीं चाहिए। गलती होना इंसान होने का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे जीवन में कभी कोई गलती ना हुई हो। फर्क सिर्फ इतना सा है कि कुछ लोग अपनी गलतियों को बोझ बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हें शिक्षक बना लेते हैं। एक गलती हमें तोड़ भी सकती है और वही गलती हमें पहले से बेहतर इंसान भी बना सकती है। चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस गलती के बाद क्या करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपसे कोई गलती हो तो सिर्फ ये मत सोचिए कि इसे ठीक कैसे करूं। एक कदम आगे बढ़कर खुद से पूछिए, मैं इसमें सुधार क्या लाऊं? क्या मुझे अपनी आदत बदलनी है? क्या मुझे किसी से बेहतर संवाद करना सीखना है? क्या मुझे धैर्य रखना सीखना है? क्या मुझे अपनी तैयारी का तरीका बदलना है? या फिर मुझे अपने फैसले लेने के तरीके पर दोबारा विचार करना है? जब सवाल बदलता है तो जवाब भी बदलने लगते हैं। कभी कभी जीवन में हमें एक ही गलती बार बार दिखाई देती है, क्योंकि शायद हमने अभी तक उससे वो सबक नहीं सीखा जो हमें सीखना चाहिए था। इसलिए अपनी गलतियों से शर्मिंदा होने के बजाय उनसे ईमानदारी से बात कीजिए। देखिए कि वे आपसे क्या कहना चाहती हैं या क्या सिखाना चाहती हैं, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस तो नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख आपके आने वाले समय को ज़रूर बदल सकती है। तो आज इस छोटी सी बात को याद रखिए, गलती को सिर्फ सही मत कीजिए, उसे सुधारिए। परिणाम को मत छिपाइए, कारण को समझिए। खुद को दोष देने में मत समय गवाइए, खुद को बेहतर बनाने में समय लगाइए। क्योंकि जिंदगी में कामयाब वो नहीं होता जिससे कभी गलती नहीं होती, कामयाब वो होता है जो अपनी गलती को पहचानता है, उससे सीखता है और अगली बार खुद को बेहतर रूप से सामने लाता है। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली चर्चा की तरफ। और आज की कहानी उस युवक की है जिसने एक दो नहीं बल्कि 34 बार असफलता का सामना किया। ऐसी असफलताएं जिनके बाद शायद कोई भी व्यक्ति अपने फैसले पर सवाल उठाने लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा के अजय प्रताप सिंह ने हर बार खुद

से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मुझे रुक जाना चाहिए, और हर बार उनका जवाब था नहीं। 7 साल की मेहनत, 34 असफल प्रयास और फिर 35वें प्रयास में यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा पास करके असिस्टेंट कमांडेंट बनना। अजय की कहानी सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं, बल्कि ये बताती है कि असफलता के बाद खुद को दोबारा खड़ा करना क्या होता है। अजय प्रताप ने 2018 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और साल 2019 में उन्होंने यूपीएससी का पहला प्रयास किया, लेकिन प्रीलिम्स में सफलता नहीं मिली। उसके बाद 2020 में भी असफलता मिली और 2021 में भी फिर प्रीलिम्स पार नहीं कर पाए। लगातार 3 वर्षों की असफलता किसी के आत्मविश्वास को हिला सकती है, लेकिन अजय ने तैयारी छोड़ने के बजाय अपनी कमियों को पहचानने की कोशिश की। साथ ही वो कुछ और एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते रहे। अजय की कहानी में एक और बेहद करीब की असफलता भी आई। यूपीएसआई परीक्षा में फिजिकल टेस्ट में सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर की कमी के कारण बाहर हो गए। 7 साल की मेहनत करने वाला व्यक्ति जब किसी परीक्षा में ज्ञान या तैयारी की कमी नहीं बल्कि इतनी छोटी शारीरिक कमी से बाहर हो जाए तो उसके मन पर क्या गुजरती होगी। फिर आया यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर का फिजिकल टेस्ट। अजय लिखित परीक्षा पास कर चुके थे, लेकिन फिजिकल टेस्ट में रस्सी चढ़ने की चुनौती के दौरान वे बहुत मामूली अंतर से चूक गए। और फिर आया वह प्रयास जिसने 7 साल के संघर्ष को एक नई पहचान दी। 2024 में अजय ने एक बार फिर यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा दी। इस बार उन्होंने रिटन एग्जामिनेशन पास किया, फिजिकल टेस्ट भी सफलतापूर्वक पास किया और इंटरव्यू तक पहुंच चुके थे। इतने लंबे संघर्ष के बाद शायद उनके भीतर वह डर नहीं बचा था जो किसी पहली या दूसरी कोशिश में होता है। 34 असफलताओं ने उन्हें यह सिखा चुकी थी कि इस असफलता से डरने के बजाय उसके बाद वापस खड़ा होना ज्यादा जरूरी होता है। और आखिरकार उन्होंने इंटरव्यू भी पास कर लिया। जब परिणाम आया तो ऑल इंडिया रैंक 392, 34 असफलताओं के बाद 35वें प्रयास में मिली यह रैंक उनके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं थी, यह 7 वर्षों की मेहनत, इंतजार, निराशा और दोबारा उठ खड़े होने का परिणाम थी। तो अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और लगातार असफल हो रहे हैं, अगर आपका नाम बार बार किसी सूची में नहीं आ रहा, तो आपके दोस्त आगे निकल रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप वहीं खड़े हैं, तो अजय की कहानी को याद रखिए। लेकिन सिर्फ ये मत सोचिए कि उन्होंने 34 बार असफल होने के बाद सफलता पाई। इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि उन्होंने अपनी असफलताओं के बाद क्या किया। उन्होंने खुद का मूल्यांकन किया, अपनी कमियों पर काम किया और अगली कोशिश के लिए खुद को तैयार किया।

चलिए श्रोताओं, बढ़ते हैं अपनी अगली चर्चा की तरफ और जानते हैं मिशन लाइफ के बारे में। दोस्तों, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम कितने ऐसे काम करते हैं जिनका सीधा संबंध पर्यावरण से है। नल खुला छोड़ना, जरूरत से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करना, बाजार से हर छोटी चीज के लिए प्लास्टिक की थैली लेना, खाने को जरूरत से ज्यादा बनाकर बचा हुआ भोजन फेंक देना, पुराने मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को सामान्य कचरे में डाल देना, ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन जब करोड़ों लोग इन्हीं आदतों को दोहराते हैं तो इनका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। मिशन लाइफ इसी सोच को बदलने की कोशिश है, यानी पर्यावरण की चिंता सिर्फ किसी एक दिन या किसी एक विशेष अभियान तक सीमित न रहे बल्कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने। सात विषयों के अंतर्गत कुल 75 ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें व्यक्ति और समुदाय अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। पहली बात, ऊर्जा की बचत। क्या हमें कमरे से बाहर निकलते समय पंखा या लाइट बंद करने में कुछ मुश्किल होती है? शायद नहीं, फिर भी कई बार हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मिशन लाइफ के सुझावों में LED बल्ब और ट्यूबलाइट का इस्तेमाल जहां संभव हो, सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का इस्तेमाल न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद करना और एयर कंडीशनर का तापमान 24 डिग्री रखने जैसे व्यवहार शामिल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पानी। पानी हमारे सिर्फ एक संसाधन नहीं, जीवन की बुनियादी जरूरत है, इसलिए पानी का इस्तेमाल उतना ही करें जितना जरूरत है। तीसरी थीम, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना। बाजार जाते समय अपना कपड़े का थैला ले जाना, अपनी पानी की बोतल साथ रखना, प्लास्टिक की जगह पुनः उपयोग लिए जा सकने वाले सामान को प्राथमिकता देना। चौथी थीम है ई कचरा कम करना। आज मोबाइल, कंप्यूटर, ईयरफोन, चार्जर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन जब कोई उपकरण पुराना हो जाता है तो हम अक्सर उसे सामान्य कचरे में फेंक देते हैं। मिशन लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तुरंत फेंकने के बजाय उनकी मरम्मत और दोबारा इस्तेमाल को प्राथमिकता देने पर विचार किया जाता है। पांचवी थीम है सतत खाद्य प्रणालियां। छठी थीम है कचरा कम करना और सातवीं थीम है स्वस्थ जीवन शैली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इसमें बदलाव की शुरुआत किसी और से करने की बात नहीं कही जाती, शुरुआत खुद से करने की बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी एक व्यक्ति के बदलने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर वही सोच लाखों और करोड़ों लोगों की हो जाए तो तस्वीर बदल सकती है। एक व्यक्ति प्लास्टिक की थैली छोड़ता है, दूसरा पानी बचाता है, तीसरा बिजली की खपत कम करता है, चौथा कचरा अलग करता है और पांचवा पुराने सामान को फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल करता है। अलग अलग दिखने वाले छोटे से कदम मिलकर एक बड़ी सामूहिक आदत बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। उम्मीद और आशा है कि आपको हर बार की तरह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपने दोस्त संतोष चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: जब जब आप करेंगे हमें याद, हम मिलेंगे आपको अपने ही पास। अगर आप हैं दुनिया के किसी भी कोने में और सुनना चाहते हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल, तो आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। हमें सुनने के लिए आप जाइए अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर, वहां से कीजिए डाउनलोड न्यूज ऑन AIR।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के छह बजे हैं। श्रोताओ, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया।

0: इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेंगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ईरान विवाद समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम की कीमतें कम हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के धीमे पड़ने से हालात अनुकूल होने की उम्मीद है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 49वें ओवर में 7 विकेट पर 316 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण। हमारी आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रमों का विवरण व उनका प्रसारण समय इस प्रकार से है। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे संध्या 6:10 पर और संध्या 7:30 पर। लोक संगीत का आप आनंद लेंगे रात 8:15 पर। आइए अब सुनते हैं हमारे जयपुर केंद्र से रिले कार्यक्रम। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी व राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। संध्या 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। अब सुनते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे रात 8:45 पर और रात 11:00। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा रात 9:00। विविध भारती के कार्यक्रम श्रोताओं आप सुनेंगे रात 9:15 से। रात 10:00 आप सुनेंगे जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाईलाइट कैप्सूल। आज हमारे प्रसारण समाप्त होंगे रात 11:05 पर।

अब सुनिए हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण व उनका प्रसारण समय। कल हमारे प्रसारण आरंभ होंगे प्रातः 5:53 पर। वंदनवार चिंतन आप सुनेंगे प्रातः 6:05 पर। झरोका कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 6:30 पर। प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान। संगीत सरिता आप सुनेंगे प्रातः 6:45 पर। प्रातः 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। फिल्म संगीत का कल आप आनंद लेंगे सवेरे 7:30 पर, संध्या 6:10 पर और संध्या 7:30 पर। सवेरे 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सवेरे 8:30 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य पत्रिका। संध्या 5:00 आप सुनेंगे नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम फुलवारी। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम विवरण का समय रहेगा संध्या 6:05 पर। संध्या 7:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम भारती। रात 8:15 पर आप आनंद लेंगे लोक संगीत का। अब सुनिए हमारे जयपुर केंद्र से रिले कार्यक्रम। हिंदी में प्रादेशिक समाचार कल आप सुनेंगे सवेरे 9:00, दोपहर 1:00 और संध्या 6:30 पर। संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम। हिंदी में समाचार श्रोताओं कल आप सुनेंगे प्रातः 6:00, सवेरे 8:15 पर, दोपहर 12:00, दोपहर 2:15 पर, संध्या 6:00, रात 8:45 पर और रात 11:00। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा दोपहर 2:00 और रात 9:00। विविध भारती के कार्यक्रम श्रोताओं आप सुनेंगे सवेरे 9:10 से। कल आप सुनेंगे रात 10:00 जापान में चल रहे

0: जब जब आप करेंगे हमें याद, हम मिलेंगे आपको अपने ही पास। अगर आप हैं दुनिया के किसी भी कोने में और सुनना चाहते हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल, तो आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। हमें सुनने के लिए आप जाइए अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर, वहाँ से कीजिए डाउनलोड न्यूज ऑन AIR ऐप। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जब आप लाइव रेडियो के ऑप्शंस पर जाएंगे, तो वहां आपको मिलेंगे रेडियो के ढेरों चैनल्स। इनमें से आप सर्च कीजिए अपना फेवरेट ऑल इंडिया रेडियो अलवर, जहां आप हमें पाएंगे अपने साथ, ओनली एट न्यूज ऑन AIR।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 6:10 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। पहला नगमा हमने लिया है मिक्का सिंह, नीरज श्रीधर और आशीष पंडित की आवाज में सिंह इज किंग फिल्म से। गीत लिखा है मयूरपुरी ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अरिजीत सिंह और शमीरा कुपिकर की आवाज़ में बरेली की बर्फी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गीत लिखा था पुनीत शर्मा ने और संगीत दिया था समीरा ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। अगला नगमा हमने लिया है उदित नारायण और अलका याग्निक व साथियों की आवाज़ में इश्क फिल्म से। गीत रचना है राहत इंदौरी की और संगीत निर्देशन है अनु मलिक का।

कैलाश खेर की आवाज में काल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गीत लिखा था शब्बीर अहमद ने और संगीत दिया था सलीम सुलेमान ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। संध्या के 6:30 हुए हैं। श्रोता कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी व राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान, आदर्श आचार संहिता लागू, मतदान 4 चरणों में होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित किया, कहा महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण सभ्य समाज की पहचान। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है। और राज्य से मॉनसून की विदाई हुई, दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे। 8 अक्टूबर से लोक सूचना जारी होगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण का मतदान 23 अक्टूबर, दूसरे का 29 अक्टूबर, तीसरे का 4 नवम्बर और चौथे चरण के वोट 14 नवंबर को डाले जाएंगे। वहीं पंच और सरपंच पदों के लिए 25 और 31 अक्टूबर तथा 6 और 16 नवंबर को मतदान होगा। उन्होंने अलग अलग चरणों के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने और नाम वापसी की तारीखों का भी ऐलान किया है।
1: मतदान की तिथि और समय जिला परिषद पंचायत समिति के लिए 23 तारीख को 23-10 को, फिर पंच सरपंच पद के लिए जो नामांकन की तिथि है वो है 24-10, और मतदान की तिथि है वो 25-10 को है, और मतगणना जो है वो 25-10 को है, और उप सरपंच का चुनाव 26-10 को है। मतलब पार्टी जो है वो 22 तारीख से 26 तारीख तक गांव में रहेगी 5 दिन। इसी तरह से ये द्वितीय चरण 28 को शुरू होगा और 1 नवंबर को खत्म होगा। तृतीय चरण 3 नवंबर को शुरू होगा, 7 नवंबर को खत्म होगा, और चतुर्थ चरण 13 नवंबर को शुरू होगा और 17 नवंबर को समाप्त होगा।
0: राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव मतपत्रों से होंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाया जाएगा। 14,403 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में जैसलमेर और फलौदी में वोट डाले जाएंगे। जयपुर में सबसे ज्यादा 18 लाख से अधिक वोटर होने के कारण चुनाव 4 चरणों में होंगे।
1: 12 श्रीगंगानगर, करौली और कोटा के प्रमुख उपप्रमुख और इनमें सम्मिलित पंचायत समितियों के प्रधान उपप्रधान, इनका पंचवर्षीय कार्यकाल दिसंबर 26 में पूर्ण होगा। अतः उक्त पदों के आम चुनावों की तिथियों का निर्धारण ये पृथक से किया जाएगा।
0: पंचायत चुनाव के लिए कुल 4,03,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 2,08,00,000 से अधिक पुरुष और 1,94,00,000 से ज्यादा मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा

168 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इन चुनाव के जरिए 1,55,000 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। गौरतलब है कि ये चुनाव 41 जिला परिषदों और 457 पंचायत समितियों में होने जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए 3,17,000 से अधिक कार्मिकों को नियोजित किया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए लगभग 2,72,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनातगी रहेगी। राज्य सरकार ने आज भारतीय पुलिस सेवा के 14 अधिकारियों

0: सिंह राठौड़ सिरोही और आदित्य काकड़े फलौदी के पुलिस अधीक्षक होंगे। इस बीच राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों के भी तबादले और पदस्थापन किए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में इन्हें तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। स्थानांतरण सूची में कई उपखंड स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण किसी भी सभ्य समाज की पहचान है। मुख्यमंत्री आज जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में आयोजित नारी शक्ति सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास मातृशक्ति की सफलता और कहानियों से भरा हुआ है। इनमें संघर्ष, साहस और संकल्प की शक्ति दिखाई देती है, जो किसी भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया और विभिन्न योजनाओं से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि सशक्त महिलाएं राष्ट्र निर्माण का आधार हैं। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति की प्रतिबद्धता, परिश्रम और सामूहिक शक्ति से राजस्थान आत्मनिर्भर और सक्षम बन रहा है।
1: हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। लखपति दीदी योजना के माध्यम से, कृषि सखी के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़ी हुई बहनें आज घर से बाहर निकल करके आत्मनिर्भर बन रही है। इसके लिए मैं राजस्थान की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एनएचएम के तहत 60 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और लखपति दीदियों को स्कूटी की चाबी वितरित की। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को 150 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी ऋण योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 93 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री बिरला ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कोटा मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट की स्थापना के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी मिल गई है। इससे आने वाले समय में हाड़ौती संभाग और आसपास के कैंसर रोगियों को इलाज के लिए जयपुर और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में 25 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों को भी वित्तीय स्वीकृति मिली है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन को विकसित करने का काम कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण बाजार तक उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में आयोजित गौ पालक सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सबसे अधिक फायदा पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है और बैंकिंग सेक्टर स्थिर तथा मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। एक रिपोर्ट। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। ऐसा बैंकों की बैलेंस शीटों में महत्वपूर्ण सुधार और एक चुनौतीपूर्ण सफाई प्रक्रिया के बाद हुआ है। इससे उनकी विश्वसनीयता मजबूत हुई है। एनपीए में आई तेज गिरावट से बैंक संकट से निपटने की बजाय सुधारों को बढ़ाने की स्थिति में है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को लेकर सकारात्मक रुख

0: गया है। एजेंसी ने कहा है कि बैंकों के लिए कामकाजी माहौल अनुकूल बना रहेगा, जिससे नीतिगत स्थिरता और घरेलू मांग से समर्थन मिलेगा। एजेंसी का कहना है कि देश की मजबूत आर्थिक स्थिति बैंकिंग सेक्टर के लिए सशक्त आधार तैयार कर रही है। साथ ही मूडीज ने दोहराया है, सरकारी बैंकों को सरकार का समर्थन मिलता रहेगा, जिससे वैश्विक जोखिमों के बावजूद भारत का बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित और स्थिर बना रहेगा। न्यूज डेस्क से सालिहा गाजी।
1: और अब मौसम। प्रदेश में अक्टूबर महीने की शुरुआत में भी गर्मी का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में दिन के समय गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर और झुंझुनू जिले के पिलानी सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आई है। सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर और नागौर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिरोही जिले के आबूराज में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, इससे रात के समय ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम के इस बदलाव से दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने लगा है। जहां दिन के समय तेज धूप है, वहीं सुबह और शाम कई इलाकों में हल्की ठंडक का एहसास होने लग रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि राज्य से मानसून की विदाई हो चुकी है।
2: जी, आज प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। औसतन यह विदाई 30 सितंबर तक मानी जाती है, जो कि पिछले 30 सालों के अगर हम रिकॉर्ड के एवरेज किसी के अनुसार देते हैं, तो आज मानसून 3 दिन देरी के साथ में राजस्थान से विदा हो गया है। और इसी के साथ में प्रदेश में जो है एक बार पुनः शुष्क वातावरण हो गया है। आगामी 5 दिनों तक चूंकि एक एंटी साइक्लोन का प्रभाव जो है राजस्थान पे देखने को मिलेगा, जिसके प्रभाव से तापमान में हल्की वृद्धि रहेगी और मौसम जो है मुख्यतः शुष्क बना रहेगा।
1: जापान में चल रहे एशियाई खेलों के 14वें दिन आज भारत ने पुरुष क्रिकेट और कुश्ती में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। वहीं पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने कोरिया के चांग सांग हान को हराकर भारत को स्वर्ण कामयाबी दिलाई। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक जीतकर मेडल टैली में 4थे नंबर पर पहुंच गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान, आदर्श आचार संहिता लागू, मतदान 4 चरणों में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित किया, कहा महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण सभ्य समाज की पहचान। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है। और राज्य से मानसून की विदाई हुई, दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सतीश वर्मा ने तैयार किया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज आम चुनाव 2026 के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही जिले में गांव की सरकार चुने जाने को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिले में पंचायती राज चुनाव के तहत 8 पंचायत समितियों में प्रधान और 262 ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य चुने जाएंगे। गांव की चौपालों पर राजनीतिक बैठकें शुरू होने के साथ ही प्रत्याशियों की दावेदारी देखने को मिल रही है। इससे पहले जिले में 6 नगर निकायों के चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए। इन चुनावों में सवाईमाधोपुर, खंडार, बोली और वजीरपुर में भारतीय जनता पार्टी के सभापति और अध्यक्ष चुने गए। वहीं गंगापुर सिटी और बामनवास में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मानसून के दौरान 3 माह बंद रहने के बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में नया पर्यटन सत्र 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है। गणेश धाम गेट पर जिला कलेक्टर कानाराम, मुख्य वन संरक्षक शारदा प्रताप सिंह और उप वन संरक्षक सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पर्यटन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर पार्क में प्रवेश कराया। पहली पारी में सफारी को लेकर पर्यटकों, वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीते दिनों जिले में वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत हुई। गणेश धाम पर आयोजित हुए कार्यक्रम में ग्रामीण और विद्यार्थियों को

0: राष्ट्रीय उद्यान का निःशुल्क भ्रमण कराया गया। वन्यजीव सप्ताह के दौरान वन और वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जिले में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के साथ समाज कल्याण सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दिन वृद्धजन का सम्मान किया गया और बुजुर्गों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच की गई। जिला मुख्यालय पर 70वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस लाइन परेड मैदान पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुआ। 7 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के 40 विभिन्न जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। जिले में बीते दिनों विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेवा के रंग राष्ट्र के संग थीम पर विभिन्न विभागों की ओर से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर जिले में भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया गया। इसके अंतर्गत माय युवा भारत, राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी सहित अन्य संगठनों और सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती जिले में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुलाब बाग स्थित राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके पश्चात स्वच्छता कार्यक्रम के तहत श्रमदान किया गया। अक्टूबर माह की शुरुआत में राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न राजकीय विभागों में नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। समारोह में जिले के जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सहित नव नियुक्त कार्मिक शामिल हुए। जिले में बीते दिनों धार्मिक आयोजन हुए। गणेश चतुर्थी के अवसर पर रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश का लक्खी मेला 13 से 15 सितंबर तक आयोजित किया गया। मेले के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिनेत्र गणेश के दरबार में धोक लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिले भर में गणपति की विधिवत रूप से स्थापना की गई तथा 10 दिनों तक विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गंगापुर सिटी में भी हर वर्ष की भांति भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई काली सिंध नदी तक पहुंची, जहां गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। जिले में पर्युषण पर्व के अलावा रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तेजादशमी का पर्व भी श्रद्धा भाव, आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। बीते दिनों हुई बारिश के बाद रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दिन में धूप में तेजी के चलते गर्मी का असर बना हुआ है। इसी के साथ सवाईमाधोपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश में आए पंचायत चुनाव रो ऐलान, चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू भी, चार दौर में आए वोट पड़ेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर माए नारी शक्ति सम्मेलन न संबोधित कीना, कहो महिलाओं रो मान और मजबूती सभ्य समाज री पिछाण। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो सरकार गांवई हलका माए माली व्यवस्था मजबूत बनावन सारू पशुपालन आधारित व्यवस्था विकसित कर रही है। और प्रदेश माए चौमासा री बिरखा बंद भी, दिन रात रात तापमान माए आंतरो बध्यो। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रदेश माए आज पंचायतां रा चुनाव रा ऐलान सा गई। चुनाव वाला हलका माए चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू भई की है। राज्य रा निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह जयपुर माई खबर नवीसा ने संबोधित करता था का बतायो कि प्रदेश माए पंचायत चुनाव चार दौर माए कराया चावेला। 8 अक्टूबर ने चुनाव री लोक सूचना जारी करी चावेला। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों रा चुनाव सारू पहला दौर माए 23 अक्टूबर, दूजा दौर माए 29 अक्टूबर, तीजा दौर माए 4 नवम्बर और चौथा दौर माए 14 नवंबर न वोट पड़ेला।

0: पंच अर सरपंच ओहदा सारू 25 अर 31 अक्टूबर अर 6 अर 16 नवंबर न वोट पड़ेला। निर्वाचन आयुक्त बतायो कि वन स्टेट वन इलेक्शन रा तेत कराया जा रहा पंचायत चुनाव रा तेत सरपंच अर वार्ड पंच रा चुनाव मतपत्रा माथे छाप लगार जदके जिला परिषद अर पंचायत समिति सदस्या रा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम रे जरिए कराया जावेला।
1: मतदान की तिथि और समय जिला परिषद पंचायत समिति के लिए 23 दस को, फिर पंच सरपंच पद के लिए जो नामांकन की तिथि है वो है 24 दस, और मतदान की तिथि है वो 25 दस को है, और मतगणना जो है वो 25 दस को है, और उप सरपंच का चुनाव 26 दस को है। मतलब पार्टी जो है वो 22 तारीख से 26 तारीख तक गाँव में रहेगी 5 दिन। इसी तरह से ये द्वितीय चरण 28 को शुरू होगा और 1 नवंबर को खत्म होगा। तृतीय चरण 3 नवंबर को शुरू होगा, 7 नवंबर को खत्म होगा, और चतुर्थ चरण 13 नवंबर को शुरू होगा और 17 नवंबर को समाप्त होगा।
0: निर्वाचन आयुक्त बतायो कि वन स्टेट वन इलेक्शन रातेत कराया जा रहा पंचायत चुनाव रातेत सरपंच और वार्ड पंच रा चुनाव मतपत्रा माथे छाप लगार जदके जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्या रा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रे जरिए कराया जावेला।
1: 12 श्री गंगानगर करौली और कोटा के प्रमुख उप प्रमुख और इनमें सम्मिलित पंचायत समितियों के प्रधान उप प्रधान, इनका पंचवर्षीय कार्यकाल दिसंबर 26 में पूर्ण होगा, अतः उक्त पदों के आम चुनावों की तिथियों का निर्धारण ये पृथक से किया जाएगा।
0: पंचायत चुनाव में 4,03,00,000 उम्बत्ता लोग वोट देवन रा पात्र भेला। आम आय 2,08,00,000 उम्बत्ता पुरुष और 1,94,00,000 उम्बत्ती महिलाएं शामिल है। इस आगे 168 थर्ड जेंडर मतदाता ही है। वोट समारे 7 से 6 बजे ताई दिया जा सकेला। ध्यान जोग है कि ए चुनाव 41 जिला परिषद और 457 पंचायत समितियां माए फैला। चुनाव रा काम माए 3,17,000 उम्बत्ता कर्मचारियां रे ड्यूटी लगाई जावेला। कानून व्यवस्था बनाई रखन और शांति सागर चुनाव करावन सारू 2,72,000 उम्बत्ता पुलिस वाला ही तैनात करया जावेला। राज्य सरकार 14 आईपीएस एहलकारां रा तबादला कर दीना है। कार्मिक विभाग रा संयुक्त शासन सचिव धीरज कुमार सिंह का न्यू जारी हुकम रे मुजब संजीव नैन ने सीकर रा एसपी बनाई जिया है। कुंदन कंवरिया दौसा, अजय सिंह राठौड़ सिरोही और आदित्य काकड़े फलौदी रा एसपी बनाई जिया है। इस आगे 15 आरएएस एहलकारां राई तबादला करी जिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि महिलाओं रो मान और मजबूती किनी सभ्य समाज री पिछाण है। वे आज जयपुर में राखी जी नारी शक्ति सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि भारत रा इतिहास में मायणा री कामयाबी री कहानियां सागे संघर्ष हिम्मत और संकल्प री ताकत नजर आवे है जो समाज में मोटो बदलाव ला सके है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महिलाओं सागे बातचीत कर न्यारी न्यारी सरकारी योजनाओं वारी जिंदगी में आया चोखा बदलाव री जानकारी लीनी। वह कहो कि मजबूत महिलाओं देश बनावन री बुनियाद वे है। श्री शर्मा कहो कि महिलाओं री मेहनत और भेड़ी ताकतों प्रदेश खुदरेपाण उबो वे रियो है।
2: हमारी माता बहने आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। लखपति दीदी योजना के माध्यम से, कृषि सखी के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़ी हुई बहने आज घर से बाहर निकल करके आत्मनिर्भर बन रही है। इसके लिए मैं राजस्थान की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM रातेत 60 एम्बुलेंस ने हरी झंडी बता रवाना कीनी और लखपति दीदिया ने स्कूटी री चाबियां सौंपी। इस आगे श्री शर्मा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रो फायदो लेवन वाला रा खाता में 150 करोड़ रुपया री रकम भेजी। वे लखपति दीदी ऋण योजना रातेत खुद सेवक समूह ने 93 करोड़ रुपया रा कर्ज दीना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा एहलकारा सागे मीटिंग कर और स्वास्थ्य उन जुड़िया सुविधा और बेहतर बनावन रबारा माए चर्चा कीनी। वे बतायो कि कोटा मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट खोलन सारू करीब 150 करोड़ रुपया की मंजूरी मिल गई है। श्री बिरला कहो कि मेडिकल कॉलेज उन जुड़िया अस्पताल में 25 करोड़ रुपया रा न्यारा न्यारा काम आ स

0: अरुई माली मंजूरी दे दीरी जी है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो है कि सरकार गांवाई हलकारी माली व्यवस्था ने और मजबूत बनावन सारू पशुपालन रा काम न बढ़ावो दे रही है। इनमाए गोबर बायोगैस और जैविक खाद बनावन लेर दूध बनी चीजा ने और बेहतर बनार बाजार ताई पहुंच बनावन रे कोशिश शामिल है। श्री शाह आज भोपाल माए राखी जा गौ पालक सम्मेलन माए बोल रहा है। वह कहो कि सहकारिता मंत्रालय बनिया पाछे सबों बत्तो फायदो लेवन वाला माए पशुपालक के शामिल है। गृह मंत्री आपराधिक न्याय व्यवस्था माए सुधारा रो जिक्र करता थका कहो के भारतीय न्याय संहिता पूरी तरह लागू भिया पाछे भारत री आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया माए सबों नुवी बन जावेला।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह कहो कि भारतीय न्याय संहिता पूरी तरह लागू व्या पाछे एफआईआर दर्ज करावन लेर सुप्रीम कोर्ट ताई मामला रो निपटारो 3 साल री मियाद माय करियो जा सकेला। भात भात री चुनौतियां रे बावजूद देश री माली व्यवस्था तेजी आगे बढ़ रही है और बैंकिंग हलको थरता सागे मजबूत बन रियो है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। ऐसा बैंकों की बैलेंस शीटों में महत्वपूर्ण सुधार और एक चुनौतीपूर्ण सफाई प्रक्रिया के बाद हुआ है। इससे उनकी विश्वसनीयता मजबूत हुई है। एनपीए में आई तेज गिरावट से बैंक संकट से निपटने की बजाय सुधारों को बढ़ाने की स्थिति में है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को लेकर सकारात्मक रुख जताया है। एजेंसी ने कहा है कि बैंकों के लिए कामकाजी माहौल अनुकूल बना रहेगा जिससे नीतिगत स्थिरता और घरेलू मांग से समर्थन मिलेगा। एजेंसी का कहना है कि देश की मजबूत आर्थिक स्थिति बैंकिंग सेक्टर के लिए सशक्त आधार तैयार कर रही है। साथ ही मूडीज ने दोहराया है सरकारी बैंकों को सरकार का समर्थन मिलता रहेगा जिससे वैश्विक जोखिमों के बावजूद भारत का बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित और स्थिर बना रहेगा। न्यूज डेस्क से सालेहा गाजी।
0: अरब मौसम। प्रदेश में आसोज महीना में आई गर्मी रो असर महसूस करियो जा रियो है। मौसम विभाग रे मुजब राज्य रा आतुणी हल्का में आई गर्मी रो बत्तो असर है। श्री गंगानगर और झुंझुनू जिला रा पिलानी समेत कई ठोणा पारो 40 डिग्री सेल्सियस रे आरएस आर चल रियो है। दूजगानी राज्य रा उगनी और लंकाऊ हल्का में रात्रि भगत पारो 1-2 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर और नागौर में आई रात्रि भगत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड करियो जा रियो है। सिरोही जिला रा आबूराज में आए कम से कम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस नापिचियो। इस आगे दिन में तेज तावड़ा तो सुबह शाम कई हल्का में हल्की ठंडक रो एहसास वेवन लग्यो है। मौसम केंद्र जयपुर रा वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा बतायो कि प्रदेश में चौमासा री बिरखा अब बंद वेगी है।
3: जी, आज प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। औसतन ये विदाई 30 सितंबर तक मानी जाती है, जो कि पिछले 30 सालों के अगर हम रिकॉर्ड के एवरेज किसी के अनुसार देखें तो आज मानसून 3 दिन देरी के साथ में राजस्थान से विदा हो गया है। और
0: अरब खबर एशियाई खेलना। जापान में चल रहा एशियाई खेलना रा 14वें दिन आज भारत पुरुषों री क्रिकेटर हॉकी होड़ और कुश्ती में सोना रा तमगा जीतिया। भारत री क्रिकेट टीम फाइनल मुकाबला में पाकिस्तान ने 19 रन हरार सोना रो तमगो जीतियो। पुरुषों री हॉकी होड़ में आई भारत मलेशिया ने 5-1 शिकस्त देर सोना रो तमगो देश ने जितायो। पुरुषों री 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती होड़ में अमन सहरावत उत्तर कोरिया रा चांग सोंग हान ने हरार भारत ने सोना री कामयाबी दिराई। इस आगे भारत सोना रा 21, चांदी रा 27 और कांसा रा 37 तमगा जीत और पदक तालिका में 4 नंबर माथे पूक्यो है। आखिर में खास समाचार एक फेरू सुन ले रहा हूं।

0: प्रदेश में पंचायत चुनाव रो ऐलान, चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हुई, चार दौर में वोट पड़ेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर में नारी शक्ति सम्मेलन ने संबोधित कीना, कहो महिलाओं रो मान और मजबूती सभ्य समाज रे पिछाण। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो सरकार गांवाई हलका माए माली व्यवस्था मजबूत बनावन सारो पशुपालन आधारित व्यवस्था विकसित कर रही है। और प्रदेश माए चौमासा री बिरखा बंद हुई, दिन रात्रा तापमान माए आंतरो बढ़ियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। संध्या के 7 बजे है। श्रोताओ अब आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी, जिसे आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
7: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
6: वो कैसे?
7: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
6: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
8: किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोतावान है, आशाधा भाई का घना घना राम राम, और अनीता जी आपने भी हमारा घना घना राम राम सा।
9: राम राम आशा जी आपने भी, और सुनबा वाला सभी श्रोतावान है अनीता की घनी घनी राम राम सा।
8: और आज का किसान वाणी कार्यक्रम में थोड़ी सी बात आप यही करेला का, आपनों भी जो आप यही सोचा चाह भाई, जो भी काश्तकार भाया, किसान बहन भाई या जो भी खेती बाड़ी से जुड़े चे, वे लोग यदि कार्यक्रम ने सुने तो जो आप बातचीत करा वहां को कोई न कोई, कोई न कोई रूप में उन्हें फायदो जरूर मिले। आज थोड़ी सी चर्चा आप यही कर रहा है कार्यक्रम का मायने है कि देखो सा, आपनों भी लक्ष्य यही छे और किसान भाई भी यही चाहे छे भाई, जो भी खेती बाड़ी में मेहनत वे करे, उत्पादन लेवे, वहां को चोखो फायदो, चोखी मानो वहां की मेहनत को फल जरूर मिले, वहां की आमदनी बढ़े। इतना ही हमेशा ही जाए कहता रहे कि छोटी छोटी बात ही जहां को ध्यान रखना चाहे और वहां को ध्यान रखता हुआ काम कर मोटा मोटा फायदा लेना चाहिए। अब इतनी सारी बात कदे कहीं आप ले रही हवा चा, आज बात यही करेला कि अगर अपना काश्तकार वहां फसल चक्र ने अपनावे चे, तो वहां ने बहुत सारा फायदा हुए चे, और दो चार फायदा तो आप बने तैयार ही बैठे जो।
9: देखो सा, किसान भाई अक्सर यही सोचे कि भाई जी फसल, जी खेत में चोखी फसल हो रही है, आप उनको ही हर साल क्यों न बोवा, क्योंकि जब चोखी हो रही है तो आपने लगे कि नहीं बड़ी आमदनी भी हुई है, आपने बढ़िया फसल हुई है, तो चोको बड़ी आपने को मुनाफा हो लो। पर किसान भाई ने एक बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए जी, भाई एक ही खेत में लगातार एक ही फसल लगातार बोबा से उमा पोषक तत्वों की कमी होती जावे छे, और दूसरी बात के ऊ फसल से जुड़ा कीट रोग भी बढ़ता रहे छे, तो इसलिए या सबको एक ही समाधान छे कि अपना किसान भाई फसल चक्र में अपनावे। भाई फसल चक्र को यही मतलब छे, भाई एक ही खेत में

0: हर मौसम में एक ही फसल न बार न्यारी न्यारी फसलों ने योजनाबद्ध तरीका से अपना किसान भाई बोवर।
1: और मोटा फायदा की बात करा तो देखो मोटो फायदो या कि खेत की जो माटी चे उनकी उर्वरा क्षमता अगर बेहतर चे तो उत्पादन हमेशा ही बेहतर हो गलो। तो जिया की सामान्य फसल के बाद अगर आप दलहनी फसल लेवा, दलहन की फसल के बाद फिर दूसरी फसल लेवा, तो वह यूं कहें कि आप कोई दिन तो पांच पकवान दूसरा खा रहे चो, कोई दिन मीठो खा रहे चो और कोई दिन नमकीन खा रहे चो, तो आपको स्वाद और सेहत दोनों बनने दीजिए। रोज रोज मीठो खा रहे चो तो आपने शुगर हो जावली, रोज रोज खाटो खटाई खा रहे चो तो आपने एसिडिटी हो जावली। तो वही माटी का स्वास्थ्य ने बेहतर राखबा के लिए भी फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। एक ही साथ ही जिया बार आप भूले भाई एक फसल आप बोया चो उमा उनका कोई कीड़ा बीमारी चे उनका हिसाब से छिड़काव बुरकाव कर रहे चो, बार बार फिर उन्हें बो रहे चो, तो फिर उनकी वह जो क्षमता चे वह कम हो रही चे। बदल बदल रहे बोवला तो नया नया कपड़ा पहरोला तो आप भी तो सुंदर लागोला ना, वही चीज फसल पर भी होवे चे लागू कि आपने बार बार अपना खेत में फसल चक्र अपनानी चाहिए और बदल बदल बोनी चाहिए ताकि जो उर्वरक शक्ति है वह बढ़ती रहे, कीट रोग चे वे कम हो, खरपतवार चे वह को भी नियंत्रण हो जावे
0: जी। और साथ ही साथ मिट्टी की जो संरचना चे उम्मा भी जैविक तरीका से सुधार होगा। वही फसल अवशेष न्यारा न्यारा जड़ प्रणाली मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखवा में मदद राखे चे और उत्पादन छने उम्मा भी स्थिरता आवे चे। मौसम एक या कोई एक फसल में समस्या आवास है किसान की पूरी जो आर्थिक स्थिति चे वह एक ही फसल पर निर्भर रहो चे, पर अगर वो न्यारी न्यारी फसल बोवे लो तो सभी चीजा में धीरे धीरे न्यारी न्यारी तरीका से सुधार आवेलो और वहां की गुणवत्ता भी बढ़ती जावेली।
1: और एक बात को ध्यान मैं दिलावो चाहूंगी अनीता जी बात पे कि देखो सा आपनो च राजस्थान प्रदेश वो राजस्थान प्रदेश में पानी की या सिंचाई की जो व्यवस्था चे काश्तकार भाई के लिए कई के बहुत बढ़िया चे, कई के छह ही कोने वैसे मानसून के भरोसे ही खेती करे चे। तो अगर आप जो काश्तकार भाई फसल चक्र ने अपनावे चे तो कई फसल ऐसी हो चे जिन्हें कम पानी की जरूरत हो चे, कई फसल ऐसी हो चे जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत हो चे। तो अगर एक एक क्रम में या ना अपनावेला तो यह जो संतुलन छे ना वो बने रहे वालों। और अगर इस मान लो आपका पानी की व्यवस्था कम चे, आप हर बार ज्यादा फसल जिन्हें पानी की जरूरत ज्यादा चे वह बोया जाओ ना तो उनकी आपूर्ति कोनो वाली तो उत्पादन घटे लो। इतना ही पानी का जो संसाधन चे वहां की स्थिति ने देखते हुए भी फसल चक्र ने अपना जो काश्तकार बनाया चे वे चोखू उत्पादन ले ही सके चे।
0: और देखो सा सभी फसल चक्र जो सभी किसान भाई के लिए सभी खेतों के लिए एक जैसे कौन होवे, मिट्टी को प्रकार मिट्टी की जो सिंचाई कतरी जरूरत है जगह की सुविधा कसी चे, बरसात होवे चे कम होवे चे ज्यादा हो चे या मौसम के हिसाब से ही फसल को चुनाव करनी चाहिए। तो जो किसान भाई चे वो सिर्फ जो फसल चक्र की योजना बनावे चे ने तो वो सिर्फ या ना सोचे कि कसी फसल ज्यादा हो ली या कसी फसल लेनी चे, बल्कि या भी सोचे कि भाई कसी फसल हमारा खेत के लिए खेत की माटी के लिए सही और बेहतर होगली, तो ये सब चीजा सोच रही वे फसल को चुनाव करे। और देखो सा एक साथ ही अब अपना कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ भी पधार गए चे श्री राजवीर सिंह मीणा जी, ये आपने जानकारी देवला बागवानी में अगरवुड पेड़ों का महत्व का बारे में।
1: तो जानकारी यहाँ से लेवला पड़ी छोटा सा अंतराल के बाद में।
2: सुनो इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना।
3: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
2: वो कैसे?
3: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
2: कॉल 1800 1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
4: किसान भाइयों राम राम, आज आप बात कर रहे हैं अगर वुड की खेती राजस्थान में कहीं की जा सके है, एक तो नयो विषय है और इस पर जानकारी ले बहुत जरूरी है क्योंकि पारंपरिक खेती से अलग एक नवाचार है अगर वुड की खेती। इस विषय माते जानकारी देवा खातिर कार्यक्रम में आया है राजवीर मीणा। सब पहले तो मीणा साहब कार्यक्रम में स्वागत है आप लोग। राम राम साहब।
5: राम राम साहब। राम राम साहब किसान भाइयों।
4: अगर वुड की खेती की बात कर रहे हैं, हाँ पहले तो नाम ही तो नयो है कि समझ में कौन आ रहे हो और काई है, तो आप बताओ साहब कि अगर वुड काई हो वह है।
5: नाम नयो को ने आप भूल रहे से इन्हें। अगर वुड एक भारत को पारंपरिक पेड़ है
4: जी,
5: जिन्हें आप समय के साथ भूल गा, लेकिन आज की डेट के मायने अगर वुड ने आप अगर जो सही तरीका सु समझा तो सोना सु भी महंगी खेती या अगर वुड की खेती है। अपन नॉर्मल सब मतलब हर घर में पूजा कर रहे हैं और रोज अगरबत्ती जलावा,
4: बिल्कुल साथ
5: तो अगरबत्ती को नाम ही अगर वुड सु पड़े हो।
4: अच्छा
5: भी अगरबत्ती को नाम अगर वुड का पेड़ सु ही पड़े।

0: है तो अगर वुड के बारे में पूछ रहे थे, मैं बताया था अगर वुड छे कहीं
1: जी। अच्छा, तो यो ही पौधो है जिन्हें पुराना लोग ऊद को पौधो कहता
0: खेता।
1: अच्छा साहब, तो मैंने साहब यो बताओ कि और कहीं कहीं विशेषता है? आप यो तो बता दिया कि अगरबत्ती बने है इसु, और कोई विशेषता एक ही बताओ।
0: विशेषता अगरबत्ती सु खत्म करना है, एक ही विशेषता है इसु दुनिया को सबसे महंगो इत्र अगर वुड सु बने है।
1: अच्छा,
0: एको सबसे महंगो ऑयल अगर वेड सु बने है। एक इकी जो वुडिंग में यहाँ पर आभूषण बनावा तो सोना से भी महंगा आभूषण अगरवुड की लकड़ी का ही बने।
1: अच्छा,
0: अतरो इम्पोर्टेंट है अगरवुड।
1: और अगर राजस्थान की बात करी जावे, अठे को अगर काश्तकार अगरवुड लगाबो चाह रहे हो है, तो कहीं संभावना है अगरवुड की अठे खेती करबा की?
0: देखो साहब, किसान भाइयों, अगरवुड को बेया मेन चलन आपने सूक्ष्म एरिया में हुआ है, जैसे आसाम
1: जी,
0: केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नमी वाली जगह, अधिक वर्षा वाली जगह। लेकिन अपने राजस्थान में भी आप इन्हें कर सका टेक्निकल तरीका से।
1: अच्छा,
0: इसके लिए सबसे ज्यादा आपने जो ध्यान रख वाली विषय है, बा एक तो पेड़ ने लगाता ही पानी को ध्यान, तो आप इन्हें ड्रिप पे कर सका खेती ने।
1: अच्छा,
0: दूसरो दो साल ये पेड़ ने आप कोई पेड़ की छाया या बड़ा पेड़ पुराना पेड़ लाग गया आपने सीम डोली पे, तो बीच छाया में आप इन्हें लगावा, दो साल अगर जो पेड़ सरवाइव कर रही है तो फिर टेंशन को नहीं।
1: अच्छा,
0: फिर निका आराम हुई खेती ने बल्क में कर सका आप। तो अगर वुड में अधिक ध्यान दे बाकी जरूरत को ना, लेकिन मैनुअल ध्यान चाहे कि दो साल आपने एक मतलब पानी की मात्रा को ध्यान देना है और थोड़ा छाया को
1: नहीं। यहाँ पर टावरा को पहली सर्दी पहली बरसात को ध्यान रखा जाए, अगर वुड में भी तो जो शुरुआत का दो साल ध्यान रखवा की बात है। अरे मीणा साहब, अगर भारतीय बाजार की बात करें, कोई काश्तकार लगा लियो, सफल भी हो गया पौधा, लाग गा बच गा, अब खेती भी कर ली साहब, खेत में अत्ता बड़ा पेड़ लागे ला, तो जाहिर है कि खेत जो है आप रुक जावे लो, तो भारतीय बाजार में कई स्थिति है, मांग है ही की?
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा जो थे मैडम। एक ही बम्पर मांग है और दिन प्रतिदिन की मांग बढ़ रही है। हिंदुस्तान का मायने एक ही जो मार्केट है वो मूल मार्केट आपने आसाम में
1: जी,
0: मुंबई में, दिल्ली में, केरल में, और सबसे नजदीक आपने राजस्थान के पड़े कन्नौज, यूपी उत्तर प्रदेश के मायने। और कन्नौज ने तो सुनिया भी होला कि इत्र की नगरी भी दूसरा नाम भी कहो जाओ है, तो सबसे बड़ी मंडी जेवी की बट है। अब रही बात कीमत की
1: जी,
0: तो मैम एक कीमत को आप गणित लगावा जना देख लियो, ते मैनुअल आप हल्की सु हल्की लकड़ी को भी भाव माना तो बिल्कुल 50,000 से स्टार्ट हुआ कि केजी के भाव में।
1: अच्छा,
0: 50,000 रुपया किलो। और अगर ग्रेड बढ़िया बनती चल जाओ जाए तो बेस्ट ऑफ बेस्ट 7-8 लाख रुपया केजी इसकी लकड़ी को भाव रहे
1: जी।
0: और आपने बाजार के मायने जहां आ तो बात करें आप अगरवुड की जो मेन लकड़ी से बिकी
1: जी,
0: अब देखा होगा भाई जो पूरा पेड़ जे लकड़ी तो बूम बहुत ज्यादा इन तो किलो का भाव निकल रही है,
1: हाँ।
0: कुंटल का भाव निकल रही है,
1: हाँ।
0: तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक सफेद जिन्हें आप बरूद बोला,
1: हाँ।
0: सफेद बरूद च नहीं गो, बीकी आपने बाजार का मान है जिनमें अगरबत्ती बना रहा चाहे जिनमें आप और कॉस्मेटिक का सामान बना रहा चाहे जिन लेडीज डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक का सामान बना हुआ, बाट है 1500 रुपए किलो से लेर 20,000 रुपए किलो को भाव भी लकड़ी को रहे
1: बुरादा। अच्छा, और इको जी इत्र बनावे ताई जो इको तेल वेल काढ़ा भी को कहीं रहे
0: इको तेल को जो प्रोसीजर जे को तेल निकले पाचे बी की कीमत बाजार में बहुत अपर चे।
1: अच्छा,
0: जब भी तेल सुई और अनगिनत में बता भी कौन सू अतरा प्रोडक्ट बने भी तेल में सू भी तेल को भाव 50 लाख रुपया लीटर।
1: अच्छा,
0: 40 लाख रुपया लीटर, 80 लाख रुपया लीटर, अलग अलग ग्रेड को तेल चे
1: गुणवत्ता के हिसाब जी। तो तेल कहीं निकले इको कोई आसानी से निकल जावे कोई और
0: भी तेल ने आपा को निकाल सका डायरेक्ट इको पूरा प्रोसीजर रहे एक कंपनी लागे भी हिसाब सारो काम आगा गजले

0: आपां तो किसान ने तो बस अतरी बतानी चाहिए, ज्यादा बता बहुत बेकार जाए। किसान ने मोटा मोटी अतरो समझ ले किसान कि जी हाँ अपने आज वो खेत के माने लिप्टिस लगा दीजिए, सफेदा लगा दीजिए, अल्डू लगा दीजिए, और भी तो पेड़ लगा रही है, बस बिना एक एक बयान कोई पेड़ समझ लगा ले और एक देख रेख कर ले बा कर पाचे। फिर एक पेड़ की जो मेन प्रोसीजर चे पेड़ को, मतलब आजकल सब थाने भी ध्यान चे किसान ने भी ध्यान चे कि आप फंगस ने खेत से बगा बैठे फंगिसाइड गिरा
1: जी,
0: पर ये पेड़ की खानी उल्टी जे।
1: अच्छा,
0: इस पेड़ में उल्टो फंगस गिरनी पड़े अपने।
1: अच्छा,
0: इन्हें इंजेक्ट करना पड़े जे।
1: अच्छा,
0: 4-5 साल पाचे आप इन्हें इंजेक्ट करना या कोई बढ़िया जानकार से इंजेक्ट कराओला। इंजेक्ट करा पाचे आर्टिफिशियल वुडिंग चालू है जे।
1: अच्छा,
0: नेचुरल वुडिंग में तो बहुत टाइम लगे जे इन्हें, लेकिन अब किसान पूरा खर्चो कर रही है जे, अतरो टाइम भी लगा रही है, तो बिगन अतरो टाइम छे बने तो बिने बीतानी आप इन्हें फंगस गेर और फिर तैयार करा।
1: अच्छा,
0: इन्हें इंजेक्ट करना पड़े और जो अपना ग्राइंडर हो जाए, ग्राइंडर से एक मायने छेद करना पड़े, छेद कर पाचे बस दवाई इंजेक्ट हो जाए एक मायने, और दवाई इंजेक्ट हो जा पाचे फिर 2-3 साल 4 साल का मायने कंप्लीट हो जाए।
1: अच्छा,
0: ये पेड़ का मायने समथिंग 30% से 25% 30% का समथिंग तो ऑयल निकले हो जाए और बाकी एक 40% वुडिंग क्वालिटी बन जाए।
1: अच्छा, तो
0: मैंने साहब, तो अगर... पेड़ की मैनुअल कीमत है पकड़ लो किसान ने तो 1,00,000 और 3,00,000 रुपए तो नहीं मिली खड़ा पेड़ की। पी आगे को प्रोसीजर जो पेड़ ले जा रही आपने सु भी कोई कहानी चाहिए आगे।
1: अच्छा,
0: बहुत लंबो प्रोसीजर चे
1: इन आपका काश्तकार ने तो 1,00,000 से 3,00,000 तक तो मिल ही
0: जाए, मिल जाए आराम आराम मिलना, इस कम तो संभव नहीं होने।
1: अच्छा, तो फिर अगर 1,00,000 से 3,00,000 रुपया एक पेड़ का मिल रहा है, 10-12 पेड़ भी है के, तो बिकी लागत निकल जावे
0: आराम निकल जावे,
1: निकल जावे
0: आराम से निकल जावे।
1: महंगो सौदो तो कौन पड़े,
0: कोई महंगो सौदो कौन पड़े, बस थोड़ा दिन को कष्ट को टाइम चे थोड़ा दिन टाबर सूख ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
1: अच्छा, तो आर्थिक स्थिति में तो पूरा पूरा योगदान दे देवे। अच्छा मीना साहब, अगर आप रख रखाव की मौसम की बात करा तो की तरीका की तैयारी करनी चाहिए, जर खेत की तैयारी आपने कहीं विशेष तरीका से करनी,
0: कोई विशेष तैयारी होने एक बोई नॉर्मल प्रोसीजर जो यहाँ पर दो बाई दो को खाडो करा जाए, कोई पेड़ नहीं लगा बाटा।
1: हाँ,
0: जो कोई आम को लगा रहा जाए या कोई अमरूद को लगा, दो बाई दो को खाडो करा जा, बिखाटा की पूरी माटी बाहर निकाल और गले गोबर को खाद
1: जी,
0: SSP MOP पोटास जिंक जो भी आप फर्टिलाइजर गेरा गेर और नॉर्मल पेड़ लगाना चाहिए अपने। पेड़ लगाता टाइम अपने एक क्वालिटी के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1: अच्छा,
0: एक क्वालिटी को ध्यान न दिया आपा जन आपा चोट खा सके।
1: तो क्वालिटी को ध्यान रखने के लिए कौन सी बातें हैं जहाँ पर एक काश्तकार ने गौर करना चाहिए?
0: तो मैं इसकी क्वालिटी 21 वैरायटी आती है इसकी।
1: अच्छा,
0: 21 किस्म कह सकते हैं।
1: हाँ,
0: पर सबसे बढ़िया जो है कि वैरायटी चे बिको नाम चे आकालेरिया मालाकेंस।
1: अच्छा,
0: आकालेरिया
1: मालाकेंस,
0: मालाकेंस
1: जी,
0: जो आप इन्हें ट्राइकोटर्मा से भी फंगस गेर सकाने की।
1: अच्छा,
0: बाकी और एक स्पेशल देख रहे थे को ने सही तरीका से इंजेक्ट करना चाहिए, जो 4-5 साल को प्रोसीजर 4-5 साल पाचे सही तरीका से इंजेक्ट करना चाहिए, इंजेक्ट करे पाचे आपने टेंशन खत्म दे।
1: तो मोटो मोटो ना एक लंबे समय अवधि के 5-6 जारियो आपने मुनाफो देवे छे
0: 8-10 साल
1: जी,
0: लास्ट से 8-10 साल 8-10 साल के मायने या कंप्लीट तैयार हो जाएगा।
1: अच्छा, तो अगर उड़ के ताई अगर कोई लगा पो चाह रहे तो कोई विशेष मौसम में लगाना चाहिए?
0: एको मैनुअल मौसम तो छे मैम जी, हाँ जून जुलाई मैनुअल मौसम चाहिए को, बाकी फरवरी के मायने भी इन्हें अपन लगा सका।
1: और लगा बो अगर कोई चाह रहे हो है तो पौधा कट्ठे सुन ले रहा लो,
0: एको पौधा प्राइवेट नर्सरी में आसानी से कौन मिले या तो एक स्पेशल जहाँ अपने आसाम का मायने नर्सिया से और प्राइवेट नर्सिया में से ऑर्डर पे भी आप मंगा सका था।
1: अच्छा, और बीमारियां या कीड़ा ही में अगर लगता है तो बताओ कोई विशेष तैयारी करनी है बचाव के ताई संरक्षण के ताई?
0: इनमें कोई बीमारी को ना हो, इन्हें उल्टो बीमार करना पड़े पेड़ ने।
1: अच्छा,
0: इन बीमारी को ना हो, नॉर्मल छोटा पेड़ छे नहीं तो बिना दीवार तानी बस बचाव आपने करना
1: चाहिए,
0: तो दीवार को ध्यान रखना।
1: अच्छा साहब, और चालता चालता काश्तकारन कहीं के पूछा होला साहब?
0: चालता चालता मतलब साहब आई कुमला किसान भाइयों, दुनिया किसान उड़ जा के जाए भाई, जो भी है जो किसान ने लूट खावा और किसान दिमाग लगाओ ने हर कहीं की बात मान ले जाए, पर खुद को दिमाग लगा रहे अगर जो दुनिया की बात ना मान रहे और आपना दिमाग सु और अपना खेत में अगर जो 10 पेड़ भी लगा लियो तो किसान कोई की बात समझ पागे आगे भी जरूरत को नहीं मिले।
1: तो परंपरागत खेती सु अलग नवाचारी खेती की तरफ आपने चालनो है और नवाचारा ने अपनानो है। राजवीर मीणा साहब आप कार्यक्रम में आया, घनी चोखी जानकारी नई जानकारी दिया अगरवुड की खेती के मायने माने, एक लिए आपको घने मानू धन्यवाद सा।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतना बोल रहा
2: है पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: अनीता जी, श्री राजवीर मीणा जी और चंचल बहन को दोनों को खूब खूब धन्यवाद, इतना महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दिलाया और उम्मीद है काश्तकार भाई के लिए उपयोगी भी रहेगी यह जानकारी। और धन्यवाद स्वरूप गीत याने भी सुनावा, आपा भी सुना और कार्यक्रम सुनवाला सगला श्रोता भी सुनेला।

0: ਕੰਨੜਾ ਕੋ ਵਿਆਹ ਸੋ ਤਤਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਆਇਓ ਛੇ ਕਰ ਬੰਨੜਾ ਕੋ अनीता जी साबन मल सबल को गायो ही गीत की साथ ही अब आज को जी को कार्यक्रम छे किसान वाणियों को टाइम पूरो होतो जा रहे छे तो कास्ट करवाया दे रहा आगे आशा ने
1: और अनीता ने
0: चालान करा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
4: मिलेगा प

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है एफएमएंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में जीत फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गीत रचना थी समीर की और संगीत निर्देशन था नदीम श्रवण का। अगला नगमा हमने लिया है केके की आवाज में भूल भुलैया फिल्म से। गीत लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

जावेद बशीर की आवाज़ में भाग मिल्खा भाग फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गीत लिखा था प्रसून जोशी ने और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। अगला नगमा हमने लिया है मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाज़ में राम लखन फिल्म से। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। अगला नगमा हमने लिया है दी ग्रेट गैम्बलर फिल्म से अमिताभ बच्चन और आशा भोसले व साथियों की आवाज़ में।

0: Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे तलाश फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था समीर ने और संगीत दिया था संजीव दर्शन ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। पेश है लोक संगीत, कलाकार हैं राजकुमार यादव एंड पार्टी।

0: बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
7: पत्थरी के भी टुकड़े कर दे, जिस घर से के बिरानी हो वो घर भी ना बसया करे। जिसमें के चपानी हो, पत्थरी के

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। कलाकार हैं राजकुमार यादव एंड पार्टी।

दम देने आ दम देने मुश्किल हो।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: घर की कोन्या इस राजा की जाई से, अरे कोई मतलब के

ससुर ने दुखी करी के समरासुर ने दुखी करी कामदेव की नारी मती हर के

आके देखी से शगुन तला जो दुष्चंद सन मैं प्याई।

छिपा के चली सुरस्ती, के रूप छिपा के चली सुरस्ती, पिता लग्या सिरदार।

しっかり。

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे राजकुमार यादव एंड पार्टी, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में

0: श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडल लो।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
2: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
3: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
2: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
4: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
2: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT Kazima 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज

0: जहाज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मिथ के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मिथ की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलबीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
2: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे

और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश अनामिका फिल्म से। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत तैयार किया है आरटी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ, अब दीजिए इजाजत।

0: मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
1: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
0: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। आपके पिता श्री ओपी दत्ता फिल्म निर्देशक और कहानीकार थे, यानी जेपी दत्ता को फिल्मी माहौल विरासत में मिला। तो ये तो शायद उनके बचपन में ही तय हो गया होगा कि उन्हें फिल्मों में ही अपना करियर बनाना है।

निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता फिल्मी दुनिया और दर्शकों के बीच जाने जाते हैं युद्ध की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाने वाले के रूप में।

बॉर्डर फिल्म का ये गीत संदेशे आते हैं, ये आज भी फौजी भाइयों के बीच ही नहीं, उनके परिवारजनों और तमाम देशवासियों के बीच ये गीत बहुत लोकप्रिय है। जेपी दत्ता द्वारा बनाई गई, निर्देशित की गई वॉर फिल्में हैं बॉर्डर, एलओसी और बॉर्डर 2। जेपी दत्ता ने बंटवारा, यतीम और गुलामी जैसी जो फिल्में बनाई वो भी लीक से हटकर फिल्में रही हैं। जेपी दत्ता द्वारा बनाई फिल्म रेफ्यूजी, इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने अपना करियर शुरू किया। रेफ्यूजी में सीमा विवाद को जेपी दत्ता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फिल्म रेफ्यूजी में पिरो दिया और दर्शकों के सामने एक अलग तरह की फिल्म के रूप में पेश किया।

0: फिल्म निर्माता और निर्देशक जेपी दत्ता पर केंद्रित रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत आज के इस कार्यक्रम में
1: ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं श्रोताओ, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाईलाइट कैप्सूल।

स्पर्धाएं आज तकरीबन समाप्त हो गईं। दो सप्ताह का खेल मेला, शानदार जानदार प्रदर्शन की खुशी तो कहीं चूक जाने का गम या फिर अपने तई हर संभव प्रयास न कर पाने का मलाल, यही तो खेल है। खेलों का रोमांच है, खेलों का जुनून है, उनका जादू है। खेल आपको खुद को साबित करने का दूसरा मौका भी जरूर देता है, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे समय। एक और बड़ी बात, ऐसे खेल मेले दूर दराज के खिलाड़ियों से मिलने, सोच को साझा करने, आत्मीयता जगाने का भी अवसर देते हैं और अपनी संस्कृति को दूसरे तक पहुंचाने का भी। आईची नगोया एशियाई खेलों पर अपनी दैनिक हाइलाइट्स के साथ उपस्थित हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। पुरुष हॉकी में भी स्वर्ण पदक आया और 2028 ओलंपिक का टिकट भी। क्रिकेट में भारत की बादशाहत बरकरार, बना चैंपियन। कुश्ती में आज

0: तीनों रंग के एक एक पदक आए। गोल्फ में हुआ कमाल, प्रणवी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, टीम रजत भी। आर्चरी में कुमकुम का कमाल, महिला स्वर्ण पदक पे निशाना लगाया। पुरुष हॉकी में भारत ने आज गजब का फाइनल खेला मलेशिया के विरुद्ध, 5-1 से धमाकेदार जीत और एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल पाया और पहली बार महिला और पुरुष दोनों गोल्ड मेडल भारत ने एक ही गेम में जीते। लेकिन पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में चिर प्रतिद्वंदी थे आमने सामने भारत और पाकिस्तान। पिछले काफी समय से भारत इस प्रतिद्वंदिता में लगातार हैवीवेट बना रहा है और आज भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। भारत की जीत और स्वर्ण पदक की पूरी आशा थी जो खिलाड़ियों ने आसानी से पूरी कर दी। पहले बैटिंग कर 200 प्लस का स्कोर खड़ा करके। मैच की मीमांसा मेघा से।
1: इंडिया हैव कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन क्रिकेट एट द एशियन गेम्स। द इंडियन मेंस टीम डिफीटेड पाकिस्तान बाय 19 रन्स इन द फाइनल टू सक्सेसफुली डिफेंड देयर एशियन गेम्स टाइटल। बैटिंग फर्स्ट, इंडिया पोस्टेड एन इंपोजिंग 211 फॉर 6। अभिषेक शर्मा लेड द चार्ज विद अ ब्लिस्टरिंग 61 ऑफ 28 डिलीवरीज इंक्लूडिंग 7 सिक्सेस एंड 3 फोर्स। ही ब्रॉट अप अ हाफ सेंचुरी इन ओनली 20 बॉल्स। तिलक वर्मा प्रोवाइडेड द फिनिशिंग फ्लरिश विद एन अनबीटन 51 ऑफ 22 बॉल्स हेल्पिंग इंडिया क्रॉस द 200 मार्क। Pakistan's trays got off to a difficult start as India's spinners made early inroads. Akshar Patel picked up two important wickets, leaving Pakistan struggling at 76 for 3 at the halfway stage. Hasan Nawaz kept Pakistan's hopes alive with a fighting 96, but India held their nerve to restrict Pakistan to 192 for 6. This victory completes India's cricket double at the Games. The women's team had earlier defeated Sri Lanka by a commanding 147 runs in the final. Two teams, two gold medals and another successful Asian Games campaign for Indian cricket.
0: हॉकी में कल हमने महिलाओं का हुनर देखा तो आज पुरुषों की बारी थी। हाँ, रणनीति कल से अलग थी, सिर्फ रक्षण नहीं आक्रमण से भरपूर। टीम पूरा चढ़कर खेली और दिखाया कि हमारी तो आज की नीति है आक्रमण करो गोल कमाओ। एक परफेक्ट मैच खेला भारत ने आज, खासकर हाफ टाइम के बाद के दोनों क्वार्टर्स में तो भारतीय हॉकी की धनक पूरे मैदान में गूंज रही थी। हुटर बजा तो वो भारत के इन एशियन गेम्स में 5-1 से अपने 5वें स्वर्ण पदक का जयघोष था। पहले क्वार्टर की शुरुआत संयत तरीके से हुई, एक दूसरे को आंकने में ज्यादा मूव नहीं बने। खेल ने रंग पकड़ा करीब 10 मिनट के बाद पहला पेनल्टी कॉर्नर रोक दिया गया। फिर हरमन ने दिखाया कि क्यों उन्हें पेनल्टी कॉर्नर्स और ड्रैग फ्लिक का किंग कहा जाता है। लेकिन हॉकी प्रेमी इस लीड का आनंद ले पाते तब तक प्रत्याक्रमण हुआ मलेशिया का। शैलो सिल्वेरियस ने शानदार फील्ड गोल कर दिया, बिल्कुल हाफ वॉली स्टाइल में उन्होंने शॉट मारा। सेकेंड क्वार्टर में मलेशिया ने हमले बनाए लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा किया भारत ने। दो पेनल्टी कॉर्नर भी उन्हें मिले लेकिन रक्षण ने बेकार कर दिए। फिर भारत के हमले हुए, पेनल्टी कॉर्नर मिला, इस बार जुगराज ने लिया। उन्होंने अपनी ड्रैग फ्लिक की स्पीड दिखाई, दाहिनी ओर के गोल पोस्ट को खड़का दिया। हाफ टाइम का स्कोर 2-1। तीसरे क्वार्टर से भारतीय टीम पूरे रंग में आ गई और मलेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। एक के बाद एक मूव बनाए, हरमन का एक पुश मनदीप को गया और उनका शॉट मलेशिया के डिफेंडर के शरीर से लगकर गोल के सामने और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हार्दिक ने गोलकीपर को छकाता हुआ जन्नाटेदार शॉट लगाया और भारत 3-1 से आगे। अब भारतीय फैंस को थोड़ी राहत की सांस मिली क्योंकि हॉकी में एक गोल का अंतर तो आप जानते हैं, आप चैन से नहीं बैठ सकते। फोर्थ क्वार्टर में मलेशिया के पास एक ही चॉइस बची थी, ऑल आउट अटैक पर जाने की। शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की लेकिन भारतीय रक्षण पूरी तरह मजबूत और अभेद्य था और बहुत जल्द ही भारतीय ही पूरे मैदान पर छा गए। एक के बाद एक आक्रमण करते हुए मलेशिया मैच में दिखा ही नहीं, एक बार तो 4 पेनल्टी कॉर्नर्स एक के बाद एक मिले। फिर एक भारतीय हमले में अभिषेक ने एक शानदार दौड़ लगाई गेंद के साथ, बिल्कुल बेस लाइन के पैरेलल, और उसके बाद पास भेजा गोल के सामने खड़े हुए शिलानंद लाकरा को, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और भारत 4-1 से आगे। स्वर्ण पदक तो बिल्कुल पक्का सा हो गया लेकिन हमले जारी रहे और पेनल्टी कॉर्नर आया तो हरमन ने डी पर इस बार सिर्फ 3 खिलाड़ी रखे। समय उनको पूरा मिला और सीधा गोली की तरह जन्नाटेदार शॉट लगाया उन्होंने, स्कोर को कर दिया 5-1। इत्तेफाक से ये वो समय था जब भारतीय इन गेम्स में अंतिम बार किसी मैदान में थे, यानी खेलों से शानदार विदाई ली 5-1 से सुनहरी जीत के साथ और ओलंपिक खेल 2028 के प्रवेश टिकट के साथ। जय हो भारतीय हॉकी की। गोल्फ में कल ही प्रणवी ने लीड बना ली थी।

0: पहले स्थान पर आ गई थी। आज 10वें होल से उन्होंने शुरुआत की और संयम, एकाग्रता, सटीक स्ट्रोक्स और खुद पर पूरा काबू रखते हुए अपने लीड को बनाए रखा और इतिहास रच डाला। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर रणवी अर्श के अर्श तक पहुंचने की कहानी साक्षी मंडवाल से।
1: रणवी अर्श क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। रणवी, अदिति एंड दीक्षा आल्सो क्लेम द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर इन 2002। द 24 ईयर ओल्ड लॉन्ग वेट फाइनली केम टू एन एंड विद प्रणवी अर्श गेटिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी अर्श हेल्ड हर नर्व्स टू win the women's individual golf gold medal, finishing the 4-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Jin Ruining, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory. Let's remind all of you once again that Pranavi Urs, Aditi Ashok and Deeksha Dagar also claimed the silver medal in the women's team event in golf today.
0: लड़कियों का जादू तीरंदाजी में भी बना रहा, वो कथा तो सबको पता है, अर्जुन और मछली की आंख की। अमरावती महाराष्ट्र की 17 बरस की कुमकुम को भी लगता है बस टारगेट बोर्ड का सेंटर ही दिख रहा था। आज तीसरा पदक, वो भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। कुमकुम के सनसनाते तीरों का बयान कर रही हैं मेघा।
2: Indian archery has signed off from the Asian Games with another historic performance, and at the center of it is 17-year-old Kumkum Anil Mohod. Kumkum clinched the gold in the women's individual recurve event, defeating South Korea's Oh Ye-jin in a dramatic shoot-off. With the scores tied at 5-all, the Indian teenager produced a perfect 10 while her opponent managed an 8. Earlier, Kumkum had defeated reigning world champion Kang Chaeyoung in the quarterfinals and China's Chu Xingyi in the semi finals. Her victory makes her the first Indian archer to win an individual recurve gold medal at the Asian Games. She's also secured an individual recurve quota place for India at the Los Angeles 2028 Olympics. And there was more to celebrate in the men's competition. Neeraj Chauhan defeated compatriot Dheeraj 6-4 in an all-Indian bronze medal contest. Neeraj fought back from 4-2 down to secure his place on the podium. For Kumkum, this was her third medal of the Games, following gold in women's recurve team event and silver in mixed team event. India's archery contingent finishes with 9 medals, 5 gold, 2 silver and 2 bronze, a campaign that underlines India's growing strength across both recurve and compound category.
0: पहलवानों ने भी भारतीय पदकों का ढेर बड़ा करने का बीड़ा उठा रखा था। आज 5 पहलवान थे, 2 रेसलर फाइनल में पहुंचे तो 2 कांस्य पदक के मैट पर। दांव पेंचों का सारा विवरण शाहिद आजमी से।
3: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कुश्ती का अभियान शानदार अंदाज में समाप्त हुआ। भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही अमन सहरावत की, जिन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। फाइनल में अमन का सामना उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग से हुआ। अमन ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और 4-1 की बढ़त बना ली। हालांकि चोंग सोंग ने वापसी करते हुए स्कोर 7-6 कर दिया। मुकाबले के आखिरी मिनट में रोमांच अपने चरम पर था। दबाव के इस दौर में अमन ने बेहतरीन टेकडाउन लगाकर 4 अंक हासिल किए और स्कोर 11-7 कर दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़त कायम रखी और भारत के लिए स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में अमन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने जापान के यामातो ओगावा को 20-9 और कजाकिस्तान के नूरदानात एतानो को 12-1 से हराया। सेमीफाइनल में 2-6 से पिछड़ने के बाद ताजिकिस्तान के एयाल बेलोबेउस्की के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 14-8 से जीत दर्ज की। हांगझोऊ एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने इस बार अपने पदक का रंग बदलकर स्वर्ण कर दिया। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें जापान की मोए क्योका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की साकिब जमाल एसबोसिनोवा को 8-0 से और सेमीफाइनल में चीन की जिन जांग को 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस रजत के साथ अंतिम ने एशियन गेम्स में अपना दूसरा पदक हासिल कर लिया। आपको बता दें, हांगझोऊ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उधर पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुयाक गनबातार को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में 8-9 की करीबी हार के बाद दीपक ने शानदार वापसी की और लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा। हालांकि 74 किलोग्राम वर्ग में सागर जगलान कांस्य पदक से चूक गए।

0: कजाकिस्तान के नुरकोजा कैपानो ने 5-0 से हराया और सागर चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले रेपेचाज में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रजामबेक जमालो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई थी। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में मनीषा क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जहां उन्हें जापान की अकारी फुजिनामी से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भारतीय कुश्ती ने कुल 6 पदक के साथ अपना अभियान पूरा किया। आपको बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 पदक जीते थे।
1: वॉलीबॉल में 5वें-6वें स्थान के लिए भारत की भिड़ंत थी थाईलैंड से। कड़ा मुकाबला हुआ, 5 सेट तक चला। सेट पॉइंट्स की कहानी प्रेरणा शर्मा से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को 5वें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक चले इस 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड ने निर्णायक सेट 17-15 से जीतकर 5वां स्थान हासिल किया, जबकि भारत 6ठे स्थान पर रहा। मुकाबले की शुरुआत थाईलैंड ने बेहतर तरीके से की, उसने पहला सेट 25-19 से अपने नाम किया। भारत ने हालांकि दूसरे सेट में तुरंत वापसी की और 25-17 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे में फिर 2-1 की बढ़त बना ली। भारत के सामने अब मुकाबला बचाने की चुनौती थी और टीम ने चौथे सेट में एक बार फिर दमदार वापसी की। भारत ने यह सेट 25-17 से जीता और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद फैसला 5वें और निर्णायक सेट में होना था। यहां दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत के पास मैच पॉइंट के मौके भी आए, लेकिन टीम उन्हें जीत में बदल नहीं सकी। थाईलैंड ने आखिरी पलों में धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 17-15 से अपने नाम कर लिया।
1: रग्बी सेवन में भी महिलाएं क्लासिफिकेशन रैंक के लिए खेल रही थी। 2 मैच खेले, दोनों का विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: इंडियन वुमेन डिफीटेड सिंगापुर फॉर द 5th to 8th प्लेसिंग 22-5। इंडिया वन द फर्स्ट हाफ कन्विंसिंगली एंड कमांडिंगली बाय डिफीटिंग सिंगापुर 17-5 एंड ऑल्सो ओन्ड द सेकंड हाफ बाय कंप्लीटली डिमोलिशिंग सिंगापुर 5-0, thereby winning the match in straight games 2-0. द इंडियन वुमेन्स मैच इन रग्बी सेवन्स फॉर द 5th-6th प्लेसिंग लेटर हैपेंड विद कजाकिस्तान, इन विच कजाकिस्तान easily defeated India 20-0. Both the halves went to Kazakhstan with the scoreline reading 10-0, 10-0. And finally, the Indian women finished on the 6th place.
1: ताइक्वांडो में 2 लड़कियां थीं। कल से संघर्ष में जुटी हुई कशिश मलिक और दूसरी ज्योति यादव। पदक की उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन संघर्ष की उम्मीद जरूर थी। हुआ क्या, जानते हैं साक्षी मन।
3: Games 2026 in Taekwondo. She was defeated by Kim Yujin of South Korea in this round. In the women's 67kg round of 16 in Taekwondo, Jyoti Yadav lost to Kanala 0-2. She was thus knocked out and India's campaign in the sport ended with this loss.
1: Sailing mein Bharat ne 3 padak paaye hain. Aaj Mahi
4: In sailing, 16-year-old Mahi Verma finished 6th overall in the girls' Dingy event as the competition concluded today. Mahi completed the 12-race opening series with 75 total points and 57 net points. She finished 8th in opening series race 12.
1: और अब भारत के लिहाज से पदक तालिका की फाइनल स्थिति।
4: Courtesy of a late search that saw them add 9 medals including 5 gold, India signed off the day in 4th place with 85 medals, 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India and Uzbekistan at the moment stand level on 21 gold medals, but India are on the 4th place thanks to their higher silver medal count. China finish on top of the table followed by host Japan and South Korea.
1: आज सही अवसर है भारत को मिले पदकों की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालने का। कहीं उम्मीदें पूरी हुई, कहीं उम्मीद से कम रहे, तो कहीं उम्मीद से बढ़कर आए। भारतीय पदकों की विवेचना मेघा से।
4: बियॉन्ड द मेडल्स एंड द फाइनल स्टैंडिंग्स, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर इंडिया एट दीस एशियन गेम्स हैज बीन द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू जनरेशन। Of the 310 athletes making their Asian Games debut, 83 have won medals, 43 women and 40 men. That means more than 1 in every 4 Indian debutant has returned with a medal. Between them, these first-timers have contributed 41 medals across 12 sports, 14 gold, 12 silver and 15 bronze. And several performances have broken

0: In new ground for India. Suchika Tharyal won India's first ever Asian Games medal in mixed martial arts, taking bronze in the women's traditional 60 kilogram category. Jay Meena's men's singles bronze gave India its first ever medal in soft tennis. Shooting produced several breakthroughs as well. India won its first ever women's team and mixed team medals in skeet, while Suruchi Singh and Kamaljeet Singh struck gold with an Asian Games record in the 10 meter air pistol mixed team. Neeru Dhanda and Kanan Chennai added another first, winning India's maiden mixed trap gold with an Asian Games record in the final. There were significant firsts elsewhere as well. Satnam Singh and Salman Khan delivered India's first ever Asian Games medal in the men's double sculls, while Baranika Alangova's bronze was India's first ever Asian Games medal in pole vault. In squash, Anahat Singh became the first Indian woman to reach the Asian Games singles final, eventually taking silver. And Indian archery reached another landmark. Ankita Bhakat, Kumkum Mohod and Kirti Sharma won India's first women's recurve team gold at the Asian Games. Kumkum followed it up today with individual recurve gold, becoming the first Indian archer to win an individual recurve title at the Asian Games. There were breakthroughs in sailing and boxing as well. Netra Kumaran claimed bronze in women's dinghy, while Lovlina Borgohain delivered India's first Asian Games gold in the women's 75 kg boxing category. Netra's bronze was a maiden Asian Games medal in a fourth appearance. There were milestones beyond first. Mirabai Chanu's silver ended India's 28-year wait for an Asian Games medal in weightlifting. Savan Barwal brought India its first men's marathon medal in 44 years. And the women's hockey team reclaimed Asian Games gold after a 44-year wait.
1: करीब दो सप्ताह तक एशिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाएं आईची नगोया में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की नई कहानियां रचने में लगी रहीं, बेहतर से और बेहतर होने की कोशिश करती रहीं। जो नहीं जीत पाए उनके लिए उदास होने का समय तो हो सकता है, लेकिन निराश होने का नहीं, क्योंकि खेलों का संदेश ही यही है, कल आप फिर ऊपर आ सकते हैं। और फिर विशाल एशिया की बहुरंगी संस्कृतियों का मिलन स्थल भी तो था ये। भारत ने अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक छाप भी जरूर ही छोड़ी। अब कल इन खेलों के अवसान का दिवस है। नगोया के पालोमा मिजुहो पार्क स्टेडियम में भव्य रंगारंग समापन समारोह होगा, लेकिन ये खेल आंदोलन तो शाश्वत है, चलता ही रहेगा। खेल ज्योति विदा लेगी। खेलों को सांकेतिक रूप से दोहा, जो 2030 खेलों का आयोजक है, उसे हैंडओवर किया जाएगा। जापान खासकर आईची नगोया की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हुए कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। समापन उद्घोष होगा और सारे खिलाड़ी एक मेक होते हुए एक दूसरे को गलबहियां डालकर विदा देंगे, चमकती आंखों में भविष्य के प्रदर्शन के सुनहरे सपनों के साथ। समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी दो स्वर्ण और एक रजत जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा, जिन्हें खास तौर पर फिर जापान भेजा जा रहा है भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने। तो उम्मीद करते हैं आपने आकाशवाणी पर हर दिन हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा, पसंद किया होगा। कल इस श्रृंखला के अंतिम कार्यक्रम के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे अनुपम पाठक को आज्ञा दें, शुभ रात्रि। एडिटर विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप सुन रहे थे जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाईलाइट कैप्सूल। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। रात्रि के 10:20 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।

परंतु जो चुपचाप मेरे सामने बैठा रहा उस खामोशी में भी एक मीठी सी शरारत थी। अब न मंजिल की तमन्ना न सफर की फिक्र रही, तेरा हाथ साथ हो हर घड़ी, दिल को बस इतनी ही चाहत थी। न कोई वादा मांगा न कोई कसम तुझसे, बस तेरे साथ की ख्वाहिश ही मेरी इबादत थी। अब जो तू साथ है तो और क्या मांगू मैं, मेरी हर धड़कन में बस तेरी ही मोहब्बत है।

नजर से जो गुजरा तो ख्वाब हो गया, ये दिल भी तेरे इश्क में बेहिसाब हो गया। तेरे कदमों की आहट ने छुआ जब दिल को, सूना सूना सा मेरा घर भी गुलाब हो गया। तेरी हंसी ने मेरी शाम को सवारा यूं, जैसे वीरान फलक पर कोई आफताब हो गया। मेरे ख्याल की बारिश जो बरसी रात भर, हर एक जख्म मेरे दिल का लाजवाब हो गया। तेरे साथ जो गुजरा वो पल ठहर सा गया, वक्त जैसे कोई खूबसूरत किताब हो गया।

ये आकाशवाणी अलवरका सर्विस का चैनल है, एफ एम इंडिक्स 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजे हैं। कुछ ही क्षणों में श्रोताओं आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर वन ऑफ
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस एनपीए कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
1: एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट अबाउट 766 बिलियन US डॉलर।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री

0: शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सर्विस का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। श्रोताओं, हमारी आज की सभा के प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं।